सुप्रभात श्रोताओं, हम विविध भारती से बोल रहे हैं। आज बुधवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ मास की 20वीं तिथि, तदनुसार 10 जून सन 2026। विविध भारती पर हम अपने श्रोताओं का स्वागत करते हैं।

श्रोताओं, हम आपको बता दें कि हमारे कार्यक्रम डीटीएच और इंटरनेट स्ट्रीमिंग पर उपलब्ध हैं। इसके अलावा न्यूज़ ऑन एयर ऐप के माध्यम से आप हमारे कार्यक्रम दुनिया के किसी भी कोने में दिन के किसी भी समय सुन सकते हैं। इस समय सुबह के 6 बजने वाले हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं। श्री मोदी ने 26 मई 2014 को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, जिन्होंने पहली बार 13 मई 1952 को निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी और 27 मई 1964 तक पद पर रहे। पंडित नेहरू का निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में कार्यकाल 4398 दिन का था। 26 मई 2014 से आज 10 जून 2026 तक प्रधानमंत्री मोदी का निरंतर कार्यकाल अब 4399 दिन का हो गया है। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का साधारण सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि से उभरकर किसी राजनीतिक वंश के समर्थन के बिना देश के सर्वोच्च निर्वाचित पद पर पहुंचना भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था द्वारा प्रदान किए जाने वाले अवसरों और सामाजिक गतिशीलता का प्रेरणादायक उदाहरण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के दौरान लगभग 25 करोड़ भारतीय बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले हैं। इस अवधि में डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना का तेजी से विस्तार, बड़े पैमाने पर आधारभूत ढांचे का विकास, कल्याणकारी योजनाओं के लाभ वितरण में उल्लेखनीय सुधार तथा व्यापक सामाजिक आर्थिक प्रगति हुई है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: विश्व नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारत के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने पर बधाई दी है। श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिसनायका ने एक पत्र में कहा है कि ये उपलब्धि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की जनता द्वारा उनके नेतृत्व पर बार बार जताए गए विश्वास का भी प्रमाण है। पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री जेम्स मारापे ने एक वीडियो संदेश में प्रधानमंत्री मोदी को आदर्श और नेतृत्व का उदाहरण बताया। उन्होंने दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने की इच्छा व्यक्त की। त्रिनिदाद और टोबैगो की प्रधानमंत्री कमला प्रसाद बिसेसर ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत वैश्विक मामलों में प्रखर आवाज के रूप में उभरा है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की बैठक आज नई दिल्ली में होगी। इसमें सरकार के 12 वर्ष पूरे होने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भारत के सबसे लंबे समय तक लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने का उत्सव मनाया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं के साथ साथ एनडीए गठबंधन के सभी घटक दलों के नेताओं की भी बैठक में शामिल होने की उम्मीद है। गृहमंत्री अमित शाह ने कल नई दिल्ली में भूमि बंदरगाह प्रबंधन प्रणाली विनिमय का उद्घाटन किया। विनिमय एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसे सभी बंदरगाहों के संचालन को एक एकीकृत इकोसिस्टम में लाने के लिए डिजाइन किया गया है। इस अवसर पर श्री शाह ने कहा कि ये पहल आधुनिक प्रौद्योगिकी आधारित सीमा प्रबंधन प्रणाली के निर्माण के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू ने घोषणा की है कि वाराणसी से अब अंतर्राष्ट्रीय यात्री दिल्ली पहुंचने से पहले आव्रजन और सामान संबंधी औपचारिकताएं पूरी कर सकते हैं और दुनिया भर के गंतव्यों के लिए निर्बाध रूप से आगे की यात्रा कर सकते हैं। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री नायडू ने कहा कि भारत की हब एंड स्पोक विमानन योजना की शुरुआत वाराणसी से होती है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर आज से 2 दिन के आधिकारिक दौरे पर बुल्गारिया और फिनलैंड जा रहे हैं। विदेश मंत्रालय ने बताया कि बुल्गारिया यात्रा के दौरान डॉक्टर जयशंकर बुल्गारिया के शीर्ष नेताओं और वहां के विदेश मंत्री के साथ मुलाकात तथा विचार विमर्श करेंगे। दूसरे चरण में फिनलैंड में डॉक्टर जयशंकर कुलतारंता वार्ता में भाग लेंगे। वे फिनलैंड के विदेश मंत्री और अन्य नेताओं से भी मुलाकात करेंगे। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान ने ओमान के तट पर एक अपाचे हेलीकॉप्टर को मार गिराया है। उन्होंने कहा कि अमरीका को इस हमले का जवाब देना ही होगा। ट्रंप के अनुसार दोनों पायलटों को बचा लिया गया है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्षी ने विदेशी सेनाओं से होर्मुज जलडमरू मध्य छोड़ने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं होने पर विदेशी सेनाएं अपनी मानवीय त्रुटियों, दुर्घटनाओं या गोलीबारी में फंसने के कारण लगातार संकट में रहेंगी। क्रिकेट में इंडिया ए ने कल श्रीलंका में त्रिकोणीय श्रृंखला के पहले मुकाबले में श्रीलंका ए को 8 रन से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए इंडिया ए ने निर्धारित 50 ओवर में 6 विकेट पर 277 रन बनाए। जवाब में श्रीलंका की पूरी टीम 7 गेंद शेष रहते 269 रन पर ही सिमट गई। इंडिया ए का अगला मुकाबला कल अफगानिस्तान ए से होगा। फाइनल 21 जून को खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: ये है विविध भारत।

आज का चिंतन। गौतम बुद्ध का ये कथन है कि क्रोध को मन में दबाए रखना वैसा ही है जैसे किसी गर्म कोयले को पकड़कर किसी और पर फेंकने की कोशिश करना। इससे हम स्वयं भी जलते हैं, इसलिए क्रोध का त्याग करें। ये था आज का चिंतन। आइए अब सुनते हैं भक्ति संगीत।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। लीजिए झरोखा के अंतर्गत सुनिए आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा। झरोखा की ठीक बात यानी कि 6:35 पर आप सुनेंगे श्री रामचरित मानस गान भाग 215। सुबह 6:45 पर कार्यक्रम होगा संगीत सरिता, श्रृंखला सिने संगीत में तबले का दौर। इस श्रृंखला की 10वीं कड़ी आज प्रसारित होगी। कलाकार हैं तबला वादक रविंद्र खासनेस। इस कार्यक्रम को आप दोबारा सुन पाएंगे शाम 6:45 पर। सुबह 7 कार्यक्रम होगा भूले बिसरे गीत और 7:30 पर हम हैं राही प्यार के। 8:15 पर त्रिवेणी कार्यक्रम और 8:30 पर चित्रलोक। 9:30 पर कार्यक्रम होगा आज के फनकार। ये कार्यक्रम केंद्रित होगा अभिनेता जीवन पर और इस कार्यक्रम को आप दोबारा सुन सकेंगे 9:30 पर। 10 कार्यक्रम होगा पिटारा के अंतर्गत सेल्यूलॉइड के सितारे। सुनिए अभिनेत्री वहीदा रहमान से कमल शर्मा की बातचीत का पहला भाग। रंग तरंग ये कार्यक्रम दिन में 11 और 12:05 पर यादों की महफिल। दिन में 1 सुरीला सफर ये कार्यक्रम होगा और 2 का समय त्रिवेणी कार्यक्रम का। दिन में 2:30 पर कार्यक्रम होगा सदाबहार नगमे और 3 सखी सहेली। शाम 4 पिटारा के अंतर्गत कार्यक्रम आज के मेहमान लेखक और पत्रकार प्रताप सोमवंशी से ममता सिंह की बातचीत आपको सुनवाई जाएगी। शाम 5 कार्यक्रम होगा छाया गीत और 5:30 पर तराने नए पुराने। शाम 6:35 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम संध्या रंजन। शाम 7 कार्यक्रम होगा जयमाला और 7:45

मिनट पर इंद्रधनुष के अंतर्गत कार्यक्रम राग अनुराग। रात 8 बजे आप सुनेंगे कार्यक्रम हवा महल। इसके अंतर्गत झलकी एक कुंवारा। लेखक हैं अशोक व्यास, निर्देशक हैं अरविंद माथुर। रात 8:15 पर कार्यक्रम चित्रलोक। रात 9 बजे सुनिए कार्यक्रम आपके लिए और रात 10 बजे का समय है छाया गीत कार्यक्रम का। ढलती जाए रात, ये कार्यक्रम आप सुनेंगे रात 10:30 पर और रात 11 बजे कार्यक्रम रंग तरंग।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन, प्रस्तुत है श्री रामचरितमानस गान भाग 215।

श्री राम को अयोध्या लौटा लाने के लिए भरत जी के साथ गुरुजन तथा पुरवासियों का एक बड़ा समूह चित्रकूट पहुंचा था। पिता के स्वर्गारोहण का समाचार सुन श्री राम, सीता तथा लक्ष्मण शोक सागर में डूब जाते हैं। गुरु वशिष्ठ द्वारा बताई गई विधि से ज्येष्ठ पुत्र श्री राम एक बार फिर पिता की क्रिया आदि करके अयोध्या वासियों से वापस नगर लौट जाने का अनुरोध करते हैं। पुरवासियों का दुख गुरु वशिष्ठ भली भांति समझते हैं और श्री राम के निकट वहां दो दिन रहकर शांति प्राप्त करने का परामर्श देते हैं। वन के निवासी कोल, भील, किरात आदि यथा सामर्थ्य अयोध्या वासियों का आदर सत्कार करते हैं। उनसे अमृत के समान स्वादिष्ट मधु, कंदमूल और फल प्राप्त करके नगर निवासी उन वस्तुओं का मोल चुकाना चाहते हैं, किंतु वनवासी राम की दुहाई देते हुए दाम वापस कर देते हैं। प्रेम सनी वाणी में कहते हैं, साधुजन प्रेम पहचान कर उसका सम्मान करते हैं। आप साधुजन हैं, अतः हमारे प्रेम का मूल्य चुकाकर उसका तिरस्कार करना आपको शोभा नहीं देता।

0: आप सुन रहे थे श्री रामचरित मानस गान भाग 215। ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन।
1: ये आकाशवाणी का प्रसारण है विविध भारती।

0: श्रोताओं नमस्कार। सिने संगीत में तबले का दौर, संगीत सरिता कार्यक्रम में इन दिनों आप सुन रहे हैं ये श्रृंखला। इस श्रृंखला के लिए हमारे मेहमान हैं आकाशवाणी के संगीतकार श्री रविंद्र खासनीस। इनसे बातचीत कर रहे हैं जयंत पात्रीकर। आज इस श्रृंखला की 10वीं कड़ी हम आपको सुनवा रहे हैं।
1: नमस्कार श्रोताओं। रविंद्र जी, अब तक हमने जो चर्चा की है, जो उदाहरण आपने हमें दिए, इसमें विविध तालों पर आधारित गीत जिसमें तबला वाद्य की प्रमुखता थी
2: जी,
1: उस पर बात हुई। और फिल्म संगीत की शुरुआत में तो तबला एक प्रमुख ताल वाद्य था संगति का।
2: हाँ हाँ।
1: लेकिन फिर ढोलक भी एक ताल वाद्य के रूप में आया।
2: हाँ।
1: तो फिल्म संगीत में तबले का जो दौर है उसकी हम बात कर रहे हैं, तो इसमें इस विषय को आगे बढ़ाते हुए तबले ने कैसे अपना रंग बदला, कैसे नूर बदला तब, ताकि उसे ढोलक के साथ आगे बढ़ना था।
2: बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, हम लोग जो है वो शुरू में हमने तबले के जो शास्त्रीय संगीत के ताल है
1: जी, जी,
2: वो ताल कैसे इसमें भी आए हैं इसके बारे में चर्चा की। फिर उपशास्त्रीय संगीत में जो ताल है वो ताल किस तरह से आए
1: जी।
2: तो शुरुआती दौर जो है इसमें प्रमुखता तबले की थी, लेकिन फिर तबला जो है वो उसके जो सीने संगीत का जो दौर है उसमें कई सारे परिवर्तन आए। तो पहला परिवर्तन जो है तबला वाद्य का, वो आया ढोलक वाद्य के संग में। तो उत्तर प्रदेश का ये ढोलक वाद्य जो है वो काफ़ी लोकप्रिय वाद्य है, और उसका एक अपना ढंग है, बजने का ढंग है। जैसे हम लोग तबला में सोलो बजाते हैं, स्वतंत्र वादन करते हैं, वैसे ढोलक में भी स्वतंत्र वादन किया जाता है।
1: अच्छा।
2: तो इतना सारा साहित्य उसमें भी उपलब्ध है। अभी विशेषता ये है कि तबला जो है वो बंद बोल वाला है, इसमें शाही लगी हुई है
1: जी।
2: ढोलक में शाही नहीं है,
1: शाही नहीं होती,
2: वो खुला बजता है
1: जी।
2: तो ये दोनों का जब मेल होता है तब एक कर्ण मधुर ऐसा

0: संगीत उसमें से उत्पन्न होता है।
1: जी जी
0: तो हमने जैसे कहा कि कहरवा और दादरा ये दो ताल ऐसे हैं
1: जी
0: कि जिसमें कई सारे गीत बने हैं और वो अलग अलग पैटर्न से बने हैं, तो वो पैटर्न की वजह से वो अलग लगते हैं।
1: जी जी
0: तो ढोलक के संग में तबला जब बजा, पैटर्न भी बदले, ढोलक के अनुसार कुछ पैटर्न उसमें आ गए और वो पैटर्न आने की वजह से वो गीत और भी सुंदर लगने लगा और भी
1: जी
0: अच्छा कर्णप्रिय लगने लगा। तो अभी जो केरवा है वो केरवा केवल धागे नाते ना कठिन, धागे नाते ना कठिन, ये मूल ठेका जो है ये जब ढोलक के संग में तबला बजता है
1: हाँ
0: तब ढोलक का अपना एक करवा बज रहा है और उसके साथ में तबले पर

0: तो ये कहरवा जो है, कहरवा ढोलक और तबले का मिला जुला फिल्मी गीतों में बजने लगा, तो उसकी खूबसूरती बढ़ गई।
1: क्या बात है। और मिसाल के रूप में हम कौन सा गाना सुनेंगे?
0: इसमें मिसाल के तौर पर मैं ना एक ढोलक का एक लहजा रखने वाला गीत जो है
1: जी,
0: वो सुनाना चाहूँगा, दिल पुकारे आरे आरे।
1: ज्वेल थी फिल्म का गीत है।
0: जी जी जी
1: जी जी लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी साहब की आवाजें हैं, एस डी बर्मन साहब का कॉम्पोजिशन।

0: श्रोताओं, ज्वेल थी फिल्म का गीत आप सुन रहे थे रफी साहब और लता मंगेशकर की आवाजों में। संगीतकार सचिन देव बर्मन, ढोलक और तबले की खूबसूरती इस गीत में हमें दिखाई दी। रविंद्र जी, ये तो बात थी ढोलक और तबले के संयोग की, इससे जो नाद बना और ताल संगति हुई।
1: हाँ,
0: लेकिन इसके साथ साथ पाश्चात्य संगीत के जो ताल वाद्य हैं,
1: हाँ,
0: उनका भी हमारे देश में प्रवेश हुआ, हमारे संगीत में प्रवेश हुआ।
1: हाँ जी।
0: कोंगो है, बोंगो है, ड्रम सेट भी, इस तरह के वाद्य जो आए, तो इस दौर में तबले का स्थान क्या है?
1: बड़ा अच्छा स्थान रहा है तबले का इस दौर में भी
0: जी,
1: क्योंकि ऐसा है कि हमारे फिल्म संगीत में कई सारे गीत ऐसे हैं कि जिसमें तबला जो है वो मेन सिंगर, मतलब जहाँ गीत चल रहा है, गाना चल रहा है
0: जी,
1: तो उसकी संगत कर रहा है तबला
0: जी,
1: और बीच में जो इंटरलूड बजते हैं वो इंटरलूड मतलब म्यूजिक जो होता है बीच वाला दो अंतरों के बीच में
0: जी,
1: तो उसमें वेस्टर्न म्यूजिक है और वेस्टर्न के सारे परकशन उसमें बज रहे हैं।
0: जी, ऐसे कई गाने हैं।
1: हाँ, उदाहरण के तौर पर मैं सुनवाना चाहूंगा
0: जी,
1: नौशाद साहब का ही एक गीत है, आज की रात मेरे दिल का सलाम ले ले, राम और श्याम फिल्म
0: जी
1: का ये
0: जी
1: गीत
0: बहुत
1: है।
0: सुंदर रचना है और पाश्चात्य संगीत और भारतीय संगीत का बड़ा अच्छा मेल देखने को मिलता है
1: जी।

श्रोताओं, फिल्म राम और श्याम का गीत आप सुन रहे थे, रफी साहब का गाया हुआ, संगीतकार नौशाद। और इसी के साथ सिने संगीत में तबले का दौर श्रृंखला की ये कड़ी अब

0: संपन्न होती है। अगली कड़ी में हमारी आपसे फिर भेंट होगी, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
1: सिने संगीत में तबले का दौर, संगीत सरिता में इन दिनों आप सुन रहे हैं ये श्रृंखला। ये थी इस श्रृंखला की 10वीं कड़ी। इस श्रृंखला में हमारे अतिथि थे श्री रविंद्र खासनीस, इनसे बातचीत की जयंत पात्रीकर ने।
0: विविध भारती के संग्रहालय से प्राप्त इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता मनीषा।

बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के इस भूले बिसरे गीत कार्यक्रम में। कार्यक्रम को लेकर मैं उपस्थित हूँ मंजू द्विवेदी। आप सभी को हमारा प्यार भरा नमस्कार। शुरुआत करते हैं, सबसे पहले रंगीन रातें इस फिल्म का गाना सुनते हैं। लता मंगेशकर की आवाज़, केदार शर्मा के बोल और संगीत है रोशन का।

रंगीन रातें फिल्म का ये गाना आपने सुना, आंखों की बात इसमें कही गई है। आज विश्व नेत्रदान दिवस है। अगला गीत आपको सुनवाते हैं पटरानी फिल्म का गाना, लता मंगेशकर, मीना कपूर, आशा भोसले और साथियों की आवाजों में, गीतकार शैलेंद्र, संगीतकार शंकर जयकिशन।

लता मंगेशकर और मुकेश की आवाजों में अब आपको सुनवा रहे हैं राज हट इस फिल्म का गाना। इस गीत को लिखा हसरत जयपुरी ने और धुन बनाई शंकर जयकिशन ने।

भूले बिसरे गीत कार्यक्रम का अगला गाना जानेसर अख्तर का लिखा हुआ, ओपी नैयर का संगीतबद्ध किया, गीता दत्त की आवाज, फिल्म का नाम श्रीमती 420।

भूले बिसरे गीत कार्यक्रम में गाने अभी और भी सुनवाना बाकी है। अभी समय हो चला है एक अंतराल का।

अंतराल के बाद हम उपस्थित हैं भूले बिसरे गीत कार्यक्रम के बाकी गानों को लेकर। अब आपको सुनवाने जा रहे हैं देवदास फिल्म का गाना लता मंगेशकर की आवाज में, गीतकार साहिल लुधियानवी, संगीतकार एसडी बर्मन।

0: वो इलाहाबाद से पहुंचे दिल्ली। बचपन से उन्हें छपे हुए शब्दों से प्यार था।
1: राम कुमार वर्मा, उनकी एकांकी हमने कक्षा 6 में पढ़ी, तो मैं इलाहाबाद में बंद रोड की जगह है जहां उनके किनारे उनका घर था, तो जब मैं साइकिल से उधर से गुजरता था तो मैं उनके गेट के बाहर खड़ा होकर इंतजार करता था कि वो निकले, एक झलक में देख लूं, जैसे मुंबई में लोग फिल्म स्टार के लिए खड़े होते हैं।
0: लेखन के साथ साथ लेखकों से भी उन्हें बहुत प्यार था।
1: आगे देखो तो रघुपति साहब फिराक रहते थे, दाएं देखो तो अकबर इलाहाबादी रहते थे, बाएं देखो तो सीवाई चिंतामणि जैसा पत्रकार था।
0: वो हैं जाने माने लेखक पत्रकार प्रताप सोमवंशी।
1: पहले लिखा तुम्हें प्यार है और आगे भाभी बीमार है, छुटकी को आया बुखार है, आंखें जैसी की तैसी है, गठिया की हालत वैसी है, अब तो बिटवा है ये लगता, मौत ही जैसे अंतिम हल है, शेष कुशल है।
0: तो सुनिए आज के मेहमान 10 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
3: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति, लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
2: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 14 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: जो शहीद हुए हैं इनकी जरा याद करो कुर्बानी।
5: देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से कार्यक्रम जारी है भूले बिसरे गीत। अब आपको सुनवाने जा रहे हैं कैफी आजमी का लिखा और कमल मित्र का संगीतबद्ध किया ये गाना, आशा भोंसले की आवाज, फिल्म का नाम यहूदी की बेटी।

0: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है। रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
1: अपनी आप रातों में चिमनी सरकती है।
0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
2: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
2: तेरा जवाब नहीं
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग।
2: प्यार का राग सुनो रे।
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
2: सदा रही है सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।
3: आज के भूले बिसरे गीत कार्यक्रम का अगला और अंतिम गाना आपको सुनवाते हैं अमर सैगल। इस फिल्म का गाना केएल सैगल की आवाज में, पंडित भूषण का लिखा हुआ गाना, पंकज मलिक का संगीत है।

प्रस्तुत है कार्यक्रम हम हैं राही प्यार के। कार्यक्रम का पहला गाना है सीआईडी, इस फिल्म का मोहम्मद रफी और गीता दत्त की आवाजें हैं, जानेसर अख्तर के बोल हैं।

0: अरे सुनो, कल 3 बजे की टिकट बुक कर लूं? सब लोग कह रहे हैं कि वो मूवी बहुत अच्छी है।
1: 3 बजे? मैं तो 3 बजे बिजी हूँ, शाम का शो बुक कर लो।
0: यार ऐसा क्या कर रही हो तुम कल 3 बजे?
1: कमाल है, इतना भी नहीं समझते। अरे 3 बजे हम सब मिलकर सुनते हैं सखी सहेली।
2: हम है राही प्यार के इस कार्यक्रम में अब आपको घर फिल्म का गाना सुनवाते हैं। किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज़ें, गुलजार के बोल, संगीत है आरडी बर्मन का।

एक सुरीली यात्रा है यह जीवन, संग जो है विविध भारती मन भावन। अभिजात संगीत की थाह लेता विविध भारती का कार्यक्रम संग

संजो रहा है सांस्कृतिक धरोहर का श्रोताओं से नाता, सांगीतिक परंपरा की खोज और फिल्म संगीत में शास्त्रीयता।

0: सुनना न भूलें प्रतिदिन सुबह और शाम 6:45 पर विविध भारती का कार्यक्रम संगीत सरिता।
1: आंखों आंखों में इस फिल्म का गाना आशा भोसले और किशोर कुमार की आवाजों में हसरत जयपुरी के बोल, संगीत है शंकर जयकिशन का।

अंतराल के बाद अब आपको सुनवाने जा रहे हैं लता मंगेशकर और महेंद्र कपूर की आवाजों में कमर जलाल आबादी का लिखा हुआ गाना। कल्याण जी आनंद जी का संगीत है ये, और बिरजू उस्ताद ये फिल्म का नाम है।

हम है राही प्यार के ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से। अब आपको सुनवाने जा रहे हैं धनवान फिल्म का गाना। लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर की आवाजें हैं, साहिल लुधियानवी का लिखा हुआ गाना और संगीत है हृदयनाथ मंगेशकर का।

0: सुनिए, क्या आपने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के बारे में सुना है?
1: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
0: इससे आपका घर सूर्य घर बन जाता है, माने बिजली बिल जीरो, और अतिरिक्त बिजली पैदा हुई तो बिजली ग्रिड को बेचकर पैसे भी कमा सकते हैं। तो बैठे क्यों हो, अभी रजिस्टर करो pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के सबसे लंबे कार्यकाल वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बने। विश्व के नेताओं ने प्रधानमंत्री मोदी के परिवर्तनकारी शासन और विकासशील देशों की पैरवी के उनके प्रयासों की सराहना की। मोदी सरकार के 12 साल पूरे होने और प्रधानमंत्री के सबसे लंबे कार्यकाल की उपलब्धि के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की आज नई दिल्ली में बैठक। केंद्र ने 125,000 करोड़ रुपए की ग्रामीण विकास योजना की घोषणा की। विकसित भारत जी राम जी का नया संस्करण 1 जुलाई से होगा लागू। ओमान तट पर अमरीकी सेना के अपाचे हेलीकॉप्टर को गिराए जाने के जवाब में अमरीका ने ईरान पर जवाबी हमले किए। और क्रिकेट में ऋतुराज गायकवाड़ के शतक की बदौलत भारत ने दांबुला में त्रिकोणीय एक दिवसीय श्रृंखला के पहले मैच में श्रीलंका ए को 8 रन से हराया। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं। श्री मोदी ने 26 मई 2014 को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, जिन्होंने पहली बार 13 मई 1952 को निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी और 27 मई 1964 तक पद पर रहे थे। पंडित नेहरू का निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में कार्यकाल 4,398 दिन का था। 26 मई 2014 से आज 10 जून 2026 तक प्रधानमंत्री मोदी का निरंतर कार्यकाल अब 4,399 दिन का हो गया है। एक रिपोर्ट।
4: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह उपलब्धि विशेष रूप से उल्लेखनीय है क्योंकि भारत जैसे 140 करोड़ से अधिक आबादी वाले देश का शासन प्रशासन अत्यंत व्यापक और जटिल है। भाषाई, सांस्कृतिक, धार्मिक तथा भौगोलिक विविधताओं से युक्त इस राष्ट्र का सफल नेतृत्व और संचालन अपने आप में एक बड़ी जिम्मेदारी और चुनौती है। ऐसे समय में जब अनेक देशों में राजनीतिक अस्थिरता, सरकारों में बार बार परिवर्तन तथा नीतिगत अनिश्चितता देखने को मिल रही है, भारत में नेतृत्व और शासन में निरंतर रही है। यह विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र में लगातार 3 बार राष्ट्र जनादेशों द्वारा जनता का निरंतर भरोसा दर्शाता है। स्वतंत्र वैश्विक सर्वेक्षणों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगातार विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय लोकतांत्रिक नेताओं में स्थान दिया गया है। साथ ही उन्हें अब तक 30 से अधिक देशों द्वारा सर्वोच्च नागरिक सम्मानों से भी सम्मानित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के दौरान लगभग 25 करोड़ भारतीय बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले हैं तथा व्यापक सामाजिक आर्थिक प्रगति हुई है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: विश्व के नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारत के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने पर बधाई दी है। श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिसानायका ने एक पत्र में कहा कि ये उपलब्धि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की जनता द्वारा उनके नेतृत्व पर बार बार जताए गए विश्वास का प्रमाण है। पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री जेम्स मारापे ने एक वीडियो संदेश में प्रधानमंत्री मोदी को आदर्श नेतृत्व का उदाहरण बताया। त्रिनिदाद और टोबैगो की प्रधानमंत्री कमला प्रसाद बिसेसर ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत वैश्विक मामलों में प्रखर आवाज के रूप में उभरा है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश के सबसे लंबे समय तक लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री बने रहने पर बधाई दी है। उपराष्ट्रपति ने कहा है कि यह ऐतिहासिक उपलब्धि केवल कार्यकाल की अवधि नहीं है बल्कि राष्ट्रीय विकास यात्रा में एक परिवर्तनकारी युग का प्रतीक है। पूर्व उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने अखबार में एक लेख में गुजरात के वडनगर से प्रधानमंत्री कार्यालय तक के उनके सफर और जवाहरलाल नेहरू के रिकॉर्ड को तोड़ते हुए 4,399 दिन पूरे करने का उल्लेख किया है। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी एक दैनिक समाचार पत्र में प्रकाशित एक लेख में कहा है कि 2014 के बाद से शासन, राजनीति और सार्वजनिक चर्चा में भारतीयता की ओर निर्णायक बदलाव आया है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की बैठक आज नई दिल्ली में होगी। इसमें सरकार के 12 वर्ष पूरे होने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भारत के सबसे लंबे समय तक लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने का जश्न मनाया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं के साथ साथ एनडीए गठबंधन के सभी घटक दलों के नेताओं की भी बैठक में शामिल होने की उम्मीद है। बैठक में एनडीए के शासन वाले सभी 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री तथा गठबंधन के सभी घटक दलों के नेता भी उपस्थित रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गृह नगर गुजरात के वडनगर में आज उनके सफल शासन के 12 वर्षों के उपलक्ष्य में कार्यक्रमों की एक श्रृंखला आयोजित की जाएगी, जिसमें विकसित भारत के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए जन भागीदारी पर जोर दिया जाएगा।
5: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गृहनगर वडनगर में उनकी 12 वर्षों के सफल शासन के उपलक्ष में आज कई विशेष कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इस अवसर को यादगार बनाने के लिए जिला प्रशासन द्वारा आज शाम 7 बजे ऐतिहासिक शर्मिष्ठा झील पर एक भव्य महाआरती और 10,000 दीपक जलाने की विशेष व्यवस्था की गई है। इसी के साथ प्रदेश भाजपा द्वारा प्राचीन हाटकेश्वर मंदिर में भी कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है, जिसकी शुरुआत शाम 4:30 बजे स्वच्छ भारत अभियान और स्वच्छता कर्मियों के सम्मान समारोह के साथ होगी। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष जगदीश विश्वकर्मा आज शाम मंदिर में एक भव्य महाआरती का नेतृत्व करेंगे, जिसमें बड़ी संख्या में नागरिक, पार्टी कार्यकर्ता और श्रद्धालुओं के शामिल होने की उम्मीद है। अपर्णा खूंट, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
3: मोदी सरकार के 12 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में चलाए जा रहे राष्ट्रव्यापी अभियान के अंतर्गत भारतीय जनता पार्टी आज उत्तर प्रदेश के सभी 403 विधानसभा क्षेत्रों के मंदिरों में विशेष प्रार्थना सभाओं का आयोजन करेगी। प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
6: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव भारत इनोवेट्स 2026, जिसमें हेल्थ केयर और AI से लेकर एग्रीकल्चर और सेमीकंडक्टर्स तक 13 सेक्टर्स के 120 स्टार्टअप्स 14 से 16 जून तक नीस फ्रांस में अपनी इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरियल क्षमताओं का प्रदर्शन करेंगे। भारत इनोवेट्स 2026, भारत में निर्मित, विश्व के लिए तैयार।
3: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। आकाशवाणी समाचार केंद्र सरकार के पिछले 12 वर्षों में विभिन्न प्रमुख क्षेत्रों में किए गए प्रयासों पर एक विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज हम युवाओं के सशक्तिकरण की दिशा में सरकार के प्रयासों पर चर्चा कर रहे हैं।
7: पिछले 12 वर्षों में सरकार ने देश की युवा शक्ति को सशक्त बनाने पर विशेष ध्यान दिया है। भारत के अगली पीढ़ी के सुधार अब एक तेज गति वाले सुधार अभियान बन चुके हैं, जिसके केंद्र में युवा शक्ति है। विकसित भारत के निर्माण और विभिन्न क्षेत्रों में देश के भविष्य को आकार देने में युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत 12 करोड़ से अधिक नए उद्यमियों को ऋण प्रदान किया गया है, जिससे युवाओं के सपनों को नई उड़ान मिली है। सरकार युवाओं को रोजगार और आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ाने के लिए सशक्त बना रही है, जिससे वे नौकरी तलाशने वाले नहीं बल्कि रोजगार देने वाले बन रहे हैं। छत्तीसगढ़ के रायपुर की महिला उद्यमी ईशा पटेल ने बताया कि कैसे उन्होंने घर पर खाना बनाने से शुरुआत करने से लेकर एक सफल कैफे व्यवसाय स्थापित करने तक की यात्रा की।
8: मैं ना यूथ को लगता है कि हमारे पास फंडिंग नहीं है, बट वो गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में अवेयर नहीं है। तो मैं अपने साइड से यही उन्हें सजेशन देना चाहूंगी, अब थोड़ा रिसर्च करो। जैसे मुद्रा लोन भी है, वैसे पीएमईजीपी लोन भी है, कई लोन जो आपको विदाउट मॉर्गेज मिल रहे हैं। आपके में पोटेंशियल है तो आप जॉब ड्रॉप करो, क्योंकि स्काई हैज नो लिमिट्स फॉर यू।
7: प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत 1,60,00,000 से अधिक युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। कुशल युवाओं की बढ़ती संख्या मेक इन इंडिया पहल को नई ऊर्जा दे रही है। रोजगार मेलों के माध्यम से 1,200,000 नियुक्ति पत्र वितरित किए जा चुके हैं, जिससे युवाओं के रोजगार के सपने साकार हो रहे हैं। देश में 2,20,000 से अधिक स्टार्टअप्स ने 23,00,000 से ज्यादा रोजगार के अवसर सृजित किए हैं। वहीं छात्रों द्वारा 16,00,000 नवाचार परियोजनाएं विकसित की गई हैं, जिन्होंने स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत आधार प्रदान किया है। प्रधानमंत्री सेतु योजना के तहत 1,000 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों ITI के आधुनिकीकरण के लिए 60,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, जिससे युवाओं को उद्योगों की आवश्यकताओं के अनुरूप कौशल प्रदान किया जा सकेगा। सरकार के सहयोग और देश की युवा शक्ति के प्रयासों से भारत के विकास का एक नया अध्याय लिखा जा रहा है। अनुपम मिश्र के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
6: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव भारत इनोवेट्स 2026, जिसमें हेल्थ केयर और AI से लेकर एग्रीकल्चर और सेमीकंडक्टर्स तक 13 सेक्टर्स के 120 स्टार्टअप्स 14 से 16 जून तक नीस फ्रांस में अपनी इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरियल क्षमताओं का प्रदर्शन करेंगे। भारत इनोवेट्स 2026, भारत में निर्मित, विश्व के लिए तैयार।
3: केंद्र सरकार ने ग्रामीण विकास के लिए 1,25,00,000 करोड़ रुपए की योजनाओं की घोषणा की है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा के अंतर्गत पहले ही 30,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। यह अधिनियम 1 जुलाई से पूरे देश में लागू हो जाएगा। ओमान तट के पास अमरीकी सेना के अपाचे हेलीकॉप्टर को गिराए जाने के जवाब में अमरीका ने ईरान पर हमले किए हैं। अधिकारियों ने बताया कि हेलीकॉप्टर को एक ईरानी ड्रोन ने गिराया था, हालांकि दोनों पायलटों को बचा लिया गया। उधर ईरान ने भी क्षेत्र में अमरीकी ठिकानों पर मिसाइलें और ड्रोन दागे हैं।
9: ईरान के दक्षिणी तट पर सिरिक, बंदर अब्बास, केशम, जास और कोहे मुबारक समेत कई स्थानों पर विस्फोटों की खबरें मिली हैं। सरकारी मीडिया ने बताया कि सिरिक के बामानी जिले में 2 जल भंडार टैंक क्षतिग्रस्त हो गए, जिससे स्थानीय पेयजल आपूर्ति बाधित हो गई। ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराग्ची ने चेतावनी दी कि तेहरान किसी भी हमले या धमकी का जवाब दिए बिना नहीं रहेगा। और
3: क्रिकेट में इंडिया ए ने कल त्रिकोणीय श्रृंखला के पहले मुकाबले में श्रीलंका ए को 8 रन से हराया। इंडिया ए का अगला मुकाबला कल अफगानिस्तान ए से होगा। फाइनल खेला जाएगा 21 जून को। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं विशाल शर्मा।
10: धन्यवाद मुनीष। देश की राजधानी से प्रकाशित हिंदी समाचार पत्रों ने सरकार की 12 साल की उपलब्धियों और पीओके में बढ़ती पाकिस्तान की बर्बरता की खबरों को सुर्खियों से प्रकाशित किया है। लोक सत्य ने देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की तस्वीर के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चित्र प्रकाशित करते हुए श्री मोदी के सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री होने के रिकॉर्ड को रेखांकित किया है। पत्र ने उनके ऐतिहासिक 14 फैसलों को भी क्रमवार सूचीबद्ध किया है। अमर उजाला ने पाक अधिकृत कश्मीर के मुजफ्फराबाद की तस्वीर प्रकाशित करते हुए अपनी खबर को शीर्षक दिया है, मानवाधिकार उल्लंघन पर पाकिस्तान को जवाबदेह ठहराए दुनिया। पत्र ने ब्रिटेन के 50 सांसदों के उस पत्र का भी उल्लेख किया है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर में लोग सेना की बर्बरता से डरे हुए हैं।
3: और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के सबसे लंबे कार्यकाल वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बने। विश्व के नेताओं ने प्रधानमंत्री मोदी के परिवर्तनकारी शासन और विकासशील देशों की पैरवी के उनके प्रयासों की सराहना की। केंद्र ने 1,25,00,000 करोड़ रुपए की ग्रामीण विकास योजना की घोषणा की। ओमान तट पर अमरीकी सेना के अपाचे हेलीकॉप्टर को गिराए जाने के जवाब में अमरीका ने ईरान पर हमले किए और क्रिकेट में ऋतुराज गायकवाड़ के शतक की बदौलत भारत ए ने त्रिकोणीय एक दिवसीय श्रृंखला के पहले मैच में श्रीलंका ए को 8 रन से हरा दिया है। और इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

आज त्रिवेणी में धन की बातें होंगी। लोग ये समझते हैं कि धन का मतलब है रुपए, पैसे, गहने, जमीन और वस्तुएं। लेकिन केवल इन्हीं चीजों को धन समझना अपनी सोच को सीमित करना है। धन और भी कई प्रकार के होते हैं, उनकी भी हमें कद्र करनी चाहिए। यदि हमारा स्वास्थ्य अच्छा है तो भी हम बहुत धनी हैं। सेहत का जितना नुकसान होता है उतना ही बड़ा हमें उपचार करना पड़ता है, यानी धन खर्च करना पड़ता है। इसलिए सेहत रूपी धन को बचाइए। ज्ञान अर्जित करना भी बहुत बड़ा धन है और ये एक ऐसा धन है जिसे कोई चुरा नहीं सकता और न ही कोई लूट सकता है। ज्ञान ही हमें भौतिक संपदा के सही इस्तेमाल की क्षमता देता है। इसलिए ज्ञान रूपी धन को अर्जित कीजिए।

0: कितने तीतर? बोलो बताओ।
1: तीतर के दो आगे तीतर, तीतर के दो पीछे तीतर, आगे तीतर पीछे तीतर, बोलो कितने तीतर?

समय रूपी धन तो हम सबके पास होता है। दिन के 24 घंटे सभी के लिए बराबर होते हैं, इसलिए समय का इस्तेमाल सोच समझ कर और सही जगह पर करना चाहिए। समय रूपी संपदा को बुद्धिमानी से प्रयोग करें, अपनी प्राथमिकताएं तय करें, योजना बनाएं और अनुशासन में रहकर समय को खर्च करें। अगला धन है मान सम्मान। हमें अपने मान सम्मान की हिफाजत करनी चाहिए। कोई ऐसा कार्य ना करें जिससे लोग आपका सम्मान करना छोड़ दें या जरूरत पड़ने पर कोई आपकी सहायता को न आए। रुपए पैसों के नुकसान की भरपाई तो हो जाती है, पर गया हुआ सम्मान मुश्किल से ही मिल पाता है। इसलिए सम्मान रूपी धन को सहेजें।

धरती पर जितनी भी प्राकृतिक संपदाएं या संसाधन हैं, वो भी ईश्वर का दिया हुआ धन है। पानी, खाद्य पदार्थ, खनिज, ये सब भी धन ही है। इनका हमें सही मात्रा में उपयोग करना होगा। अगर कहीं नल टपक रहा है तो उसे ठीक करवाइए, पानी को व्यर्थ मत बहाइए। भोजन जितनी आवश्यकता हो उतना ही बनाएं, भोजन को फेंकने से बचें। ईंधन का उपयोग सोच समझ कर करें। कहने का तात्पर्य ये है कि केवल रुपये पैसे को ही धन ना समझें, बल्कि इसकी व्यापकता को समझते हुए इन दूसरे धन का भी संचय व समुचित उपयोग हमें करना है।

प्रस्तुत है कार्यक्रम चित्रलोक। सबसे पहले जुबिन नौटियाल की आवाज में आपको ये गीत सुनवा रहे हैं, कौशल किशोर और विशाल मिश्रा की आवाजों में। विशाल मिश्रा का संगीत, फिल्म का नाम आंखों की गुस्ताखियां।

0: आज विश्व नेत्रदान दिवस है। प्रतिवर्ष 10 जून को ये दिन मनाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य है लोगों को मृत्यु के उपरांत अपनी आंखें दान करने के लिए प्रोत्साहित करना, ताकि जिन लोगों के जीवन में रोशनी नहीं है उन्हें ये रोशनी मिल सके। कौन सा भाग दान किया जाता है इसके बारे में हम आपको बताते हैं। मृत्यु के बाद पूरी आंख नहीं निकाली जाती, बल्कि केवल आंख की जो बाहरी पारदर्शी परत होती है, जिसे कॉर्निया कहा जाता है, बस वही निकाला जाता है उसमें। और मृत्यु के 6 घंटे के भीतर ये कार्य हो जाना आवश्यक है। अगर हम पात्रता की बात करें तो कोई भी व्यक्ति, चाहे उसकी उम्र जो भी रही हो या चश्मा भी लगता हो, तो भी वो नेत्रदान का संकल्प ले सकता है। जरूरत केवल संकल्प की है, इसलिए जीवित रहते हुए कोई भी व्यक्ति निकटतम आई बैंक में जाकर नेत्रदान का फॉर्म भर सकता है और ये बता सकता है, अपनी इच्छा जाहिर कर सकता है कि मुझे नेत्रदान करना है। लेकिन इसके बारे में अपने परिवार को सूचित करना भी बहुत आवश्यक है, क्योंकि ये महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि मृत्यु के बाद आपके परिवार की सहमति से ही आई बैंक की जो टीम है वो आएगी और कॉर्निया निकालने का कार्य वो संपन्न करेगी। प्रत्यारोपण की जहां तक बात है, तो निकाली गई जो कॉर्निया है उसकी जांच करने के बाद जो भी जरूरतमंद होता है, जो देख नहीं सकते हैं, उनकी आंखों में से प्रत्यारोपित कर दिया जाता है और उन्हें रोशनी मिल जाती है। वो इस जीवन को देख सकते हैं, लोगों को देख सकते हैं, इस पृथ्वी को देख सकते हैं। तो इसका संकल्प लेना बहुत आवश्यक है, अपने परिवार को बताना है इसके बारे में। और ये जो कार्य है, ये 6 घंटे के भीतर ही समाप्त होना बहुत जरूरी है। इसके लिए परिवार की भी उसके बाद ये जिम्मेदारी हो जाती है कि वो जल्दी से जल्दी सूचित करें आई बैंक को कि इस व्यक्ति का जो कॉर्निया है वो इस वक्त अभी निकालने की जरूरत है। चलिए एक संदेश हम सुन लेते हैं, उसके बाद अगला गाना आपको सुनवाएंगे।
1: जब जब किसी हमलावर ने हमारी धरती के सीने पर पांव रखना चाहा, सब बच्चे सीना तान कर सामने खड़े हो गए और सीमा सुरक्षा की दीवार खड़ी हो गई।
2: विविध भारती पर हर रविवार की शाम 7 बजे होती है सैनिकों की शौर्य गाथा, कहानियां अदम्य साहस की, कहानियां देश के लिए कुर्बान हो जाने के जज्बे की। गाथा देश के जाबाज फौजियों के शौर्य की, सैनिकों की शौर्य गाथा।
1: करोड़ों हिंदुस्तानियों की भावना को शब्दों में ढालते हुए ही तो बंकिम बाबू ने कहा था, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलाम शस्य श्यामलाम मातरम वंदे वंदे मातरम।
0: देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक और अगला गीत है ये। उदित नारायण अलका याग्निक की आवाज है, जावेद अख्तर के बोल, जतिन ललित का संगीत, फिल्म बड़ा दिन।

0: वो इलाहाबाद से पहुँचे दिल्ली। बचपन से उन्हें छपे हुए शब्दों से प्यार था।
1: राम कुमार वर्मा, उनकी एकांकी हमने कक्षा 6 में पढ़ी, तो मैं इलाहाबाद में बंद रोड की जगह है जहाँ उनके किनारे उनका घर था, तो जब मैं साइकिल से उधर से गुजरता था तो मैं उनके गेट के बाहर खड़ा होकर इंतजार करता था कि वो निकले, एक झलक में देख लूं, जैसे मुंबई में लोग फिल्म स्टार के लिए खड़े होते हैं।
0: लेखन के साथ साथ लेखकों से भी उन्हें बहुत प्यार था।
1: आगे देखो तो रघुपति सहाय फिराक रहते थे, दाएं देखो तो अकबर इलाहाबादी रहते थे, बाएं देखो तो सीवाई चिंतामणि जैसा पत्रकार था।
0: वो हैं जाने माने लेखक पत्रकार प्रताप सोमवंशी।
1: पहले लिखा तुम्हें प्यार है और आगे भाभी बीमार है, छुटकी को आया बुखार है, आंखें जैसी की तैसी है, गठिया की हालत वैसी है, अब तो बिटवा है ये लगता, मौत ही जैसे अंतिम हल है, शेष कुशल है।
0: तो सुनिए आज के मेहमान 10 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: विविध भारती से कार्यक्रम जारी है चित्रलोक। चित्रलोक कार्यक्रम के बाकी गाने हम आपको सुनवाएंगे एक ब्रेक के बाद।

ब्रेक का समय पूरा हो चुका है और हम हाजिर हैं कार्यक्रम के बाकी गानों को लेकर। हासिल फिल्म का गाना शान, श्वेता और श्रद्धा की आवाजें, कौसर पांडे और विनोद महेंद्र का लिखा हुआ ये गाना, जतिन ललित का संगीत है।

अगला गीत सुनवाते हैं आपको, मिक्की वायरस फिल्म का गाना मोहित चौहान और पलक मुच्छल की आवाजों में। गीत और संगीत है हनीफ शेख का।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन कार्यक्रम चित्रलोक। अंग्रेजी में कहते हैं, इस फिल्म का गाना शान की आवाज में, गीत को लिखा योगेश ने, संगीत है प्रवीण कुंवर का।

दोस्तों, आज सभ्यताओं के बीच संवाद के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस है। अंग्रेजी में इसे कहते हैं इंटरनेशनल डे फॉर डायलॉग अमंग सिविलाइजेशंस। प्रतिवर्ष 10 जून को ये दिन मनाया जाता है और इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य है विभिन्न संस्कृतियों और सभ्यताओं के बीच आपसी समझ, वैश्विक एकजुटता और शांतिपूर्ण अस्तित्व को बढ़ावा देना। इसका उद्देश्य ये भी है कि विभिन्न सभ्यताओं की विविधता के सम्मान, समान संवाद और वैश्विक चुनौतियों का मिलकर सामना करने के लिए बातचीत के महत्व को उजागर करता है और ये दिन इस बात पर जोर देता है कि सभी सभ्यतागत उपलब्धियां मानव जाति की सामूहिक विरासत है और दुनिया में शांति व साझा विकास बनाए रखने के लिए संवाद अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो आज है सभ्यताओं के बीच संवाद के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक। अगला गाना राज रिबूट, इस फिल्म का गाना, अरिजीत सिंह की आवाज, रश्मि विराग का लिखा हुआ गाना, जीत गांगुली का संगीत।

चित्रलोक कार्यक्रम में अब आपको सुनवाते हैं दो लफ्जों की कहानी। इस फिल्म का गाना कनिका कपूर की आवाज, कुमार के बोल हैं और अर्जुन का संगीत है।

चित्रलोक कार्यक्रम में अब आपको सुनवाने जा रहे हैं हिमेश रेशमिया, शान कुणाल गांजावाला और अमृता काग की आवाजों में समीर का लिखा हुआ गाना। हिमेश रेशमिया का संगीत, फिल्म का नाम है अपने।

0: अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
1: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे।

0: को, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
1: तो सुनना न भूलें कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 14 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: धन्य वो उनकी जवानी जो शहीद।

एक पहेली लीला, ये फिल्म का नाम है। मीत ब्रदर्स अनजान और कृष्णा की आवाजें, कुमार के बोल, मीत ब्रदर्स अनजान का संगीत है।

0: दोस्तों नमस्कार, यूनुस खान की ओर से आज का कार्यक्रम केंद्रित है अभिनेता जीवन पर।
1: मेरी शक्ल सूरत तो आप जानते हैं, एन गैंसी है। कद्रदानों ने मुझे बना दिया विलन, बैड बॉय, खराब आदमी।
2: मैंने सुना है बाबू की कमी भी पूरी कर दी उस आदमी ने जिसका नाम जॉनी है।
3: जॉनी से जलते हो? वो तो तुम्हारा अपना आदमी है।
2: जॉनी मेरा आदमी नहीं है, जॉनी तुम्हारा आदमी है। मैंने राय के बराबर भरोसा किया था उस पर, तुमने पहाड़ के बराबर भरोसा कर लिया। मैंने राय के बराबर धोखा खाया था, तुमने पहाड़ के बराबर धोखा खा लिया। जॉनी खुफिया पुलिस का आदमी है। क्या तकते हो? जॉनी उसका एक नाम है जुगल किशोर, दूसरा उस्मान अली, तीसरा ऐसे चौथा पांचवा छठा नाम भी है उसका। वो हर नए काम के लिए एक नया नाम रख लेता है। और उसका वो बाप जो तुम्हारे आदमी को धोखा देने के लिए कभी कभी जोशी बन बैठता है, वो उसका बाप नहीं है, वो पुलिस वाला है जो हवालात के बाहर मेरा पहरा दिया करता था। जॉनी का हवालात तोड़कर भागना पुलिस की एक चाल थी, जिसमें मैं तो आ गया लेकिन तुम भी आ गए। तुम जो हम सबको बेवकूफ समझते हो और अपने आप को तीस मार खा।
1: नारायण नारायण कल्याण, जिस तरह नारायण नारायण कहते हुए आज मैं आपकी सेवा में आ पहुंचा हूं।
0: आज के इस कार्यक्रम में जीवन साहब के कुछ संवाद सुनवाए जाएंगे।
1: ये मैं खाना है, जामे जम नहीं है, यहाँ कोई किसी से कम नहीं है।
0: सुनवाई जाएंगी जीवन साहब की बातें और उन फिल्मों के नगमे जिनमें जीवन साहब ने अभिनय किया। हालांकि इनमें से ज्यादातर गाने जीवन साहब पर नहीं फिल्माए गए।
4: मोहब्बत जिंदा रहती है, मोहब्बत मर नहीं सकती। अजी इंसान क्या ये तो खुदा से डर नहीं सकती। मोहब्बत जिंदा रहती है, मोहब्बत मर नहीं सकती।
0: दोस्तों सन 1967 में जीवन साहब विविध भारती के स्टूडियो में तशरीफ लाए थे। नफीस जवान, जिंदा दिल शख्सियत, बातें ऐसी कि दिल जीत लें, उनके पास थे कभी न खत्म होने वाले किस्से। हमें गर्व है कि इस बेशकीमती आवाज को आज तक हमने संभाल कर रखा है।
1: मुझे याद है कॉलेज में छुट्टियों के दिन थे, बम्बई नगरी देखने का विचार हो गया और सोचा कि फोटोग्राफी में थोड़ी सी और महारत पा जाऊं ताकि अगले बरस बीए पास करने के बाद कश्मीर में एक फोटो स्टूडियो चलाने में जरा और आसानी हो जाए। आया तो था कैमरे के पीछे खड़ा होकर काम करने और पहुंच गया कैमरे के सामने। मतलब ये है कि फोटोग्राफर तो ना बन पाया, एक्टर जरूर बन गया। ये कैसे हुआ मैं मुख्तसरन आपको सुनाता हूँ। बम्बई में मेरे बड़े भाई मरहूम डार कश्मीरी साहब रहा करते थे। उन्होंने अपने जिगरी दोस्त और मेरे मोहतरम डीएन मधोक साहब से कहकर मुझे एक फिल्म कंपनी में फोटोग्राफी में और तजुर्बा हासिल करने की खातिर लगवा दिया। नई भाषा, नए नए लोग, स्टूडियो की हैरत अंगेज एटमोसफियर, भाई मैं तो बुखला जैसा गया। दूसरी तरफ फोटोग्राफी का तजुर्बा जो मैं हासिल करना चाहता था, मैंने महसूस कर लिया कि ये कोई खाला जी का घर नहीं। उस स्टूडियो में दाखिल होने के 1.5 महीने बाद, जब मेरे कॉलेज की छुट्टियों में सिर्फ 13 दिन बाकी रह गए, आखिरकार मुझे एक इम्पोर्टेंट काम मिल ही गया। ख्याल रहे इस बात का कि मैं अभी तक फोटोग्राफी सीखना तो दरकनार, कैमरे को हाथ भी नहीं लगा सका था। हाँ, तो वो इम्पोर्टेंट काम था प्लाईवुड के 2 रिफ्लेक्टरों पर सिल्वर पेपर लगाकर उन्हें साये में सुखाना। कंपनी के कंपाउंड में एक घना सा आम का पेड़ हुआ करता था। वहां पहले से ही एक नई तैयार की जाने वाली फिल्म की टीम जमी हुई थी। सब के सब नए थे, बिल्कुल रंगरूट। मैंने सुन रखा था कि यूपी पंजाब के लड़के हैं और थोड़े ही दिनों पहले भर्ती हुए हैं। 2 या 4 लड़कियां भी थीं। सब लड़के पृथ्वीराज या इंडियन डॉगलस मास्टर विट्ठल, और लड़कियां बनना चाहती थी दुर्गा खोटे या कम से कम उमा।

शशि, अरे जमाने, कहानी के किसी सीन की रिहर्सल चल रही थी। मैं भी टाइम पास करने के इरादे से खड़ा हो गया। डायरेक्टर मोहन सिन्हा नए लड़कों को डायलॉग बुलवा रहे थे बारी बारी, तो पता चला कि रमेश नाम का रोल करने वाला लड़का आया ही नहीं। डायरेक्टर ने आओ देखना ना ताओ मुझसे मुखातिब होकर बोले, अजी आप भी कुछ बोल दीजिए बरखुरदार। वाह क्या समय था, किस्मत की राइफल मेरे भविष्य को बुल आई टारगेट बना रही थी, और मैं कह रहा था अजी मुझे एक्टिंग से क्या सरोकार, मैं तो टेक्निकल साइड का आदमी हूं। उधर भविष्य सुधारने के लिए डॉक्टर मोहन सिन्हा जिद किए जा रहे थे। खैर मैंने स्कूल और कॉलेज के दिनों में शेक्सपियर के ड्रामे पढ़े हुए थे। इसके अलावा कॉलेज में बहुत से फंक्शनों के मौके पर जनाब आगा अशर और पंडित बेताब के खेल भी स्टेज पर करने में मैं हिस्सा ले चुका था। तो बस सिर्फ दिल बहलाने की गरज से मैं शुरू हो ही गया। बेताब जी की महाभारत में दुर्योधन चौसर में पांडवों को जीत कर कहता है ना, क्या कहता है, बहुत कुछ कर लिया आराम मखमल के गदेलों में, सुलाऊंगा तुम्हें ये पत्थरों में और ढेलों में, सरे दरबार खिदमत में हर एक बांधे कमर होगा, किसी के हाथ में बल्लम कोई करता चमर होगा। रंग जमता हुआ देखकर मैंने नाटक को जारी रखते और आवाज को पुरदर्द बनाकर आगा आशो साहब का नेक परवीन में से एक शेर कह डाला, वो है, अरे बेनवा उठ अपने शहीद अदा को देख, ओ बादशाह हुस्न भला हो गदा को देख, मेरी तमाम ख्वाहिशें दुनिया को छोड़कर अब सामने खड़ी है तेरे हाथ जोड़कर। ये कहते कहते मेरी दाई आंख जो सब हाजरीन को दिखाई दे

0: खत्म होते ही एक सन्नाटा सा छा गया और फिर वाह वाह वाह वाह वाह वाह की आवाजें बुलंद हो गई। डायरेक्टर साहब ने मुझे गले से लगा लिया, कहने लगे बरखुरदार अरे तुम तो बॉर्न आर्टिस्ट हो, फिल्म में एक्टिंग करो, मैं तुम्हारी लाइफ बना दूंगा, फोटोग्राफी को मारो गोली। कहो दोस्तों है ना किस्मत का खेल, मैं एक्टर बना दिया गया। फिल्म थी फैशनेबल इंडिया 1936 की बेहतरीन तस्वीर। ये होता है विधि का लेख और भगवान की माया।
1: चंगेज खान के शेर दिल सिपाहियों, आसमान के मुकद्दस रूहों ने चंगेज खान को मंगल कौम में पैदा किया। आज हम तुम्हें हिदायत देते हैं कि जिस तरह आज तक तुम चंगेज खान के वफादार रहे हो, इस मुतबर्र कला की कसम खाकर उसी तरह हमेशा वफादार रहने का इकरार करो, ताकि हम चंगेज को दुनिया का फातिहा देखें, तुम्हारे शम्मन की आरजू पूरी हो।
2: अपने फिल्मी करियर में जीवन ने सैकड़ों फिल्मों में काम किया। नायकों की पीढ़ियां भले बदलती गईं, पर जीवन की खलनायकी का मौसम कभी नहीं बदला।
0: दस्त तो दस्त थे, दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने, अपने जमाने के अफलातून मास्टर शिराज और चंद्रराव कदम के साथ विलन, पृथ्वीराज के डॉक्टर दीपक में जेलर और जयराज के स्वामी में याकूब भाई की कंजूस मक्की चूस बाप के बुढ़े रोल मैं उसी जमाने में कर चुका हूँ। प्रेम अदीप भारत भूषण मियां नजीर वास्ती पहाड़ी सान्याल बेमिसाल गीता बाली मधुबाला सुरैया लाजवाब नरगिस मेरे नारद के भगवान त्रिलोक कपूर और माता पार्वती निरूपा राय के दौर से गुजरकर जतेंद्र और राजेश खन्ना के साथ भी कुछ इसी तरह के कारदार कर रहा हूँ।
2: हम आपको बता दें कि ये रिकॉर्डिंग सन 1967 में विविध भारती के स्टूडियो में की गई थी।
0: नई हीरो ने मुमताज शर्मिला टैगोर बबीता के साथ भी वही हरकतें करना पड़ती हैं जो आज से पहले मिस बिब्बो खुर्शीद शांता अपने के मुकाबले में कर चुका हूँ। सेट पर शरबत को शराब समझकर पीने एक ही कोशिश के बाद मैं जब तनुजा को अपनी तरफ घसीटता हूँ तो वो मुझे बदमाश कमीना वगैरह वगैरह कहते हुए जरा हिचकिचा सी गई। डायरेक्टर ने बारहा कहा मिस तनुजा गालियां जरा फोर्स के साथ दीजिए और ये भूल जाइए कि आपके सामने जीवन साहब खड़े हैं। मैंने कहा भाई देखो कुछ भूलो या ना भूलो लेकिन अपनी मम्मी शोभना जी को याद कर लो, वो मुझे आज से 25 साल पहले ये सब खिताब अता फरमा चुकी हैं। भाई तब ना कुछ बिगड़ा था और अब भी कुछ नहीं बिगड़ेगा।
3: मेरी बेटी कहां है मेरी बेटी?
4: पत्ता मैं जूता खराब कर दिया, साफ करो।
3: मेरी बेटी कहां?
4: बैठे कौन सा बेटे?
3: उस राज्य से तुम उठाकर ले गए थे।
4: हमें कुछ याद नहीं।
3: याद करो प्लीज याद करो।
4: ये लो पहचाना इसी कन्नी को, ये वही कन्नी है जिसे बरसों पहले तुमने मेरी तरफ उछाल कर मेरी गरीबी का मजाक उड़ाया था।
3: माफ कर दो मुझे, मुझ पर रहम खाओ।
4: रॉबर्ट सेठ तुम्हारे इस सोने से तुम्हारे आदमियों को खरीद कर आज मैं तुम्हारी जगह पहुंच गया हूँ और तुम मेरे कदमों में।
3: मुझे सिर्फ इतना बतला दो मेरी बेटी कहाँ है।
4: मैंने तेरी बेटी को अपनी औलाद से समझा, उसे पढ़ने के लिए वलायत भेजा और वो इसी हफ्ते वापस आ रही है।
3: मुझे एक दोस्त से मिलने दो प्लीज।
4: मेरी तरह तू भी अपनी औलाद को देखने के लिए सारी उम्र तड़पता रहेगा।
0: गुलशन परस्त हूँ मुझे गुल ही नहीं अजीज, कांटों से भी निबाह किए जा रहा हूँ मैं। दिलीप कुमार से लेकर जॉनी वॉकर, सुनील दत्त से लेकर राजेंद्र नाथ और राजेंद्र कुमार से लेकर महमूद तक मैंने सबसे तलवारें लड़ाई और उनका फिल्मी बाप बनकर उनके दिलों में मोहब्बत के फूल भी खिलवाने की कोशिश की। इस बापबाजी के चक्कर में हीरो हीरोइन कॉमेडियन यहां तक के मैंने विलन लोगों को भी नहीं छोड़ा। फिल्म स्वामी में मरहूम याकूब भाई और एक फिल्म पंजाबी फिल्म थी छई में मिस्टर पुराण भी मुझसे न बच सके। जमाने की रफ्तार को मीटर से नापते हुए मैं एक मिसाल पेश करता हूँ, जरा सुनिए। आज मुदा और अपने टाइप की बेहतरीन एक्ट्रेस ललिता पवार के मुकाबले में मैंने 1937 में फिल्म राजकुमारी में विलन महामंत्री, सन 42 में फिल्म मामा जी में मैं उनका मामू, 55 में ऐसे

यूसुफ की फिल्म में ललिता बाई का नहायत ही नालायक और बेहुदा किस्म का बेटा, और फिर 65 में फिल्म फूल और पत्थर में मैं अंदर और माल बाहर, वही खामिन ललिता बाई का है, और फिर 67 में हाल ही में तैयार की जाने वाली फिल्म आबरू में फिर ललिता बाई का क्या बना, छोटा भाई अफ्रीका रिटर्न दरवाजा लाल। इसी तरह की फिल्मी रिश्तेदारी मेरी और फिल्मी अभिनेता और अभिनेत्रियों के साथ भी है। मैं शर्मिला टैगोर का किसी फिल्म में बाप बना था, कौन सी पिक्चर थी, आ हा, याद आया, सावन की घटा। लीजिए सावन की घटा फिल्म का एक गाना सुनिए।

0: यात्रा के दो पहलू हैं, एक खलनायकी वाला और एक नारद की भूमिका वाला। न जाने कितनी फिल्मों में जीवन नारायण नारायण करते रहे, जमाना अगर नारद मुनि का कोई रूप जानता है तो वो है जीवन साहब की तस्वीर।
1: क्या जो

का रस टपकाया है कि भगवान मुझे नरक में भेजने की तो हिम्मत कर ही नहीं सकते, मगर ये ख्याल जरूर आता है कि मेरे बाकी यार दोस्त तो वही होंगे, मैं उनके बगैर स्वर्ग में बड़ा ही अकेलापन महसूस करने लग जाऊंगा। मैं अच्छा देखिए, हटाइए इन बातों को, भगवान शंकर की बारात निकली है, मैं नारद बना हुआ हूं, आइए आप भी मेरे साथ बारातियों में शामिल हो जाइए और वही किराए की आवाज के साथ आवाज मिलाकर ये गाना गाइए।

लेकर सारे बदन लगाए, कानों में रुद्राक्ष का कुंडल जटा को मोर बनाए, मणिमाल के बदले गले में, मणिमाल के बदले गले में विषधर को लट

0: ऐसे भी रोल मैंने किए हैं जिनमें विलन ही कॉमेडियन होता। सोचिए कितना मुश्किल काम है कि एक तरफ तो आदमी अपनी हरकतों से दर्शकों के दिलों में नफरत पैदा करवाए और दूसरी तरफ अपनी बातों से उन्हें हंसाए। मजा तो ये है कि ये बेजोड़ मेल मैंने ही फिल्म मेला से शुरू किया है। मतलब ये कि रोटी भी मैं खोल लूं, दरवाजा भी मैं पकाऊं।
1: मालूम कौन सी चक्की का घी खाता है, दो ही हाथ मैनेजर पंजे ढीले कर दिए। कमबख्त देसी मैन जंगली
2: हाथी, हाथ जरा करारा पड़ा है भैया।
1: अरे कलवा, जान पड़ता है मेरे फौज में जाने के बाद ये मोहन गांव का बड़ा चौधरी बन बैठा है।
2: और देखो ये गांव में तुहार ये छेड़छाड़ नहीं चली।
1: अरे चुप है जंगली वाला कहीं का, चल एक दो डोल पानी दुला, नहा धो के दशहरे के उत्सव में चलेंगे रे।
2: वो उत्सव में हमारे वाली परी भी आएगी या ये नहाना धोना, अरे ये साबुन की घिसाई कहीं सब बेकार तो नहीं जाएगी?
1: नहीं नहीं, मगर कौन सी परी भैया?
2: धुत, अरे वही बसंती।
1: अच्छा ओ तुहार मार छुट्टिया।
2: अरे वो नहीं आएगी तो हम लाएंगे। हम
0: सौ जान से हो जाऊंगा राजी में सजा पर, पहले वो मुझे अपना गुनाहगार तो कर लें। मैं ऐसा मानता हूं कि इंसान के हक में नेकी और बदी करने की बात पहले से ही निश्चित होती है और वो इसी के अनुसार अपनी जिंदगी में चलता रहता है। इसी असूल के तहत ज्यादातर विलन अपनी रोजमर्रा जिंदगी में अच्छे हैं, क्योंकि वो अपने बदी वाले हिस्से को कैमरे के सामने खर्च कर लेते हैं, बाकी नेकी ज्यादा बच जाती है रोजमर्रा जिंदगी के लिए। जरा सोचिए, फिल्म का खूबसूरत नौजवान हीरो शहर की सड़कों पर या गांव की गलियों में या खेतों में रफी साहब, मुकेश या महेंद्र कपूर की किराए की आवाज से आवाज मिलाकर आसपास से गुजरती हुई जवान लड़कियों से छेड़खानी करता है, मगर जब बेचारा विलन फिल्म की हीरोइन से अपने प्यार का इजहार करता है और उससे बाकायदा शादी करके उसे अपनी बीवी या घर की मालकिन बनाना चाहता है तो आप सब उसकी जान के दुश्मन हो जाते हैं। बिल्कुल वही बात हुई ना, हम आह भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम और वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। दुनिया

0: तन बदन जल गया।
1: मेरे कमाल को हरगिज कोई जवाल नहीं, कमाल ये है कि मुझ में कोई कमाल नहीं। फिल्म लाइन के 30-32 साल के अरसे में मैंने अब्दुल रहीम सैंडो से पहलवानी, लच्छू महाराज से डांस, उस्ताद लताफत हुसैन से गाना और श्री राम बाबू से वायलन सीखने के शागिर्दी के गंडे बंधवाए, मगर ये शौक शौक ही बनकर रह गए। मैं किसी भी असूल का पाबंद ना हो सका और ना शायद

0: खैर, बारी बारी सब उस्ताद मुझे छोड़ गए। लोगों ने अगर बॉर्न आर्टिस्ट कहकर लपेट ना लिया होता तो मैं इस वक्त शायद कश्मीर में किसी फटीचर किस्म के फोटो स्टूडियो में मक्खियां मार रहा होता, या लोग मुझे मार रहे होते, कहते हयो ये कैसी फोटो बनाई, सूरत ही नहीं पहचानी जाती है।
1: लेकिन कारखाने वालों से तुम्हें क्या मतलब
2: है? अरे मतलब समझो तो बड़ा है, बस्ती एक, बस्ती वालों के दिल एक।
1: ठीक है, लेकिन वो लोग कोई दूसरा काम क्यों नहीं ढूंढ लेते?
2: दूसरा काम क्या करेंगे बाबू, अपनी बस्ती में तो खेती बाड़ी भी नहीं होती।
1: हाँ हाँ, लेकिन बाहर शहर में जाके काम कर लें।
2: तो तुम देश वालों को प्रदेश भेजना चाहते हो बाबू? कुंदन बाबू, अपनी गली तो कुत्ता भी छोड़ के नहीं जाता।
1: मगर काम के लिए तो मैं भी शहर छोड़कर यहाँ आ गया हूँ।
2: आप अपना धंधा फैलाने आए हो और इन गरीब लोगों को बाहर हाथ फैलाने भेज रहे हो, ये कहाँ का इंसाफ है?

0: नहीं नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है। मेरे वालिद बुजुर्गवार बहुत समझदार किस्म के आदमी थे, बहुत ज्ञानी थे, और आदमी के लिए ज्ञान होना बहुत जरूरी है। मेरी तरफ ही देखिए, मुझे सिर्फ उर्दू और अंग्रेजी भाषा आती, मगर फिर भी मैंने पंजाबी, भोजपुरी और गुजराती फिल्मों में काम किया।
1: यार हमारी बात सुनो,

0: आज के कार्यक्रम में आपका ये दोस्त एक बात जोर देकर कहना चाहता है, और वो ये कि दुनिया की याददाश्त बहुत छोटी होती है, और फिल्म संसार में जितनी चर्चा नायक को मिलती है या नायिकाओं को भी मिलती है, उतनी उनके सहकर्मी कलाकारों को नहीं मिलती। पर जीवन अभिनय का वो शीर्ष है, वो बुलंदी है, जिनकी याद आपके मन में भले अब तक धुंधली पड़ चुकी हो, लेकिन ये कार्यक्रम उन यादों को फिर से ताजा कर देगा और सम्मान से आपका सिर झुक जाएगा।
1: दोस्तों, बात बाहर ना जाए।
2: मैं और मुझ जैसे बहुत से एक्टर और भी हैं जो स्टार नहीं, स्टार से आजकल मतलब है कि जिनको मिन्नत खुशामद से प्रोड्यूसर अपनी फिल्म में काम करने को राजी करता है और फिर उस बेचारे की गाड़ी चलती है। हम हैं कैरेक्टर आर्टिस्ट, यानी मुख्तसर जबान में CA। और भी सलीस हो जाइए, सी से बंबई की बोली में हुआ कांदा, कांदा यानी प्याज, और ए से हुआ आलू। ये दोनों तरकारियां हर मौसम में मिलती हैं और रसोई घर

0: आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था अभिनेता जीवन पर।
1: शोध आलेख और स्वर यूनुस खान, संपादन रमेश गोखले, प्रस्तुतकर्ता विजय दीपक छिब्बर।
2: आज के फनकार।

सेल्यूलॉइड के सितारे, इस कार्यक्रम में हम आपकी मुलाकात करवाते हैं फिल्मी दुनिया के चमकीले सितारों से। आज एक ऐसी सितारा आ रही है जिन्होंने एक दिन नीले आसमान की तरफ देखकर ये कहा था,

0: जी हाँ, जानी मानी अभिनेत्री वहीदा रहमान आज विविध भारती के स्टूडियो में हमारे साथ हैं और उनकी मौजूदगी से रोशन है हमारी दुनिया। आइए वहीदा रहमान से करते हैं ढेर सारी बातें अपने साथी कमल शर्मा के साथ।
1: प्रिय श्रोताओ, आज हमारे स्टूडियो में उतर आया है चौदहवीं का चांद। इन्हें इंडियन स्क्रीन की क्लासिक ब्यूटी कहा जाता है और इन्हें जाना जाता है अपनी बेहतरीन अदाकारी के लिए। आप समझ गए होंगे। जी हाँ, आज इस प्रोग्राम में हमारी खास मेहमान हैं वहीदा रहमान जी। वहीदा जी, मैं अपनी ओर से विविध भारती के करोड़ों श्रोताओं की ओर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ इस प्रोग्राम में। नमस्कार।
2: नमस्कार, शुक्रिया।
1: कैसा लग रहा है हमारे स्टूडियो में आकर के आपको?
2: मेरे ख्याल से पहली बार आई हूँ मैं स्टूडियो में और अच्छा लग रहा है। अच्छा है
1: क्योंकि इस समय करोड़ों लोग आपकी बातचीत सुन रहे हैं हमारे इस प्रोग्राम के माध्यम से, और जिन्होंने आपकी फिल्में देखी उन्हें बहुत सारी बातें याद आ गई होंगी, बहुत सारे सीन याद आए होंगे। कभी आपने उनको रुलाया होगा, कभी हंसाया होगा। मैं इससे पहले कि फिल्मों की जो आपकी यात्रा शुरू हुई, हम जानना चाहेंगे आपके बिल्कुल बचपन में जाना चाहेंगे, और आपसे ये जानना चाहते हैं कहाँ आपकी पैदाइश हुई।
2: मेरी पैदाइश हुई चेन्नई के पास, एक जगह, छोटी सी जगह है, इसका नाम है चेंगलपेट।
1: अच्छा।
2: तो वहाँ पर मेरे वालिद साहब कमिश्नर थे, तो वहाँ पैदाइश हुई। मेरे ख्याल से कुछ घंटे डेढ़ घंटे का सफ़र है चेन्नई से।

0: उन सब की शादी हो चुकी थी, तो मैं रह गई थी और मेरी बारी थी शादी होने की। तो फिर इत्तफाक की, किस्मत की बात है मैं कहूंगी, फिर से ऑफर आने लगे साउथ से, मतलब मद्रास में। उस वक्त सारी इंडस्ट्री मद्रास में थी, वहां तेलुगु या तमिल दोनों फिल्में बनती थी। तो फिर जब एक ऑफर आया तो मेरी वालदा कहने लगी, नहीं अभी मेरे हस्बैंड नहीं है तो मैं नहीं इजाजत दे सकती। तो मैं तो बहुत खुश हो गई, एक्साइट हो गई। तो वो जो प्रोड्यूसर थे वो किसी जगह के आंध्र प्रदेश के छोटे से जमींदार थे, वो प्रोडक्शन में जा रहे थे। तो उन्होंने मेरी वालदा से कहा कि नहीं, मैं रहमान साहब को जानता हूँ, मिल चुका हूँ, तो अभी वक्त बदल रहा है, इसको भी एक बाकायदा प्रोफेशन समझा जाता है, और सिर्फ एक डांस ही तो करना है, स्टेज पे करती थी, एक फिल्में कर ले तो क्या हर्ज है। तो मैं तो बहुत मेरे पीछे पड़ गई मम्मी के कि प्लीज इजाजत दे दीजिए, करने दीजिए। तो उन्होंने कहा अच्छा चलो, अभी तक कोई लड़का मिला नहीं, चलो कर लेने दो।
1: जी
0: और फिर किस्मत की बात थी कि वो पहली फिल्म में जो एक सिर्फ मैंने फोक डांस किया था वो बहुत कामयाब हुआ, बहुत ही ज्यादा कामयाब हुआ, जो किसी को उम्मीद नहीं थी और मुझे तो बिल्कुल भी नहीं थी। तो फिर वहां से सिलसिला शुरू हो गया।
1: कुछ बोल याद है उस डांस के, जो बोल थे गीत के, कुछ याद है आपको?
0: पूरे तो याद नहीं
1: हाँ
0: है।
1: जी
0: हीरुआ का सागरो रन्नो चिन्नन्ना, आगे
1: क्या बात है, क्या बात है, आप तो बहुत सुरीली भी हैं।
0: आगे
1: अच्छा, वो फिल्म कौन सी थी?
0: उसका नाम था रोजुलू माराई, मतलब था कि डेज आर चेंज विच लिटरली चेंज माई लाइफ एंड डेज। तो फिर वो बहुत कामयाब हुई फिल्म। तो मेरे प्रोड्यूसर डायरेक्टर कहने लगे, आपको पता है जब आपका गाना आता है और खत्म हो जाता है तो लोग पैसे फेंकते हैं स्क्रीन की तरफ। तो मैंने सोचा मुझे खुश करने के लिए कह रहे हैं, ऐसे कैसे हो सकता है, फिल्मों में मैंने तो कभी नहीं देखा लोग पैसे फेंकते हैं, और जब मेन आर्टिस्ट नहीं हो। तो फिर मैं और मेरी वालदा और मेरी बहन सब मिलके देखने गए थे थिएटर में। हाँ, तो वाकई लोग पैसे फेंक रहे थे और कहते थे इसको दोबारा दिखाया जाए। तो मेरी नहीं समझ में आया, दोबारा फिल्म एक चल रही है कैसे हो सकता है। तो फिर हमको वो एग्जिबिटर थे उन्होंने कहा पॉसिबल है, क्योंकि वो रील निकालते हैं फिर दोबारा चलाते हैं। तो कई शहरों में वो निकाल के फिर एंड के बाद, एंड से पहले मतलब वो गाने को दोबारा प्ले करते थे। तो वो इतना ज्यादा कामयाब हुआ था वो गाना।
1: क्या कह रहे हैं,
0: और फिर इसके लिए मैं अपनी डेस्टिनी पे बहुत मानती हूँ। और ये इसके सिल्वर जुबली सेलिब्रेशंस हो रहे थे पूरे आंध्र प्रदेश में, तो हम हैदराबाद गए। तो वहाँ इत्तेफाक से गुरुदत्त जी क्यों गए थे वो खुदा ही बेहतर जाने, वहाँ थे वो। तो वो अपने डिस्ट्रीब्यूटर के ऑफिस में बैठे हुए थे, तो काफी शोर शराबा, दो तीन मोटरें जा रही थी, लोग भाग रहे थे। तो उन्होंने पूछा भाई क्या हो रहा है बाहर। तो उन्होंने कहा एक बहुत कामयाब तेलुगु फिल्म बनी तो उसके आर्टिस्ट हैं तो लोग। अच्छा। तो फिर वो उन्होंने गुरुदत्त जी से कहा कि उसमें एक नई लड़की ने काम एक डांस किया है, वो तो बहुत कामयाब हुआ, और उस लड़की का नाम है वहीदा रहमान। तो उन्होंने सुना के बोले वहीदा रहमान तो मुसलमान मुस्लिम लड़की होगी। बोले नहीं है भी मुस्लिम, तो वो उर्दू बोल सकती है। तो उन्होंने कहा हाँ जरूर बोल सकती है, क्योंकि क्या है डाउन साउथ इंटीरियर गांवों में वो अब तेलुगु बोलते हैं, आंध्र प्रदेश में तमिल वाले तमिल बोलते हैं हालांकि है मुसलमान, केरला उस तरफ मलयालम बोलते हैं। तो उन्होंने कहा नहीं ये बोलती हैं। तो बोले आपको कैसे पता। तो उन्होंने कहा कल फंक्शन था तो स्टेज पे गए थे, वो स्टेज पे आर्टिस्ट आए थे तो मैं भी उसमें था, तो ये लड़की आई स्टेज पर उर्दू में बोल रही थी। बोले अच्छा, तो क्योंकि आजकल मुझे नए चेहरों की तलाश है तो ये क्या मुनासिब है कि मैं उससे मिल सकूं। तो उन्होंने कहा मैं कोशिश करता हूँ। तो उन्होंने अपने हमारे जो प्रोड्यूसर थे उनके जरिए एक मीटिंग अरेंज की, तो वहां मुलाकात हुई। तो कुछ ज्यादा बात नहीं हुई, थोड़ी देर के 10-15 मिनट में और मेरी वालिदा थे, फिर चुप। कुछ खास कहा नहीं उन्होंने, ये नहीं कहा कि आप बॉम्बे आइए। खैर हम वापस मद्रास पहुंचे तो इस चीज को भूल गए हम। 6 महीने बाद फिर उन्होंने किसी को भेजा मद्रास, तो उन्होंने कहा हम मिले थे हैदराबाद में, उनको कहिए बॉम्बे आने के लिए, तो उनका टेस्ट फिर से लेंगे हम, फिर हम साइन करना चाहते हैं उस तरह से।
1: तो उसके बाद में आपको CID मिली।

0: सीआईडी पहली मेरी हिंदी फिल्म थी और दूसरी प्यासा।
1: तो सीआईडी और प्यासे की बातें करें उसके पहले हम वेदाजी चाहेंगे कि आप अपनी पसंद का कोई गाना है यहाँ हमारे श्रोताओं को सुनवाएं।
0: मुझे प्यासा का वो गाना बहुत पसंद है जिससे मेरा काम लोगों को भी बहुत पसंद आया, जाने क्या तूने कही जाने क्या मैंने सुनी।

0: बहुत ही खूबसूरत गाना है, और खास तौर से सचिन दा का जो म्यूजिक है उसका
1: जी
0: जवाब ही नहीं है।
1: या
0: आप याद है जब आपने गुरदुत साहब के डायरेक्शन में पहली बार वो कैमरा फेस किया था, हिंदी की अगर हम बात करें, कौन सा दृश्य था, कुछ याद है आपको?
1: नहीं, पहले तो सीएडी बनी
0: सीआईडी में,
1: थी,
0: सीआईडी में। हाँ
1: उसके डायरेक्टर थे राज खोसला।
0: जी।
1: तो एक महीने 2 महीने तो सिर्फ सीआईडी की शूटिंग हो रही थी, उसके बाद उन्होंने साइमल्टेनियसली 2-3 महीने के बाद प्यासा की भी शूटिंग शुरू हुई थी। और दोनों डायरेक्टरों में मैंने फर्क बहुत पाया, क्योंकि राज खोसला जो थे वो अच्छे डायरेक्टर थे फिल्मों में के लिए, मगर नए आर्टिस्ट को हैंडल करना उनको इतना नहीं अच्छा आता था। हालांकि गुरदत्त जी तो वो आर्टिस्ट की क्या परेशानी है वो सोचते थे, गौर से देखते थे, फिर पूछते थे आर्टिस्ट को कि आपको तकलीफ क्या है, आप समझ नहीं पाए या ये करते वक्त आपको किस चीज़ की तकलीफ हो रही है, तो उससे फिर लगता था कि हाँ मैं कह सकती हूँ कि मुझे क्या प्रॉब्लम है। और राज खोसला थे कि ये ऐसे करना है, कर दिया, अगर कोई बात मेरी समझ में नहीं आए, और चूंकि मैं नई नई थी और बहुत शाई थी तो पूछती नहीं थी। यहाँ गुरुदेव जी पूछते थे कि आपका कुछ प्रॉब्लम है लगता है, क्या है, क्या तकलीफ हो रही है, आपको डायलॉग नहीं ठीक लग रहा है या मूवमेंट नहीं ठीक लग रहा है, तो उससे एक कॉन्फिडेंस आया कि ये तकलीफ हमारी पूछ रहे हैं तो मैं उनको बता सकती हूँ कि ये नहीं हो रहा है मुझसे।
0: गुरदत्त साहब
1: हाँ,
0: को कैसा डायरेक्टर मानती थी आप, कैसे?
1: डायरेक्टर तो वो बहुत ही बढ़िया थे, क्योंकि वो बहुत गौर से देखते थे, वो खामोश रहते थे तो स्टडी करते थे कि किस

0: कौन सा आर्टिस्ट क्या क्या किस हद तक क्या क्या कर सकता है, उसीलिए उनके मेरे परफॉर्मेंस या माला सिन्हा के प्यासा में या रहमान साहब या जॉनी वॉकर या महमूद वगैरह, वो सबके परफॉर्मेंसेस बहुत अच्छे होते थे क्योंकि उनके वो समझते थे इनकी ये इनकी लिमिट ये है, ये इनसे इतना ही ऐसे करवाओ, यू नो।
1: उनके डायरेक्शन में कौन सा सीन आपको सबसे बेहतरीन लगता है, यादगार लगता है आपका, कौन सा सीन मिले?
0: कागज के फूल में वक्त ने किया क्या हंसी सितम, वो एक गाना है जो अब तक मुझे बहुत यूनिक लगता है, इसलिए कि वो अपने जो कैरेक्टर है वो अपने ख्यालात को जाहिर कर रही हैं मगर बिना लिप मूवमेंट के, ये जैसे दिल की आवाज है।
1: जी,
0: और मैंने कहा लिप मूवमेंट नहीं होगा ये कैसे गाना होगा, तो बोले आप कीजिए जैसे मैं कह रहा हूं, तो ये इससे फीलिंग है, ये लड़की अब वो इसमें नहीं है कि खुले खुले जाहिर करे अपने फीलिंग्स को, जैसे शॉट्स होंगे उस पे वो जैसे उसका विजुअली जैसे हम प्ले करेंगे तो गाना पीछे से बजेगा तो ज्यादा इफेक्टिव होगा।
1: आपको सिर्फ एक्सप्रेशन लाना
0: हाँ
1: चाहिए।
0: एक्सप्रेशन लाने थे और उसमें तो मैं कहूंगी एक्सप्रेशंस बहुत उन्होंने अच्छे एक्सप्लॉइट किए, और उसकी जो फोटोग्राफी थी और लाइटिंग थी उससे और भी वो चीज एनहांस हुई थी, मैंने और बढ़िया दिखती
1: आपने जिस गाने का जिक्र किया कागज के फूल का,
0: थी।
1: ये गाना भी बड़ा हॉन्टिंग
0: हाँ जी
1: है और इसकी मेलेडी जो है आज
0: हाँ
1: तक बहुत दिल को छू लेने वाली है।
0: बिल्कुल
1: क्यों नहीं गाना सुना जाए?
0: बिल्कुल क्यों नहीं।

0: वहीदा जी, कागज के फूल का हमने गाना सुना। ये एक जो फिल्म है इंडियन क्लासिक्स में इसका शुमार होता है, लेकिन ये फिल्म असफल रही और कई लोग कहते हैं वक्त से पहले बन गई थी इसलिए ऐसा हुआ। तो आपकी क्या राय है इसमें?
1: ये सही बात है, वो वक्त से पहले बनी थी और जब पूरी फिल्म बन गई थी तो ट्रायल पे हमने सबने देखी तो सब एक दूसरे आपस में बात करते हैं कैसी है क्या है, तो मैंने फट से कह दिया कि पिक्चर चलेगी नहीं। तो
0: आपने कह
1: हाँ,
0: दिया?
1: मैंने कह दिया। तो अबरार साहब जो थे, जो
0: हाँ,
1: डायलॉग राइटर थे, उनको बहुत बुरा लगा। बोले अभी तुम अभी छोटी बच्ची हो, तुम्हें क्या पता क्या किस हिसाब से कह रही। मैंने कहा बहुत हैवी है पिक्चर, बहुत ज्यादा हैवी है, और पता नहीं क्यों मेरे मन में आया कि चलेगी नहीं क्योंकि इट्स टू सैड एंड टू हैवी। तो बोले अच्छा एनीवे देखते हैं। तो वो इत्तेफाक से वो हो गई। तो इतनी उस वक्त कमर्शियली बुरी थी कि बहुत तो दुख तो हुआ, और मुझे इतना शौक नहीं लगा कि मैंने कहा मुझे तो पता ही था कि पिक्चर नहीं चलने वाली।
0: लेकिन बाद में वो बिल्कुल ऐसे लगने लगा कि जैसे वो अपनी कहानी कह रहे हो।
1: नहीं, मगर जब वो गुजरे तो उनके डाउनफॉल तो नहीं हुआ था ना। उसके बाद चौदहवीं का चांद बनी तो सुपर हिट हो गई थी फिल्म। फिर अपनी क्या उसके बाद बनी थी साहेब बीबी और
0: साहब
1: गुलाम,
0: बीबी गुलाम,
1: उसको भी अप्रिशिएट बहुत किया गया, अप्रिशिएट, और फिर वो फेस्टिवल में गई थी।
0: अच्छा वैसे जी, साहेब बीबी गुलाम का जिक्र आया है। डायरेक्टर के रूप

0: शूटिंग की होगी और डिस्कशन होते थे होंगे उन दोनों के आपस में, क्योंकि जब मैं अकेली काम कर किया, जैसे चंद सीन्स थे जहाँ गुरुदत्त जी नहीं थे, तो उसमें गुरुदत्त जी नहीं आए थे सेट पे, और जब गुरुदत्त जी थे सीन में एज ए लीडिंग मैन तो नेचुरली होते थे, मगर जब ऑब्वियसली आई एम श्योर कि अबरा साहब और गुरुदत्त जी के डिस्कशन जरूर होते थे होंगे आपस में कि इस चीज को इस तरह से किया जाए, इस तरह से किया जाए।
1: हमने सुना है कि उसमें जो छोटी बहू का किरदार जो मीना कुमारी जी ने प्ले किया वो आप करना चाहती
0: बिल्कुल,
1: थी।
0: जब कहानी सुनाई गई और नॉवल से लिया गया, बंगाली नॉवल से, तो मुझे बहुत दिल किया कि मैं रोल करूं, तो गुरुदेव जी ने कहा देखो आप नहीं कर सकती ये रोल। तो मुझे बहुत इंसल्टिंग लगा, तो मैंने कहा आपका मतलब ये है कि मैं अच्छी आर्टिस्ट नहीं हूं? तो बोले नहीं नहीं ये मतलब नहीं है, आप समझ नहीं रही, एक एक मेच्योर औरत का रोल है, जो औरत अपने हस्बैंड के प्यार के लिए बहुत ज्यादा तड़पती, जो उसको मिलता नहीं है, ये आप नहीं कर पाएंगी। तो फिर मैंने कहा क्या आपका मतलब कि औरत शादीशुदा होना चाहिए तो शादीशुदा औरत का रोल करें? नहीं, बोली वो नहीं, आप समझेंगे नहीं, आप अभी बहुत छोटी हैं इस चीज को कि हाउ यू वेट एंड पाइन फॉर योर हस्बैंड। खैर फिर भी मैंने कहा नहीं, कुछ तो कोशिश तो करते हैं। तो उन्होंने वैसा गेटअप दे के स्टिल फोटोग्राफ्स लिए, लेने के बाद मूर्ति साहब जो उनके कैमरामैन थे, वो हमने सब ने स्टिल्स देखी, मैं तो बड़ी खुश थी कि मैं बुरी नहीं लगती हूँ, अच्छी लग रही हूँ। तो मूर्ति साहब ने कहा नहीं गुरुदत्त जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं, आप यू नो यू लुक वेरी यंग, कि ऐसा नहीं कि शादी होके कुछ 5-10 साल हो गए हस्बैंड की तवज्जो नहीं मिलती, ये तुम्हारे फेस पे ये आ नहीं सकती बात, तो भूल जाओ इस चीज को।

0: तो गुरुदेव, उन्होंने जाके गुरुदेव जी को बताया तो उनको ताजुब, भाई तुम आप समझ नहीं रहे हैं, चौधरी के चांद के बाद आप एक बहुत बड़ी स्टार बन गई हैं, ये तो सेकेंडरी रोल है, टाइटल रोल नहीं है, क्यों करेंगी आप? तो मैंने कहा मुझे कोई हैंग अप नहीं है, मुझे कोई एतराज नहीं है, मैंने कहा वो भी काफी इंटरेस्टिंग है, जबा का रोल डिफरेंट है, डेफिनेट कैरेक्टर है। तो बोले आप सोच लीजिए, क्योंकि मैं नहीं कह रहा हूं आपको करने के लिए। तो मैंने कहा नहीं नहीं अब राज साहब ने इतना कहा तो मैं कर लूंगी, तो इसलिए मैंने किया।
1: वाह, तो इसका जिक्र चला है, क्यों ना इस फिल्म का कोई गाना जो आपको बहुत अच्छा लगता हो।
0: एक तो मेरा अपना गाना है भंवरा बड़ा नादान, उसके उसमें जो शरारत कैरेक्टर की थी वो बहुत अच्छी थी, मगर उसका दूसरा जो गाना जो मुझे बहुत पसंद है कि ना जाओ सैया छुड़ा के बैया।

0: नहीं, सस्पेंस थ्रिलर थी, फिर प्यासा इतनी सीरियस पोएट की थी, फिर चौदहवीं का चांद रोमांटिक मुस्लिम बैकग्राउंड पे थी, फिर साहेब बीबी खान, बड़ी वैरायटी हुआ करती थी, वो बड़ी अच्छी बात थी। और फिर चौदहवीं का चांद फिर उन्होंने खुद नहीं डायरेक्ट की, एम सादिक साहब ने की, तो
1: जी
0: तब मैंने पूछा ये किस लिए आप किसी और को दे रहे हैं, तो कहने लगे भाई कुछ भी कहो मैं तो रहूंगा सेट पे, मगर वो जो उर्दू जबान का वो जो मजा है

0: डायरेक्टर्स को.
1: आप लोग की राय ली जाती थी डिस्कशंस में?
0: नहीं, मैं तो यू नो
1: ऐसा
0: ऐसी वैसी कोई बड़ी आर्टिस्ट नहीं थी कि मेरी राय लिया जाए.
1: क्या
0: अगर कोई गलत
1: बात
0: ऐसा लगे तो मैं पूछती थी लॉजिकली ये कैसे हो सकता है, तो कहते थे भाई आप लॉजिक में बहुत जाती हैं, एक

0: मुझे बताते रहना राइट में कि लेफ्ट में जाना है। मैंने कहा भाई ये तो बड़ी टेंशन वाली बात है। फिर उससे बढ़कर टेंशन ये हुई, एक तो फॉग और पहाड़ी का रास्ता, आगे से एक मिलिट्री कॉन्वॉय आ रहा था। ओह मैंने कहा देव भाई आगे से मिलिट्री कॉन्वॉय, और ये रास्ता इतना नैरो था कि कोई एक दूसरे को ये नहीं कह सकता। मैंने कहा अब तो मरवा दिया आपने, हम पीछे भी नहीं जा सकते और आगे तो जाना ही है। और वो जो ट्रक्स आ रही हैं, तो बोले मैं बहुत आहिस्ता चलाऊंगा। अच्छा आहिस्ता चलाइए, और कोई और रास्ता ही नहीं था। ओ इतनी टेंशन में हम अपने लोकेशन पहुंचे तो 1 घंटा देर पहुंचे। तो वहाँ यूनिट वाले परेशान, और विजय आनंद जो थे गोल्डी वो डायरेक्टर थे, वो पहुंचे, भाई क्या हुआ आप लोगों को? तो मैंने कहा विजय आनंद को सब गोल्डी बुलाया करते थे, गोल्डी आपके भाई साहब चश्मा छोड़ा है और फॉग थी और मिलिट्री कॉन्वॉय आ रहा था, तो तुम्हें नहीं पता हम कितने टेंशन में खैरियत से पहुंच गए। तो दैट वॉज अ वेरी डेंजरस एक एपिसोड हुआ था।
1: तो उसी फिल्म में भी गाने बहुत अच्छे हैं। कोई गाना याद करिए आप।
0: खोया खोया चांद।

0: वहीदा जी, गुरली साहब का भी जिक्र आया है और इसके पहले हमने बात की गाइड की, और गाइड में डांस बड़े खूबसूरत फिल्माए। वैसे गुरली साहब बहुत अच्छे डायरेक्टर माने जाते हैं, और सुना कि उसका जो एक डांस का सीक्वेंस था जिसमें आप थोड़ी सी घबरा गई थी, वो कौन सा सीक्वेंस था जिसमें दीवार पे चढ़ के डांस करना
1: हाँ या
0: था?
1: या आज फिर जीने की तमन्ना है, बहुत अच्छी तरह से पिक्चराइज किया गया था। उसका जो मूड था
0: हाँ जी
1: वो गाने में

यार, मैंने कहा गिरे तो हड्डी तो जरूर टूटने वाली है, मैंने कहा गोल्डी ये क्या ज्यादती है भाई, भाग रही हूँ और जंप भी कर रही हूँ, गा भी रही हूँ, मूड भी और एक्सप्रेशन भी सही है, ये कैसे हो सकता है। तो बोले दो चार बार आप मेरे साथ रिहर्सल कीजिए, अगर आपको थोड़ा सा भी लगा कि पैर ये हो तो रुक जाना।

0: तो माँ कहती है छोटू उसको ये खाना दे दे, तो भागते हैं तो तब तक वो ऊंट निकल चुके हैं, बहुत दूर चले गए। तो बड़ा डिसअपॉइंटमेंट का जो एक्सप्रेशन था अमिताभ का, जो बहुत अच्छा था। तो हम आपस में नरगिस जी हुआ करती थी बैठे, हम दूसरा शॉट हो रहा था बैठे गप्पे मार रहे हैं। मैंने कहा मुझे लगता है ये एक दिन बहुत बड़े आर्टिस्ट बनेंगे। तो बोले कैसे, एक तो डायलॉग नहीं बेचारे का, तुम किस हिसाब से कह रही हो। मैंने कहा नहीं, फिल्म में साइलेंट एक्सप्रेशन देना बहुत मुश्किल होता है। अगर इफ़ यू आर एबल टू एक्सप्रेस योर सेल्फ इन अ साइलेंट एक्सप्रेशन, तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और डायलॉग साथ में, मैंने कहा उसकी बाद उनकी आवाज़ इतनी अच्छी है, जब टॉकिंग डायलॉग आई मीन रोल मिल जाएगा, मेरे ख्याल से यू डू वेरी वेल। तो फीलिंग होती है कि ये बहुत बड़े आर्टिस्ट और स्टार बनेंगे, वो जो हो चुका।
1: मैंने तो अखबारों में पढ़ा कि अमिताभ बच्चन साहब ने भी कहा, और अभिषेक बच्चन ने, उनके बेटे ने भी कहा कि हमारी फेवरेट एक्ट्रेस में से वहीदा जी हैं। और अमिताभ बच्चन साहब की बात करें तो आपने उनकी नायिका की भूमिका भी की है और उनकी
0: हाँ
1: माँ का किरदार भी अदा किया है।
0: हाँ बिल्कुल।
1: कैसे कलाकार आगे चल के लगे आपको वो? लेकिन आपका अनुभव कैसा रहा उनके साथ?
0: मेरा अनुभव उनके साथ बहुत ही अच्छा रहा है आज तक, रेशमा शेरा से लेकर आज तक। और क्या, हर इंसान बदलता है, उसमें बदलना भी चाहिए, स्टैग्नेंट नहीं होना चाहिए। मगर मेरे साथ तो उनका स्वभाव, जो भी कहिए, उनके बच्चे जया, सब कुछ का बहुत ही अच्छा रहा है। और वो इतने ज़्यादा प्रोफेशनल हैं, पंक्चुअल हैं। उनके साथ कई फिल्में काम की तो कोई तकलीफ परेशानी कुछ भी नहीं हुआ। यानी कि बहुत बड़े स्टार हो गए, जब मैंने कैरेक्टर रोल शुरू कर दिए तो उनमें बदलाव आ गया कि नहीं, बहुत ही है, मतलब इट्स वेरी क्रेडिटेबल, बहुत ही
1: कोई
0: अच्छा है उनका
1: दिलचस्प
0: रोल।
1: सीन याद है उनके साथ किया हुआ आपको किसी फिल्म का?
0: हाँ, रेशमा और शेरा में वो न्यू कमर थे। एक सीन था एंड में कि मैं उसको तमाचा मारती हूँ बड़े जोर का, तो इत्तेफाक से आंटी बच्चन, मतलब अमिताभ की वालदा, सेट पे बैठी थी। तो उन्होंने मुझे बुलाया, बोले वहीदा बहुत जोर का नहीं लगाना तमाचा। ओ, मैंने कहा, उधर से सुनील दत्त ने कहा जी एक कसके लगाइए ताकि रीटेक की जरूरत नहीं। मैंने कहा ये तो बड़ी मुश्किल हो गई। फिर मैं वापस गई।

0: वहीदा जी, आपको अपनी मतलब किस फिल्म की भूमिका बहुत चुनौतीपूर्ण लगी, बहुत चैलेंजिंग लगी?
1: मैं तो कहूंगी गाइड का रोल, इसलिए तो 40 साल पहले बनी फिल्म, 40 साल हो गए हैं, वे बियॉन्ड इट्स टाइम. और इट वॉज अ वेरी डिफिकल्ट रोल. कभी वो रोल देके

0: नहीं है, क्योंकि उनकी फिल्मों में तो यश जौहर के काम नहीं किया। हालांकि यश जौहर को मैं तब से जानती हूँ जब वो मुझे जीनोदे में थे प्रोडक्शन कंट्रोलर, और फिर नवकेतन में थे गाइड के वक्त, प्रेम पुजारी में थे, तो तब से मुलाकात दोस्ती है, वो हमेशा मिलते रहे हम।
1: दोस्तों, वहीदा जी से करने को इतनी सारी बातें हैं कि समझ में नहीं आता कहां से शुरू करें और कहां से खत्म करें। आज के कार्यक्रम का वक्त खत्म होने को आया, लेकिन हमारी बातें अभी खत्म नहीं हुई हैं। इसलिए वहीदा जी अगले हफ्ते सेल्यूलॉइड के सितारे कार्यक्रम को फिर से रोशन करेंगी। भूलिएगा मत, अगले रविवार फिर से सुनिएगा सेल्यूलॉइड के सितारे कार्यक्रम। हम आपको बता दें, वहीदा जी से हमारे साथी कमल शर्मा ने बातचीत की। इस कार्यक्रम को रिकॉर्ड करने में हमें तकनीकी सहयोग दिलीप कुलकर्णी ने दिया। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम को प्रस्तुत किया कल्पना शेट्टी ने।

रंग तरंग कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती से। लीजिए सुनिए अलीशा चिनॉय को। डांस डांस इस एल्बम का नाम है, अनजान के बोल है, बप्पी लाहिड़ी का संगीत।

0: रात में आसमान चांद सितारों से फूल काटता है। रात हौले हौले धरती पर अपना आंचल फैलाती है।
1: अपनी आप रातों में चिलमने सरकती है।
0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
2: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
2: तेरा जवाब नहीं
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग।
2: प्यार का राग सुनो रे।
0: बजता है छाया गीत

0: अशिष्टता मानी जाती है। और हाँ, ये समारोह 1 से 2 घंटे तक चलता है। इस दौरान भुने हुए चने या पारंपरिक हल्के नाश्ते भी दिए जाते हैं।
1: तो श्रोताओं, इथियोपिया में कॉफी समारोह में किसी को आमंत्रित करना मित्रता और सम्मान का चिन्ह माना जाता है।
0: जी
1: इथियोपिया के कॉफी समारोह में देश विदेश से भी लोग आते हैं और इथियोपियाई संस्कृति की भावना को समझते हैं। और हाँ, राष्ट्र अध्यक्षों का स्वागत कॉफी से करना इथियोपिया की परंपरा है।
0: जी हाँ श्रोताओं, तो कैसी लगी इथियोपिया की

सकते हैं। अब एक और बात, जरा बताइए कि क्या आपने भारत पर कुछ और भी कविताएं सुनी हैं? यदि सुनी है तो उन कविताओं का संकलन कीजिए और अपने मित्रों के संग मिलकर उसका पाठ कीजिए। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, ध्वन्यांकन मंजू कुमारी, गायन स्वर नेहा और बच्चे।

भारत पर कुछ और भी कविताएं सुनी हैं। यदि सुनी है तो उन कविताओं का संकलन कीजिए और अपने मित्रों के संग मिलकर उसका पाठ कीजिए। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, ध्वन्यांकन मंजू कुमारी, गायन स्वर नेहा और बच्चे।

0: अक्सर जब उन पहाड़ियों को छूते हुए बादल गुजरते हैं ना, तो उनके बीच से निकलती हुई पेरियार नदी को देखना एक नायाब मंजर होता है।
1: कमल जी, आपने तो मुझे पेरियार के बारे में बताकर मेरी उत्सुकता को बहुत बढ़ा दिया है। अब तो मैं इस नदी के बारे में और भी बहुत कुछ जानना चाहूंगी।
0: अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल भाई, मगर अब तो शाम हो चली है। अच्छा, वैसे आप लोग ठहरे कहाँ हैं?
1: यही रेस्ट हाउस में।
0: रेस्ट हाउस में
1: जी?
0: तो ठीक है, कल सुबह मैं ठीक 8 बजे आपके पास पहुँचूंगा।

0: खूबसूरत बागीचे भी देखे जा सकते हैं।
1: अच्छा अच्छा, वैसे मैंने सुना है यहाँ इलायची की खेती भी खूब होती है।
0: हाँ बिल्कुल ठीक सुना है आपने। थेकड़ी से कोई 30 किलोमीटर की दूरी पर वांडन मेडू नाम की जगह है
1: जी,
0: जो दुनिया का सबसे

0: दूसरी नदियों के साथ हो रहा है?
1: जी हाँ, मगर दुनिया में बर्बाद करने वाले हैं तो बनाने वाले भी हैं। इसीलिए बहुत से ऐसे लोग सामने आए हैं जो पेरियार को उसकी पुरानी खूबसूरती, निर्मलता और खुशहाली वापस दिलाने की मुहिम में लगे हुए हैं।
0: वैसे सच कहें तो ये सब सुनकर मेरी भी इच्छा हो रही है कि पर्यावरण के लिए कुछ करूं। तो करो ना सुनीता। तो चलिए शुरुआत यहीं से करते हैं, पेरियार से।
2: नेक काम में भला देरी किस बात की? और फिर अगर वो काम पर्यावरण की बेहतरी से जुड़ा हो तब तो उसे आज और अभी से ही शुरू कर देना चाहिए। सुनीता, लक्ष्मी और कमल ने भी ऐसा ही किया है और अब बारी आपकी और हमारी है। चलिए हम भी पर्यावरण को बेहतर बना

0: हालत वैसी है, अब तो बिटवा है ये लगता, मौत ही जैसे अंतिम हल है, शेष कुशल है।
1: तो सुनिए आज के मेहमान 10 जून शाम 4 बजे सिर्फ। इस फिल्म का गीत आवाज जगजीत सिंह की, इंदिवर की रचना, और इस गीत को सुरों में ढाला है जगजीत सिंह ने।

भेजने वाले हैं। तो आज की इबारत पढ़ी या नहीं? जी हाँ, उम्मीद है आपने इबारत पढ़ी ही होगी, टिप्पणियों की भरमार भी लग चुकी है। कुछ श्रोताओं का कहना है कि उन्हें ये इबारत कहीं कुछ मिलती जुलती नहीं लगती, बिना सिर पैर की लगती है। तो फिर क्या किया जाए, पढ़कर सुनाया जाए? जी हाँ, कभी कभी लिखी हुई बातों में भावनाएं पूरी तरह नहीं पहुंचती हैं। तो कुछ श्रोता शायद समझ गए हैं, उन्होंने इस तरह की टिप्पणियां लिखी भी हैं, जिनसे समझ आ रहा है कि वो जान गए हैं कि भावनाएं क्या हैं। मगर अगर आप ये नहीं समझ पाए हैं, तो चलिए एक बार इबारत को पढ़ देते हैं। अचानक हमारी मुलाकात एक बाग में हुई। उसने कहा, सुनो, जरा मेरे पास आओ, बैठो, कुछ बात करनी है। फिर साथ चलते हुए उसने धीरे से मेरे कानों में कहा, सुनो, मेरी तो धड़कनें ही बढ़ गई।

0: जा रहा था, नहीं
1: आने वाले हैं। तो आज की इबारत पढ़ी या नहीं? जी हाँ, उम्मीद है आपने इबारत पढ़ी ही होगी, टिप्पणियों की भरमार भी लग चुकी है। कुछ श्रोताओं का कहना है कि उन्हें ये इबारत कहीं कुछ मिलती जुलती नहीं लगती, बिना सिर पैर की लगती है। तो फिर क्या किया जाए, पढ़कर सुनाया जाए? जी हाँ, कभी कभी लिखी हुई बातों में भावनाएं पूरी तरह नहीं पहुंचती हैं। तो कुछ श्रोता शायद समझ गए हैं, उन्होंने इस तरह की टिप्पणियां लिखी भी हैं, जिनसे समझ आ रहा है कि वो जान गए हैं कि भावनाएं क्या है। वो पढ़ देते हैं। अचानक हमारी मुलाकात एक बाग में हुई। उसने कहा, सुनो जरा मेरे पास आओ, बैठो, कुछ बात करनी है। फिर साथ चलते हुए उसने धीरे से मेरे कानों में कहा, सुनो, मेरी तो धड़कनें ही बढ़ गई।

गाने ऐसे हैं जिसमें बातचीत हो रही है या कोई कहानी कही जा रही है। जी हाँ, आप सभी सही हैं। आज ऐसे गाने शामिल किए गए हैं जहाँ या तो आपको नायक नायिका की आवाजें सुनने मिलेंगी या फिर जिसने गीत गाया भी है, जो गायक कलाकार है, उसने भी संवाद के रूप में गीत को गाया है। तो ऐसे ही कुछ गीतों को आज हम आपको सुनवाएंगे। और चलिए कुछ जो टिप्पणियां आई है हमारे आज के कार्यक्रम को लेकर उन्हें भी पढ़ लेते हैं। एक साथी लिखते हैं, आज की इबारत प्रेम की पहली अनकही अनुभूति, झिझक और उस प्यारी सी घबराहट को बहुत खूबसूरती से बयां कर रही है। ये प्रेम की उस मासूम और चुलबुली दुनिया की झलक दिखाती है जहाँ दिल की बात जुबां पर आते आते रह जाती है। उन शुरुआती मुलाकातों को,

ये रात है या तुम्हारी जुल्फें खुली हुई हैं, है चांदनी या तुम्हारी नजरों से मेरी रातें धुली हुई हैं, ये चांद है या तुम्हारा कंगन, सितारे हैं या तुम्हारा आंचल, हवा का झोंका है या तुम्हारे बदन की खुशबू, ये पत्तियों की है सरसराहट कि तुमने चुपके से कुछ कहा है, ये सोचता हूं मैं कब से गुमसुम कि जबकि मुझको भी यह खबर है कि तुम नहीं हो, कहीं नहीं हो, मगर ये दिल है कि कह रहा है।

0: के बाहर खड़ा होकर इंतजार करता था कि वो निकले, एक झलक में देख लूं,
1: क्या बात
0: जैसे
1: है।
0: मुंबई में लोग फिल्म स्टार के लिए खड़े होते हैं।
1: लेखन के साथ साथ लेखकों से भी उन्हें बहुत प्यार था।
0: आगे देखो तो रघुपति सहाय फिराक रहते थे, दाएं देखो तो अकबर इलाहाबादी रहते थे, बाएं देखो तो सीवाई चिंतामणि जैसा पत्रकार
1: वो
0: था।
1: हैं जाने माने लेखक पत्रकार प्रताप सुमन जी।
0: पहले लिखा तुम्हें प्यार है और आगे भाभी बीमार है, छुटकी को आया बुखार है, आंखें जैसी की तैसी है, गठिया की हालत वैसी है, अब तो बिटवा है ये लगता।

0: Atmosferei.
1: Atmosferei. हमारी आज की इबारत को एक श्रोता साथी ने कुछ अपनी भावनाओं को जोड़ते हुए लिखा है। उन्होंने लिखा है, बात की शुरुआत में जब उसने पास बुलाकर कानों में कहा सुनो, तो वहां जो धड़कनों का बढ़ना था वो जज्बातों की सबसे सच्ची गवाही थी। अक्सर शब्द उतने गहरे नहीं होते जितनी गहरी वो खामोशी या पुकार होती है जो दो लोगों के बीच का तापमान बढ़ा देती है। उसने आपकी हालत देखकर बात बदल दी, यही तो उस दौर की तहजीब और परवाह है, जहां सामने वाले की झिझक का पूरा एहतराम किया जाता है। ये महज एक मुलाकात नहीं बल्कि शब्दों से बुना हुआ एक ऐसा खूबसूरत शायराना मंजर है जिसे जितनी बार पढ़ा जाए चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान तैर जाती है। एक साथी ने लिखा है, आज आपने सुरीली धड़कन के सुरीला सफर कार्यक्रम में शामिल गद्यमयी इबारत की इबादत से ये पता चलता है कि दोनों प्रणय आवेग में डूबे प्रेमी नयनों के सहारे से आगे बढ़ते हुए आपसी वार्तालाप के सागर में डुबकी लगाने के प्रयास में रत हैं और एक दूसरे के मनोदशाओं से भली भांति परिचित होने हेतु उद्यत हैं। इस दृष्टिकोण से आज की इबारत करने योग्य इबारत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल सही कहा आपने। चलिए इसी इबारत से जुड़े गीतों में आगे बढ़ते हैं और आपको सुनवाते हैं बातों बातों में इस फिल्म का गीत, आवाजें किशोर कुमार और आशा भोसले की, अमित खन्ना के बोल राजेश रोशन का संगीत।
2: सुनिए
3: कहिए कहिए,
2: सुनिए सुनिए
3: कहिए कहिए ना।

0: एक साथी लिखते हैं, आज की इबारत पढ़कर 45 साल पहले की दुनिया में पहुंच गया। यहाँ लड़की का जो हाल है, अमूमन वो ही हाल हम लड़कों का भी हुआ करता था। किसी लड़की से प्यार है तो ग्रीन सिग्नल उधर से देता हूँ कि उनके जमाने में मोबाइल आ गया और सब मुश्किलें आसान हो गई। हमें ले देकर सिर्फ खतों का सहारा था, लेकिन उसमें भी बहुत रिस्क थी। शर्म और झिझक का ठेका हमारी पीढ़ी ने ही उठा रखा था, लिहाजा प्यार परवान नहीं चढ़ पाया। उसकी शादी कहीं और हो गई और मैं जिंदगी के नए सफर में नौकरी के लिए कहीं और चल दिया। अब इस बात को पढ़कर हम एक ही बात कहेंगे कि कभी कभी हमें इस बात को मान लेना चाहिए कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। इससे बात बदल तो नहीं जाती, लेकिन दिलासा जरूर मिलता है। एक साथी ने लिखा है, नेहा जी आप लोग बताते हैं कि पहले से ही इबारत डालते हैं, मुझे इबारत पहले से नहीं मिलती। जब आप रेडियो में बताते हैं तब इबारत सुनती हूँ और फिर उसके बारे में सोचने का, गाने पोस्ट करने का समय ही नहीं मिल पाता। हो सकता है कि आपको इबारत नहीं दिख रही हो, आप पेज को रिफ्रेश कीजिए। जब आप फेसबुक खोलेंगे तो पेज को रिफ्रेश कीजिए, विविध भारती सर्च करने के बाद एक बार फिर करके देखिए। हो सकता है कि पेज रिफ्रेश ना होने के कारण आपको इबारत नहीं दिखती हो, जब आप रिफ्रेश करेंगे। उसके बाद भी जब आपको सुरीला सफर की पोस्ट दिखेगी उस पर आप मोर पर जाइए, या फिर आपको दिखेगा और देखें, या फिर ऐसा कोई ऑप्शन जहां आपको दिखे वहां आप क्लिक कीजिए तो आपको पूरी इबारत पढ़ने को मिल जाएगी। तो अगली बार जरूर बताइएगा कि समस्या का समाधान हुआ या नहीं। चलिए अब आपको सुनवाते हैं बॉबी फिल्म का गीत, लता मंगेशकर की आवाज, शैलेंद्र सिंह और लता मंगेशकर की आवाज, आनंद बख्शी के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत।
1: बाहर से कोई अंदर ना आ सके, अंदर से कोई बाहर ना जा सके।

चलिए एक बार इबारत फिर रिवाइज कर लेते हैं और देख लेते हैं कि हमारे कौन कौन से गाने हो चुके हैं। अचानक हमारी मुलाकात एक बाग में हुई। उसने कहा, सुनो जरा मेरे पास आओ, बैठो, कुछ बात करनी है। फिर साथ साथ चलते हुए उसने धीरे से प्यार से मेरे कानों में कहा, सुनो। मेरी तो धड़कने ही बढ़ गई। मेरी हालत देखकर उसने बात बदल दी और कहा, आप यहाँ आई किस लिए, ये तो बताइए। मैं समझ गई कि बात शायद कुछ और थी। फिर कुछ देर बाद बातों बातों में उसने कहा कि सोचो कभी ऐसा हो कि हम तुम साथ में खंडाला घूमने चले। देखो तुमने वादा किया था जुम्मे के दिन चलोगी और आज जुम्मा है तो चलोगी ना। मैंने भी हंसकर कहा, कौन मैं, तो कहने लगा, हाँ तुम। मैंने भी ठिठोली करते हुए कह दिया, पहले ही बड़ी देर हो चुकी है, अब तो हम चलते हैं।

और फिर जब इबारत में जुम्मे की बात हो ही रही है और मिलने चलने की बात हो ही रही है, तो लीजिए सुनिए सुदेश भोसले और कविता कृष्णमूर्ति की आवाजों में ये गीत, फिल्म हमसे आनंद बख्शी के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत।

एक साथी ने लिखा है, मैं जो भी कहूंगा, सच के सिवा कुछ भी नहीं कहूंगा कि मेरी तो कभी भी किसी के साथ बाग में मुलाकात हुई ही नहीं है। जिसे मैंने कहा हो जरा मेरे पास आओ और बैठो। हाँ, शादी के बाद अपनी धर्म पत्नी के साथ कई बार बाग में खंडाला और लोनावला घूमने का मौका जरूर मिला है। बातों बातों में सुना और सुनाया भी है, तो प्यार तो होना ही था, जो आज तक धर्म पत्नी के साथ कायम है। क्या बात है, आपने अपना अनुभव साझा किया है कि बातों बातों में किस तरह प्यार हो जाता है। तो चलिए हम कार्यक्रम में बढ़ते हैं आगे और अब आपको सुनवाते हैं अजनबी फिल्म का गीत। ये फिल्म नई अजनबी फिल्म है। उदित नारायण, अलका याग्निक, बॉबी देओल और अक्षय कुमार की आवाजें हैं, समीर के बोल हैं, अनु मलिक की धुन है। और शब्द है कौन मैं, हाँ तुम।

0: कौन मैं?
1: हाँ तुम।
0: बस तुम?
1: ओफो।
2: तो श्रोताओं, आज जिन गीतों को हमने शामिल किया था वो ऐसे ही कुछ संवाद वाले गीत थे। हिंदी फिल्मों के गीत केवल सुरों और शब्दों का जादू ही नहीं होते, बल्कि कई बार उनमें छिपे संवाद भी उन्हें और खास बना देते हैं। कभी दो दिलों की मीठी नोक झोंक, कभी प्यार भरी बातें, तो कभी जीवन के अनमोल संदेश, ये संवाद गीतों में एक अलग ही रंग भर देते हैं। ऐसा लगता है मानो कोई कहानी हमारे सामने जीवंत हो उठी हो। आज की इस विशेष संगीत यात्रा में हमने ऐसे ही कुछ चुनिंदा गीत सुनवाए जो संवादों को अपने आप में लिए हुए थे। कहीं ना कहीं उनमें संवादों की खूबसूरत छटा बिखरी हुई थी। तो क्या आपको ये गीत पसंद आए? आप हमें बिल्कुल बताइएगा आपके इस पर क्या विचार है वो। और चलिए चलते चलते एक छोटी सी झलक सुन लेते हैं उस बहाने भरे गीत की जो देकर हमारी इबारत की नायिका भाग निकली थी। तो लीजिए सुनिए ये गीत। फिल्म का नाम आन मिलो सजना, लता मंगेशकर और किशोर कुमार के आवाज, आनंद बख्शी के बोल, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत। अच्छा।

और इसी के साथ हमारे भी चलने का समय हो गया है। आपको छोड़कर जाने का मन तो नहीं करता, लगता है इबारत की पहेलियां यूं ही सुलझाई जाए आपके साथ, मगर समय इजाजत नहीं देता। तो चलिए सुरीला सफर कार्यक्रम से अब नेहा आगरकर देसाई को दीजिए आज्ञा। नमस्कार।

आज त्रिवेणी में धन की बातें होंगी। लोग ये समझते हैं कि धन का मतलब है रुपए, पैसे, गहने, जमीन और वस्तुएं, लेकिन केवल इन्हीं चीजों को धन समझना अपनी सोच को सीमित करना है। धन और भी कई प्रकार के होते हैं, उनकी भी हमें कद्र करनी चाहिए। यदि हमारा स्वास्थ्य अच्छा है तो भी हम बहुत धनी हैं। सेहत का जितना नुकसान होता है उतना ही बड़ा हमें उपचार करना पड़ता है, यानी धन खर्च करना पड़ता है। इसलिए सेहत रूपी धन को बचाइए। ज्ञान अर्जित करना भी बहुत बड़ा धन है और ये एक ऐसा धन है जिसे कोई चुरा नहीं सकता और न ही कोई लूट सकता है। ज्ञान ही हमें भौतिक संपदा के सही इस्तेमाल की क्षमता देता है, इसलिए ज्ञान रूपी धन को अर्जित कीजिए।

समय रूपी धन तो हम सबके पास होता है। दिन के 24 घंटे सभी के लिए बराबर होते हैं, इसलिए समय का इस्तेमाल सोच समझकर और सही जगह पर करना चाहिए। समय रूपी संपदा को बुद्धिमानी से प्रयोग करें, अपनी प्राथमिकताएं तय करें, योजना बनाएं और अनुशासन में रहकर समय को खर्च करें। अगला धन है मान सम्मान। हमें अपने मान सम्मान की हिफाजत करनी चाहिए। कोई ऐसा कार्य ना करें जिससे लोग आपका सम्मान करना छोड़ दें या जरूरत पड़ने पर कोई आपकी सहायता को न आए। रुपए पैसों के नुकसान की भरपाई तो हो जाती है, पर गया हुआ सम्मान मुश्किल से ही मिल पाता है, इसलिए सम्मान रूपी धन को सहेजें।

धरती पर जितने भी प्राकृतिक संपदाएं या संसाधन हैं, वो भी ईश्वर का दिया हुआ धन है। पानी, खाद्य पदार्थ, खनिज, ये सब भी धन ही है। इनका हमें सही मात्रा में उपयोग करना होगा। अगर कहीं नल टपक रहा है तो उसे ठीक करवाइए, पानी को व्यर्थ मत बहाइए। भोजन जितनी आवश्यकता हो उतना ही बनाएं, भोजन को फेंकने से बचें। ईंधन का उपयोग सोच समझ कर करें। कहने का तात्पर्य यह है कि केवल रुपये पैसे को ही धन ना समझें, बल्कि इसकी व्यापकता को समझते हुए इन दूसरे धन का भी संचय व समुचित उपयोग हमें करना है।

0: यह है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री। मंत्रिमंडल ने इस उपलब्धि पर प्रस्ताव पारित किया। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अहमदाबाद मेट्रो के विस्तार और अमरावती में सरकारी कार्यालय और आवासीय परिसरों सहित 4,700 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं को मंजूरी दी। प्रधानमंत्री की उपलब्धियों और सरकार के 12 वर्ष पूरे होने का उत्सव मनाने के लिए नई दिल्ली में एनडीए की बैठक होगी। ईरान ने जॉर्डन में अमरीकी ठिकानों पर हमले किए। अमरीका ने ईरान पर किए जवाबी हमले। अफगानिस्तान में पाकिस्तानी हवाई हमले में 11 बच्चों सहित 13 लोग मारे गए। और मौसम विभाग ने अगले 3 दिन में दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में भीषण गर्मी से राहत मिलने की संभावना व्यक्त की। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं। श्री मोदी ने 26 मई 2014 को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। प्रधानमंत्री मोदी का निरंतर कार्यकाल अब 4,399 दिन का हो गया है। एक रिपोर्ट।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह उपलब्धि विशेष रूप से उल्लेखनीय है क्योंकि भारत जैसे 140 करोड़ से अधिक आबादी वाले देश का शासन प्रशासन अत्यंत व्यापक और जटिल है। भाषाई, सांस्कृतिक, धार्मिक तथा भौगोलिक विविधताओं से युक्त इस राष्ट्र का सफल नेतृत्व और संचालन अपने आप में एक बड़ी जिम्मेदारी और चुनौती है। ऐसे समय में जब अनेक देशों में राजनीतिक अस्थिरता, सरकारों में बार बार परिवर्तन तथा नीतिगत अनिश्चितता देखने को मिल रही है, भारत में नेतृत्व और शासन में निरंतर रही है। यह विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र में लगातार 3 बार राष्ट्र जनादेशों द्वारा जनता का निरंतर भरोसा दर्शाता है। स्वतंत्र वैश्विक सर्वेक्षणों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगातार विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय लोकतांत्रिक नेताओं में स्थान दिया गया है। साथ ही उन्हें अब तक 30 से अधिक देशों द्वारा सर्वोच्च नागरिक सम्मानों से भी सम्मानित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल के दौरान लगभग 25 करोड़ भारतीय बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले हैं तथा व्यापक सामाजिक आर्थिक प्रगति हुई है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि यह ऐतिहासिक अवसर है। देश की जनता का उनके नेतृत्व में अटूट विश्वास और भरोसे का प्रमाण है। उन्होंने कहा कि श्री मोदी के कार्यकाल में शासन, आर्थिक दृढ़ता और सामाजिक परिवर्तन के क्षेत्र में दूरगामी प्रगति हुई है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि प्रधानमंत्री के दूरदर्शी नेतृत्व में भारत ने आर्थिक विकास, अवसंरचना विस्तार, सामाजिक सशक्तिकरण, तकनीकी उन्नति और वैश्विक स्तर पर भारत की प्रतिष्ठा में वृद्धि जैसे क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति देखी है। गृहमंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर, वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल, वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन और कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान सहित अन्य केंद्रीय मंत्रियों ने श्री नरेंद्र मोदी को देश के सबसे लंबे समय तक लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री बने रहने पर बधाई दी है। गृहमंत्री ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना और उनके खोए हुए आत्मसम्मान को बहाल करना प्रधानमंत्री की सबसे बड़ी उपलब्धि है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने कुशलता, धैर्य, दृढ़ संकल्प के साथ देश का मार्गदर्शन किया है। उन्होंने कहा कि

0: मोदी ने विकसित भारत के सपने को साकार करने का संकल्प लिया है।
1: भारत में डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी आज हुए हैं और विकसित भारत बनाने का संकल्प जो उन्होंने लिया है, हम सभी 140 करोड़ देशवासी उस संकल्प में जुड़े, ऐसी प्रार्थना प्रभु के पास की।
0: भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने समाज के हर वर्ग के कल्याण और विकास के लिए काम किया है, इसमें विशेष रूप से महिला सशक्तिकरण उल्लेखनीय है।
2: पिछले 12 सालों में जो उन्होंने कई कीर्तिमान बनाए, वे सबसे बड़ा विषय आज हमारा गरीब हमारा परिवार के मुख्य धारा के साथ जोड़कर काम कर रहा है, देश के विकास में काम कर रहा है। आज हमारा युवा पूरी तरह से उत्साह के वातावरण में, मैं मानता हूं कि 2013-14 का जो समय था एक निराशा का वातावरण में जो हमारा युवा था, आज हमारा युवा अपने आप को उत्साह और उम्मीद और आकांक्षाओं के साथ मोदी के साथ चलने को तैयार।
0: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने अपना पूरा जीवन राष्ट्र सेवा में समर्पित किया है।
3: मोदी जी ने लगातार देश सेवा में अपना जीवन अर्पित किया, देश सेवा में जिन्होंने एक दिन भी बिना कोई अवकाश लिए देश का मान सम्मान और स्वाभिमान बढ़ाने का काम किया, और उनका जो योगदान विकसित भारत के लिए है, देश का हर नागरिक आज दिल की गहराई से उसके लिए धन्यवाद करना चाहता हूँ।
0: विश्व नेताओं ने भारत के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री बनने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी है।
4: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लगातार सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने के अवसर पर श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिसानायके, पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री जेम्स मरापे और त्रिनिदाद और टोबैगो के प्रधानमंत्री कमला प्रसाद विशेसर ने प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के परिवर्तनकारी नेतृत्व, ग्लोबल साउथ की आवाज को मजबूत करने के प्रयासों और समावेशी तथा आर्थिक रूप से सशक्त भारत के उनके दृष्टिकोण की सराहना की। गृहमंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर, वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान सहित कई नेताओं ने भी प्रधानमंत्री मोदी को शुभकामनाएं दी। श्री शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के पिछले 12 वर्ष भारत के गौरव की पुनर्स्थापना, सांस्कृतिक पुनर्जागरण और गुलामी की मानसिकता से देश को मुक्त करने के लिए समर्पित रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस दौरान देश की सीमाएं अधिक सुरक्षित हुई, जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाया गया, अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हुआ, नक्सलवाद पर प्रभावी नियंत्रण पाया और आतंकवाद को करारा जवाब दिया गया। प्रिया के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: भारत में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि यह उपलब्धि प्रधानमंत्री मोदी के दशकों के समर्पित जनसेवा और नेतृत्व का सशक्त प्रमाण है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज एक प्रस्ताव पारित कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सबसे लंबे समय तक निर्वाचित रूप से पद पर बने रहने पर बधाई दी है। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद नई दिल्ली में मीडिया से बातचीत में सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि प्रस्ताव में श्री मोदी द्वारा निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में राष्ट्र की निरंतर सेवा की इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर चर्चा की गई। श्री वैष्णव ने बताया कि मंत्रिमंडल ने आज 2,169 करोड़ रुपए की लागत से अहमदाबाद मेट्रो के चरण 2A के विस्तार को मंजूरी दी। उन्होंने बताया कि इसमें 5 स्टेशन वाला 6 किलोमीटर लंबा मेट्रो कॉरिडोर भी शामिल है।
5: आज कैबिनेट में 3 फैसले लिए गए। एक फैसला अहमदाबाद में मेट्रो के विस्तार का है और 2 फैसले अमरावती, जो कि आंध्र प्रदेश का नया कैपिटल निर्मित हो रहा है, बन रहा है, डेवलप हो रहा है, उसके 2 फैसले लिए गए। अहमदाबाद मेट्रो का फेज 2A कोटेश्वर रोड से एयरपोर्ट का कॉरिडोर आज अप्रूव हुआ है कैबिनेट में।
0: श्री वैष्णव ने बताया कि मंत्रिमंडल ने आंध्र प्रदेश के अमरावती में केंद्रीय सरकारी कार्यालय परिसर और केंद्रीय सरकारी आवासीय परिसर को भी मंजूरी दी।
5: अमरावती नया शहर बन रहा है तो नए शहर में कई सारे जो सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिसेज हैं, इनको एक सिंगल कॉम्प्लेक्स में शिफ्ट किया जाएगा। बिखरे बिखरे से ऑफिसेज से काम करने में तकलीफ होती है, इंटीग्रेशन होने से कोऑर्डिनेशन प्रॉपर हो पाता है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिस कॉम्प्लेक्स अमरावती में बनेगा। इसके लिए करीब 5.5 एकड़ की जमीन राज्य सरकार ने दी है और 23 लाख स्क्वायर फीट का कंस्ट्रक्टेड एरिया बनेगा। लोकेशन ये मैप में है सारा। 2 प्रोजेक्ट्स है, एक तो रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स है और एक ऑफिस कॉम्प्लेक्स है।
0: राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की बैठक आज नई दिल्ली में होगी। इसमें सरकार के 12 वर्ष पूरे होने और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भारत के सबसे लंबे समय तक लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने पर उत्सव मनाया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं के साथ साथ एनडीए गठबंधन के सभी घटक दलों के नेता के भी बैठक में शामिल होने की उम्मीद है। बैठक में विभिन्न राष्ट्रीय विकास कार्यक्रमों, बुनियादी सुविधाओं से जुड़े कार्यक्रमों और सरकार के विकसित भारत 2047 के

0: दृष्टिकोण पर चर्चा होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गृहनगर गुजरात के वडनगर में आज उनके सफल शासन के 12 वर्षों के उपलक्ष्य में कार्यक्रमों की एक श्रृंखला आयोजित की जाएगी, जिसमें विकसित भारत के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए जन भागीदारी पर जोर दिया जाएगा। सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 95,692 करोड़ रुपए के अंतरिम बजट आवंटन का प्रस्ताव रखा है, जिससे मनरेगा से विकसित भारत रोजगार गारंटी और आजीविका मिशन ग्रामीण VBG रामजी में सुचारू रूप से परिवर्तन सुनिश्चित किया जा सके। ये अधिनियम 1 जुलाई से पूरे देश में लागू हो जाएगा। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के ग्रामीण विकास मंत्रियों के साथ वर्चुअल बैठक के बाद इसकी घोषणा की।
1: इस साल बजट में 30,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया था नरेगा चलाने के लिए। नियमों को अंतिम रूप देने में कुछ समय लग सकता है, इसलिए कोई दिक्कत मजदूरों को ना आए और विकास का जो महायज्ञ ग्रामीण भारत के गांव का वो भी चलता रहे, इसलिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को इंटरिम एलोकेशन कुल मिला के है 95,692 करोड़ का।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली के राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केंद्र में नीति आयोग के 11वीं शासी परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। प्रधानमंत्री की टीम इंडिया के दृष्टिकोण के अनुरूप इस वर्ष का विषय है 2047 तक विकसित भारत के लिए समावेशी मानव विकास। ये विषय प्रत्येक भारतीय के कल्याण और विकास पर केंद्रित है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने आज कहा कि देश में CNG की कोई कमी नहीं है। उन्होंने कहा कि सरकार घरों तक पाइपलाइन वाली प्राकृतिक गैस PNG की आपूर्ति कर रही है। श्री पुरी ने कहा कि LPG कनेक्शनों को PNG कनेक्शनों में बदलने के प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि कुछ लोग गलत सूचना फैलाकर वैश्विक स्थिति का फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं।
2: ग्लोबल सिचुएशन का फायदा उठा के कुछ लोगों ने आर्टिफिशियल शॉर्टेजेस करने की कोशिश की है, तो एकदम हमने उस पर क्रैकडाउन कर दिया। कोई कमी नहीं है, ना CNG की कमी है, ना पाइप गैस जो लोगों के घरों में जा रहे हैं, इनफैक्ट LPG के हम कन्वर्ट कर रहे हैं इनटू PNG कनेक्शन।
0: सरकार ने सोशल मीडिया पर चल रही उन खबरों का खंडन किया है जिसमें कहा गया था कि रिजर्व बैंक इस महीने की 30 तारीख से कागजी नोटों को बंद करके उनके जगह प्लास्टिक नोटों का प्रचलन शुरू कर देगा। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने इस दावे को फर्जी बताया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। अमेरिका और ईरान के बीच एक बार फिर तनाव बढ़ गया है। दोनों देशों की सेनाओं के बीच रात भर सैन्य हमले हुए। एक रिपोर्ट।
3: अमेरिका के केंद्रीय कमान ने पुष्टि की है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के निर्देश पर कल होर्मुज जडमरु मध्य के पास अपाचे हेलीकॉप्टर को गिराए जाने के जवाब में ईरान के खिलाफ आत्मरक्षा में हमले किए गए। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि चालक दल के दोनों सदस्य सुरक्षित हैं। ईरान की ओर से भी तुरंत प्रतिक्रिया सामने आई। इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर ने बहरीन में अमरीका के 5वें बेड़े और कुवैत में अली अल सलेम हवाई अड्डे पर ड्रोन हमले का दावा किया। साथ ही जॉर्डन में अल अजराक हवाई अड्डे पर लंबी दूरी की मिसाइल से हमला किया गया। जॉर्डन के सशस्त्र बलों ने पुष्टि की है कि उन्होंने अजराक क्षेत्र की ओर दागी गई सभी 5 ईरानी मिसाइलों को नष्ट कर दिया है। गार्ड कोर ने दावा किया कि उन्होंने क्षेत्र में अमरीकी ठिकानों पर 21 लक्ष्यों को निशाना बनाया है। हालांकि इस आंकड़े की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं की जा सकी है। एक अमरीकी अधिकारी ने कहा कि प्रारंभिक आकलन से संकेत मिलता है कि लगभग सभी ईरानी मिसाइलों और ड्रोन को सफलतापूर्वक रोक दिया गया था और तत्काल किसी के हताहत होने या बड़े नुकसान की कोई खबर नहीं है। पिछले सप्ताह अमेरिका की मध्यस्थता में हुआ युद्ध विराम अब गंभीर स्थिति में है। लेबनान में हिजबुल्ला द्वारा उत्तरी इसराइल में मिसाइल हमले के बाद इजरायली बलों ने बैरूत के दक्षिणी उपनगरों पर हमले किए। जवाब में ईरान ने भी इजरायली हवाई अड्डे पर हमले का दावा किया है। इस बीच संयुक्त राष्ट्र महासचिव के निजी दूत वर्तमान में दोनों देशों के बीच व्यापक समझौते को लेकर अमरीकी अधिकारियों के साथ बातचीत के लिए वॉशिंगटन में है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
0: अफगानिस्तान के कुनार खोस्त और पक्तिका प्रांत में पाकिस्तानी सेना के हवाई हमले में 13 लोग मारे गए। इनमें ज्यादातर बच्चे थे। तालिबान के प्रवक्ता जबीउल्ला मुजाहिद ने हमले की निंदा करते हुए कहा कि नागरिकों के घरों को निशाना बनाकर कल रात ये हमला किया गया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी सेना ने एक बार फिर अफगानिस्तान के हवाई क्षेत्र का उल्लंघन किया है। उन्होंने इसे मानवीय अपराध और आक्रामकता का कृत्य बताया है। मौसम विभाग ने अगले 3 दिन में दिल्ली NCR क्षेत्र में भीषण गर्मी से राहत मिलने की संभावना व्यक्त की है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में अगले 3 दिन में गरज के साथ

0: बारिश और धूल भरी आंधी की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, सिक्किम, कर्नाटक के तटवर्ती इलाकों और पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश हो सकती है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री। मंत्रिमंडल ने इस उपलब्धि पर प्रस्ताव पारित किया। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अहमदाबाद मेट्रो के विस्तार और अमरावती में सरकारी कार्यालय और आवासीय परिसरों सहित 4,700 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं को मंजूरी दी। प्रधानमंत्री की उपलब्धियों और सरकार के 12 वर्ष पूरे होने का उत्सव मनाने के लिए नई दिल्ली में एनडीए की बैठक होगी। ईरान ने जॉर्डन में अमरीकी ठिकानों पर हमले किए। अमरीका ने ईरान पर किए जवाबी हमले। अफगानिस्तान में पाकिस्तानी हवाई हमले में 11 बच्चों सहित 13 लोग मारे गए। और मौसम विभाग ने अगले 3 दिन दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में भीषण गर्मी से राहत मिलने की संभावना व्यक्त की। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: यह है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। आइए सुने सदाबहार नगमे। सदाबहार नगमे कार्यक्रम का पहला गीत आपको सुनवाते हैं छलिया फिल्म से मुकेश की आवाज, कमर जवालाबादी के बोल और कल्याण जी आनंद जी का संगीत।

0: इलाहाबाद से पहुंचे दिल्ली। बचपन से उन्हें छपे हुए शब्दों से प्यार था।
1: राम कुमार वर्मा, उनकी एकांकी हमने कक्षा 6 में पढ़ी, तो मैं इलाहाबाद में बंद रोड की जगह है जहां उनके किनारे उनका घर था, तो जब मैं साइकिल से उधर से गुजरता था तो मैं उनके गेट के बाहर खड़ा होकर इंतजार करता था कि वो निकले, एक झलक मैं देख लूं,
0: क्या
1: जैसे
0: बात है।
1: मुंबई में लोग फिल्म स्टार के लिए खड़े होते हैं।
0: लेखन के साथ साथ लेखकों से भी उन्हें बहुत प्यार था।
1: आगे देखो तो रघुपति साहब फिराक रहते थे, दाएं देखो तो अकबर इलाहाबादी रहते थे, बाएं देखो तो सीवाई चिंतामणि जैसा पत्रकार था।
0: वो हैं जाने माने लेखक पत्रकार प्रताप सोमवंशी।
1: पहले लिखा तुम्हें प्यार है और आगे भाभी बीमार है, छुटकी को आया बुखार है, आंखें जैसी की तैसी हैं, गठिया की हालत वैसी है, अब तो बिटवा है ये लगता, मौत ही जैसे अंतिम हल है, शेष कुशल है।
0: तो सुनिए आज के मेहमान 10 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: सदाबहार नगमे आप सुन रहे हैं विविध भारती से। लीजिए अब आपको सुनवाते हैं अपना घर, इस फिल्म का गीत गीता दत्त और मुकेश के स्वरों में। प्रेम धवन के बोल हैं, रवि का संगीत।

और आइए अब आपको सुनवाते हैं लता मंगेशकर का गाया गीत भूत बंगला फिल्म से। हसरत जयपुरी ने इसे शब्दबद्ध किया है और धुन बनाई है आरडी बर्मन ने।

0: अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
1: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 14 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: जो शहीद हुए हैं इनकी जरा याद करो कुर्बानी।
3: बहु बेटी फिल्म का गीत अब सुनिए, आवाज है मोहम्मद रफी की, साहिर लुधियानवी की रचना है, रवि का संगीत।

0: दिल पे नहीं है काबू, हाय मेरी जान ना सता तू।
1: दिन की भागदौड़ के बाद सुकून का एक कोना, मैं और मेरी तन्हाई, सुनहरे गानों का बिछौना, यादों का मीठा राग, जज्बात की नरम छांव, प्यार की चुवन, अपनेपन का गांव, छाया गीत, रोज रात 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: सदाबहार नगमे, ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती से, और लीजिए इस कार्यक्रम का ये अंतिम गीत सुनिए। फिल्म का नाम दो बदन, इस गीत को गाया है लता मंगेशकर ने, रचना शकील बदायूं ने की है और धुन बनाई है रवि ने।

0: सभी सखियों सहेलियों को श्रोताओं को और नेहा आपको सोनाली पाठक का सब प्रेम नमस्कार।
1: सोनाली जी, आपको भी और श्रोताओं को भी मेरा प्यार भरा नमस्कार।
0: और क्या हालचाल है?
1: बस ठीक हूँ, बहुत दिन बाद आपके साथ इस कार्यक्रम में आई हूँ तो बड़ा अच्छा लग रहा
0: कैसा होता है ना कि
1: है।
0: जब हम बाहर मिलते हैं उसकी बात कुछ और होती है, और जब हम सखी सहेली के मंच पर होते हैं तब हम होते हैं, आप होते हैं, हमारे साथ बहुत सारी सखियां होती हैं, बहुत सारे श्रोतागण होते हैं और उनके बहुत सारे कमेंट्स होते हैं, तो
1: बिल्कुल
0: वो जो महफिल होती है ना उसकी उसका हम शब्दों में वर्णन ही नहीं कर सकते।
1: बिल्कुल। और वो कहते हैं ना, जैसे कि हर जगह की एक वाइब होती है,
0: हाँ
1: एक ऊर्जा होती है, तो यहाँ की एक अलग ही ऊर्जा होती है। यहाँ हम बिल्कुल खिलखिला के ऐसे बात करते हैं जैसे हमारी रोज मुलाकात होती हो, है
0: और
1: ना।
0: है ना, और हम कल्पना के माध्यम से ऐसा महसूस करते हैं ना कि बहुत सारे श्रोता भाई, बहुत सारी सखियां बैठे हुए हैं अपने आंगन में, कोई पेड़ के नीचे तो कोई घरों में, और हमारा सखी सहेली कार्यक्रम सुन रहे हैं, हमारा अपना
1: बिल्कुल
0: कार्यक्रम सुन रहे
1: बिल्कुल सही कहा आपने, गर्मी के दिनों की याद दिला दी आपने कि
0: हैं।
1: जैसे गर्मी की छुट्टियों में पेड़ों की छांव में बैठा करते थे वैसा।
0: विषय बता दे।
1: बिल्कुल
0: आज का जो विषय है ना, सब्जी वही अंदाज ना है, ये व्यंजन हम जो लेकर आते हैं उसमें, तो आप भी बताइए कि वही वही बोरिंग सी सब्जियां खा के अगर आप बोर हो चुके हैं तो आप कुछ ऐसा कुछ अलग करते हैं कि उसी सब्जी को कुछ अलग अंदाज में बनाते हैं, तो वो हमें जरूर बताइएगा, हमें कमेंट्स कर कर करके लिखिएगा कि आपके घर में ऐसे अलग क्या बनाते हैं। अब जैसे पत्ता गोभी की सब्जी है, हमेशा खा खा के हम बोर हो गए, तो उसमें हम एक शिमला मिर्ची डाल दी तो उसमें थोड़ी उसकी लज्जत बढ़ जाएगी, या फिर थोड़ी सी चना दाल भिगो के उसमें डाल दी तो भी अच्छी लगती है, या फिर थोड़ा सा बेसन डाल दिया तो भी अच्छी लगती है, यानी उसको तो अलग अलग तरह से बनाए तो घर के लोग भी बोर नहीं होते और बनाने वाले को भी मजा आता है।
1: और सब्जी का रूप बदल जाता है तो खाने में भी मजा आता है।
0: वैसे आजकल जो है ना समय जो बदल रहा है उसमें घर के लोग चार होते हैं पर खाने वालों के नखरे हजार हो।
1: हजार होते
0: पुराना जमाना याद
1: हैं।
0: कीजिए, हमारी माँ कभी पूछती नहीं थी कि भाई क्या खाना है क्या है, बस उसे जैसे पता चलता था कि नहीं ये सेहत के लिए भी अच्छा है, बहुत दिन से ये सब्जी नहीं बनी है इस तरह की दाल बनाओ, बिना पूछे बनाती थी और हम लोग चुपचाप खा भी लेते थे।
1: और हमारे यहाँ तो ये भी कहा जाता था कि जो बना है वही खाना है, और आपको नहीं पसंद आ रहा है भले आप थोड़ा कम लीजिए, पर आदत हर चीज की होनी चाहिए।
0: बिल्कुल।
1: यही वजह है कि आज हम लोग सब तरह की सब्जियां खाते हैं और आदत भी बन गई है अब वैसी ही, लेकिन यही अब आज की दुनिया में बदल गया है।
0: और आजकल हो क्या रहा है नेहा कि आजकल हम मोबाइल की दुनिया में इतने उलझ रहे हैं कि हमारे बीच में संवाद ही नहीं हो रहे हैं, है ना।
1: समझ रही हूं मैं आपके आपका इशारा किस और है।
0: जी, शब्द हमारा, विचार आपके, इसमें संवाद पर आप कमेंट्स लिखकर भेजिएगा कि आपके परिवार में संवाद होता है, या फिर आपके दोस्तों के बीच में संवाद हो रहा है, या संवाद पीछे छूटता जा रहा है।
1: और किस तरह का संवाद होता है।
0: है ना। हाँ
1: बिल्कुल। और फिर इसके अलावा हमारी महिला श्रोताओं का फेवरेट जो है साड़ियों का संसार।
0: उसमें हम चंदेरी साड़ी, मध्य प्रदेश की जो विरासत है चंदेरी साड़ी, उसके बारे में हम जानकारी देंगे, और हमारे बहुत सारे श्रोता भाई वो भी लिख कर बताएं, हमारी बहनें लिख के बताएं कि आपने चंदेरी साड़ी खरीदी है या अभी खरीदना बाकी है ना, और अगर खरीदी है तो किस कलर की चंदेरी साड़ी आपके पास में है।
1: बिल्कुल। और इसके बाद एक महत्वपूर्ण विषय बता दीजिए।
0: जी, आज है विश्व नेत्रदान दिवस, जो
1: जी
0: बहुत जरूरी है हम सभी के लिए, यानी जब हमारे पास में आंखें हैं ना तो हमें उसकी इतनी वैल्यू नहीं है, पर जिनके पास आंखें नहीं है उन्हें इसकी बहुत ज्यादा महत्ता मालूम है, तो मरणोपरांत आप नेत्रदान जरूर कीजिएगा ताकि आपकी बदौलत लोगों के जीवन में रोशनी आए, यानी यूं कह लीजिए कि मरणोपरांत भी हम किसी के, हमारी आंखों के माध्यम से दुनिया देख सकते हैं।
1: बिल्कुल। और सोनाली जी, जब हम इस विषय पर बात करेंगे तो मैं अपना एक अनुभव भी बताना चाहूंगी जो शायद हमारे श्रोताओं के लिए एक सीख हो सके। मैंने अपनी गलती से सीखा, हो
0: जी
1: सकता है वो किसी के लिए यानी एक पहले से पता चल जाए कि हाँ
0: जी
1: ये गलती ना हो सके, तो वो बात भी करेंगे।
0: बिल्कुल, स्वागत है आपकी, आपके कमेंट्स का, आपकी बात का, और अब क्या करें,
1: जी अब एक गाना सुनवा देते हैं, बहुत
0: सुनते हैं
1: बातें हो
0: गीत।
1: गई
0: जी, सुनते हैं गीत।
1: हैं। ठीक।

0: तो नेहा, मैसेज में खो गई थी।
1: हाँ, अपनी श्रोताओं के कमेंट्स देख रही हूँ, बड़े प्यारे प्यारे कमेंट्स आए, और इतने सारे आए हैं कि क्या बताऊँ।
0: और हर किसी का अलग अंदाज है, हर किसी की लेखनी अलग है, पर जो हमारे श्रोतागण लिखते हैं ना, बहुत सुंदर लिखते हैं। इतना सुंदर उनकी लेखनी है, सचमुच समृद्ध है वे अपनी लेखनी को लेकर। और आज जैसे कि दो विरोधाभास है, संवाद दिवस भी है, पर कभी
1: हाँ।
0: कभी ऐसा होता है ना, कुछ बातें बिना कहे एक दूसरे को समझ में आ जाती है, वो हम आंखों के माध्यम से बोलते हैं। पर वो
1: बिल्कुल
0: बात वही समझ सकता है जिनके पास नेत्र हैं या आंखों में रोशनी है। तो आज
1: जी
0: अंतर्राष्ट्रीय नेत्रदान दिवस है, तो लोगों में नेत्रदान के प्रति जागरूकता के तहत प्रतिवर्ष 10 जून को अंतर्राष्ट्रीय नेत्रदान दिवस मनाया जाता है।
1: मृत्यु के बाद भी किसी के जीवन में उजाला भरना ही नेत्रदान का सबसे बड़ा संदेश है। विश्व नेत्रदान दिवस लोगों को नेत्रदान के प्रति जागरूक करने और इसके महत्व को समझाने के उद्देश्य से मनाया जाता है। हमारी आंखें प्रकृति का अनमोल उपहार है ना? इन्हीं के माध्यम से तो हम इस सुंदर संसार के रंग रूप और विविधता को देख पाते हैं।
0: बिल्कुल। और किंतु अनेक लोग ऐसे होते हैं नेहा, जो दृष्टिहीनता के कारण इस सौंदर्य से वंचित रह जाते हैं। ऐसे लोगों के जीवन में प्रकाश लाने का सबसे सरल और महान माध्यम है नेत्रदान। और नेत्रदान का अर्थ है कि मृत्यु के बाद अपनी आंखों के कॉर्निया यानी नेत्र गोलक के पारदर्शी भाग का दान करना। किसी व्यक्ति की मृत्यु के कुछ घंटों के भीतर उसकी आंखें सुरक्षित रूप से निकालकर उन लोगों को प्रत्यारोपित की जा सकती है जिनकी दृष्टि कॉर्निया की खराबी के कारण चली गई हो। एक व्यक्ति का नेत्रदान दो लोगों को दृष्टि प्रदान कर सकता है।
1: अब सोनाली जी, यहीं आपको थोड़ा सा रोकूंगी, और वही बात जो मैंने कही थी कि मैं बताने वाली
0: जी
1: हूँ। अब मैं अपना अनुभव बताना चाहती हूँ कि मेरे दादाजी की जब डेथ हुई थी तो उन्होंने भी नेत्रदान किया हुआ था। हम लोगों को पता भी था, लेकिन हमें ये नहीं पता था कि अगर किसी ने नेत्रदान किया हुआ है तो उस व्यक्ति को बर्फ पर नहीं रखा जाता, जब
0: ओहो।
1: तक, हाँ, जब तक उसकी आंखें निकाल नहीं ली जाती हैं तब तक। अब ये हमें पता नहीं था, चूंकि हमारे कुछ रिश्तेदार दूर से आने वाले थे इसलिए उन्हें हमें हमने बर्फ पर रखा था। तो अब हुआ यूं कि चूंकि हमने 1 ही घंटे के अंदर या बहुत जल्दी बता दिया था डॉक्टर को कि इन्होंने नेत्रदान किया हुआ है, तो प्रोसीजर क्या है पूछा था, लेकिन डॉक्टर का कहना था कि चूंकि इन्हें हमने अब उस पे रख दिया है तो अब हम उन नेत्रों को नहीं निकाल सकते।
0: ओहो।
1: तो चूंकि हमें बड़ा बुरा लगा कि उन्होंने नेत्रदान किया था उस समय, लेकिन वो काम नहीं आ पाया। तो श्रोताओं से भी यही कहना चाहूंगी कि जब ऐसी स्थिति हो, यदि आपके घर में किसी ने नेत्रदान किया

0: दिया है, तो आप ये ध्यान रखें कि उस व्यक्ति को तुरंत बिना कहीं और शिफ्ट किए या फिर कहीं बर्फ पर रखे बिना डॉक्टर को बताया जाए कि इन्होंने नेत्रदान किया है, ताकि अगली कार्रवाई की जा सके।
1: ये बहुत अच्छी जानकारी दी आपने, क्योंकि बहुत सारे लोगों की इच्छा होती है कि भाई मुझे नेत्रदान करना है, और गलती से अगर उन्हें बर्फ पर रख दिया तो अगर उन्हें उनकी जो इच्छा थी वो पूरी नहीं हो
0: नहीं
1: पाई
0: हो
1: तो
0: पाती
1: हमें बहुत
0: जी,
1: बुरा लगता है।
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: और नेत्रदान केवल दान नहीं है नेहा, बल्कि किसी के जीवन में नई आशा और नया सवेरा लाने का कार्य है। और
0: बिल्कुल
1: भारत सहित विश्व के अनेक देशों में लाखों लोग कॉर्निया संबंधी समस्याओं के कारण दृष्टिहीन है। इन लोगों के लिए नेत्र प्रत्यारोपण ही दृष्टि प्राप्त करने का एकमात्र उपाय होता है।
0: सोनाली जी, दुर्भाग्यवश जागरूकता की कमी, अंधविश्वास और जानकारी के अभाव के कारण नेत्रदान करने वालों की संख्या अपेक्षाकृत कम है। यही कारण है कि नेत्रदान दिवस का महत्व और बढ़ जाता है। समाज में कई प्रकार की भ्रांतियां प्रचलित हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि नेत्रदान करने से शरीर की सुंदरता प्रभावित हो जाएगी या धार्मिक रीति रिवाजों में बाधा आएगी, जबकि सच ये है कि नेत्रदान की प्रक्रिया अत्यंत सम्मानजनक और वैज्ञानिक होती है। इससे मृत व्यक्ति के चेहरे की बनावट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, और लगभग सभी धर्म इसे मानव सेवा का श्रेष्ठ कार्य मानते हैं।
1: और इसी तरह की बातें हमारे श्रोताओं ने भी लिखकर भेजे हैं। तो हमारे एक साथी लिखते हैं कि नेत्रदान महादान, नेत्रदान एक वरदान, नेत्रदान का संकल्प ले ताकि किसी का अंधेरा जीवन उजाले से भर जाए। हर स्वस्थ व्यक्ति जिसकी आंखें सही सलामत है नेत्रदान की घोषणा कर सकता है, नेत्रदान महाकल्याण। बहुत सुंदर बातें इन्होंने लिखकर भेजी है।
0: हमारे एक साथी ने तो ये भी लिखा है कि उनके पिताजी की अभी अभी मृत्यु हुई थी, तो उन्होंने उसकी सूचना दी होगी, तो उनकी भी आंखें ले गए, और क्योंकि वो पहले से अपनी आंखें दान कर चुके थे तो इन्होंने भी उसके लिए हामी भर दी। तो ये
1: और
0: एक अच्छा कार्य था।
1: बहुत अच्छा कार्य किया है, और इस मैसेज को पढ़कर बहुत सारे लोग प्रेरित भी हो सकते हैं।
0: बिल्कुल
1: और एक साथी ने लिखा, नेत्रदान ऐसा दान है जो मृत्यु के बाद भी किसी के जीवन में नई आशा, आत्मविश्वास और खुशियां भर देता है। हमारी आंखें इस संसार की सुंदरता देखने का माध्यम है, और मृत्यु के बाद इन्हीं आंखों से किसी नेत्रहीन व्यक्ति के जीवन में उजाला लाया जा सकता है। नेत्रदान दिवस हमें इस पुनीत कार्य के प्रति जागरूक करने और लोगों को नेत्रदान के लिए प्रेरित करने का अवसर देता है। इसलिए हमें स्वयं नेत्रदान का संकल्प लेना चाहिए और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करना चाहिए। नेत्रदान महादान है, आइए किसी के जीवन में रोशनी का उपहार बने।
0: एक साथ ही लिख रहा है, हार को जीत की एक दुआ मिल गई, तपन मौसम में ठंडी हवा मिल गई, आप आए श्रीमान जी, यूं लगा जैसे तकलीफ को कुछ दवा मिल गई। धन्य हुए आज तो हम, मिट गए सारे अंधियारे, आंखों को बहुत सुकून आया जो आप हमारे सखी सहेली मंच पर पधारे। देखिए आज नेत्रदान दिवस है, तो इन्होंने आंखों को लेकर ये शायरी लिख कर हमें भेजी
1: बहुत बहुत धन्यवाद कहते हैं। और एक
0: है।
1: साथी ने लिखा है कि शरीर का हर एक अंग महत्वपूर्ण है, लेकिन आंखें सबसे महत्वपूर्ण है, जो प्राणी मात्र और मनुष्य जीवन में बहुत बहुत महत्वपूर्ण अंग माना जाता है। नेत्रदान को महादान नाम देकर हमारी सरकार ने भी एक सूत्र जारी किया है, नेत्रदान महादान।
0: महादान।

0: सोनाली जी बड़ी अच्छी बात लिखी है हमारे एक साथी ने। उन्होंने लिखा है, नेत्रदान दिवस ये दिन नेत्र जैसे महादान के प्रति जागरूकता हेतु मनाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि हम सभी नेत्रदान करने पर जागरूक हों और अपने आसपास के लोगों को भी जागरूक करें। मैं खुद नेत्रहीन हूं तो मैं समझ सकती हूँ कि नेत्रदान उनके लिए कितना महत्वपूर्ण होता है जिनके पास आंखें नहीं होती है। इसलिए मैं आज हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि आप सभी जीवन में ये संकल्प लें कि आप नेत्रदान करेंगे, किसी की जिंदगी बचाएंगे। आपके एक नेत्रदान से कितनी जिंदगियां बन सकती हैं, और जो नेत्रदान से जुड़े हुए मित्र हैं उनसे दूर हैं। तो यही इनका कहना है कि हम ऐसे लोगों से जुड़ें और इस बात का प्रचार प्रसार करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग नेत्रदान
1: नेत्रदान कर
0: करें।
1: सके। और मुझे ऐसा लगता है इनका कमेंट्स पढ़ के बहुत सारे लोगों ने मन में निश्चय भी कर लिया होगा कि मैं भी नेत्रदान करूंगी, ताकि लोग इतनी सुंदर इतनी खूबसूरत दुनिया देख
0: देख
1: सके।
0: सके,
1: और जब भी
0: बिल्कुल
1: खूबसूरती का जिक्र चलता है तो हमें याद आती है बहुत सुंदर सुंदर साड़ियाँ, और साड़ी में
0: साड़ियां
1: जो स्त्री का सौंदर्य है ना और भी
0: झलक उठता है।
1: बहुत सुंदर दिखती है महिलाएं साड़ियों में। और आज हम साड़ियों का संसार, इसमें हम चंदेरी साड़ी जो मध्य प्रदेश की है तो उस बारे में जानकारी देंगे कि चंदेरी साड़ी भारत की प्रसिद्ध हथकरघा साड़ियों में से एक है। ये साड़ी मुख्य रूप से चंदेरी नगर में बनाई जाती है जो मध्य प्रदेश के अशोक नगर जिले में स्थित है। अपनी महीन बुनाई, हल्के वजन, पारदर्शी बनावट और सुंदर जरी कारी के कारण चंदेरी साड़ी देश विदेश में अपनी विशेष पहचान रखती है।
0: इसे भारतीय वस्त्र कला का एक अनमोल रत्न माना जाता है। चंदेरी नगर का इतिहास 1000 वर्ष से भी अधिक पुराना माना जाता है। ये नगर प्राचीन काल से व्यापार, संस्कृति और कला का महत्वपूर्ण केंद्र रहा है। राजाओं महाराजाओं के संरक्षण में यहाँ की बुनाई कला विकसित हुई। कहा जाता है कि चंदेरी के वस्त्र इतने महीन होते थे कि उन्हें राजघरानों और शाही परिवारों के लिए विशेष रूप से तैयार किया जाता था।
1: और मुगल काल में भी चंदेरी के कपड़ों की काफी मांग थी। उस समय के शासक और अमीर लोग चंदेरी के वस्त्र पहनना प्रतिष्ठा का प्रतीक मानते थे। और चंदेरी साड़ी अपनी विशिष्ट खूबियों के कारण अन्य साड़ियों से अलग पहचान रखती है, जैसे अत्यंत हल्की और आरामदायक होती है, साथ ही महीन धागों से तैयार की जाती है।
0: और इसमें सुनहरी और चांदी जैसी जरी का सुंदर उपयोग किया जाता है। इसकी चमक लंबे समय तक बनी रहती है। पारंपरिक और आधुनिक दोनों प्रकार के डिजाइन्स उपलब्ध होते हैं।
1: और चंदेरी साड़ियों के प्रकार जैसे कि शुद्ध रेशमी चंदेरी

0: पूरी तरह से रेशम से निर्मित होती है साड़ियाँ, साथ ही चंदेरी कॉटन। अब जैसे कुछ लोगों को ना थोड़ी नरम, ज्यादा नरम साड़ियाँ पसंद है, तो वे चंदेरी कॉटन साड़ियाँ पहन सकते हैं, जो सूती धागों से बनी हल्की साड़ी होती है। साथ ही सिल्क कॉटन चंदेरी यानी रेशम और सूती धागों का मिश्रण होता है, और जरीयुक्त चंदेरी जो विशेष अवसरों और विवाह समारोह के लिए लोकप्रिय होती है, यानी जो प्योर जो रेशमी होती है वो थोड़ी महंगी होती है, कॉटन वाली जो चंदेरी होती है वो थोड़ी कम कीमत की होती है, वो हर कोई खरीद सकता है।
1: तो ये बताइए सोनाली जी कि आपके पास कौन सी चंदेरी साड़ी है?
0: मेरे पास सारी चंदेरी है, तीनों चंदेरी साड़ियां
1: क्या बात है, क्या
0: हैं। मुझे
1: बात है।
0: शौक है तो पहनती हूँ, और बहुत सुंदर कलर, इतने चटक रंग होते हैं उसके। और कॉटन चंदेरी में तो ऐसे लाइट पेस्टल कलर्स भी होते हैं, पिंक है, फिर पिस्ता कलर है, और जो प्योर सिल्क की होती है उसमें डार्क कलर होते हैं, उसमें ब्लैक कलर की चंदेरी साड़ी भी बड़ी सुंदर लगती है।
1: क्या बात है। चंदेरी साड़ी की असली पहचान इसके कुशल बुनकरों से है। पीढ़ी दर पीढ़ी अनेक परिवार इस कला को जीवित रखे हुए हैं। अधिकांश बुनकर परिवार बचपन से ही बुनाई की बारीकियां सीखते हैं। पहले चंदेरी साड़ियां पारंपरिक हाथकरघों पर बनाई जाती थी। आज भी अनेक बुनकर हाथकरघों का उपयोग करते हैं, क्योंकि इससे साड़ी की गुणवत्ता और कलात्मकता बनी रहती है। एक उत्कृष्ट चंदेरी साड़ी को तैयार करने में कई दिन, कभी कभी कई सप्ताह तक लग जाते हैं।
0: और बुनकर पहले डिजाइन तैयार करते हैं, फिर धागों से रंगते हैं, उसके बाद बड़ी सावधानी से करघे पर बुनाई करते हैं। साड़ी पर बने प्रत्येक बेल बूटे और जरी के नमूने के पीछे उनकी मेहनत और कौशल छिपी होती है।
1: चंदेरी साड़ी विश्व भर में प्रसिद्ध है, फिर भी बुनकरों को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है।
0: और जैसे
1: मशीनों से बनी सस्ती नकली साड़ियों की बढ़ती प्रतिस्पर्धा, कच्चे माल की बढ़ती कीमतें, युवाओं का अन्य व्यवसायों की ओर आकर्षित होना, पारंपरिक हस्तकला को पर्याप्त आर्थिक लाभ ना मिलना, ऐसे कई कारण हैं।
0: तो चलिए अब क्या करें, अब एक गाना सुन ले।
1: बिल्कुल।
0: तो सुनते हैं गीत।

0: ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर हैं। कार्यक्रम है सखी सहेली।
1: सहेली।
0: और दो सखियां सहेलियां यहाँ पर बैठी हुई है, और घर में तो ढेर सारी अनगिनत सखियां सहेलियां और श्रोता भाई बैठे हुए हैं, और वे भी यही कह रहे हैं कि भाई जो आपने विषय लिया है, घर में लोग चार और खाने के नखरे हजार, ये
1: हजार।
0: हमारी दुखती रग पे हाथ रख दिया है।
1: ओ हो। लगता है हर कोई इसी समस्या से गुजर रहा है।
0: आपने तो दुखती रग पर हाथ रख दिया है। हर घर की यही समस्या है कि क्या बनाए जो सभी को पसंद आए। किसी को लौकी नहीं खाना तो किसी को आलू, लेकिन हमारे घर में नियम है कि हफ्ते में 6 दिन तो वही खाना पड़ेगा जो बना है, छुट्टी वाले दिन उनकी पसंद का खाना बनेगा।
1: बड़ा अच्छा नियम
0: बहुत अच्छी
1: है।
0: बात।
1: पुराने समय में ना भोजन को लेकर लोगों का दृष्टिकोण आज की तुलना में बहुत अलग था ना सोनाली जी।
0: बिल्कुल
1: उस दौर में भोजन को केवल स्वाद का विषय नहीं बल्कि ईश्वर का प्रसाद और जीवन का आधार माना जाता था। घर में भी जो बनता था परिवार के सभी सदस्य उसी को प्रसन्नता से खा लेते थे। ये प्रश्न कम ही उठता था कि आज खाने में क्या बना है या क्या नहीं बना है। लोगों के मन में भोजन के प्रति सम्मान और कृतज्ञता का भाव होता था।
0: और हमारे दादा दादी और पूर्वजों के समय में भोजन के विकल्प भी सीमित थे ना नेहा, कि मौसम के अनुसार जो अनाज है, सब्जियां हैं, फल उपलब्ध होते थे वही भोजन का हिस्सा होते थे। कई बार तो साधारण सी दाल रोटी भाकरी खिचड़ी चटनी के साथ ही पूरा परिवार संतुष्ट हो जाता था। खाने की मेज पर शिकायतों से अधिक अपनापन और बातचीत होती थी।
1: बिल्कुल। और बच्चों को भी बचपन से सिखाया जाता था कि थाली में परोसे गए अन्न का आदर करो और उसे व्यर्थ मत जाने दो। उस समय लोगों ने अभाव और संघर्ष को करीब से देखा था। कई परिवारों ने ऐसे दिन भी देखे थे जब दो समय का भोजन जुटाना तक कठिन होता था। इसलिए जब भोजन सामने आता था तो उसके स्वाद से अधिक उसके उपलब्ध होने की खुशी होती थी। अन्न का एक एक दाना मेहनत और पसीने का परिणाम माना जाता था। खेतों में किसानों की मेहनत, घर की महिलाओं का श्रम और प्रकृति की कृपा, इन सब का सम्मान भोजन के माध्यम से किया जाता था।
0: पर आज परिस्थितियां बदल गई है। आज अनगिनत जो है ना पदार्थ बाजार
1: खाद्य
0: में
1: पदार्थ
0: उपलब्ध है।
1: उपलब्ध है। सच
0: हाँ,
1: कहा आपने।
0: टीवी और सोशल मीडिया पर नए नए व्यंजन देखकर लोगों की और अपेक्षाएं बढ़ जाती है। परिणाम स्वरूप घर में साधारण भोजन बनने पर कई बार नाक भौं सिकोड़ ली जाती है। किसी को सब्जी पसंद नहीं, किसी को दाल फीकी लगती है, तो किसी को रोज का घर का खाना उबाऊ लगता है। वास्तव में पुराने लोगों की संतुष्टि का रहस्य उनकी सादगी और कृतज्ञता में था। वे जानते थे कि भोजन का उद्देश्य केवल जीभ को तृप्त करना नहीं बल्कि शरीर को पोषण देना है, इसलिए खाने में कमियां खोजने के बजाय उसे प्रेम पूर्वक स्वीकारते थे। और एक जरूरी बात है ना नेहा, कि पहले जब तक हमें भूख नहीं लगती थी तब तक हमें खाना दिया ही नहीं जाता था। यानी हम जब तक ना बोले कि अरे बहुत भूख लग गई। आजकल क्या होता है, बच्चों को थोड़ी थोड़ी देर बाद मम्मियां खिलाती है कि खा लो बेटा फ्रूट, खा लो बेटा ड्राई फ्रूट, खा लो नाश्ता कर लो। सुबह एक बार हम लोग खाना खाते थे और शाम को खाना
1: एक
0: खाते
1: बार
0: थे।
1: बिल्कुल सही कहा
0: तो जब हमें
1: आपने।
0: बहुत तेज भूख लगती है ना, उसमें उस वक्त हमें सारा खाना बहुत टेस्टी लगता है, स्वादिष्ट लगता है।
1: आज आवश्यकता है कि हम उस सोच से कुछ सीखें। स्वाद महत्वपूर्ण है लेकिन उससे कहीं ज्यादा अधिक महत्वपूर्ण है भोजन का सम्मान करना। जब हम थाली में

0: का सम्मान करे और अनावश्यक नखरों से बचे, और जो गृहिणी है उसके साथ काम भी करे, उसके हाथ बटाए,
1: हाँ
0: तब पता चलेगा। अभी इतनी चिलचिलाती गर्मी है और किचन
1: गर्मी
0: में जब खाना बनाते हैं थक जाते हैं,
1: में
0: पसीना पसीना हो जाते हैं, उस वक्त किसी ने कहा कि सब्जी अच्छी नहीं बनी
1: अरे बाप रे, दिल की बातें निकल रही हैं सोनाली जी.
0: और जब डोसा बनाते हैं या जैसे थाली पीट बनाते हैं जिसमें बहुत तेज आंच पे बनाना, उस वक्त
1: हाँ
0: तो क्या कहने, पूरे पसीने से नहा कर निकलते
1: हाँ मुझे लगता है इस बात से सारी सखियां और वो सखा जो खुद भी किचन में मदद करते हैं या काम करते हैं वो इससे बिल्कुल सहमत होंगे. एक साथी लिखते हैं, हमारी दो कलियां हैं, दोनों के खाने पीने के बहुत नखरे हैं. आज की बात ले लो, श्रीमती जी पालक टमाटर की सब्जी बनाई किंतु छोटी बिटिया रानी सलाद से रोटी खाई. ये सब्जियां नहीं होना, जैसे कद्दू, बैंगन, गिलकी, लौकी, उनके गले नहीं उतरती. श्रीमती जी तंग हो जाती है इनके खाने के नखरों से. अच्छा, मैं एक सुझाव दूं सोनाली जी,
0: बिल्कुल।
1: मुझे जो मुझे अपना अनुभव लगता है कि जो चीजें अगर बचपन से खिलाई जाए तो हमारे जो टेस्ट बर्ड्स कहते हैं ना, तो हमारी जुबान को उस तरह के सारे टेस्ट की आदत हो जाती है.
0: डेवलप हो जाते
1: हाँ,
0: हैं।
1: वो टेस्ट डेवलप हो जाते हैं. तो अगर हम बच्चों को ये समझकर कुछ चीजें नहीं देंगे कि अरे अभी तो वो छोटा है उसे क्या देना, तो नहीं, वैसा नहीं
0: उसे
1: है.
0: करेला भी दीजिए।
1: हाँ, उसे बचपन से वो सारी चीजें दीजिए, जब वो चीजें खाएगा तभी उसे उसकी आदत होगी.
0: और हम ऐसे कहते हैं ना कि अरे अचार तो उसे तीखा लगेगा, थोड़ा सा उसे वो भी दो।
1: हाँ,
0: हाँ,
1: हर तरह
0: आप
1: की
0: जो
1: चीज
0: खाते
1: थोड़ी
0: हो
1: थोड़ी.
0: सब थोड़ी थोड़ी दो। हाँ, अगर उसने मना किया, बहुत रोया, तो बात अलग है, पर हर चीज को। और हम क्या करते हैं, इधर हम अचार नहीं खिलाते कि उसमें बहुत ज्यादा नमक है, बहुत ज्यादा तेल है, और इधर हम टमाटर सॉस दे देते हैं बच्चों को, तो बच्चे फिर टमाटर सॉस खाने के आदी हो जाते हैं, जबकि हमारे जो अचार होते हैं वो भी बहुत अच्छे होते हैं सेहत के लिए, और स्वाद
1: बिल्कुल.
0: कितना बढ़ाते हैं। और अब कार्यक्रम में स्वाद बढ़ेगा जब एक गाना सुनेंगे
1: बिल्कुल, सुनवाइए और बढ़ाइए
0: सुनते हैं।
1: स्वाद.

गतित रहा लिए रंग सब सखा संग मन में उमंग गतित मंग था खेलत भुज मेलत लपट झपट राधा ललिता चंदा बलि दियो बोर रंग घोर सर बोर बनवारी मैं हारी जा जारी मैं हारी जा जारी मैं

0: एक हमारे साथी ने कहा कि मैं तो भाई आज तक खाने की नखरे नहीं की, जो भी घर में बनता हूँ चुपचाप खा लेता हूँ। कितने अच्छे हैं ना, कितने
1: बहुत अच्छी
0: समझदार
1: बात है,
0: इंसान है।
1: ऐसे लोग घर में होना
0: हाँ, तो
1: चाहिए।
0: घर की जो गृहणियां हैं वो बड़ी खुश होगी, है ना।
1: हाँ, अब एक साथी ने ये भी लिखा है, भाई इस नखरे को संवाद की मधुरता के माध्यम से दूर किया जा सकता है, फिर इसके लिए आपसी समझ और सूझबूझ की भी जरूरत होती है, क्योंकि संवाद में त्रुटि होने पर उनमें से कोई भी नाराज हो सकता है, क्योंकि ये एक के स्वाद का महत्वपूर्ण संयोजन है। सेहत के लिए आगे अक्सर ही स्वाद को ही तरजीह देते हैं, इसलिए सावधानी पूर्वक संवाद के माध्यम से समस्या का हल करना अपेक्षित है। देखा इन्होंने कैसे स्वाद से जोड़
0: संवाद को।
1: दिया। हाँ, वही।
0: एक श्रोता ने लिखा है कि भाई छोटे छोटे बच्चे जो है, इन्हें भी स्वास्थ्य संबंधी बहुत सारी तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है। पहले हम ऐसे देखते थे कि 60 साल की उम्र के बाद या 50 या 70 साल की उम्र के बाद में लोगों को हार्ट संबंधी तकलीफें हैं, पर आजकल छोटे छोटे बच्चे भी परेशान हो रहे हैं। उसके पीछे है पैक्ड फूड। जो पैक्ड फूड होता है वो भले ही स्वादिष्ट हो, पर उसमें जो ऐसी चीजें मिली हुई होती है।
1: पूरी तरह से पाम ऑयल होता है
0: जी
1: सोनाली जी, सच में मैं भी यही कहूंगी कि पैक्ड फूड तो बिल्कुल नहीं खाना चाहिए।
0: पर ये बच्चों को समझाए कौन, उन्हें समझाना बड़ा मुश्किल होता है ना।
1: तो जरूरत यह है कि धीरे धीरे, पहली बात तो आप कोशिश करें कि उन्हें ये आदत ही ना लगे पैक्ड फूड खाने की,
0: बिल्कुल।
1: क्योंकि ये ऐसी चीजें हैं जिनमें कुछ ऐसे तत्व मिले होते हैं जो हमें और उसी चीज की भूख बढ़ाते हैं। उदाहरण के लिए अगर हमने कोई चिप्स खाया तो हमें वही और खाने का मन करेगा, तो ऐसे तत्व मिले होते हैं, इसलिए ऐसी।
0: अभी मैं ट्रेन में सफर कर रही थी कुछ दिन पहले, तो माँ के हाथ में घर के तले हुए चिप्स थे, पर वो बच्ची जो रास्ते से जो बेचने वाला पैकेट वाले चिप्स जो थे उसी की तरह उंगली कर रही थी, और बोल रही थी कि नहीं ये नहीं खाऊंगी, मैं वही खाऊंगी, क्योंकि घर के चिप्स जो होते सिर्फ नमक डाला होता है उसमें, और
1: सादे होते
0: उसमें
1: हैं।
0: टमाटर फ्लेवर है, फिर चीज फ्लेवर है, फिर और सारे ना जाने उसमें फ्लेवर डाले होते हैं जो बच्चों को बहुत स्वाद को उन्हें पसंद आता है बच्चों को।
1: सोनाली जी, मैं एक ही बात कहूंगी कि बच्चों को वो स्वाद तभी पता चलेगा जब
0: जब
1: आप
0: हम
1: उन्हें
0: देंगे,
1: चखाएंगे।
0: बिल्कुल।
1: अगर आप उन्हें ऐसी चीजें चखा ही नहीं रहे तो उन्हें पता ही नहीं चलेगा
0: चलेगा।
1: कि ये चीजें कैसी लगती हैं। तो
0: तो ये
1: जैसे
0: थोड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि दिखेगा तो बच्चे जिद करेंगे,
1: हाँ,
0: और
1: ये तो
0: दो सहेली
1: है।
0: ने खा लिया, दोस्त ने खा लिया, उसने इतना सा टुकड़ा दिया तो बोलेंगे वही चाहिए हमको, तो बच्चों की जिद के आगे तो माँ और पिताजी तो हतबल हो जाते हैं। वैसे एक हमारे साथी ने कहा है कि किसी को गर्म रोटी चाहिए, किसी को कुरकुरी, किसी को मीठा तो किसी को चटपटा। घर की रसोई भी रोज सोचती होगी आखिर सबका दिल एक साथ कैसे जीतूं, घर में 4 लोग और खाने को लेकर होंगे नखरे, ऐसे भला भी कहीं हो सकता है। छोटी छोटी फरमाइशें तो घर घर को घर बनाती है। घर के नखरे भले ही हजारों, लेकिन जब माँ के हाथ का खाना सामने आ जाए बड़े बड़े नखरे भी चुपचाप थाली में बैठ जाते हैं। क्या बात है।
1: बड़ी प्यारी बात लिखी है।
0: और एक साथी लिखती है, तो हर घर की समस्या है, घर में लोग 4, खाने के नखरे 1,000, पूछे मत। मेरे घर में दोनों बच्चे हैं, दोनों को एक दूसरे के विपरीत है, एक को मीठा तो दूसरे को नमकीन। अब हम गृहणियों को
1: ओहो।
0: बड़े ध्यान से खाना बनाना पड़ता है कि क्या करें, यही जीवन है। एक लिखते कि मेरे और मेरे बच्चों के खाने की कोई नखरे नहीं है, जो सब्जी दाल पूरा खाना शांति से खा लेते हैं, कभी कभार तीज त्योहार पर कुछ स्पेशल बन जाता है तो सब खुश हो जाते हैं। क्या बात है, बहुत नसीब वाले हैं।
1: हाँ, सच में। एक साथी ने लिखा है कि एक अच्छा, मतलब उनका ये कहना है कि जब हम घर में बचपन से सिखाएंगे लोगों को, कि बच्चों को कि किस तरह से चीजें खानी है और थाली में दिया हुआ अन्न नहीं छोड़ना है, तो धीरे धीरे उनकी आदत वैसी ही बनेगी और वो सीख जाएंगे, आदत लग जाएगी तो सीख जाएंगे। तो बिल्कुल सही कहा है।
0: तो यानी आदत लगाने के लिए संवाद की जरूरत है नेहा। जब हम बातचीत करेंगे, एक दूसरे से संवाद रखेंगे, तो भी तो पता चलेगा, तभी तो हम बच्चों को समझाएंगे। नहीं तो बच्चा मोबाइल में उलझा हुआ है और मम्मा भी मोबाइल में उलझी हुई है, तो मम्मा को लगेगा कि चलो ठीक है रख दिया उसके सामने तो कुछ खा ले। ऐसा नहीं, बच्चों को भी अच्छी अच्छी बातें संवाद के माध्यम से समझाई जा सकती है। एक साथ ही लिखते हैं, एक अच्छा और प्रभावी संवाद वो है जो सामने वाले को आसानी से समझ में आए और बातचीत को आगे बढ़ाए। संवाद की प्रभावशीलता और उसकी सरलता, स्पष्टता और सम्मानजनक भाव पर निर्भर करती है।

0: संवाद में ऐसे शब्दों और वाक्यों का प्रयोग करना चाहिए जो समझने में आसान हो। जटिल या भारी भरकम शब्दों से बचना चाहिए। बातचीत बनावटी नहीं लगनी चाहिए। जिस तरह से हम सामान्य जीवन में बातें करते हैं, संवाद बिल्कुल वैसा ही होना चाहिए।
1: बिल्कुल सही कहा कि कभी कभी ये हो जाता है कि हम लोग बनावटी हो जाते हैं। मैं ये कहूंगी कि हर व्यक्ति कभी ना कभी बनावटी हो जाता है। उसे लगता है कि शायद उस परिस्थिति में वही सही है। हो सकता है कि किसी परिस्थिति में थोड़ा बनावटी होना सही हो, मगर हमारे रोज के संवाद, हमारे घर पर जो संवाद है, उनमें हमेशा सत्यता होनी चाहिए ताकि हमारे रिश्तों में सत्यता बनी रहे। एक साथी लिखते हैं, आपसी संबंधों को मजबूत, गहरा और भरोसेमंद बनाने के लिए प्रभावी संवाद कौशल सबसे बड़ा माध्यम है। रिश्तों में अक्सर दूरियां बातचीत की कमी या गलत तरीके से बात करने की वजह से आती हैं। दिन में कुछ समय आपसी संवाद के लिए होना चाहिए। उस वक्त मोबाइल या कोई गैजेट्स बीच में नहीं होना चाहिए। साथ ही बातचीत में आदर, विनम्रता और सकारात्मक व्यवहार झलकना चाहिए। सोनाली जी, अभी तो ऐसा हो गया है कि जब घर के चार लोग भी अगर साथ में बैठे हैं, हर कोई अपना फोन लेकर बैठ जाता है, और कभी-कभी तो ये हो जाता है कि वहीं पे मैसेज में बात कर लेते हैं लोग, कि अगर एक कमरे में और दूसरे कमरे में है तो मैसेज में बात कर लेते हैं कि अरे वो उस कमरे में ये रखा है क्या, वहां से देख लो,
0: या
1: ये
0: फिर
1: कर लो।
0: खाना तैयार है कि नहीं,
1: नहीं,
0: हम आए क्या
1: हाँ,
0: डाइनिंग टेबल पे, इस तरह से। यानी मदद करना तो बहुत दूर की बात है, बस पूछ लिया। और वो गृहणियां हैं जो वो भी मैसेज में लिख देती है कि हाँ हाँ खाना रेडी है, आ जाइए।
1: तो ऐसी चीजें अवॉइड करें और कोशिश करें कि आप संवाद साझा करें।
0: और आप क्या करें?
1: गाना सुन लेते हैं, संवादों के बीच में थोड़ा ब्रेक भी जरूरी है।
0: तो चलिए गाना सुनते हैं।

0: तो सोनाली जी, अभी तो हमने बातें कर ली कि कितने सारे नखरे करते हैं लोग खाना खाने में, और घर में लोग चार और व्यंजन हजार, और अब हम ही बात करने वाले हैं कि किस तरह से हम बचा सकते हैं नखरे करने से व्यंजनों को अलग तरीके से बना के। मतलब सब्जी तो वही होगी रोज वाली, मगर कुछ अलग तरीके से बनाएंगे ताकि किसी को बोर ना लगे, अंदाज नया रहे और मजा भी आए।
1: तो बताइए।
0: तो देखिए, सबसे पहले हमारे पास जो रेसिपी आई है वो आई है सब्जी वही अंदाज नया, परवल पोश्तो सब्जी। ये सब्जी इन्होंने लिखा है, ये सब्जी बहुत स्वादिष्ट होती है, मैंने इसे अपनी बंगाली मित्र से सीखा है। इसके लिए सामग्री है परवल 250 ग्राम छील कर लंबाई में कटे हुए, खसखस 3 बड़े चम्मच, हरी मिर्च और अदरक 2 चम्मच कूटा हुआ, पंच फोड़न सूखी लाल मिर्च 1 या 2, हल्दी आधी छोटा चम्मच, नमक स्वादानुसार, करीब आधा चम्मच शक्कर और सरसों का तेल। बनाने की विधि, खसखस को 1-2 घंटे पानी में भिगोकर पेस्ट बना ले। कढ़ाई में थोड़ा सा सरसों का तेल, थोड़ा सा नमक और हल्दी डालकर परवल को तब तक तलें जब तक वो सुनहरे भूरे ना हो जाएं। तले हुए परवल को अलग निकाल लें, बचे हुए तेल में पंच फोड़न और सूखी लाल मिर्च का तड़का लगाएं। अब तैयार किया हुआ खसखस का पेस्ट, कूटा अदरक, हरी मिर्च डालें, इसमें थोड़ा सा नमक और चीनी मिलाएं। धीमी आंच पर मसाले को तब तक भुने जब तक खसखस का कच्चापन दूर ना हो जाए और उसमें से सौंधी खुशबू ना आने लगे। अब इसमें तले परवल डालें और ढककर 8 से 10 मिनट पकाएं। ऊपर से एक छोटा सा चम्मच कच्चा सरसों का तेल और 2 कटी हुई हरी मिर्च डालें। अब गर्मा गर्म सब्जी चावल या रोटी के साथ परोसें।
1: अभी तो परवल कितनी आ रही है ना बाजार में, तो मैं तो ट्राई करूंगी। नेहा, क्या आप ट्राई करूंगी ये सब्जी?
0: बिल्कुल, सुनने के बाद तो लग रहा है कि ये कुछ नया ट्राई करना
1: बहुत टेस्टी हो गया ना। एक
0: चाहिए।
1: हमारे साथी ने लिखा है, सिंधी साई भाजी, पालक की सब्जी के साथ चने की दाल, 500 ग्राम ताजी हरी पालक धोकर बारीक कटी हुई, भीगी हुई चने की दाल करीब 200 ग्राम, प्याज टमाटर हरी मिर्च अदरक कटी हुई, प्रेशर कुकर में तेल डालकर प्याज को हल्का गुलाबी करके सारी सामग्री डालकर हल्दी, पिसा हुआ धनिया और नमक स्वाद अनुसार डालकर सीटी लगा लेना है, फिर कलची से घुमाकर लहसुन का तड़का लगाना है। सिंधी साई भाजी तैयार है, पुलाव के साथ परोसने से स्वाद दुगना हो जाता है।
0: क्या बात है। एक साथी ने लिखा है, अरबी ये प्याज की ग्रेवी के साथ भी बहुत अच्छी बनती है, और ये सरसों के मसाले के साथ सूखी सब्जी भी बहुत स्वादिष्ट बनती है।
1: और साथी ने लिखा कि बैगन बड़ी आप कोई भी ले सकते हैं, मूंग या चना उड़द जो आपको पसंद है, बैगन को काट कर नमक वाले पानी में डाल दे, बैगन को बड़ी को गर्म तेल में तल ले और भून कर इसे भी नमक वाले पानी में डाल दे, मसाले में धनिया पाउडर, जीरा, लहसुन, हल्दी इन सभी को पीस ले और कढ़ाई में तेल डाले, 5 फोड़न का तड़का दे, बैगन को भून कर निकाले, अब मसाले में कटे टमाटर को भी भून ले, अब इसमें भुने हुए बैगन डालकर उलट पलट कर ले, पानी में भीगे हुए बड़ी भी इसमें डाल दे, थोड़ा पानी डाल दे और उसमें धीमी आंच तक पकने दे, इसमें ग्रेवी नहीं रहती। बिहार के हर शुभ कार्य में, फंक्शन में बैगन बड़ी की सब्जियां जरूर बनती है, पूरी रोटी चावल के साथ बहुत अच्छी लगती है। इस सब्जी में मसाले की मात्रा अधिक नहीं रहती, मिर्च लहसुन हल्दी और थोड़ा बहुत धनिया और जीरा पाउडर डालते हैं। तो इन्हें बड़ी यानी मूंग बड़ी जो अभी गर्मियों में बनती है ना, हर घर में कुछ चने दाल की बनाते हैं, कुछ मूंग की दाल की बनाते हैं, और आप क्या करें।
0: गीत सुने
1: तो सुनते हैं गीत।

0: सोनाली जी, एक श्रोता ने बड़ी मजेदार बात कही है। उन्होंने लिखा है, कोई भी सब्जी हो, काट कर धोकर जितना तेल रोज डालते हो उससे आधा कुकर में डालकर तेल गरम करके जो भी कटी सब्जी है डालकर स्वादानुसार मिर्च मसाले टमाटर प्याज लहसुन डालकर ढक्कन लगाकर सीटी लगाकर उतार कर रखें। स्वादिष्ट सब्जी बनेगी, तेल गैस की बचत भी कम, मतलब कम लगेगा ये सब, और काम भी जल्दी हो जाएगा। और साथ में उन्होंने इंस्ट्रक्शन भी दे दिया है कि शाम से ही एक्सपेरिमेंट करें। तो
1: यानी
0: जी, अब आप
1: कार्यक्रम सुनते ही आपने करना है। बस कुकर में जब सब्जी बनाते हैं ना, तो उसमें थोड़ा ध्यान रखना, उसमें पानी बहुत ज्यादा नहीं डालना है, नहीं तो बहुत ज्यादा बहने लगेगी वो थाली में। तो उसका हमें, क्योंकि जब कढ़ाई में डालते हैं तो पानी सूख जाता है, वो कुकर का ढक्कन बंद होता है तो वो पानी नहीं सूख
0: सूखता
1: पाता है।
0: नहीं है।
1: अब हमारी बातचीत को यही देना पड़ेगा विराम, और सभी से लेते हैं इजाजत। आप सभी को सोनाली पाठक
0: और नेहा अगरकर देसाई का
1: नमस्कार।
0: नमस्कार।

0: आज के मेहमान इस कार्यक्रम में हम आपको सुनवा रहे हैं जाने माने लेखक और पत्रकार प्रताप सोमवंशी से ममता सिंह की बातचीत।
1: नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपकी रेडियो सखी ममता सिंह और आज विविध भारती के स्टूडियो में हमने आमंत्रित किया है हिंदुस्तान हिंदी दैनिक पत्र के प्रबंध संपादक कवि और लेखक प्रताप सोमवंशी जी को। प्रताप जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है विविध भारती के स्टूडियो में। नमस्कार।
2: नमस्कार ममता जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका विविध भारती के इस शो में मुझे आमंत्रित करने के लिए।
1: जी बताइए, आपका रेडियो से विविध भारती से कैसा नाता रहा है?
2: देखिए, रेडियो से और विविध भारती से हम जिस पीढ़ी के हैं, उस पीढ़ी में दो पहचान होती थी। कोई अगर लिखता है या बोलता है तो एक पहचान उसकी ये होती थी कि क्या रेडियो से उसकी आवाज आई,
1: रेडियो की तरफ
2: और
1: बोल रहा
2: हूं। दूसरी पहचान ये होती थी कि क्या कहीं उसकी कोई कविता कहानी छपी। तो मैं इलाहाबाद शहर से आता हूँ, तो रेडियो में पहले दिन दाखिल हुआ तो कुछ युवाणी में कविताएं पढ़ने के लिए, तो वहां से एक रिश्ता बना। फिर एक लंबे समय मैं इलाहाबाद केंद्र जाता रहा, फिर दिल्ली रहा, दिल्ली जाता रहा, फिर जिन जिन शहरों में मैं रहा, पदस्थ रहा, उन उन शहरों के केंद्रों में कम बार जाना हुआ चूंकि अखबारों की व्यस्तता के कारण, लेकिन एक लगाव, एक रिश्ता बना रहा।
1: जी, रेडियो से और आकाशवाणी से और विविध भारती से रिश्ता है ही जन्म-जन्म।
2: विविध भारती के श्रोता के तौर पे मेरा जो है अगाध, मतलब आप कहें तो अगर मैं 60 के होने के करीब आ रहा हूँ तो मतलब ये 50 साल की स्मृतियां हैं, पूरा गोल्डन जुबली
1: विविध भारती से
2: की स्मृतियां हैं मेरे
1: जी
2: पास।
1: जी तो विविध भारती के बहुत सारे पुराने प्रोग्राम अभी भी प्रसारित होते हैं, जैसे कि छाया गीत है, हवा महल है, जयमाला, तो ये सब तो आप सुनते ही रहेंगे
2: जी।
1: तो प्रताप जी, हम आपकी लेखन की यात्रा पे नजर डालते हैं। बताइए, ये कवि बनने का जो सफर होता है, आपकी शुरुआत कैसे हुई, कविता लिखने का हुनर कहाँ से आया आपके पास?
2: देखिए, कविता लिखने से ये था कि हमारे समय में हमें जो छपे हुए शब्द थे, जो कहते थे शब्द ब्रह्म होते हैं,
1: जी,
2: तो हमें छपे हुए शब्द और उसमें छपा हुआ नाम, मुझे व्यक्तिगत तौर पे बचपन से ईश्वर की तरह लगता था।
1: जी,
2: तो जैसे उसमें नाम छपा है राम कुमार वर्मा, उनकी एकांकी हमने कक्षा 6 में पढ़ी
1: जी,
2: तो मैं इलाहाबाद में बंद रोड की जगह है जहां उनके किनारे उनका घर था, तो जब मैं साइकिल से उधर से गुजरता था तो मैं उनके गेट के बाहर खड़ा होकर इंतजार करता था कि वो निकले, एक झलक मैं देख लूं, जैसे मुंबई में लोग फिल्म स्टार के लिए खड़े होते हैं।
1: जी जी जी
2: और ये मेरे पास सौभाग्य रहा कि 1988-89 में एक कार्यशाला में मैं उनके साथ रहा, तो मैंने उनको बताया कि ऐसा भी होता था कि मैं वहां खड़ा होता था और मैं आपको देखता था, जो आपको मैं देख लेता था तो मैं दूर से प्रणाम करके एकदम एकलव्य की भांति मैं वहां से चला जाता था।
1: क्या बात है।
2: तो एक ये जो छपे हुए शब्द की महत्ता है, उसके जो सर्जक हैं उनके प्रति आदर है, इससे एक वो भाव आता है। दूसरा ये कि मैं जहां मोहल्ले में इलाहाबाद में रहता था तो क्या होता था कि पीछे देखो तो वहां से देखते तो निराला जी रहते थे,
1: अरे वाह,
2: आगे देखो
1: हाँ,
2: तो रघुपति साहब फिराक रहते थे,
1: गजब,
2: दाएं देखो तो अकबर इलाहाबादी रहते थे, बाएं देखो तो सीवाई चिंतामणि जैसा पत्रकार था, तो या उनके नाम की सड़क भी थी सीवाई चिंतामणि रोड। तो ये लोग हमारे समय में उपस्थित नहीं थे, लेकिन इनका जो सोल है, इनके जो शब्द हैं, इनकी जो रचनाएं हैं, इनके जो किस्से हैं, वो सब इलाहाबाद के हवा में घुले हुए थे। तो हमारे पास क्या था कि संस्कार की, सृजन के संस्कार की इतनी बड़ी विरासत थी कि हम को लगता था कि हम अगर कुछ भी लिख पाए, कुछ भी कर पाए, तो एक अघोषित ट्रिब्यूट होगा अपने उन लोगों के लिए, और दूसरा हमको लगता था कि ये बहुत पवित्र काम है जो इतने लोगों ने किया, और डिफरेंट

0: कि एक आदमी अखबार में काम कर रहा है सिवाय चिंतामणि, और उसकी इकोनॉमिक्स की किताब ऑक्सफोर्ड में पढ़ाई जा रही है।
1: जी।
0: एक आदमी है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जो राजेंद्र प्रसाद प्रथम राष्ट्रपति से मिलने से मना कर देता है। एक आदमी है फिराक गोरखपुरी, जो नेहरू को भी उत्तर दे देता है।
1: जी।
0: अकबर इलाहाबादी, जो अंग्रेजों के समय में इतने तंज करते हैं। तो यानी एक जो किशोर मन, एक जो युवा मन में जो प्रतिरोध के भीतर शक्ति होती है, वो प्रतिरोध की शक्ति मुझे लगता था और कोई जरिया ही नहीं है। सिर्फ लिख के ही हम अपने प्रतिरोध को शक्ति दे सकते हैं और प्रतिरोध को स्वर दे सकते हैं।
1: जी।
0: तो शायद ये मैं आज बता रहा हूं, उस वक्त जब मैं 15-16 साल का था या 10 साल का था, तब तो मैं ऐसा नहीं सोच सकता था।
1: जी।
0: लेकिन बाद में मैंने जब इसको सोचा पाया कि कोई भी लिखता है और लिखने का अगर उसके परिवेश का उसके लिखने पे असर होता है, तो वो परिवेश का असर क्या होता है? एक असर होता है परिवार का। तो मेरे
1: जी जी
0: परिवार में लिखने वाला कोई नहीं था।
1: अच्छा।
0: मैं टिपिकल, जैसे कहते हैं कि ठाकुरों का परिवार, तो हमारे यहाँ लिखने की तो बात ही छोड़ दीजिए, तो इवन लिखने के प्रति कोई आदर भी नहीं था। लिखने को कोई काम भी नहीं माना जाता था,
1: वैचारिकता से कोई दूर दूर तक
0: कोई दूर
1: संबंध
0: दूर
1: नहीं
0: से
1: होता है। जी
0: रिश्ता नहीं था। तो लेकिन ये है कि अगर आपके परिवार में नहीं है, तब भी जो समाज का संस्कार है और जो परिवेश का संस्कार है, वो भी चीजें गढ़ता है। तो वो उसी गढ़न का परिणाम मैं हूं।
1: जी। क्या बात है, बड़ी बढ़िया बात बताई। और ये बड़ी बात है कि परिवार में कोई नहीं है, कोई आपके वरिष्ठ नहीं है, और समाज को देख देख कर आपके अंदर विचार आपने गढ़े और कविता के चित्र उकेरे। तो कोई कविता याद है उन दिनों की आपको?
0: पहले तो मैंने कहानी लिखी, और कहानी ऐसे ही चंपक नंदन पढ़ते हुए 4-5 में रहा हूंगा, तो मैंने एक कहानी लिख दी, परी के वरदान।
1: जी।
0: 2.5 पेज की कहानी थी, क्या बनी होगी। मैंने उसको जब 8 में पहुंचा, तो मैंने उसको छपने के लिए भेजी। सर्वेश्वर दयाल सक्सेना पराग के संपादक थे। मैंने उनको 3 पेज की चिट्ठी लिखी, 2.5 पेज की कहानी
1: 3 पेज
0: और
1: की
0: तीन पेज
1: चिट्ठी
0: की चिट्ठी।
1: सर्वेश्वर जी के
0: और हाँ,
1: पास।
0: उनको लिखा कि आप इसे छाप दीजिएगा, मेरे पिताजी बहुत नाराज रहते हैं, और जब आप छाप देंगे तो मैं छपी हुई किताब उनको दिखाऊंगा पत्रिका, तो वो इससे प्रसन्न हो जाएंगे, मुझे आगे लिखने के लिए देंगे। आपका क्या जाएगा, मेरा तो फायदा हो जाएगा, और ये इसके पैसे आप मत दीजिएगा।
1: लिख
0: और जो जो मेरे दिमाग में आया मैंने सब लिख
1: डाला।
0: दिया। सर्वेश्वर जी का पत्र आया, वो पहला पत्र था जो पत्र 14-13 साल के बच्चे के नाम से आया। वरना मेरे घर में जितने पत्र आते थे, वो मेरी माँ के नाम से आते थे, या मेरे पिता के नाम से आते थे, मेरे दादा के नाम से आते थे। लिफाफे पे लिखा हुआ नाम, पहला नाम मेरा, मेरा सर्टिफिकेट का नेम था शिव प्रताप सिंह, तो शिव प्रताप सिंह केयर ऑफ श्री राम लखन सिंह, मेरा पता। तो मेरे पिताजी ने चिट्ठी ली, बोला तेरी चिट्ठी क्या आई? तो मैंने कहा कहानी है, बोला छपी है? मैंने कहा नहीं, लौटाई। बोला कि तू कहता हूँ फालतू काम मत करो। तो उन्होंने वो चिट्ठी मुझे पास ऐसे ही दे दी। तो मैंने खोला, तो उसमें सर्वेश्वर जी का एक पत्र था हस्तलिखित। उन्होंने लिखा कि तुम्हारी कहानी में कहानी जैसा कुछ भी नहीं है, तो मैं इसे नहीं छाप सकता, लेकिन तुमने
1: प्रयास
0: इतनी कम
1: किया।
0: कक्षा में तुम पढ़ते थे, और तुमने तब और अब मिला के 5.5 पेज का गद्य लिखा, इससे मैं प्रभावित हुआ। तो तुम भविष्य में कुछ लिख सकोगे, ऐसी मुझे पूरी उम्मीद है।
1: क्या बात है।
0: तुम इलाहाबाद में हो, मैं वहां रहा हूं, तो वहां के पानी में कुछ ऐसा है, तो वो पानी तुमको लगे, ये मेरा आशीष है। और कभी मैं तुम्हारी कहानी छाप पाऊं तो मुझे खुशी होगी। और 2-3 साल 4 साल पढ़ो, और पढ़ने के बाद जब तुम कहानी लिखना, तो जब मुझे भेजना, तो मुझे जरूर लिखना कि मैं वो लड़का हूं जिसने 3 पेज की चिट्ठी लिखी थी।
1: क्या बात
0: तो
1: है।
0: वो दुर्भाग्य था कि मैंने उसके बाद जब कहानी लिखी बहुत बरस बाद, तब मैं उनको भेजने की स्थिति में नहीं रहा, चूंकि वो दुनिया से जा चुके थे। लेकिन आप सोचिए कि एक इनकार का पत्र कैसे शक्ति देता है।
1: बिल्कुल।
0: इनकार की एक भाषा होती है, वो भी आपको ऊर्जा देती है। तो इनकार का पत्र, इनकार की भाषा, वो भी कैसे संस्कार बनती है, वो भी कैसे सृजन यात्रा में आपके साथ होती है। और वो मुझे लगता है कि मेरे जीवन की पहली सफलता के तौर पे सर्वेश्वर जी का वो पत्र था।
1: जी, क्या बात है। हमारे श्रोता सुन रहे हैं तो उन्हें भी प्रेरणा मिलेगी। जिन बच्चों के भीतर कहीं भी थोड़ा लिखने का बीज है, तो उस बीज को पुष्पित पल्लवित होने

0: दे पनपने दे, उसे रोके नहीं, चाहे वो जैसा भी नकारात्मक उसका प्रतिक्रिया उसकी मिले या सकारात्मक। क्योंकि बहुत सारे घरों में ऐसा होता है कि अभी ये सब लिखने पढ़ने पर ध्यान मत दो, अपना कुछ और करो, करियर की ओर, करियर की ओर।
1: नहीं, मेरे पिताजी तो बाकायदा, वो एक इलाहाबाद आकाशवाणी के केंद्र से मेरा लिखा एक नाटक था, लघु नाटिका थी, जिस जमाने में वो ब्रॉडकास्ट हुई तो वो उसे सुन रहे थे, और जब सुन रहे थे, जब वो नाटक खत्म हुआ, आया कि इस लघु नाटिका के लेखक थे प्रताप सोमवंशी, और ये आकाशवाणी के इलाहाबाद केंद्र की
0: के
1: प्रस्तुति थी,
0: प्रस्तुति से
1: तो मुझसे कह रहे हैं तुमने किसी का नाम चुरा लिया है क्या? तो मैंने कहा कि नहीं, तो बोला ये नाम, मैंने कहा मैंने अपने नाम को इस तरह से चेंज किया है। बोला अच्छा, चोरी मत करना, उस पर कानूनी कार्रवाई होती है। किस बोले अच्छा ये बताओ, ये तुमने किसी का लिखा चुरा लिया है क्या? तो मैंने कहा नहीं नहीं लिखा भी नहीं चुराया है, ये मेरा ही लिखा है। तब भी उनको उस दिन यकीन नहीं आया। उनको जब रेडियो से 150 रुपए का मनी ऑर्डर आया, तो मनी ऑर्डर भी उन्होंने रिसीव किया, तो उस दिन उनको कुछ कुछ भरोसा हुआ, लेकिन उन्होंने प्रसन्नता जाहिर करते हुए ये कहा कि जो भी लिखना अपना लिखना, चुरा के मत लिखना, नहीं पकड़े जाओगे तो तुम्हारे खिलाफ जाएंगी चीजें। तो मैं कह रहा हूं कि अभिभावक को, वो मेरे शत्रु नहीं थे, मेरे पिता थे, बड़ी उन्होंने मुझे शक्ति दी, उनके जीवन की बहुत सारी चीजें हैं जिन्होंने मुझे ऊर्जा दी, या आज जो मैं गढ़ा बना बैठा हूं उसमें उनकी बहुत महती भूमिका है। लेकिन उनके पास एक मध्यवर्गीय परिवार के पिता, इनके मन में ये भय था कि लिखने पढ़ने का काम करने लगेगा, कोई नौकरी नहीं करेगा, कुछ काम नहीं करेगा, तो कैसे जीवन चलेगा
0: आजीविका कैसे चलेगी, सबसे बड़ी
1: चलेगी।
0: सोच।
1: तो ये आजीविका के भय में, चीजों के भय में, अब तो अभिभावक उस तरह से व्यवहार नहीं करते हैं, लेकिन अगर कहीं करते हों और आपके इस माध्यम से लोग सुन रहे हों,
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: तो बस मेरी भी जैसे आपने कहा यही उनसे अनुरोध है कि आप उसके लिए स्पेस दीजिए, उसको जगह दीजिए। वो महान लेखक नहीं बनेगा, लेकिन एक बेहतर इंसान बनेगा।
0: जी
1: सृजन कम से कम आपको एक बेहतर इंसान बनाती है, और वो पता नहीं क्या बने, हो सकता है जैसे अभी आप बता रही थी, वो संसार का सबसे अच्छा बांसुरी वादक बन जाए, अपने को एक्सप्रेस करते करते
0: जी जी
1: वो एक गवैया बन जाए।
0: बिल्कुल बिल्कुल। तो
1: लेकिन उसके सृजन यात्रा अगर जारी रह सके तो बहुत अच्छी बात है।
0: जी, तो सृजन को रोकना नहीं चाहिए। यहाँ हम अपने श्रोताओं को बता दें कि हम जिनसे बात कर रहे हैं, प्रताप सोमवंशी उनका नाम है, और हिंदुस्तान हिंदी दैनिक पत्र के प्रबंध संपादक हैं, एक जाने माने प्रखर पत्रकार हैं, कवि हैं और लेखक हैं। तो लिखने की शुरुआत कैसे हुई ये इन्होंने बताया। खास तौर से उनका नाम हम यहाँ पर इसलिए बताना चाह रहे हैं कि हमें पता नहीं होता है कि किसके भीतर वो बीज किस तरह से एक वृक्ष का रूप लेगा जो छाया देगा। तो पत्रकारिता जगत में आप एक वृक्ष की तरह हैं प्रताप जी, और लोग आपको यही कहते हैं, और साहित्य के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, चाहे साहित्य उत्सव हो, चाहे और भी आजकल साहित्यिक जो कार्यक्रम हो रहे हैं उसमें बढ़ चढ़ कर आपका सहभाग होता है, उसमें आप मुखिया की तरह काम करते हैं। यहाँ हम आपसे जानना चाहते हैं कि ये कविता का बीज कैसे पड़ा, ये तो आपने बता दिया, सब नकारात्मक बातों से आपके बीज रोपे गए और एक वृक्ष की।
1: 3 लाइनों में बात कहता हूं कि मेरी पहली कहानी छपी नहीं, मेरी जो रचना छपी उसका पेमेंट आया और मुझे मिला नहीं।
0: अच्छा।
1: पहली नौकरी जब मैं अखबार में ढूंढने गया तो मुझे मिली नहीं, तब तक वो जगह भर गई थी। तो मतलब नकारात्मक जो ऋण ऊर्जा है वो मेरे पास शुरू से आती रही। जो छपा मेरा वो मधु मुस्कान नाम की एक पत्रिका आती थी, तो उसमें एक कहानी छपी, मुझे लगा कि नाम कुछ फैंसी सा होना चाहिए, तो मैंने अपना नाम लिख दिया शिवा मयंक, और शिवा
0: अच्छा।
1: मयंक केयर ऑफ शिव प्रताप सिंह और इलाहाबाद का अपना पता। तो वो कहानी छप गई, तो उसका 50 रुपए, एक पेज की कहानी थी छोटी सी, तो उसका 50 रुपए का मनी ऑर्डर आया। तो उसने कहा कि शिवा मयंक कौन है जो पोस्टमैन है? मैंने कहा मैं हूं। तो बोला आई कार्ड लाओ, तो मैं आई कार्ड लाया तो उसमें शिव प्रताप सिंह था। बोला तुम कौन हो? मैंने कहा मैं शिव प्रताप सिंह हूँ। बोला अच्छा तुम केयर ऑफ हो? मैंने कहा हाँ। तो बोला ये ऊपर वाला कौन है? मैंने कहा वो भी मैं हूं। बोला तो ये तो नहीं चलेगा, या तो तुम उर्फ लिखते शिव प्रताप सिंह उर्फ प्रताप ये शिवा मयंक, वरना ये नियम से तो ये आदमी अलग है, ये दो आदमियों का पता है, तो मैं तुमको पैसा दूंगा नहीं। तो मैंने उससे कहा भाई मैं ही हूं, मेरा पहला पैसा है। बोले नहीं मैं ऐसा नहीं करूंगा, मेरा 3 महीने बाद रिटायरमेंट है, मैं तुमको पैसा नहीं दे सकता। और वो लेके लौट गए, मैंने बड़ी मिन्नतें की, कई बार मैं उनके पास मिलने गया, वो पंडित जी थे, उन्होंने मेरे पैसे नहीं दिए तो नहीं दिए, उन्होंने नियम का पालन करते हुए उस मानदेय को, उस पत्रिका को वापस कर दिया।
0: तो सब नकारात्मक बातें होते हुए भी आज आप एक सकारात्मक
1: हाँ,
0: ओहदे
1: जो
0: पर हैं।
1: कविता की शुरुआत ये है कि कविता लिखना कोई एक पल होता है जो आप कविताएं पढ़ते रहते हैं, सुनते रहते हैं, देखते रहते हैं, जीते रहते हैं, फिर आपके भीतर से वो चीजें फूटती हैं, तो वो जो फूटन है वो कब हुई, कैसे हुई, मुझे नहीं पता है, लेकिन अचानक वो जो हुआ तो मैं अचानक कविताएं इतनी लिखने लगा कि रोज 10-15, 10-15, 10-15 के अनुपात में शुरू में कविताएं लिखने लगा। तो हिंदी में कोई उस्तादी की परंपरा नहीं है, तो किसी को दिखाना नहीं। फिर बहुत सारी फिल्मी पत्रिकाएं छपती थी, उसमें सब रोमानी एहसास की कविताएं थी, मैं उनको भेजता रहा, वो सब छपने लगी,
0: जी
1: ये 80s इससे लेके 90 तक वो सारी कविताएं छपती रही छपती रही। मुझे लगा मैं महाकवि टाइप का आदमी हो गया हूं, लेकिन जब वो कविता की कसौटी पे, जब उसके बाद जब मैंने कविताएं पढ़ी तो मुझे लगा ये तो कहीं ठहरती नहीं है। जब मैंने कविताएं पढ़ा तो मैंने कहा इस कविता सिर्फ रोमानी एहसास का नाम नहीं है, कविता जीवन की शक्ति है, प्रेरणा की चीजें हैं। तो जब मैंने उस कसौटी पे देखा तो जो मेरी लिखी हुई कविताएं हैं 90 तक की, उसमें एक भी कविता मुझे इस लायक नहीं लगी कि 2016 में जब मैंने किताब बनाई कि मैं उसमें से वो किताब उठा वो रख पाऊं।
0: क्या
1: फिर बाद की
0: बात
1: जितनी कविताएं थी वही कविताएं मैंने संग्रह में रखी।
0: जी,
1: जी,
0: तो कोई संग्रह वाली कविता इस समय याद आ रही है?
1: संग्रह वाली कविता,
0: दो
1: एक
0: लाइन सुनाइए
1: एक
0: हमें।
1: कविता मैं आपको 1991 की कविता का रेफरेंस देता हूं, आपके श्रोता जो पुराने हैं उनको भी याद आएगा और नए के लिए ये एक कविता होगी। ये कविता है शेष कुशल है, तो इस कविता ने मुझे बड़ी पहचान दी। पत्र के पे जो लोग लिखते थे, पत्र की भाषा होती थी,
0: जी
1: सब लिखते थे, सारे दुख लिखते थे और लिखते थे शेष कुशल है, उससे ये कविता लिखी। और जो ये कविता भी लिखी, ये मैं जौनपुर में कक्षा 6 में पढ़ता था, तो एक दिन मेरी माँ ने पोस्ट ऑफिस में चिट्ठी डालने के लिए दी, पोस्ट बॉक्स में। मैंने चिट्ठी डाली और पोस्ट बॉक्स में एक चीज चिट्ठी निकली हुई थी, तो मैंने चिट्ठी खींच ली
0: ओ
1: और चिट्ठी खींच के मैं अपने विद्यालय में ले गया। उस विद्यालय में मैंने उस चिट्ठी को बच्चों को बताया कि मैं चिट्ठी लाया हूं, और मैंने क्लासरूम में उसे खोल के चिट्ठी पढ़ी, सबको सुना दी। और फिर मैं आया और जैसे आके मैं अपनी माँ को सारी बात बताता था, तो मैंने बताया कि आज मैंने ये चिट्ठी खोल के की, मेरी माँ ने मुझे बहुत मारा। मेरी माँ ने कहा कि तुमने इतना गंदा काम किया, वो किसी का दुख था, किसी का
0: बिल्कुल।
1: सुख था, वो जाने पते पे जाना था, तुमने उसे रास्ते में ले लिया।
0: रोक लिया।
1: तुम्हारी चिट्ठी मैंने मामा को भेजी है और वो चिट्ठी कोई कर देता तो बहुत ही गंदा काम किया, जीवन में नहीं करना है। उन्होंने गोंद से उसे चिपकाया, एक एक रेशा जोड़ा और फिर ले जाके वो चिट्ठी मुझसे डलवाई उन्होंने पोस्ट बॉक्स में, सेम पोस्ट बॉक्स में वो चिट्ठी डलवाई। अब वो चिट्ठी तो चली गई होगी, पहुंच भी गई होगी
0: जी।
1: यार जो भी है, लेकिन उस चिट्ठी मेरे भीतर भी रह गई। तो मेरे भीतर जो चिट्ठी रह गई वो फिर मैंने कक्षा 6 में मैंने वो की घटना है, फिर मैंने 12 में के आसपास या BSc पार्ट 1 में रहा हूंगा तब मैंने
0: जी
1: वो कविता लिखी। तो वो जो कविता है,
0: जी आप अगर सुनाए हमारे श्रोताओं को
1: हाँ,
0: तो 4 लाइन।
1: तो वो कविता मैं आपको पढ़ देता हूं। तो कविता यह है कि भैया की चिट्ठी आई है, घर भर का चिट्ठा लाई है, पहले लिखा तुम्हें प्यार है और आगे भाभी बीमार है, छुटकी को आया बुखार है, लिखी अम्मा की पुकार है,
0: क्या बात है, वाह।
1: आंखें जैसी की तैसी है, गठिया की हालत वैसी है, अब तो बिटवा है ये लगता, मौत ही जैसे अंतिम हल है, शेष कुशल है।
0: ओ गजब।
1: घर में पैसे 4 नहीं है, मिलता कहीं उधार नहीं है, भाई जब से दिन बिगड़े हैं कोई नातेदार नहीं है, छोटे का तुम हाल न पूछो, मोटी कितनी खाल न पूछो,
0: वाह
1: अर्जी आज नहीं दे आया और अगला इंटरव्यू कल है, शेष कुशल है।
0: क्या बात है, वाह।
1: बहना का
0: शेष कुशल।
1: संदेश आया है, उसने फिर से कहलाया है, सामान और नकदी की खातिर सास ससुर ने धमकाया है, कुछ ना कुछ सहते रहते हैं, ऐसे दिन कटते रहते हैं, ये सब छोड़ो अपनी लिखना, बीत रहे कैसे छिन पल हैं, शेष कुशल है।
0: शेष कुशल है, क्या बात है,
1: आखिरी
0: बहुत।
1: बंद है कि बप्पा खुद से जूझ रहे हैं, बप्पा खुद से जूझ रहे हैं,

0: कब आओगे पूछ रहे हैं,
1: वाह
0: बप्पा खुद से जूझ रहे हैं, कब आओगे पूछ रहे हैं, लिख दो ख्याल रखे सेहत का, मिनट मिनट पर टोक रहे हैं, आखिर में बस इतना कहना, तुम घर की चिंता मत करना, मजबूरी ढोने का हम में, बाकी अब भी काफी बल है, शेष कुशल है।
1: शेष कुशल है, वाह क्या बात है, बहुत बढ़िया एक मार्मिक कविता आपने सुनाई, इसमें बड़ी संवेदनशील कविता सुनाई। प्रताप जी, हम आगे बढ़ने से पहले अपने श्रोताओं को एक गाना सुनवाते हैं, आपकी पसंद का गाना बताइए, कौन सा गाना सुनवाएं?
0: इंदिवर का वो गाना था, आओ मिल जाएं हम सुखंदर सुमन की तरह।
1: सुनते हैं यही गाना।

0: प्रताप जी, आपके गाने से पहले बात चल रही थी कविता की, आपने कविता सुनाई। ये बताइए कि आप कविता से गजलों की ओर कैसे मुड़े, क्योंकि अमूमन देखा जाता है कवि अलग और गजलकार अलग। इतवार छोटा पड़ गया, ये आपका गजल संग्रह है, इसके बारे में बताइए।
1: अब जैसे मैंने कहा कि इसमें शहर का दोष है कि

0: वो शहर मैं बचपन से पढ़ रहा था, वहां सांस ले रहा था, वहां कवि लेखक जो जैसा बना गढ़ा, दुष्यंत भी उसी शहर के थे।
1: जी,
0: तो
1: दुष्यंत कुमार,
0: दूसरी
1: साये में
0: चीज,
1: धूप उनकी
0: हाँ,
1: बड़ी
0: साय में धूप।
1: मशहूर
0: तो
1: मशहूर रचना।
0: फिर मैं जैसे व्यंग्य लिखता था, तो व्यंग्य में एक खूबी होती थी, व्यंग्य में एक बात कहनी होती है, और जब आप व्यंग्य बोलते हैं, व्यंग्य कहते हैं, व्यंग्य करते हैं, तो उसमें एक तरीका होता है कि आप एक बात कहते हैं, फिर एक बात छुपा लेते हैं, क्योंकि अगर आप छुपा के नहीं बोलते हैं
1: हाँ,
0: तो व्यंग्य नहीं
1: अनकहा
0: उत्पन्न होता है,
1: अनकहा कुछ
0: अनकहा।
1: अनकहा
0: तो एक
1: सही।
0: अनकही चीज को आप धीरे से खोलते हैं। तो मुझे ये सेम एलिमेंट शायरी में लगा कि आप पहले मिसरे में आप उसको धीरे से कहते हैं। जैसे मैंने पहला जो शेर मेरी स्मृति में आया, वो नासिर काजमी का था, जिसने मुझे शायर बनने के लिए इंस्पायर किया। वो शेर था कि हमारे घर की दीवारों पे नासिर, ये बड़ा सादी से लाइन है, कि हमारे घर की दीवारों पे नासिर
1: क्या बात है,
0: उदासी बाल खोले सो रही है।
1: वाह वाह
0: तो
1: वाह।
0: अब उन्होंने एक स्त्री की कल्पना की, मुझे वो पेंटिंग की तरह लगा, मुझे वो शायरी की तरह लगा, फिर ये लगे। तो इस तरह के जो अगर मैं तमाम सारे शेर कहूं, ये मुझे लगा कि वालियासी साहब का एक शेर था कि तुम जीत गए हम हार गए, तुमने खोया हमने पाया, तुम जीत गए हम हार गए,
1: जी
0: तुमने पाया हमने खोया। अब
1: जी
0: अगला मिसरा तो मैं सोच ही नहीं सकता। उन्होंने कहा कि तुम जीत गए हम हार गए, तुमने खोया हमने पाया, इन छोटी छोटी बातों का हम कोई ख्याल नहीं करते।
1: क्या बात है, वाह
0: तो
1: वाह।
0: अब ये जो खूबसूरती थी, इसने इंस्पायर किया। फिर हमारी जो जनरेशन है वो जगजीत सिंह को सुनती हुई बड़ी हो रही थी,
1: जी
0: तो
1: जी
0: हम
1: जी
0: उनकी गजलें सुन रहे थे, तो उन गजलों में भी वो स्वाद था कि गजलें आकर्षित इसीलिए करती थी कि गजलें कंटेंट का मीडियम थी, गायकी का तो माध्यम थी, लेकिन वो शब्द की भी महत्ता थी। तो उसमें ये जो शायरी की जो बारीकियां हैं उसमें भी थी। फिर प्रकाश पंडित की एक बड़ी भूमिका थी, उन्होंने हिंदी में, तमाम लोग उर्दू के स्क्रिप्ट नहीं जानते थे,
1: जी जी
0: तो उन तमाम सारी किताबें स्टेशन पे मिल जाती थी, तो हमने उसके जरिए गालिब, फैज, मीर, उन सबको पढ़ना शुरू किया। तो लगा कि ये एक माध्यम है जिससे जो मेरा सटायरिस बेंड ऑफ माइंड है वो, और कविता का की जो रुचि है, ये दोनों इसमें खूब जमेंगे। और फिर उस तरह के जब आप कोई चीज करते हैं तो उस तरह के लोगों की सोहबत होती है, सीखते हैं, उनसे बात करते हैं, फिर उस तरह के परिवेश में जाते हैं, फिर आप वैसा कुछ हो जाते हैं।
1: जी, तो कोई शेर या
0: वो पूरी गजल यूं है कि कैसे कह देगा कोई किरदार छोटा पड़ गया, जब कहानी में लिखा अखबार छोटा पड़ गया,
1: वाह क्या बात है, क्या बात है। गागर में सागर
0: कैसे कह देगा कोई किरदार छोटा पड़ गया, जब कहानी में लिखा अखबार छोटा पड़ गया,
1: जी
0: सैकड़ों किस्से कहानी खुद ही चलकर आ गए,
1: जी
0: उससे मैं जब भी मिला इतवार छोटा पड़ गया।
1: वाह वाह वाह, क्या बात है। और कविता और गजलें, फिर नाटक, व्यंग्य भी लिखा आपने, तो नाटक की ओर भी मुड़े। नाटक लिखा आपने, एक लोई नाम का नाटक
0: हाँ
1: जिसका मंचन भी हुआ, कई भाषाओं में अनूदित हुआ, इसके
0: जी,
1: बारे में बताइए, इसकी
0: देखिए
1: क्या
0: नाटक
1: कहानी है।
0: क्या था कि मैं श्रद्धेय, मैं प्रभास जोशी जी मेरे पिता तुल्य थे, तो उनकी जो,
1: जनसत्ता के संपादक थे उस
0: हाँ, तो
1: समय।
0: मैं
1: जी
0: जनसत्ता में उनके साथ रहा, उनका बड़ा स्नेह रहा। तो उनकी जो प्रथम पुण्यतिथि थी, तो मैं उसमें शामिल होने के लिए गया, तो वहां शेखर सेन का नाटक चल रहा था, कबीर जो करते हैं, तो उसमें वो लोई का एक करेक्टर आता है। तो लोई कहती है कबीर से,
1: जी
0: वो चूंकि एकल है तो खुद ही दोनों पात्र कर रहे थे, कि मैं तुमसे प्रेम नहीं करती, मैं साहूकार के बेटे से प्रेम करती हूं। तो कबीर ने कहा चलो मिला लाते हैं।
1: जी
0: अब ये जो संवाद था मेरे दिमाग में ऐसे दर्ज हुआ, मैं मिला लाते हैं।
1: जी
0: अब ये जो संवाद था मेरे दिमाग में ऐसे दर्ज हुआ, मैं मेरी पत्नी गए थे, मैंने उनसे कहा कि 600 साल पहले क्या स्त्री पुरुष इस तरह का संवाद करते थे, और अगर करते थे तो ये कौन आदमी आया था 250-300 साल पहले, लॉर्ड मैकाले, जो कह गया कि ये सपेरों का देश है। तो हम तो इतने, अगर इस तरह का संवाद, और जो उनकी पत्नी थी वो तो बड़े गरीब लोग थे, बड़े
1: जी जी
0: छोटे लोग थे,
1: जी
0: एक जुलाहे थे, बुनकर थे, कोई राजा नहीं थे, कोई विदुषी नहीं थे, झांसी की रानी नहीं थी, कोई रजिया सुल्तान नहीं थी, ये साधारण परिवार के एक स्त्री पुरुष के बीच का संवाद है। तो मुझे लगा कि एक साधारण स्त्री की कहानी तलाशते हैं। फिर मैंने उस पर शोध शुरू किया, तो एक उपन्यास मिला मुझे, लोई का ताना, जिसमें लोई के बारे में थोड़ी सी चीज है, रांगे राघव का उपन्यास है। फिर मैंने जो जितने उपलब्ध सामग्री थी उसको पूरा, फिर मैंने एक लंबी कविता लिखने के लिए ये सारा शोध किया था
1: अच्छा
0: कि मैंने कि लंबी कविता में लिखूं।
1: अच्छा
0: 12-13 पेज की कविता लिखी, कविता जैसी बनी नहीं। फिर मैंने उपन्यास लिखना शुरू किया, वो 13-14 पेज तक गया, फिर रुक गया, और फिर वो मेरे सामने लोई खड़ी हो जाती थी।
1: जी जी
0: फिर मैंने पूरा नाटक लिखा। अब नाटक लिखने के बाद इलाहाबाद के एक विभूति थे पंडित नरेश मिश्र, तो वो मेरे लिए भी गुरु की तरह थे। मैं उनके पास वो नाटक लेके गया, मैंने उनको दिया, मैंने कहा ये पंडित जी ये नाटक लिखा है। तो उन्होंने सुना, उन्होंने कहा कि क्या सुंदर बात बताई। ये मैं इसलिए ये बात उनका उद्धरण देना चाह रहा हूँ कि जो लोग नाटक लिखना चाहते हैं उनके लिए ये बीज मंत्र की तरह है।
1: जी जी
0: उन्होंने कहा कि जब दो लोग बात कर रहे हों और दो लोगों की बातों में एक दूसरे से कह रहा हो सीधी सीधी बात करो, नाटक मत करो।
1: हाँ बिल्कुल, ये तो
0: इसका
1: जुमला
0: मतलब कि
1: है।
0: दूसरा आदमी
1: हाँ
0: उस बात को सीधी सीधी नहीं कर रहा है,
1: जी जी
0: वो कुछ घुमा के कर रहा है, तो वो नाटक है जो वो कर रहा है। तो अब मैं तुमसे कह रहा हूं कि सीधी सीधी बात मत करो, नाटक करो। तो ये पुस्तक में सीधी
1: हाँ
0: सीधी बात आ गई है,
1: जी
0: नाटक नहीं आया है।
1: क्या बात है।
0: तो इतनी सुंदर बात कही
1: हाँ
0: कि फिर पूरी पुस्तक को मैं दोबारा लेके गया
1: हाँ
0: और दोबारा मैंने उसको नाटक के तौर पे लिखा।
1: जी
0: और ये उनकी ब्लेसिंग्स थी,
1: हाँ
0: उनका आशीष था
1: जी
0: कि नाटक संयोग से दुर्योग से जैसे भी था वो इतना बन गया कि मुंबई में अभी पिछले दिनों उसका मंचन हुआ। इंडिया के मैच के दिन 8 मार्च को महिला दिवस के दिन उसका मंचन था,
1: जी
0: और 2 घंटे का शो और पूरा हाउसफुल, और एक आदमी हॉल से बाहर नहीं निकला। बैक टू बैक शो था, उसके 2 घंटे बाद फिर शो था। ऑडियंस में हरीश भीमानी हैं, इरशाद कामिल हैं, और
1: जी
0: तमाम सारे बड़े लोग उसके ऑडियंस में रहे। तो ये मेरे लिए, और जो स्टेज पे आर्टिस्ट थे उसमें मुकुल नाग, मिताली, वैसे अच्छे अच्छे जो आर्टिस्ट थे
1: बड़े
0: उन्होंने
1: कलाकार।
0: कहा, मैं
1: जी
0: काम
1: कहाँ पर
0: किया
1: था, किस हॉल में?
0: वेदा कुंभा थिएटर में,
1: अरे वाह,
0: अंधेरी
1: क्या
0: में।
1: बात
0: हाँ
1: है, बहुत सुंदर थिएटर है वो
0: हाँ
1: तो। ये तो बहुत बढ़िया, इसके बाद के लिए बधाई। और तकरीबन 9 भाषाओं में इसका अनुवाद
0: जी,
1: हुआ है
0: नौ
1: ना,
0: भाषाओं में अब तक
1: जिसमें
0: ये
1: मराठी में भी है।
0: प्रकाशित हो चुकी है ये पुस्तकें
1: जी
0: इसकी, और
1: तो
0: कई भाषाओं में अलग अलग। हिंदी में तो अभी जो अगला प्रस्तुति है, एक तो ये जिन्होंने तैयार किया है थिंक बिग ग्रुप है तो मुंबई का, तो ये लोग करने वाले हैं इस नाटक को। और अभी इलाहाबाद की रंगकर्मी है सुषमा शर्मा जी, तो उन्होंने बताया कि उनके पास भी वो भी करने जा रही हैं, 2-3 महीने में वो भी करेंगी। तो अलग अलग ग्रुप, जबलपुर का एक समूह है, तो अलग अलग समूहों द्वारा ये नाटक तैयार किया जा रहा है, अलग अलग तरीके से लोग कर रहे हैं। मैंने तो बंद
1: लोई
0: बंद
1: नाम,
0: कब्रे अलोई
1: लोई नामकरण
0: जो
1: कैसे किया,
0: कबीर की
1: मतलब
0: पत्नी
1: किस?
0: है उनका नाम है।
1: जी बहुत बढ़िया। और अब आगे बढ़ने से पहले एक आपके पसंद का गाना सुनते हैं। कौन सा गाना सुनवाए?
0: तुमको देखा तो ये ख्याल आया, जिंदगी
1: जिंदगी
0: धूप
1: तुम घना साया,
0: घमाना साया।
1: साथ साथ फिल्म की ये गजल है और जगजीत सिंह
0: जी,
1: की आवाज है और इसमें कुलदीप सिंह की मौसीकी है।
0: और इसलिए मुझे और भी पसंद है कि कुलदीप सिंह जी ने लोई का पूरा म्यूजिक किया है, लोई के नाटक का।
1: जी क्या बात है। तो
0: हाँ
1: ये बात यहाँ कितनी कनेक्ट हो रही है
0: हाँ
1: इस बात से।

0: साथ साथ फिल्म की इस गजल के बाद प्रताप जी हम जानना चाहते हैं, अभी हाल ही में आपका एक नया कविता संग्रह आया है, उसके बारे में बताइए।
1: ये कविता संग्रह है ए अलिफ आ। ये कविता संग्रह का जो शीर्षक है, ये इसमें एक कविता है मलाला यूसुफजई के पिता पे।
0: जी जी
1: मुझसे लोग बार बार पूछते हैं कि ये जो आपकी सृजन यात्रा है, ये कैसे संभव है कवि और पत्रकार के तौर पे। मैंने ट्विटर पे अपने बायो में भी लिखा है कि ये मेरी दो आंखों की तरह है,
0: अच्छा
1: दोनों आंखें खुली रखता हूं तो साफ दिखाई पड़ती है, देख एक आंख से भी सकता हूं लेकिन पूरा प्रदेश नहीं दिखेगा। तो ये दोनों आंखें एक दूसरे की मदद करती हैं और दोनों आंखें दृश्य को पूरा और सम्यक देखने में सहायता करती हैं। तो जब मलाला को पहली बार गोली लगी और मलाला, तो ये पता चला कि एक लड़की को स्कूल जाने के एवज में उसके लिए गोली मार दी गई। तो फिर मैंने कहा कि भाई उसके पिता माँ पता करो कौन है, बेटी तो बहादुर हो सकती है लेकिन उसके पिता माँ कौन है। तो मैंने पता किया तो उनके पिता थे जियाउद्दीन यूसुफजई। तो मैंने एक पूरी कविता लिखी, ये कैसा पिता है जियाउद्दीन यूसुफजई। उनसे बात भी की, फोन किया, वो एक कहानी थी है कि मैंने उनसे कैसे बात की, कैसे बातचीत हुई। तो किसान थे, कवि थे और वो टीचर थे, तो वो उनकी हम मैंने पूरे उनसे बातचीत करके
0: जी
1: वो पूरी कविता लिखी। तो मैंने फिर एक कविता और लिखी, छोटी सी 3 लाइन की, लिखा कि एक लड़की आकाश में लिखती है ए अलिफ आ।
0: क्या बात है, वाह।
1: एक लड़की आकाश में लिखती है ए अलिफ आ, पूरी दुनिया कहती है वाह वाह
0: वाह
1: वाह।
0: वाह।
1: एक लड़की आकाश में लिखती है ए अलिफ आ, पूरी दुनिया कहती है वाह
0: वाह
1: वाह
0: वाह,
1: वा, जीती रहे मेरी बेटी मलाला।
0: वाह।
1: तो ये मलाला के लिए ये कविता। तो वो कविताएं मैंने उसी कविता पे, मेरे इस जो नया कविता संग्रह है उसका शीर्षक बना। और इसमें बहुतेरी कविताएं ऐसी हैं जो किसी घटनाओं से जुड़ी हुई हैं। और सबसे पहली बात ये कि इसमें एक

0: पत्रकार की कविताई की यात्रा है, तो इसमें 20 से अधिक कविताएं खबरों पे लिखी हुई हैं, और खबरों पे पहली बार कविताएं लिखी हुई हैं
1: जी
0: आपको
1: जी
0: मिलेंगे,
1: क्या
0: जो
1: बात है।
0: न्यूज़ के अलग अलग डायमेंशन के, कि मैंने 35 साल न्यूज़ रूम में बिताए हैं, तो मैं 35 साल की जो मेरी यात्रा है उसमें मुझे 20 दृश्य ऐसे मिले जिनको मैंने 20 कविताएं बनाई, तो 20 कविताएं इसमें
1: जी
0: दर्ज
1: जी
0: है।
1: क्या बात है। अगर 4 लाइन सुनाना चाहें तो सुनाइए।
0: तो एक कविता है आंसू की खबर।
1: जी सुनाए।
0: कोई नाम नहीं होता, कोई धर्म नहीं होता, कोई जाति या पहचान नहीं होती।
1: क्या बात है।
0: कोई नाम नहीं होता, कोई धर्म नहीं होता, कोई जाति या पहचान नहीं होती है। गिरता है एक आंसू न्यूज रूम में, बताता है भरभराए गले से एक सब एडिटर, जिसे आई है अभी अभी एक कॉल, 3 बच्चे महोबा में उसी जगह जाकर कट गए हैं रेल से जहां उनकी मां ने जान दी थी।
1: वाह वाह, मार्मिक कविता है।
0: 3 दिन पहले पूरा न्यूज रूम नम हो जाता है, हर कोई जीने लगता है। 3 दिन, 3 बच्चे,
1: ओ,
0: एक माँ,
1: ओ,
0: एक खबर।
1: ओ, बहुत ही संवेदनशील कविता है। और अब यहाँ पर हमें लगता है कि एक गाना होना चाहिए। बताइए कौन सा गाना सुनवाएं अपने श्रोताओं को। हाँ
0: हमेशा उदासी वाले गाने क्यों गाएं, पान खाएं सैया हमार, वो हो जाएंगे।
1: क्या बात है, सुनते हैं ये गाना।

0: और ये गाना सुनते हुए पूरा लोक संगीत की छटा बिखेर उठी है, और उत्तर प्रदेश के लोकगीतों की तो बात ही निराली है। तो एक बार चलते हैं उत्तर प्रदेश की ओर, और आप चूंकि इलाहाबाद में पढ़े बले हैं तो वहां की यादें ताजा कीजिए हमारे श्रोताओं के साथ।
1: देखिए, मैंने तो कई जगह लिखे शेर भी कहा है कि हर अपनेपन के किस्से में शहर का जिक्र आता है,
0: जी
1: हर अपनेपन के किस्से में शहर का जिक्र आता है,
0: क्या बात
1: तुझे
0: है,
1: तो याद हम अक्सर इलाहाबाद करते हैं।
0: वाह वाह वाह।
1: एक और शेर मैंने कहा है कि चांदी का बदन सोने का मन ढूंढ रहा है, औरों में ही अच्छाई का मन ढूंढ रहा है। इसमें जो शेर है इलाहाबाद के हवाले से है कि संगम के इलाके से है पहचान हमारी, संगम के इलाके से है पहचान हमारी, ये मन तो वही गंगो जमन ढूंढ रहा है।
0: क्या बात है,
1: तो आप उसको
0: वाह।
1: ढूंढते हैं और वो दिल्ली में रहे हैं तो वहां भी ढूंढते हैं।
0: जी
1: और मैंने एक शेर कहा, वो इलाहाबाद को याद करते हुए कहा कि कड़ी धूप में छांव बनाकर रहते हैं, हम दिल्ली में गांव बनाकर रहते हैं।
0: क्या बात है, बहुत
1: तो
0: बढ़िया।
1: हम जो दिल्ली में भी रहते हैं, हमारे अवचेतन मन में वो इलाहाबाद ही जीता है।
0: जी जी बिल्कुल।
1: तो जैसा भारती ने कहा था कि आप जितनी दूर जाएं वो उतना हांट करता है,
0: जी
1: तो
0: जी
1: ये है कि मैं पहुंच जाता हूं जब
0: जी
1: हांट करता है या उससे पहले ही।
0: जी जी वैसे तो मन हमेशा अपने उस जगह पर रहता है
1: हाँ,
0: जहां आपका
1: क्योंकि
0: बचपन
1: आपको
0: बीता।
1: लगता है कि शेर मेरा था कि पेड़ हर वक्त परिंदों की जगह रखता है,
0: जी क्या बात है।
1: पेड़ हर वक्त परिंदों की जगह रखता है, गांव ने मुझसे कहा था सुनो आते रहना।
0: क्या बात है।
1: तो ये जो उधर से भी इसी तरह का प्यार रहता है।
0: बिल्कुल। और एक अटूट रिश्ता होता है। प्रताप जी, ये शहर की बात तो बहुत लंबी है, बहुत सारी यादें होती हैं जहन में। हम जानना चाहते हैं कविताओं के बारे में, कवि बनने की जो प्रक्रिया है आपने वो बताई, कवि से पत्रकारिता की दुनिया में आप कैसे
1: देखिए,
0: पहुंचे?
1: पत्रकारिता मुझे लगता था कि मैं यही कर सकता हूँ, क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ क्या थी कि मैं पत्रकारों से ये कहता हूँ, जितने जो लोग जर्नलिज्म करें नहीं करें, या मैं मीडिया स्कूल्स में जाता हूँ, या मैं करीब 20 सालों तक अलग अलग कैंपस में इंटरव्यू करने गया, तो मैं उनको बताता था कि आप इसलिए बनिए कि आपके पास एक मौका है, एक संसार के सबसे बड़े डॉक्टर के पास अवसर नहीं है सबसे इंटरेक्ट कर सके,
0: जी
1: किसी के पास ये मौका नहीं, हमारे पास मौका है। मैं हम विविध अनुभव संसार में जाते हैं,
0: जी जी
1: वहाँ जीते हैं, उनसे बात करते हैं और बात करके हम चले आते हैं, और इस काम के आपको पैसे मिलते हैं,
0: बिल्कुल।
1: इस काम से आपकी आजीविका चलती है। तो आपके अनुभव संसार को समृद्ध करने के लिए इससे बेहतरीन कोई पेशा मुझे नहीं लगा।
0: जी। तो यहाँ भी कोई नकारात्मक कहानी है, किसी ने मना किया आपको
1: नहीं,
0: या
1: वो
0: यहाँ
1: नहीं था कि हम तो
0: सकारात्मक
1: जब समय में थे कि हम अखबार के दफ्तर में जाते थे तो एक कोई चीफ सब एडिटर बूढ़े से पान खाए हुए बैठे होते थे, तो वो हमको देखते ही कहते थे कि आओ घर में है खाने वाने का इंतजाम, हाँ तो कुछ और कर लो।
0: जी।
1: हमने क्या कहा, उखाड़ लिया जो तुम उखाड़ लोगे। तो हम उनको बताए कि हम खा कुछ उखाड़ने नहीं आए हैं,
0: कुछ करने
1: हम
0: आए हैं।
1: लगाने आए हैं,
0: जी
1: हम
0: बिल्कुल,
1: कुछ
0: क्या
1: बोने
0: बात है।
1: आए हैं, हम कुछ
0: सृजन
1: सृजन
0: करने
1: करने
0: आए
1: आए
0: हैं।
1: हैं।
0: जी।
1: तो हम इस भाव से आए। तो उसने मेरे अनुभव संसार को बहुत, यह मेरी कोई भी किताब संभव नहीं होती अगर मेरी पत्रकारीय दृष्टि नहीं होती, मेरे पास चीजों को देखने का वो फिल्टर नहीं होता मेरे पास। तो
0: नजरिया।
1: अगर वो फिल्टर नहीं होता

0: आप कैसे देखते, आपकी आंखों का विजन 6x6 है, थोड़ी दूर तक देख सकते हैं।
1: तो पहली बार किस अखबार में गए, कैसे,
0: पहली
1: क्या
0: बार
1: थी
0: हम
1: सीडी आपका?
0: देखिए, मैं अखबारों में तो जाने की हिम्मत भी नहीं पड़ती थी। मैं एकदम गांव का लड़का, हमें डर लगता था कि अखबार में कौन आदमी हमें नौकरी देगा। तो मैं शुरू से फ्रीलांस लिखता रहा, लिखते लिखते लिखते लिखते लिखते ऐसा रहा कि फिर अखबारों में, मतलब अपने आप में स्टिंगर हो गया।
1: जी।
0: मैंने खबरें भेजी, खबरें छप गई, तो स्टिंगर से मैंने अपनी यात्रा शुरू की। फिर मैं माया प्रेस में एक पत्रिका निकली, गंगा यमुना,
1: जी,
0: उसमें रविंद कालिया जी ने मुझे बुला के रखा। मैं
1: इलाहाबाद के।
0: अकेला ही पीर बावर्ची भिस्ती खर था उनके साथ,
1: जी
0: तो वो मैंने 3 साल काम किया। तो व्यवस्थित तरीके से मेरी पहली नौकरी उनके साथ थी।
1: जी
0: फिर उसके बाद मैंने जनसत्ता में मैं रहा, फिर मैंने जो है अमर उजाला में रहा, रिपोर्टर टू एडिटर रहा,
1: जी
0: फिर मैं दैनिक भास्कर में रहा,
1: क्या
0: न्यूज़
1: बात है।
0: एडिटर रहा, फिर मैं अब हिंदुस्तान में 17 वर्षों से हूँ। तो ये टोटल 35 साल की यात्रा इसी तरह से पूरी की मैंने।
1: जी प्रताप जी, वो जो संपादक की और पत्रकार की एक समय भूमिका होती थी, बहुत ब्रांड होते थे पत्रकार संपादक, बहुत, जैसे आपने भी कहा कि उन्हें खाली देख के लौट आते थे डॉक्टर राम कुमार वर्मा को, वो अभी बहुत सब फ्रेंडली हो गए हैं, लेकिन समय बदल गया है। अब वैसा समय नहीं कि आप आजीविका तलाशें उसके साथ साथ पैरल, तो एक इस ओहदे पर है कि आपके पास बहुत कुछ ताकत है कर सके नया कुछ करने के लिए। तो अब देश भर में जो साहित्य उत्सव होते हैं, साहित्य उत्सव को लेकर क्या आप कहेंगे कि उससे क्या फायदा होता है, क्या नुकसान होता है, और क्या नए लोग भी उससे जुड़ते हैं?
0: देखिए, फायदा तो होता है। उत्सव तो हमारे जीवन का तत्व तो है कि हम उत्सव धर्मी लोग हैं, इसलिए हम उत्सव करते हैं।
1: जी
0: लेकिन इसमें एक स्थिति है कि ज्यादातर जो साहित्य उत्सव हैं, ये आयोजक के उत्सव होते हैं।
1: जी
0: तो जो आयोजक होता है उसके लिए उत्सव होते हैं, और साहित्य का तो उत्सव ही नहीं होता। वो उसमें सबसे हाशिए पर होता है तो साहित्य होता है,
1: जी
0: क्योंकि उसको सुनने वाला ही कोई नहीं होता वहां।
1: जी
0: तो वो ऑडियंस पे काम नहीं करते कि बच्चों को बुलाएं। हम जब कहीं जाते हैं किसी साहित्य उत्सव में, हम वहां देखते हैं और हम ये देखते हैं कि भाई, उसी शहर में हम विद्यालय के किसी प्राचार्य से मिलते हैं कि आपके यहाँ जो बच्चे हैं ये इस उत्सव में क्यों नहीं आए। बोले, हमारे पास सूचना नहीं थी। तो साहित्य उत्सव में अभी बहुत गुंजाइश है कि वो थोड़ा दो तरफा, रचनाकारों की ओर से तो वो आमंत्रित कर लेते हैं, बुला लेते हैं, एक स्पॉन्सर बुला लेते हैं, लेकिन ये उद्देश्य तब पूरा होगा जब वो बाकायदा जो सुनने वाले हैं, जिनको जरूरत है उस साहित्य की, अगर उनको वो ले आए तो फिर वो चीज बनेगी।
1: जी, नई पीढ़ी को जोड़ने के लिए
0: बिल्कुल,
1: आप
0: बहुत जरूरी
1: क्या करना चाहते हैं
0: सबसे बड़ी
1: पत्रकारिता
0: चीज
1: का?
0: है। सबसे बड़ी चीज यही है कि नई पीढ़ी को जोड़ने के लिए, एक तो ये साहित्य उत्सव जितने हो गए, इस तरह की चीजें हो गई, दूसरा बहुत सारी चीजें हैं जो आर्काइवल वर्क कंटेंट हमारे पुराने पड़े हुए हैं। हमको हर समय कहने की जरूरत नहीं है कि हमारे समय में कुछ नहीं लिखा गया या नए लोग कुछ नहीं लिख रहे हैं। अभी भी बहुत कुछ बेहतर रचा जा रहा है
1: बिल्कुल
0: या बहुत बेहतर रचा गया है। बेहतर आपके सामने नहीं आया तो इसका मतलब समय खराब नहीं है, आपका दायरा खराब है, आपकी समझ पे सवाल है। लेकिन तो जरूरत यह है कि अब इतने वैरायटी के वर्सटाइल तरीके के माध्यम आ गए हैं, हम उन सब माध्यमों को जोड़ के नई नई चीजें रखें, जो हमारी पुरानी चीजें हैं आर्काइवल वैल्यूज की, उनको उठा के रखें और ये चीजें रखें, और ताकि उस पर एक भरोसा हो जो नया व्यक्ति है कि हाँ, हमें कुछ बेहतर काम रच रहे हैं। मेरे मन में आया तो इसी से आया ना, कि एक जो लिगेसी थी, वो लिगेसी मेरे पास थी ना, मुझे किसी ने बताया तो नहीं, तो वो लिगेसी मैंने अनुभव की। शायद वो अनुभव देने में हम अगली पीढ़ी को नाकाम हो रहे हैं।
1: बिल्कुल
0: तो वो अनुभव अगर हमको, ये उम्मीद कर रही है कि नई पीढ़ी साहित्य से जुड़े, तो वो अनुभव हमको उसको देना होगा जो अनुभव मेरे पास बचपन में था, जो अनुभव व्यक्तियों के हवाले से था, जो अनुभव उनके साहित्य के हवाले से था, वो अनुभव हमें देना होगा। लेकिन दुर्भाग्य से अब साहित्य माने लेखकों का अपना साहित्य हो गया है, कविता माने मेरी कविता हो गई
1: जी
0: है,
1: जी
0: कविता
1: जी
0: माने कविता नहीं रही।
1: जी जी
0: तो अगर कविता माने आपकी कविता है तो
1: हाँ
0: वो फिर प्रचार की कविता है। ये उसी तरह है जैसे कोई मैं बच्चों से प्यार करता हूँ और अपने बच्चे से प्यार करे।
1: जी। तो प्रचार से हमें जहन में आया, बहुत संक्षेप में बताइए कि सोशल मीडिया ने

0: लेखन पर क्या प्रभाव डाला है,
1: बहुत बहुत
0: रचनात्मकता
1: बहुत
0: पर?
1: अच्छा प्रभाव डाला है। बहुत चीजें, बहुत लोगों के पास अवसर के दरवाजे खोले हैं।
0: जी
1: अब यह है कि उस अवसर को आपको फिल्टर करना पड़ेगा कि आपने खिड़की खोल दी है और अगर आपने जाली नहीं लगाई तो
0: जी जी
1: खटमल मच्छर सब आएंगे। ठीक है, तो
0: सही
1: आप वो
0: बात है।
1: जाली लगा दीजिए, बड़ी सुंदर सुंदर हवा आएगी, आपको ताजगी भी देगी और वातावरण को शुद्ध भी करेगी, तो इस तरह से जो साहित्य का पर्यावरण है वो भी सही होगा।
0: जी, जो हमारी युवा पीढ़ी है पत्रकारिता की दुनिया में आना चाहती है, तो उसके लिए कुछ दो लाइन में संदेश दीजिए।
1: उसके लिए सिर्फ एक लाइन है, दो लाइन की भी जरूरत नहीं है। एक लाइन ये है कि आप ज्ञान के निवेश के धंधे में हैं, तो आपके जो ब्रेन का एटीएम है ये खाली नहीं रहना चाहिए, वरना जब आप इसमें कार्ड डालेंगे तो इनसफिशियंट बैलेंस आएगा। तो
0: जी
1: आप उसको बिल्कुल पढ़ते रहिए, एनरिच करिए, वैरायटी और स्टाइल चीजें आप जानिए, क्योंकि अगर आप पढ़ेंगे नहीं, जानेंगे नहीं, तो आप एक बेहतर पत्रकार क्या बेहतर मनुष्य भी नहीं बन पाएंगे।
0: जी बिल्कुल सही कहा आपने। प्रताप सोमवंशी जी, विविध भारती के स्टूडियो में आप आए और इतनी जानकारी वाली बातें और इतनी अच्छी बातें आपने साझा की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया विविध भारती परिवार की ओर
1: बहुत
0: से।
1: बहुत धन्यवाद मंथर
0: नमस्कार।
1: जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: आप सुन रहे थे कार्यक्रम आज के मेहमान, जिसमें आपने सुनी जाने माने लेखक और पत्रकार प्रताप सोमवंशी से ममता सिंह की बातचीत। जाते जाते हम आपको बता दें कि इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग इंजीनियर अनुश्री गुप्ता, संपादन सहयोग काजल भदरगे, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान।
3: आज के मेहमान।

0: अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
1: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
0: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 14 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: थी धन्य जवानी अपनी, थी धन्य वो उनकी जवानी।

102.7 एफएम पर हम आकाशवाणी के ओबरा केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 5 बज रहे हैं। प्रस्तुत है युवा साथियों का दैनिक कार्यक्रम युववाणी।

स्वागत है आप सभी युवा दोस्तों का आपके अपने कार्यक्रम युववाणी में, जिसे आप सुनते हैं प्रतिदिन आकाशवाणी के ओपरा केंद्र से 102.7 FM पर। और आज का ये अंक प्रस्तुत कर रही है आपकी रेडियो वाली साथी प्रीति सिन्हा। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप सभी इस बदलते मौसम में और इस गर्म मौसम में अपना ध्यान रख रहे होंगे और अपनी परीक्षाओं की तैयारी में जुटे होंगे। तो दोस्तों, आइए अब चलते हैं अपनी चर्चा की ओर और जानते हैं क्या है विशेष आज के दिन यानी 10 जून को। दोस्तों, प्रतिवर्ष 10 जून को हम मनाते हैं विश्व नेत्रदान दिवस, साथ ही राष्ट्रीय जड़ी बूटी और मसाला दिवस। तो आइए बिना देर किए चलते हैं अपनी चर्चा की ओर और जानते हैं क्या है विश्व नेत्रदान दिवस और इसे क्यों मनाते हैं। दोस्तों, आज हमारे देश में ऐसे कई लोग हैं जो या तो किसी दुर्घटनावश या फिर जन्म से ही अंधे हैं। जागरूकता और कुछ प्रयासों के माध्यम से इन्हें एक बेहतर जिंदगी दी जा सकती है। तो आगे बढ़कर लोग इन लोगों को आंख दान करके इनके जीवन को बेहतर बनाते हैं। दोस्तों, माना जाता है कि नेत्रदान रक्तदान से कम पुण्य का काम नहीं है, क्योंकि इस दान से आप किसी की जिंदगी में उजाला ला सकते हैं। आंखें हमारे जिंदा रहने तक तो हमारी जिंदगी रोशन करती ही हैं, मरने के बाद भी ये किसी दूसरे की जिंदगी रोशन कर सकती है। दोस्तों, प्रतिवर्ष 10 जून को नेत्रदान दिवस मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य लोगों में नेत्रदान के प्रति जागरूकता फैलाना है। जागरूकता और कुछ प्रयासों के माध्यम से इन्हें एक बेहतर जिंदगी दी जा सकती है। तो नेत्रदान के महत्व को समझें और आगे बढ़कर अपनी आंखें दान करने की शपथ लें। दोस्तों, हाल फिलहाल बदलती लाइफस्टाइल, अनियमित दिनचर्या, प्रदूषण और बहुत ज्यादा स्ट्रेस की वजह से ज्यादातर लोग आंखों से जुड़ी समस्याओं का शिकार होने लगे हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO के अनुसार कार्निया की बीमारियां, मोतियाबिंद और ग्लूकोमा के बाद दृष्टि हानि अंधेपन के प्रमुख वजहों में से एक है। ब्लड कैंसर जैसी बीमारियों के कारण भी कई लोग अपनी आंखें गंवा बैठते हैं। दोस्तों, आइए आपको बताते हैं कि कौन नहीं कर सकते हैं नेत्रदान। कई सारे गंभीर रोगों से पीड़ित व्यक्ति नेत्रदान नहीं कर सकते, जैसे एड्स, हेपेटाइटिस बी, पीलिया, ब्लड कैंसर, रेबीज, सेप्टिसीमिया, गैंग्रेन, ब्रेन ट्यूमर और आंख के आगे की काली पुतली यानी कॉर्निया खराब हो जाए या फिर कि जहर आदि से मृत्यु हो, इस प्रकार के दूसरे संक्रामक रोग हों, तो इन्हें नेत्रदान करने की मनाही होती है। साथ ही कौन कर सकता है नेत्रदान? चश्मा पहनने वाले, मधुमेह, अस्थमा, उच्च रक्तचाप यानी हाई ब्लड प्रेशर और अन्य शारीरिक विकारों जैसे सांस फूलना, हृदय रोग, क्षय रोग आदि के रोग की नेत्रदान कर सकते हैं। इसके अलावा मोतियाबिंद, काला पानी या आंखों का ऑपरेशन करवाने वाले व्यक्ति भी आसानी से नेत्रदान कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये एक पुण्य का काम है, इसके बारे में अधिक से अधिक जागरूकता फैलाएं। विश्व नेत्रदान दिवस पर चर्चा बस यहीं तक।

0: जानते हैं वियतनाम देश की जनसंख्या कितनी होगी? यही कोई 10 करोड़। इससे भी ज्यादा घरों में हम उज्ज्वला गैस पहुंचा चुके हैं पिछले 12 सालों में। सोचो, जब करीब 11 करोड़ रसोई से लकड़ी का धुआं छटा होगा, तब कितना कष्ट घटा होगा।
1: प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना अब सामाजिक परिवर्तन के माध्यम से देश के सतत विकास का एक बहुत बड़ा स्रोत बन चुकी है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
3: दोस्तों, आकाशवाणी ओबरा से समय आप सुन रहे हैं आपका अपना कार्यक्रम युववाणी, और युववाणी कार्यक्रम में अब लीजिए सुनिए ये वार्ता। विषय है रोल ऑफ यूथ इन बिल्डिंग इंडिया 2047। वार्ताकार हैं प्रतिमा शुक्ला।
4: नमस्कार दोस्तों और मेरे देश के भावी कर्णधारों, आज जब हम यहाँ एकत्र हुए हैं तो हमारे सामने सिर्फ एक तारीख नहीं है, साल 2047 यह वो साल है जब माँ भारती अपनी आज़ादी के 100 साल पूरे करेगी। 1947 में हमें जो आज़ादी मिली वो हमारी पूर्वजों के बलिदान का फल थी, लेकिन 2047 में जो भारत दुनिया के सामने खड़ा होगा वो हम युवाओं के पसीने और पुरुषार्थ का परिणाम होगा। आज भारत दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और बहुत जल्द हम 3री पायदान पर होंगे, लेकिन क्या विकसित भारत का मतलब सिर्फ नंबर्स और डाटा है? जी नहीं, विकसित भारत का मतलब है एक ऐसा देश जहां गरीबी का नामो निशान ना हो, जहां हर युवा के पास उसकी योग्यता के अनुसार काम हो और जहां तकनीक और परंपरा का अद्भुत मेल हो। आज हमारे पास डेमोग्राफिक डिविडेंड है, यानी दुनिया की सबसे बड़ी युवा आबादी। दोस्तों, पुराने समय में कहा जाता था कि पढ़ लिख कर अच्छी नौकरी पाना ही सफलता है, लेकिन आज का युवा इस परिभाषा को बदल रहा है। आज हम जॉब सीकर नहीं, जॉब क्रिएटर बन रहे हैं। स्टार्टअप इंडिया ने हमारे सपनों को पंख दिए हैं। आज इंडिया में 1 लाख से ज्यादा रजिस्टर्ड स्टार्टअप्स हैं और 100 से ज्यादा यूनिकॉर्न्स। 2047 का भारत आत्मनिर्भर तभी बनेगा जब हम अपनी जरूरतों के लिए दुनिया का मुंह नहीं ताकेंगे। चाहे वो मोबाइल चिप्स बनाना हो, डिफेंस के हथियार हो या दवाइयाँ, हर क्षेत्र में मेड इन इंडिया का डंका बजना चाहिए। युवाओं को अब जोखिम लेने से डरना नहीं चाहिए। आपकी एक छोटी सी कोडिंग की लाइन या एक छोटा सा बिजनेस आइडिया आने वाले समय में हजारों लोगों का रोजगार दे सकता है। आर्थिक मजबूती ही किसी राष्ट्र की रीढ़ होती है। सिर्फ डिग्री हासिल कर लेना काफी नहीं है। विकसित भारत के निर्माण के लिए हमें स्किलिंग, रीस्किलिंग और अपस्किलिंग के मंत्र को अपनाना होगा। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 इसी दिशा में एक बड़ा कदम है। 2047 की दुनिया आज की दुनिया से बिल्कुल अलग होगी। आज उस समय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स और क्वांटम कंप्यूटिंग आम बात होगी। अगर हम आज इन तकनीकों को नहीं सीखेंगे तो हम वैश्विक दौर से पीछे रह जाएंगे। लेकिन कौशल का मतलब सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं है। हमारे देश के पारंपरिक हुनर, हमारी कला, हमारी हस्तशिल्प, इन सबको आधुनिक बाजार से जोड़ना भी युवाओं की जिम्मेदारी है। जब एक गांव का युवा अपनी कला को डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए दुनिया को बेचता है तो वह सही मायनों में राष्ट्र निर्माण कर रहा होता है। स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि हमें ऐसी शिक्षा चाहिए जिससे चरित्र का निर्माण हो। 2047 का युवा अगर शिक्षित है लेकिन उसके मन में अपने देश के प्रति, अपने बुजुर्गों के प्रति और अपने समाज के प्रति संवेदना नहीं है तो वह विकास अधूरा है। युवाओं की भूमिका यहाँ नैतिक पहरेदारों की है। भ्रष्टाचार मुक्त समाज, जातिवाद से ऊपर उठकर एक भारतीय की पहचान और महिलाओं के लिए सुरक्षित माहौल, ये वो चीज है जो किसी बजट से नहीं आती बल्कि ये समाज की सोच से आती है। अगर आज का युवा यह तय कर ले कि वह ना तो गलत करेगा ना गलत सहेगा तो 2047 तक हम एक ऐसे समाज में जी रहे होंगे जहां न्याय और समानता केवल संविधान की किताबों में नहीं बल्कि हमारी गलियों और मोहल्लों में भी होगी। एक मकान तभी मजबूत होता है जब उसकी हर ईंट बराबर का बोझ उठाए। हमारे समाज की आधी आबादी, हमारी महिलाएं, जब तक पूरी तरह सशक्त नहीं होगी भारत विकसित नहीं हो सकता। 2047 का भारत वो होना चाहिए जहां जेंडर गैप शून्य हो। ड्रोन के इस्तेमाल से लेकर फाइटर पायलट तक आज हमारी बेटियां हर जगह अपना लोहा मनवा रही हैं। युवाओं के तौर पर हमारी जिम्मेदारी है कि हम एक ऐसा सुरक्षित और सम्मानजनक माहौल बनाएं जहां हर लड़की अपने सपनों को बेझिझक पूरा कर सके। इसके साथ ही जातिवाद, सांप्रदायिकता जैसे कुरीतियां को जड़ से मिटाना होगा। जब हम इंडिया फर्स्ट की सोच के साथ काम करेंगे तभी देश की एकता अखंड रहेगी। एकता के बिना विकास का कोई अर्थ नहीं है। अगर 2047 में हमारे पास बड़ी इमारतें होंगी लेकिन सांस लेने के लिए साफ हवा, पीने के लिए शुद्ध पानी नहीं होगा तो वह विकास अधूरा होगा। जलवायु परिवर्तन आज की सबसे बड़ी चुनौती है। लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट अभियान इसी का समाधान है। हमें

0: अपनी जीवन शैली बदलनी होगी। सोलर एनर्जी, ग्रीन हाइड्रोजन और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ बढ़ना हमारा कर्तव्य है। युवाओं को पर्यावरण का वॉरियर बनना होगा। प्लास्टिक मुक्त भारत, जल संरक्षण और वृक्षारोपण जैसे कार्यों को हमें सरकारी कार्यक्रम नहीं बल्कि अपना निजी मिशन समझना चाहिए। 2047 का भारत हरा भरा और स्वच्छ होना चाहिए। आज जब हम नीरज चोपड़ा को गोल्ड जीतते देखते हैं, तो इसरो के वैज्ञानिकों को चांद के दक्षिणी ध्रुव पर तिरंगा लहराते देखते हैं, तो हमारा सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। ये सफलताएं दिखाती हैं कि भारतीय युवाओं के लिए स्काई इज नॉट द लिमिट। 2047 तक हमें खेलों की दुनिया में महाशक्ति बनना होगा। हमें हर गली में टैलेंट को बाहर लाना है। वही दूसरी तरफ अंतरिक्ष विज्ञान में हमें दुनिया का नेतृत्व करना है। गगनयान और शुक्रयान जैसे मिशन हमारे हौसलों की उड़ान है। विज्ञान और अनुसंधान में निवेश और रुचि बढ़ाना ही हमें विश्व गुरु के पद पर फिर से आसीन करेगा। अंत में मैं बस इतना ही कहूंगी कि विकसित भारत का सपना कोई कल्पना नहीं है, ये करोड़ों भारतीयों का साझा सपना है और इस सपने को साकार करने में सबसे बड़ी भूमिका हम युवाओं की है। 2047 में जब हमारी अगली पीढ़ी हमसे पूछेगी, जब देश बदल रहा था तब आप क्या कर रहे थे, तो हमारे पास गर्व से कहने के लिए कहानी होनी चाहिए। आइए आज हम सब मिलकर यह शपथ लेते हैं कि हम अपनी जिम्मेदारियों को पूरी निष्ठा से पालन करेंगे, कि हम देश के कानून और संविधान का सम्मान करेंगे, कि हम भ्रष्टाचार और गंदगी के खिलाफ लड़ेंगे, कि हम अपने हुनर को अपने देश के प्रगति के लिए निखारेंगे। हम वो भाग्यशाली पीढ़ी हैं जो भारत के इस स्वर्णिम काल की साक्षी भी हैं और सारथी भी। उठिए, जागिए और तब तक मत रुकिए जब तक भारत दुनिया का सबसे समृद्ध, समर्थ और संस्कारित राष्ट्र न बन जाए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।
1: अभी आप सुन रहे थे ये वार्ता, विषय था रोल ऑफ यूथ इन बिल्डिंग इंडिया 2047। वार्ताकार थी प्रतिमा शुक्ला, प्रस्तुतकर्ता थे सचिन कुमार वर्मा।

दोस्तों, आज के इस डिजिटल युग में आप सभी खुद को अपडेट रखने के लिए क्या करते हैं? टीवी देखते हैं, रेडियो सुनते हैं या फोन पर समय बिताते हैं। समय की मांग तो यही है कि आप हर क्षेत्र में खुद को आगे रखें, तभी इस प्रतियोगिता के माहौल में खुद को साबित कर पाएंगे। दोस्तों, समय की मांग तो यही है कि आप आज के इस युग में कंप्यूटर की जानकारी जरूर रखें। थोड़ा बहुत या डिग्री, डिप्लोमा कंप्यूटर में आपको अपने करियर में पंख लगाने के लिए काफी है, क्योंकि आज का युग कंप्यूटर का युग है। यदि आप इसके साथ चलते हैं तो आप अपने लिए एक सम्मानजनक और संतोषजनक करियर ऑप्शन चुन सकते हैं और धीरे धीरे अपनी मंजिल पर पहुंच सकते हैं। दोस्तों, यदि आप कंप्यूटर में काम करने में कतराएंगे तो आप पीछे रह जाएंगे और जानकारी के अभाव में रोजगार के अवसरों से चूक जाएंगे। इसीलिए कंप्यूटर पर काम करने से कतराए ना, प्रयासरत रहने पर आप महारत हासिल कर ही लेंगे। आप अपने आसपास कोई भी कोचिंग सेंटर पर एडमिशन लेकर इसकी छोटी मोटी बारीकियों को पकड़ सकते हैं। ये एक बुनियादी जरूरत बन गया है। शिक्षा, व्यापार, संचार, स्वास्थ्य, मनोरंजन और सरकारी कामकाज सहित जीवन के हर क्षेत्र में समय बचाने, कार्य कुशलता बढ़ाने और जानकारी तक तुरंत पहुंचने के लिए अनिवार्य है, जिसके बिना आधुनिक जीवन और करियर में आगे बढ़ना मुश्किल है। यह ज्ञान हमें ऑनलाइन फॉर्म भरने, वर्क फ्रॉम होम करने, ईमेल भेजने और इस तरह के डिजिटल काम करने में सक्षम बनाता है, जिससे हमारी उत्पादकता यानी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। इसीलिए युवाओं को कंप्यूटर सीखना और इसका सही उपयोग करना जरूरी है।

दोस्तों, इसी के साथ हमारा आज का ये अंक युववाणी का अब यही समाप्त होता है। अब दीजिए अपने रेडियो वाले साथी प्रीति सिन्हा को अनुमति कार्यक्रम युववाणी समाप्त करने की। नमस्कार।

अभी युवा साथी सुन रहे थे अपना दैनिक कार्यक्रम युववाणी 102.7 FM पर हम आकाशवाणी के ओबरा केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 5:30 हो रहे हैं। अब प्रस्तुत है बच्चों के लिए कार्यक्रम बाल संघ।

0: बच्चों जय हिंद।
1: जय हिंद।
0: बच्चों बाल संघ कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपकी दीदी अनीता। तो बच्चों सबसे पहले आप सब ये बताइए कि आप सब कैसे हैं। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और इस समय गर्मियों की छुट्टियों का आनंद ले रहे होंगे। लेकिन बच्चों छुट्टियां भी हमारे बड़े काम की होती हैं। इस समय हम चाहें तो अपने वो शौक पूरा कर सकते हैं जो समय न मिलने के कारण हम नहीं कर पाए, जैसे कि अच्छी अच्छी प्रेरणादायक कहानियां पढ़ना, पेंटिंग बनाना। बच्चों आप चाहें तो इस समय अपनी मनपसंद पेंटिंग बनाकर रख सकते हैं जो आपको छुट्टियां बीत जाने के बाद एक यादगार बन सकता है। इसके अलावा आप कागज के दफ्ती के खिलौने भी बनाकर उन्हें भी पेंटिंग करके रख सकते हैं। बच्चों इस समय आप घर में रहकर अपने होमवर्क भी जरूर पूरा कर रहे होंगे। कई बच्चे तो अपनी दादी नानी के घर भी घूमने गए होंगे। बच्चों हम घर में रहें या कहीं घूमने जाएं, पर हमें अपने अनुशासन में रहना चाहिए। हमें हमेशा ऐसे काम करने चाहिए जिससे हमें कोई ये ना कहे कि ये बच्चा बहुत शरारती है, बहुत उदंड है। बच्चों हमें अपने दिनचर्या के हिसाब से काम करना चाहिए। हमें अपने माता पिता का कहना मानना चाहिए। हमसे वो जो कहते हैं हमें वही करना चाहिए। बच्चों क्योंकि वो हमें एक अच्छा बच्चा बनाना चाहते हैं। बच्चों हमारे माता पिता जो कुछ भी करते हैं, कहते हैं, वो हमारी भलाई के लिए करते हैं ताकि हमारा भविष्य अच्छा बन सके और हम अनुशासन में रहकर एक अच्छे नागरिक बन सके। बच्चों अगर आपके माता पिता कभी आपकी गलती या किसी वजह से आपको डांट देते हैं तो आप उनकी बात का बुरा मत मानिए, बल्कि ये समझिए कि उन्होंने आपकी गलती को सुधारने का अवसर दिया है ताकि आप अनुशासन में रहकर एक अच्छे इंसान बन सके। बच्चों आपके माता पिता आपसे बहुत प्यार करते हैं। वो आपको उदास होते नहीं देख सकते, वो आपको तकलीफ देना भी नहीं चाहते हैं। बच्चे जब आप बच्चों स्कूल में हो वहाँ भी अपने टीचर की बात माने, अपने क्लासरूम में शांति बनाए रखें, किसी बच्चे से लड़ाई झगड़ा न करें, सबको अपना दोस्त समझें, अपनी कक्षा को साफ सुथरा रखें, वहाँ कागज फाड़ कर न फेंकें, न ही कोई चीज खाकर उसका कवर फेंकें और न ही किसी प्रकार की गंदगी फैलाएं। बच्चों इसके अलावा आपकी टीचर भी जो कहती हैं आप उस बात को माने, उनकी बातों को ध्यान से सुने और अपनी पढ़ाई पर ध्यान दें। जो आपकी टीचर कहती हैं उस काम को पूरा करें, अपने पाठ को याद करें। इस तरह नंबर वन तो आप बनेंगे ही, साथ ही आप सबके चहेते बन जाएंगे। बच्चों इसके अलावा अक्सर देखा जाता है कि कुछ बच्चे कभी किसी जगह पर जाते हैं, किसी के घर जाते हैं, उनके घर की चीजों को, सामानों को इधर उधर छूते रहते हैं। या फिर कोई खिलौना देखते हैं, पेन पेंसिल उठा लेते हैं और सामानों को देख देख कर छू कर इधर उधर रख देते हैं। कई बार तो कोई सामान टूट भी जाता है। तो बच्चों ये सब करना गलत है, ये सही नहीं है। आप किसी के घर जाएं तो उनके सामान को ना छूएं। अगर आपकी बहुत इच्छा है, कोई चीज बहुत अच्छी लगती है, तो आप उनसे पूछ कर खिलौने लेकर देख सकते हैं, सावधानी से खेल सकते हैं और फिर उन्हें आदर और सम्मान के साथ उनके सामान को वापस कर दें। बच्चों इसके अलावा हम जब भी किसी पार्क या घूमने की जगह पर जाएं तो वहां भी लगे पेड़ पौधों को नुकसान न पहुंचाएं, फूल न तोड़ें, बल्कि उन सुंदर पेड़ पौधों और फूलों के चित्र बनाएं। बच्चों इसके अलावा अगर हम किसी दर्शनीय स्थल जैसे मंदिर या कोई ऐतिहासिक जगहों पर जाएं, वहां भी हमें अपने अनुशासन को नहीं भूलना चाहिए और कहीं गंदगी ना करें और न ही उन जगहों को कोई भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश करें, बल्कि उन जगहों को समझे जाने और हो सके तो अपने घूमने से लेकर घर आने तक एक छोटा निबंध लिख सकते हैं। इससे आपकी जानकारी बढ़ेगी और आपके अंदर लिखने का अच्छा अभ्यास होगा। बच्चों साथ ही हमें इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि जो हमारा समय है बहुत कीमती है, हमें अपने समय को व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए।

0: ऐसे फुर्सत नहीं है। पर बच्चों, अगर आप थोड़ा समय निकाल कर अपना होमवर्क पूरा नहीं करेंगे तो आपका काम पिछड़ जाएगा और आप अपना पाठ भूल जाएंगे। बच्चों, इसी विषय से संबंधित आज हम आपको एक भेंट वार्ता सुनवाने जा रहे हैं, जिसका विषय है बच्चों का होमवर्क जिम्मेदारी या बोझ। और भेंट वार्ताकार हैं सहर परवीन, सहायक अध्यापिका उच्च प्राथमिक विद्यालय बर्दिया ब्लॉक चौपन, और उनसे बातचीत की है साजिदा बेगम ने।
1: आजकल की जिंदगी में बच्चों के साथ समय बिताना, उनके साथ खेलना, उनका होमवर्क पूरा कराना एक बड़ी चुनौती है, और खासकर तब जब माता और पिता दोनों ही नौकरी करने वाले हों। बच्चों को होमवर्क करने में मदद करना, उनसे जुड़ना और उनकी शैक्षणिक सफलता की संभावनाओं को बेहतर बनाने का एक अवसर है। एक अभिभावक के रूप में क्लास में पढ़ाए गए विषयों को आप और अच्छा बना सकते हैं। होमवर्क में मदद करना आपके बच्चे को यह दर्शाता है कि आप उनकी शिक्षा में कितना महत्व देते हैं। लेकिन ज्यादातर बच्चे होमवर्क करना ही नहीं चाहते। छुट्टियां हो गई और दिन भर खेल और मोबाइल मिल जाए बस, फिर क्या पूछना है। तो इसलिए अक्सर माता पिता परेशान हो जाते हैं। तो आज हम इसी विषय पर बातचीत करेंगे कि बच्चों का होमवर्क जिम्मेदारी या बोझ। और आज हमारे साथ हैं सहर परवीन जी, जो कि सहायक अध्यापिका हैं उच्च प्राथमिक विद्यालय वर्दिया ब्लॉक चौपन में। तो आपका स्टूडियो में स्वागत है।
2: धन्यवाद।
1: तो सहर परवीन जी, मेरा पहला सवाल यही है कि छुट्टियों में बच्चों का होमवर्क कैसे कराएं?
2: होमवर्क को बोझ की तरह बिल्कुल नहीं लेना चाहिए, बल्कि रोज की छोटी आदत की तरह करना चाहिए। देखिए, छुट्टियों का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि हम या तो सिर्फ अपना पूरा एक होमवर्क लेके बैठ गए और हमें पूरा होमवर्क छुट्टियों में कम्प्लीट करना है। ना ही ऐसा होना चाहिए कि हम पूरी तरह से छुट्टी एंजॉय कर रहे हैं और पढ़ाई से एकदम दूर हो जाए। इसको हम ये कर सकते हैं कि सुबह में बच्चे को जो है वो फ्रेश होते हैं, हम भी और बच्चे भी फ्रेश होते हैं, तो एक से डेढ़ घंटे का टाइम जो है वो हम निकाल लें कि हमें इस टाइम जो है वो होमवर्क करना है। अच्छा, और बच्चे को अपने साथ मिला करके उसको एकदम हैप्पी मूड में हमें होमवर्क कराना चाहिए। और इन सब चीजों में माता पिता की भूमिका बहुत ज्यादा अहम होती है, कि बजाय इसके कि आप उसको डांट के ये बोलें कि नहीं तुमने होमवर्क नहीं किया, तुम्हें होमवर्क करना है, उसको हमें प्यार से समझाना होगा कि हमें बेटा ये थोड़ा थोड़ा करके हमें थोड़ा थोड़ा, जैसे हम रोज का काम करते हैं, ऐसे ही हमें थोड़ा थोड़ा करके रोज होमवर्क अपना कंप्लीट करना है। तो इससे ये होगा कि हमारी छुट्टियां भी आराम से बीतेंगी और समय रहते हमारा होमवर्क भी कंप्लीट हो जाएगा। इससे ये होगा, ना तो पेरेंट्स के ऊपर तनाव होगा और ना ही बच्चे को किसी भी चीज की टेंशन होगी।
1: जी जी। और अक्सर देखें, आप भी देखी होंगी कि छुट्टियों में बच्चे बहुत रिलैक्स करते हैं। कई बार होता है कि जल्दी सुबह उठते भी नहीं है कि नहीं छुट्टी हमको सोने दीजिए।
2: सही बात है।
1: तो बच्चों की कैसे रूटीन बनाए कि अपना उठे।
2: देखिए, उसके लिए तो हमें बच्चों की मतलब हमें आदत बनानी पड़ेगी। उसके लिए हमें भी जल्दी उठना होगा और हमें बच्चों को एक ये कि अच्छा ठीक है, आप सुबह जल्दी उठें तो आपके साथ हम जो है वॉक पे चलते हैं, आपको भी लेके चलेंगे, थोड़ा रनिंग थोड़ा ये। तो बच्चे को एक ये होगा, अच्छा हमें सुबह उठ के कुछ करना है, हमें घूमने जाना है, टहलने जाना है, तो वो उठेगा
1: तब वो उठ।
2: जी जी जी।
1: तो ये तो इस तरह से बच्चों की आदत बनी रहेगी
2: जी, जल्दी उठने की भी।
1: क्योंकि अक्सर जब बच्चे की छुट्टी हो जाती है, देर तक सोते हैं, फिर उस रूटीन में आने में उनको बहुत टाइम लग जाता है। तो इससे बेहतर है कि वो रूटीन उनकी बनी रहे।
2: जी जी।
1: तो बच्चों का होमवर्क करने में उनका ध्यान कैसे लगाया जाए?
2: देखिए, आज के टाइम में जो है वो एक बहुत बड़ी चुनौती हो गई है ध्यान का भटकना। साजिदा जी, देखिए जैसे हम लोग अपना बचपन याद करें, हम लोगों को सिर्फ फिजिकल वर्क था, खेलते थे, कूदते थे। आज के टाइम में मोबाइल भी है, तरह तरह के गेम्स हैं, टीवी है, जो बच्चों का जो है वो ध्यान खींच लेते हैं। तो पहली चीज तो ये है कि हमें बच्चों को पढ़ने का माहौल देना होगा, कि हम खुद भी थोड़ा बच्चों को ये दिखाएं कि हाँ हम भी पढ़ रहे हैं कुछ भी। मतलब आप कोई किताब पढ़ रही हैं, तो बच्चा देखेगा कि हाँ ठीक है, हमारी माँ पढ़ रही हैं या हमारे फादर पढ़ रहे हैं। और जैसे अब ये है कि आप बच्चे के लिए एक ऐसा कोना तैयार करिए कि जहाँ लाइट का प्रॉपर अरेंजमेंट हो, वहाँ हवा का प्रॉपर अरेंजमेंट हो, और उसमें आप बच्चे की पसंद की चीजें अरेंज कर दीजिए और वो एक दिखाइए कि हाँ वहाँ टेबल चेयर। देखिए, अगर किसी के पास है ऐसा कि वो कर सकता है कि हाँ टेबल चेयर मिल जाए बच्चे को, तो टेबल चेयर दें। जिसके पास नहीं है, नहीं कर सकता है, तो एटलीस्ट एक छोटी टेबल जिसे आप बेड पे या हाँ।

0: दूसरे किसी खेल में बहुत तेज है, आर्ट एंड क्राफ्ट में बहुत तेज है, कोई बच्चा डांस में बहुत तेज है, तो अगर हम ये देख रहे हैं कि हाँ मेरे बच्चे को डांस में इंटरेस्ट है, तो मैं उसको आधा घंटा क्यों ना दे दूं उस चीज के लिए कि बेटा तुम पहले आधा घंटा वो डांस की प्रैक्टिस कर ले, या आधा घंटा वो जो है वो गार्डनिंग अगर उसे पसंद है तो वो अपने गार्डन में कुछ कर ले, और उसके बाद जो है अपना पढ़ाई पे आए, तो वो उससे उसका क्या होगा कि एकदम माइंड फ्रेश हो जाएगा, जो उसका दिल चाह रहा है जब वो कर चुकेगा तो फिर वो होमवर्क भी अपना बहुत दिल से और मन से करेगा।
1: जी जी। और कहते हैं कि जब मन से कोई काम किया जाए तो बहुत अच्छा होता
0: बिल्कुल,
1: है।
0: बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही होता है ना कि मतलब मानसिक रूप से बच्चा अपने आप को एकदम तरोताजा महसूस करेगा।
1: जी जी। अब ये बताइए कि बच्चों की प्रतिभा को निखारने के लिए क्या करना चाहिए? देखिए बच्चों में तो बहुत सारी प्रतिभाएं होती हैं, लेकिन कुछ का लोगों को पता रहता है, कुछ नहीं पता रहता है, तो जैसे आप जानते हैं कि किसी बच्चे में कोई प्रतिभा है उसको आगे कैसे निखारे?
0: देखिए आज के टाइम में तो हर चीज काफी इजी हो गई है, हमारे पास बहुत सारी फैसिलिटीज भी हैं। पहले तो ये था, अब आज के टाइम में मोबाइल से यूट्यूब देख करके बहुत सी चीजें हम लोग सीख सकते हैं। पहली चीज तो बच्चे की रुचि को पहचाने, फिर उसकी छोटी छोटी कोशिशों की सराहना करें
1: जी,
0: और उसको जो है वो अभ्यास का अवसर दें कि वो उस चीज की प्रैक्टिस कर सके। तुलना बिल्कुल ना करें, तुलना के बजाय आप उसको प्रोत्साहित करें कि हाँ बहुत अच्छा काम कर रहे हो। फिर प्यार, धैर्य और सही मार्गदर्शन से बच्चों की प्रतिभा को हम बेहतर तरीके से विकसित कर सकते हैं,
1: क्योंकि कुछ बच्चे रहते हैं अपना पढ़ाई में है, कुछ बच्चों को गेम्स बहुत
0: पसंद होता है। हाँ बिल्कुल।
1: और अब आजकल तो देखिए उसमें भी बच्चे आगे बढ़ रहे हैं, करियर बना रहे हैं।
0: बिल्कुल, सिंगिंग है, डांसिंग है, कुकिंग है, एक से एक घर बैठ करके ही आप बहुत सारी चीजें जो है घर के वेस्ट मटेरियल से बच्चे एक से एक चीजें बना लेते हैं। तो हमारा मेन काम है हम बच्चे को अप्रिशिएट करें, जो वो कर रहा है उसमें उसका साथ दें, तो उसकी हॉबी धीरे धीरे जो है वो आगे बढ़ेगी।
1: तो फिर बच्चा और अच्छा कर सकेगा।
0: बिल्कुल। अब जो पेरेंट्स जो करते हैं कि परेशान हो जाते हैं कि अरे ये तुम क्या कर रहे हो, ये नहीं होना चाहिए।
1: जी। तो अब बच्चों के होमवर्क की बात हो रही, तो बच्चों के होमवर्क को रोचक कैसे बनाया जा सकता है?
0: देखिए होमवर्क का मतलब सिर्फ कॉपी भरना नहीं होता है कि अच्छा हमें इतना होमवर्क मिला है तो हम पूरी कॉपी भर डालें। मेन चीज है कि आप होमवर्क, जैसे मान लीजिए विज्ञान है, तो जो चीजें आप घर पे करके बच्चे को दिखा सकते हैं वो हम ये कह रहे हैं वो आप घर पे करके दिखाइए। गणित है, जैसे गणित में अगर छोटा बच्चा है जोड़ना घटाना सिखाना है, माचिस की तीलियां ले लीजिए, घर के गार्डन से जाके कंकड़ पत्थर ले लीजिए, फूल ले लीजिए, उससे उनको जोड़ना घटाना सिखा दीजिए। या फिर भाषा है, इंग्लिश है या हिंदी है, कोई भी कहानी सुनाए, तो उससे बच्चों की जो है बहुत ज्यादा मतलब इंटरेस्ट भी पैदा होगा। पहले आप उसको एक अच्छी सी कहानी सुना दीजिए, इंग्लिश में अच्छी सी कविता सुना दीजिए, तो उससे फिर उसका रुचि बढ़ेगी। जी,
1: तब उस तरह से होमवर्क को रोचक
0: बनाया जा सकता है। जी हाँ।
1: तो अब बताइए कि बच्चों के लिए 5 अच्छी आदतें।
0: देखिए पहली चीज तो है समय की पाबंदी। बच्चे के अंदर आप एक हम रूटीन उसका बना दें कि बेटा तुम्हें सुबह में 1 घंटा 8 से 9 तुम्हें पढ़ाई करनी है, 9 से 10 खेलने जा सकते हैं। टाइम बांध दें कि बच्चे को ये पता हो कि इतने से इतने बजे तक मुझे एक काम करना है और उसके बाद नेक्स्ट उस पे आ जाना है। तो पहली चीज तो समय की पाबंदी है। दूसरी चीज रोज पढ़ने की आदत, एक पेज बच्चा रीडिंग करे रोज। पेरेंट्स देखें कि बच्चा एक पेज राइटिंग कर ले रहा है कि नहीं, उससे राइटिंग में सुधार आ जाएगा। फिर तीसरी चीज ये है कि हम बच्चों का स्क्रीन टाइम सीमित कर दें कि हाँ तुम्हें 1 ही घंटे मोबाइल देखना है, आधा ही घंटे मोबाइल देखना है, उससे ज्यादा नहीं। चौथी चीज है कि आप बड़ों का सम्मान और धन्यवाद करना जरूर सिखाएं। सबसे मेन चीज शारीरिक व्यायाम, खेल कूद और साथ में शारीरिक व्यायाम। व्यायाम करने से जो है शरीर और मस्तिष्क दोनों स्वस्थ रहते हैं।
1: चलिए ये तो आपने बच्चों के लिए 5 अच्छी आदतें बता दी। तो सहर परवीन जी, आप स्टूडियो में आई और बच्चों का होमवर्क जिम्मेदारी या बोझ, इस विषय पर अपने अनुभव साझा किए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: बच्चों अभी आपने भेंटवार्ता सुना जिसका विषय था बच्चों का होमवर्क जिम्मेदारी या बोझ, और जिसकी भेंट वार्ताकार थी सहर परवीन, सहायक अध्यापिका उच्च प्राथमिक विद्यालय बर्दिया ब्लॉक चोपन, और उनसे बातचीत की थी साजदा बेगम ने।

0: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
1: जानते हो, बेल्जियम या ग्रीस की कुल आबादी भी इतनी नहीं है, जिससे ज्यादा महिलाएं हमारे देश में लखपति दीदी बनी हैं। 3 करोड़ से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बनकर बनी हैं परिवार और देश का आर्थिक आधार।
2: लखपति दीदी बनाने का ये अभियान आने वाली पीढ़ियों को सशक्त करने का एक महाअभियान है।
1: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
3: बच्चों आइए अब कुछ और बातें करते हैं। बच्चों आपको पता है, आप कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो किसी कारण बस पढ़ लिख नहीं पाते हैं और छोटी उम्र में ही काम करने लगते हैं, मजदूरी करने लगते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। किसी को भी छोटे बच्चों से बाल श्रम यानी मजदूरी नहीं करवानी चाहिए, बच्चों को भी काम नहीं करना चाहिए। अक्सर देखा जाता है कुछ माता पिता अपने बच्चों को काम करने के लिए भेज देते हैं, काम करने पर उन्हें पैसा मिलता है, उसी पैसे से वो अपना खर्च चलाते हैं, अपना जीवन यापन करते हैं। बच्चों बाल श्रम को रोकने के लिए हर साल 12 जून को विश्व बाल श्रम विरोधी दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसकी शुरुआत सबसे पहले 2002 में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO द्वारा बाल श्रम के बारे में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से की गई थी। बच्चों बाल श्रम यानी कुछ बच्चे पारिवारिक आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण काम करने लगते हैं, या कुछ बच्चे या माता पिता किसी का कर्ज चुकाने के कारण उनके बंधुआ मजदूर बन जाते हैं, जो कि अपराध है। जो बच्चे काम करते हैं वो आवश्यक शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाते हैं और उन्हें मानसिक रूप से विकास का अवसर नहीं मिलता है। बच्चों की शारीरिक स्थिति भी कमजोर होती है और वे ज़्यादा देर काम नहीं कर पाते हैं और वो बीमार भी हो जाते हैं। पूरे विश्व में बाल श्रम को रोकने का प्रयास किया जा रहा है।

बच्चों, भारत में 23 दिसंबर 1986 को राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त कर इस पर रोक लगा दिया गया और कानून के रूप में पुस्तक में दर्ज हो गया ताकि कोई भी बच्चा बचपन किशोरावस्था में मजदूरी न करे। ये अपराध है और जो बच्चों से काम करवाता है उन्हें कानूनी रूप से दंडित किया जाता है। बच्चों, सभी बच्चे को अधिकार है कि वो स्वस्थ रहें, शिक्षा प्राप्त करें। इसके लिए प्राथमिक विद्यालय है जहाँ निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था है, सरकारी स्वास्थ्य केंद्र है जहाँ बच्चों को का मुफ्त इलाज होता है। इसलिए माता पिता को अपने बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास को ध्यान में रखते हुए उनसे काम न करवाएं बल्कि उन्हें पढ़ाएं लिखाएं। तो बच्चों, देखिए बातें तो हमने बहुत कर ली, अब आइए सुनते हैं प्यारा सा गीत।

बच्चों आपने गीत सुना, उम्मीद है आपको गीत जरूर पसंद आया होगा। बच्चों चलते चलते हम आपको बता दें कि हमें जंक फूड से बचना चाहिए, जैसे मैगी, चाउमीन, मोमोज, पिज्ज़ा, बर्गर, समोसे, इन चीज़ों को हम कम से कम खाएं या बिल्कुल ना खाएं, क्योंकि ये चीज़ें हमारे ज़्यादा खाने से हमारा स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। इसलिए हम सभी को अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए और हमें घर का बना खाना खाना चाहिए। और बच्चों अपनी मम्मी से भी रोज़ ये फरमाइश ना करें कि हमें ये सब चीज़ें चाहिए, हमारे घर में रोज़ जो बनता है हम वही खाएं। तो बच्चों इन्हीं बातों के साथ हमारा कार्यक्रम भी यहीं समाप्त होता है। तो बच्चों अगले कार्यक्रम में हम सब फिर होंगे साथ, तब तक के लिए बच्चों जय हिंद।

अभी बच्चे सुन रहे थे अपना कार्यक्रम बाल संग 102.7 एफएम पर। हम आकाशवाणी के ओबरा केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 6 बजने को हैं। अब आप सुनेंगे हमारे गोरखपुर केंद्र से भोजपुरी समाचार।

को गणमान्य लोग स्वर्गीय गौरी शंकर राय के भावभीनी श्रद्धांजलि देत उनके व्यक्तित्व आकृतित्व के बारे में चर्चा कैलें। समाचार पूरा भई, नमस्कार।

102.7 एफएम पर हम आकाशवाणी के ओबरा केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 6:05 हो रहे हैं। अब प्रस्तुत है ग्रामीण भाइयों के लिए कार्यक्रम ग्राम जगत।

0: सब पंचन के राम राम।
1: और हो गंगा बहन?
0: और हो अच्छा भैया, सब सब बढ़िया बा भैया।
1: भैया देखा ये जोन अपने डफली का जोन धुन रहर ओके सुनते ही जोन बा अपन मन जोन बा ऐसन हरियर हो जाला।
0: हाँ।
1: कि जैसे तपत धरती पर सावन के पहल का फुहार हो। यही छाव में जब गांव जवार के लोग एक जगह जुटेला
0: हाँ।
1: तो मेल मिलाप का मिठास और बढ़ जाला।
0: बिल्कुल भैया, जोन ये संगत हो, ये जोन हम लोग का बात बत कही हो, ये जोन अपनापन हो ना, ये मन के ऐसन ताजगी देला भैया ना, कि गर्मी के जोन तेज गर्मी जोन रहना वो फीका पड़ जाला।
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: ऊपर से जोन तापमान बा, सोचे के होला कि आखिर हम पंच लोगन के बीच ऐसन कौन नेह प्रेम बा, और प्रकृति के जोन छाव बसल बा जहाँ लोग रोज समय से डूबे खातिर आ जाना।
1: बिल्कुल सही कहत हो गंगा बहन। और देखा अपने जनपद में ही आजकल मौसम का मिजाज जन बा लगातार बदल रहा बा। कभी देखा तेज धूप हो जाला तो कभी लू हो जाला, कभी आंधी तूफान तो कभी जन बा अचानक से बरसात हो जाला।
0: हाँ,
1: और इसे जन बा सब लोग परेशान हो जाला।
0: हाँ
1: और यही बदलत मौसम से देखा खेती हो या पशुपालन हो या रोजमर्रा का जीवन ही हो
0: हाँ हाँ
1: प्रभावित जरूर होता है।
0: बिल्कुल भैया। और देखा ये स्थिति में जो जितना भी भैया बहनी लोग हुआ सबके सतर्क रहे के जरूरत बा।
1: बिल्कुल
0: और जो हम लोग अनावश्यक रूप से बहरे जाइला, मतलब ई कोशिश करे के बा कि घर ही में रही, बहुत जरूरी हो तबे बहरे निकली।
1: बिल्कुल
0: और जोन मौसम के पूर्वानुमान हो ओके ध्यान से सुने के चाहिए, ओके अपने आदत में बनावे के चाहिए।
1: बिल्कुल
0: और जोन अपने घर का छोट बचवा हुआ बुजुर्ग हुआ इन लोगन के विशेष रूप से देखभाल का जरूरी बा।
1: बहुत जरूरी बा। और देखा घर से निकलते ही जन बा उपरे समय जो ना मौसम के अनुसार से तैयारी पहले से कर लेवे के चाहिए।
0: हाँ
1: सावधानी अपनावल ही सुरक्षा का सबसे आसान उपाय बा।
0: हाँ
1: और देखा गंगा बहन जन जागरूक नागरिक बन के जन बा
0: हाँ
1: हमन अपने मौसम के प्रभाव के कम कर सकत बानी।
0: हाँ
1: और ऊर्जा संरक्षण देखल जाए
0: हाँ
1: तो
0: हाँ
1: आज के समय का बहुत महत्वपूर्ण आवश्यकता बा।
0: बिल्कुल भैया। और साथ ही साथ भैया देखें, बिजली जोन बचावे का बात हो उपे भी ध्यान देवे के चाहिए।
1: बिल्कुल
0: काहे कि देखा अगर हम बिजली बचाई तो कहीं न कहीं हमें ही लोगन का फायदा हुई, वो कहीं न कहीं आगे चल के हम लोगन के मिली। तो
1: आगे
0: जब
1: भविष्य में ही फायदा हुई।
0: हाँ भविष्य में फायदा हुई, जोन घर में जोन अनावश्यक बल्ब कहीं कहीं जलत छोड़ दे ले ओके जोन हो बंद कर देवे के चाहिए। और जोन पियरका बल्ब जल जलाई ला हम लोगन ओकरे जगह जोन सफेदका रहला जेके LED कहल जाला ओकर उपयोग करे के चाहिए, उससे बिजली कम खपत होला।
1: बिल्कुल
0: और दिन में अगर हो सके तो जहाँ प्राकृतिक रोशनी बा भैया वहाँ जोन हो बिजली खपत ना करें। साथ ही साथ देखें भैया, बिजली जोन हो उपकरण हो तो एक जरूरत के हिसाब से ही इस्तेमाल करल जाए।
1: बिल्कुल सही कॉलिन गंगा बहन। और देखा मोबाइल चार्जर हो और जितना भी अन्य उपकरण हो
0: हाँ
1: उपयोग के बाद जनबा तुरंत निकाल देवे के
0: बिल्कुल
1: चाहिए।
0: भैया
1: कहे देखा अगर प्लग अगर लगल रही उमेन न
0: हाँ
1: तो अभी देखा तड़क बड़क वाला
0: हाँ
1: होगा कि
0: हाँ
1: मौसम आवे वाला बा तो
0: हाँ
1: उमेन अगर आदत न रही उमेन लगले रही तो जल
0: जल
1: जाए।
0: जाए, सही
1: तो
0: बात
1: ऐसे
0: कहना
1: थोड़ा सा बचाव करे के चाहिए। और तापमान संतुलित रखल भी बहुत जरूरी बा।
0: हाँ
1: और छोट छोट प्रयास से बिजली के काफी बचत हो सकेला।
0: हाँ हाँ
1: ऊर्जा बचावल मतलब देश का संसाधन बचावल होला।
0: बिल्कुल
1: और
0: भैया
1: ई आदत जन रही
0: हाँ
1: भविष्य खातिर बहुत ही ज्यादा लाभदायक बा।
0: बिल्कुल बिल्कुल भैया, जो हम लोग सोची ला ना कि लाभ हानि हमेशा खाली रुपया पैसा में सोची ला, ओके अपने जीवन में भी शामिल करे के
1: उतारल जाए।
0: चाहिए।
1: बिल्कुल
0: और जैसे जब देखें अब मौसम वह आवता है तेज आंधी तूफान वाला, तो ऐसे समय थोड़ा दिमाग से काम लेवे के बाद जो खुली जगह बा वहाँ खड़ा ना हुए के चाहिए। साथ ही साथ जब बिजली कड़के ऊ दौरान भैया पेड़ के नीचे शरण लेवे से जरूर बचे के
1: बिल्कुल
0: चाहिए। कच्चा मकान बा उमन रहे वाले लोगन के तो और सावधानी बरते के चाहिए, कहे से कि बारिश जब ज्यादा हो जाला तो के गिरे के भी डर बनल रहला।
1: बिल्कुल
0: और
1: बिल्कुल
0: बरसात के समय जो जल भराव वाला क्षेत्र हो भैया उसे दूरी बना के रखे
1: बिल्कुल
0: के
1: दूरी
0: चाहिए।
1: बनाना चाहिए। देखा अभी कई लोग जनबा गर्मी की छुट्टी मनावे खातिर जनबा इसने इसने जगह पे गए
0: हाँ
1: हो
0: हाँ
1: कि वहाँ देखा पहाड़ गिर जात बा या धंस
0: हाँ
1: जात बा जमीन
0: बिल्कुल
1: तो इसने जगह से बचे के चाहिए थोड़ा बहुत। और
0: हाँ
1: देखा लू चले के समय जन रहा
0: हाँ
1: उस समय जनबा पर्याप्त तो पानी कहली ना कि जैसे कभी
0: हाँ
1: लू चल जात बा कभी तेज बरखा भी नहीं हो जात बा
0: हाँ
1: तो लू चले के समय जनबा पर्याप्त पानी हमेशा पिए के चाहिए।
0: हाँ
1: और सिर ढक के बाहर निकले से गर्मी के असर कम होला।
0: सही बात
1: और पशु पक्षी खातिर जिनकी अनबोलता हुआ उनके जन खातिर पानी का व्यवस्था भी जरूर करे के चाहिए। कहे से देखा आपदा के समय प्रशासन का निर्देश जैसे पालन करल जाला
0: हाँ हाँ
1: वैसे ही देखा इनकरे बदी आपदा बा जन
0: आप
1: गर्मी इतना
0: देवा
1: तो चलत बा
0: सही
1: तो
0: बात
1: उनके जगह कहीं न कहीं कुछ पुरवा में या कुछ ऐसे जगह
0: हाँ
1: पानी का व्यवस्था जरूर कर देवे के चाहिए।
0: हाँ
1: और सुरक्षा के नियम हर तरीके से अपने जीवन में बचाव ही करेला।
0: सही बात कहला भैया। और देखा भैया, जब मौसम बदलेला तो कहीं ना कहीं हम लोगन के यह याद दिलावेला कि पर्यावरण के प्रति हम लोग का भी कोनो
1: जिम्मेदारी
0: जिम्मेदारी
1: है,
0: बा।
1: बिल्कुल।
0: अधिक से अधिक जनों पेड़ लगावे के चाहिए। समय की तो मांग हो कि जितना पेड़ पालो लगी उतने हरियाली रही,
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: उतने जोन हो मौसम बढ़िया रही, खेती बाड़ी अच्छा हुई
1: हाँ,
0: हर
1: पेड़
0: तरीके
1: लगावे
0: से।
1: से अच्छा हो के बल्कि संरक्षण भी ज्यादा
0: संरक्षण भी
1: जरूरी है,
0: जरूरी बा, बिल्कुल
1: बिल्कुल
0: भैया। और जोन हो पेड़ जोन हो वातावरण के संतुलित बनावे में भी मदद करेला, तो
1: बिल्कुल
0: सभी के
1: बिल्कुल।
0: मालूम बा हमनों के एक जोन हो हमेशा
1: ख्याल
0: कर
1: रखे के
0: ख्याल
1: चाहिए।
0: रखे के चाहिए। और जोन पानी बरसेला उकर जल संचयन से पानी के संकट कम हो सकेला। आजकल देखा लोग गड्ढा खुदवा के

0: वर्षा का पानी इकट्ठा करत
1: इकट्ठा
0: हुआ
1: करत
0: जो कि
1: हुआ।
0: धरती में जाए तो जैसे जो जल का समस्या बा उतनी कम हो जाए।
1: बिल्कुल, माटी माई में नमी
0: हाँ
1: धारण करने की क्षमता भी बढ़े।
0: हाँ तो ऊर्जा और पानी के बचत एक हम लोगन का जो कहल जाला कि सामाजिक जिम्मेदारी बा भैया।
1: बिल्कुल सही कहलिए गंगा बहन। और देखा गांव गांव में जागरूकता अभियान जन बा वो चलावल जा रहल बा। बचवा लोग के भी संरक्षण के शिक्षा देवे के चाहिए।
0: हाँ
1: और साथे साथ देखा प्राकृतिक संसाधन बिल्कुल सीमित बा, ऐसे अकर एकर जन बा संरक्षण भी जरूरी बा। और
0: हाँ
1: मिलजुल के प्रयास से ही जन बा बेहतर भविष्य बनावल जा सकेला। सजग समाज ही सुरक्षित समाज के आधार होला।
0: बिल्कुल भैया। और देखें साथी जो नवीनीकरणीय चलत है ऊर्जा आज के समय में विकास के मजबूत आधार बनत जा रहल बा। ये ऊर्जा प्रकृति से प्राप्त होके वाली ऊर्जा हो और
1: बिल्कुल
0: जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और जल ऊर्जा एकर प्रमुख उदाहरण बा।
1: बिल्कुल
0: ये स्रोत के बार बार उपयोग कइल जा सकला। ये
1: बिल्कुल
0: संसाधन जल्दी समाप्त नहीं होला।
1: बिल्कुल। देखा भाई विश्व स्तर पे कई जगह देखा लड़ाई झगड़ा चलत बा,
0: हाँ
1: तो
0: हाँ
1: ओकर असर देखा अपने देश पे भी पड़ रहल बा।
0: बिल्कुल
1: वो ऐसने में अगर अपने संसाधन के
0: हाँ
1: अगर प्रयोग करल जाए अपने ही देश के
0: हाँ
1: संसाधन के, तो ज्यादा अच्छा रहे, दूसरे के ऊपर से निर्भरता खत्म हुई।
0: बिल्कुल
1: तो कहे का मतलब ये कि नवीकरणीय ऊर्जा के से जन बा प्रदूषण भी कम होला,
0: हाँ
1: पर्यावरण संरक्षण में एकर इतना महत्वपूर्ण योगदान बा कि मत पूछा। वो स्वच्छ ऊर्जा स्वस्थ जीवन के आधार होला,
0: हाँ
1: भविष्य खातिर ये सबसे भरोसेमंद विकल्प मानल जा रहल बा। और देखा ये दिशा में जनबा जागरूकता बढ़ावल सबसे ज्यादा जरूरी बा।
0: बिल्कुल
1: सौर ऊर्जा गांव और शहर दोनों जगह देखा बहुत ज्यादा उपयोगी बा।
0: बिल्कुल भैया। और देखें जो आजकल घर के छत पर सोलर पैनल लगावल जात बा ये बहुत वृहद स्तर पे हो रहल बा। आज
1: बिल्कुल
0: हर
1: भैया
0: जगह दिखाई देत बा। ये बहुत
1: बिल्कुल।
0: अच्छी पहल बा। और ऐसे देखें बिजली के कम खर्चा भी हो जाला। सूरज का जो रोशनी बा जे के हम लोग सोचिला रे कितना गर्मी बा वही से हमके लाभ मिलता,
1: बिल्कुल
0: उससे
1: बिल्कुल।
0: हमके ऊर्जा प्राप्त होता। और डीजल भइल कोयला ए पर से निर्भरता हमार लोग का कम हो
1: कम हो
0: जाला।
1: जाए बिल्कुल।
0: ऊर्जा उत्पादन के ई जो सस्ता तरीका बनावल गल हो ना भैया ये बहुत लाभकारी बा।
1: बिल्कुल
0: खासकर जो ग्रामीण क्षेत्र में एकर उपयोग बहुत तेजी से बढ़ गल।
1: बिल्कुल। और देखा गंगा बहन हमारे का
0: हाँ
1: बात बत कही तो होत रही,
0: बिल्कुल भैया
1: लेकिन आज के पंचायती के विशेष क्रम में
0: हाँ
1: जलवायु परिवर्तन प्रकृति से प्रेरित
0: हाँ
1: ये विषय पर जनबा अध्यापक हुवन रमेश कुमार यादव भैया,
0: हाँ
1: उनसे अपन भोला भैया बात बत कही बतियाऊ करत हुवन।
0: हाँ
1: तो हम तो कहते कि संदेश सुन करके जनबा ये जरूरी जानकारी सुनल जाए।
0: चल
2: पता है दुनिया के कई विकसित देश ऐसे भी हैं जहां मुफ्त इलाज एक सपना है, और हमारे यहाँ वो आम नागरिक का अधिकार। आयुष्मान भारत से 60 करोड़ से अधिक लोगों को मिल रहा है 5 लाख तक का मुफ्त इलाज, और 19,000 जन औषधि केंद्रों पर 90% तक सस्ती दवाइयाँ।
3: किसी एक व्यक्ति की जमीन, घर, गहने या दूसरा कोई सामान बीमारी के खर्च में बिकने से बचा है, गिरवी रखने से बचा है, तो ये आयुष्मान भारत की बहुत बड़ी सफलता है।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
4: ये कहानी है एक नर्स और उसके अंतर्मन की।
5: आगे सैलरी?
6: हाँ।
5: नए झुमके?
6: ना, पहले बचत,
5: पहले झुमके।
6: सुनो, हर महीने थोड़ा बचाओ और थोड़ा निवेश करो, और कुछ इमरजेंसी के लिए भी बचाओ ताकि रहो टेंशन फ्री।
5: लेकिन झुमकों का क्या?
6: जाते हो कि
5: हाँ?
6: लगाओ इंजेक्शन।
7: RBI कहता है
8: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।
9: श्रोताओं, पर्यावरण को लेकर के आज जितने चिंतित हैं लोग उतने चिंतनशील भी हैं। आज विश्व पर्यावरण की अगर बात की जाए हम लोग, तो जलवायु परिवर्तन पर केंद्रित है। पृथ्वी द्वारा भेजे जा रहे गंभीर संकेतों और हमारे द्वारा बदले में भेजे जाने वाले संकेतों पर तमाम तरह के जो संकेत मिलते हैं, कभी देखता है आदमी की बाढ़ आ जाती है, कभी बरसात बाद में होना, ठंड का मौसम समय से ना होना, गर्मी समय से ना होना से लगायत फसल उत्पादन से लेकर के तमाम तरह के संकेत मिलते हैं। परंतु व्यक्ति आज या तो नासमझ बन करके है या फिर जो है समझना नहीं चाहता है, जबकि पशुपालक लोग उनके शरीर को देख करके रोए खड़े हैं, कान गिरे हुए हैं, ये देख करके समझ लेता है कि जो है कि कहीं न कहीं हमारा मवेशी बीमार है। ठीक उसी प्रकार तमाम तरह के अपने जो नहीं बोलने वाले चीज हैं उनको भी देख करके समझ जाते हैं, लेकिन प्रकृति को जल्दी लोग समझ नहीं पा रहा है। अंधाधुंध जो है कि या कटान कह दिया जाए जो जलवायु को सही सलामत रखने का काम करता है, उसके वजह से या जिन परिस्थितियों में आज जो वातावरण की स्थिति है, पर्यावरण का जो स्थिति है बहुत ही दयनीय हो चुका है। क्या कुछ किया जा सकता है, इसका कारण क्या है, आज इन विषयों पर बातचीत करने के लिए सोनभद्र जनपद अंतर्गत दुद्धी से श्री रमेश कुमार यादव जी हैं। आप बहुत ही चिंतनशील व्यक्ति हैं, पर्यावरण प्रेमी हैं और लोगों को जागरूक करने में जितने तत्पर रहते हैं उतना ही जो है कि खुद भी लग करके काम करते हैं, तो आज बातचीत इन्हीं विषयों पर होगी। रमेश कुमार यादव जी, आपका रेडियो कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। इस समय जो स्थिति देखी जा रही है, हर साल पौधरोपण होते हैं, हर साल जो है कि व्यक्ति चिंतनशील रहता है कि किस प्रकार से हम लोग आगे की ओर काम करते रहें ताकि जो है कि हमारा पर्यावरण संतुलित रहे, सही रहे। क्या आपका सलाह है, कहाँ से चूक हो पा रही है, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं।
7: जी साथियों नमस्कार। जैसा कि आप देखते हैं, सुनते भी हैं कि हर साल 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है।
9: जी
7: अगर इसकी शुरुआत की बात हम करें तो पहला उत्सव 5 जून 1974 को यह मनाया गया था। संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा ये घोषित पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। पहली बार जो मनाया गया था उसका जो थीम था कि केवल पृथ्वी, यानी पृथ्वी पर हमारी जो भी सुविधाएं हैं प्रकृति द्वारा प्रदत्त हैं उसको किस तरह से संरक्षण किया जाए। जहाँ तक बात 2026 की है तो 2026 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने इसको थोड़ा सा परिवर्तन किया है
9: जी।
7: इसको जलवायु के रूप में मनाने का निर्णय लिया है कि यह जो पर्यावरण दिवस मनाया जाएगा जलवायु के लिए मनाया जाए
9: जी।
7: मुख्य रूप से इसमें ये कहा गया कि हमारी जो जल स्रोत है वो क्या है कि प्रतिदिन खिसक जा रही है, जिससे क्या हो रहा है कि पृथ्वी पर जल संकट जैसी स्थिति, हालांकि अभी कोई ऐसी बात नहीं है
9: जी,
7: लेकिन फिर भी आशंका होती है कि जल स्तर जो तेजी से खिसक रहा है उसका कारण ये भी है कि पर्यावरण का जो मानव जीवन है या मशीनीकृत द्वारा कह लें अंधाधुंध दोहन हो रहा है
9: जी। जी
7: पेड़ों की कटान आप देख लीजिए, मनुष्य अपनी थोड़ी सी लालच में जंगलों को नष्टनाभूत करते चला जा रहा है। आप कन्हर नदी जो हमारे यहाँ है, ठेमा है, लहुआ है,
9: बिल्कुल
7: तमाम ऐसी नदियां हैं जो जीवनदायिनी नदियां कही जाती है
9: जी, जी जी
7: लेकिन जिनका लगातार दोहन से उनका अस्तित्व जो है
9: खत्म,
7: क्या संकट में पड़ता जा रहा है। हमारी सोनभद्र जिले की पहचान क्या है, सोन नदी है, रेणुका नदी है
9: जी,
7: लेकिन वहां भी आप देखें कि सोन नदी भी धीरे धीरे क्या है दूषित होती जा रही है और उसका जो विस्तार है वो संकुचित होता जा रहा है। जो स्वच्छता की बात हम करते हैं तो नदियों में हमें स्वच्छता नहीं दिखती है
9: जी।
7: उसका मुख्य कारण है कि उसके प्रति हम गंभीर नहीं हैं, जिसका परिणाम हर मनुष्य को भुगतना पड़ रहा है।
9: बिल्कुल
7: क्यों, क्योंकि प्रकृति से जो चीज़ें हमें मिल जाती है निःशुल्क उसे हम पैसे से उपलब्ध नहीं करा
9: उपलब्ध नहीं करा सकते। अब जहाँ आप अभी ऑक्सीजन की
7: अभी ऑक्सीजन की बात आप देखें,
9: पहले जो है कि जो
7: जब कोरोना का समय आया था
9: जी, जी, जी,
7: तो ऑक्सीजन की इतनी किल्लत हो गई थी कि लोगों तक नहीं पहुंच पाई।
9: बिल्कुल
7: ऑक्सीजन आपको मिलेगा कहाँ से, आप कृत्रिम अधिक से अधिक नहीं बना सकते,
9: नहीं बना सकते।
7: प्रकृति प्रदत्त जो ऑक्सीजन है, पेड़ पौधे से जो हमें ऑक्सीजन मिलती है
9: जी, जी, जी।
7: जब पेड़ पौधे ही नहीं रहेंगे तो हमें ऑक्सीजन मिलेगी कहाँ से,
9: तो
7: और पेड़ पौधों और मानव में इतना घनिष्ठ संबंध है
9: जी, जी, जी।
7: कि जिसको हम आप माने किसी भी रूप में उसको परिभाषित कर दे फिर भी वह जो है असंभव ही है।
9: तो निश्चित रूप से जो जीवनदायिनी हैं पेड़ पौधे हैं, जंगल वन है
7: जी,
9: और जो नदियाँ हैं इन पर जो संकट मंडरा रहा है, बहुत से कटान ऐसे चल रहे हैं, नदियों में भी जो रेत हम लोग पाते थे
7: जी, जी।
9: आज रेत भी बहुत ना के बराबर दिख रहा है, जिसमें हम ही लोग के गांव के अपने घर के बच्चे उसमें जाकर के खेलते थे और जो है कि उसके रेत का आनंद लेते थे, कितना जल रहा है, कितना ठंडा हो रहा है,
7: इसे
9: लगाया जितने साफ सुथरा जो था उसमें आज बहुत परिवर्तन हो रहा है।
7: बहुत परिवर्तन हो रहा है, जैसे आप देखें नदियों का जो जल होता है वह पत्थरों से, बालू से, रेत से घिस कर निकलता है
9: जी, जी, जी।
7: उस जल का अगर आप सेवन करेंगे तो मैं तो कहता हूँ आरओ से भी वह शुद्ध जल है। क्यों? क्योंकि पत्थरों के, बालू के बीच से निकल रहा है, वो खुद फिल्टर है, हमको फिल्टर की जरूरत नहीं है।
9: बिल्कुल।
7: लेकिन हम क्या है कि नदी नालों को इतनी दूषित करते जा रहे हैं, अपने कल कारखानों की, सारे जो नहर की, जो नगर की, गांव की जो नालियां हैं, गंदगी है, सब बिना कोई उसको निस्तारित किए सीधे हम नदी में, नालों में प्रवाहित कर छोड़ दे रहे हैं।
9: बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल।
7: तो उसमें क्या है, इतनी जो कृत्रिम उसमें औषधियां हैं, कीटनाशक हैं, उपयोग किया गया है, उससे क्या हो रहा है कि हमारी जल बिल्कुल दूषित हो जा रही है
9: जी।
7: कहीं भी आप देखिए, जहाँ भी जल की सप्लाई होती है, चाहे वो सोन नदी से हो, रेणुका नदी से हो, रिहंद से हो, या आपके ठेमा से हो, कनहर से हो, लगुआ नदी से हो
9: जी,
7: जो आसपास के नगर पंचायत है, गांव है,
9: हुँ।
7: तो वहाँ से जल की सप्लाई होती है। सप्लाई होती है तो होता क्या है कि उसको शुद्ध करने के लिए जो अलर्ट लगाए गए हैं यंत्र, वो क्या है कि पूरी तरह से उसको उतनी शुद्ध नहीं कर पाते जितनी शुद्ध हमारी नदियाँ बहाव के लिए,
9: बहाव
7: के द्वारा कर लेती है, जिससे जलीय जीव जंतु भी उसका लाभ लेते हैं।
9: और निश्चित रूप से वायु में भी बहुत दूषित है, जिससे कि आपने कहा पेड़ पालो, अभी जो सुबह सुबह देखा जाता है कि जो छोटे छोटे नवोद्भिद पौधे हैं उनको भी काट करके लोग ले आते हैं, अब आगे चल करके वे पेड़ बनते,
7: पेड़ बनते,
9: और पेड़ बनने से पहले ही जो है कि अधिक मात्रा में उनको ला करके घुरान कर दे रहा है लोग। तो इस सबसे मतलब जितने की जरूरत है, अगर वन नहीं रहेगा तो जीव नहीं रहेगा और हमारा जीवन खतरे में।
7: देखिए, मानव को सबसे पहले तो ये समझना होगा कि हमें जो ऑक्सीजन गैस की ज़रूरत है वो हमें पेड़ पौधों से ही मिलता है
9: जी,
7: और जो हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस छोड़ते हैं
9: उनको पेड़ पौधे शोषित,
7: पेड़ पौधे शोषित करते हैं।
9: अच्छा, शोषित करने वाला नहीं रहेगा तो
7: नहीं रहेगा,
9: हो जाएगी
7: अधिकता, हो जाएगी
9: बिल्कुल।
7: तो फिर क्या है, दोनों में सामंजस्य नहीं हो पाएगा,
9: नहीं हो पाएगा। बिल्कुल, बिल्कुल।
7: जैसे आप देखते हैं कि प्रकृति भी अपना भोजन बनाती है, जैसे आप लोगों ने देखा होगा, बच्चे पढ़े होंगे कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा पेड़ पौधे भी अपना भोजन बनाते हैं।
9: बिल्कुल, बिल्कुल।
7: उनको भी ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत पड़ती है। तो हमारा संबंध पेड़ पौधों से काफी गहरा है।
9: बिल्कुल।
7: इसीलिए आप देखिए कि हर साल 5 जून से ही पौधरोपण की प्रक्रिया शुरू हो जाती है, जो 7 जुलाई को बृहद रूप से मनाया जाता है। इसको पेड़ पौधों, वन विभाग इसको लेकर के सारे खर्च करते हैं। अभी से ही आप देखिए जगह जगह गड्ढा खुदवाना, उसके लिए व्यवस्था करना, नर्सरी में पौधों को सुरक्षित रखना शुरू कर दिया है। लेकिन बड़ा अफसोस होता है कि कुछ जो मानव हैं, कुछ ऐसे लोग हैं, ग्रामीण परिवेश के लोग या थोड़ी सी लालच में कहीं के भी लोग
9: जी, जी।
7: जो पौधे हमारे तैयार हो रहे हैं उसको बचपन में ही नष्ट कर दे रहे हैं।
9: आग लग जाएगा,
7: आग लग जा रही भी, आप देखे कई जगहों पे आग लगी।
9: जितने नवोद्भिद हैं झुलस गए,
7: वो झुलस गए,
9: जल गए, खत्म हो गए।
7: जो पौधे जन्म लेने वाले हैं वही खत्म हो गए, जो कुछ बड़े हुए वो खत्म हो गए,
9: जो उनके बीज हैं वो भी सब जल,
7: बीज भी सब जल गए।
9: बिल्कुल।
7: तो क्या होता है, जैसे हर साल बरसात के बाद नए पौधे जो उगते थे वह उगना बंद हो जाएंगे, जिस जगह पे आग लग गई वहाँ पे पौधे नए नहीं उग पाएंगे। तो इसको लेकर के जब आम नागरिक की इसमें सहभागिता हो, चाहे वो गांव से जुड़ा हो, शहर से जुड़ा हो, कहीं से भी हो, और इसको लेकर के सबसे ठोस कदम उठाने की जरूरत है कि वन विभाग इसमें काफी सक्रिय भूमिका निभाए और गांव-गांव में जाकर लोगों को इसके प्रति जागरूक करे।
9: बिल्कुल, बिल्कुल।
7: कि पेड़ पौधों से आपको क्या फायदा है। इसमें वन विभाग की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है, और इसको लेकर के हम निवेदन करना चाहेंगे कि वन क्षेत्र के जो भी अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, जिम्मेदार हैं, इसको जो हर साल जिस तरह से आप पौधे लगाते हैं उसके संरक्षण और उसके बचाव बचाव को लेकर के भी गांव-गांव में आप कम से कम महीने में एक बार जागरूकता कैंप जरूर लगावें, ताकि हमारी
9: जागरूकता का भाव में है, उसी जागरूकता क्रम में हम लोग भी बात कर रहे हैं,
7: बात कर रहे हैं,
9: श्रोता लोग सुन रहे हैं, वे अपना जाने की मतलब कितना बहुमूल्य चीज है। हमको देखने में भले लगता होगा कि एक ठो हम काटे हैं, दो काटे हैं, लेकिन एक दो करके एक जो बहुत बड़ा वृक्ष जब बन जाए, तैयार हो जाएगा, उसमें कितने डालियां हो जाएंगी, कितने पत्तियां हो जाएंगी, कितने ऑक्सीजन देने की क्षमता बढ़ जाएगा, और कितने जो है कि कार्बन डाइऑक्साइड शोषित करने की क्षमता बढ़ जाएगा। इस प्रकार से तरह तरह के जो है कि मृदा के भी संरक्षण में पेड़ पौधे की बहुत भूमिका है। उसे जो पत्तियां गिरती हैं वो खाद के रूप में भी प्रयोग हो पाता है।
7: बिल्कुल, बिल्कुल।
9: तो चूंकि रेडियो के माध्यम से बहुत सारे लोग सुन रहे हैं, इसको समझने की जरूरत है। अब चलते चलाते आओ कुछ सुझाव देते हैं लोगों को, जिससे कि हम लोग सक्रिय हों, सभी लोग समझदार हों, और जो है कि इसके संरक्षण के प्रति अपना ध्यान दें।
7: देखिए, किसी भी दिवस को सिर्फ मनाने से कोई बहुत बड़े फायदा होने वाले नहीं है।
10: जी जी जी।
7: आज के समय में क्या है कि लोग दिखावे में दिवस मनाते हैं, फैशन का दौर है
10: जी।
7: जन्मदिन से लेकर के तमाम एनिवर्सरी से लेकर के सारे दिवस तो मनाए जाते हैं, लेकिन उसका जो है संरक्षण कैसे हो,
10: बिल्कुल
7: उसको लेकर के हम आगे कैसे आवे। पर्यावरण दिवस हो गया, तमाम ऐसे दिवस जो हम हर साल मनाते हैं,
10: जी, जी, जी।
7: उसके लिए सबसे जरूरी है हमारी प्रकृति का संरक्षण हो।

0: और प्रकृति में पेड़ पौधों से लेकर के हमारे नदियाँ, पहाड़, जो पत्थर हैं, हमारी मिट्टी है
1: जी जी
0: जिसका
1: जी
0: अंधाधुंध दोहन हो रहा है, उसे संरक्षण की ज़रूरत है। हर साल हम भले पेड़ पौधे लगाते हैं,
1: जी जी
0: सब कुछ करते हैं, लेकिन उसकी जब अच्छे ढंग से संरक्षित नहीं कर पाएंगे, तब तक हमारी जो पर्यावरण दिवस मनाने की सार्थकता है वह
1: वो
0: पूर्ण रूप से
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: सफल नहीं हो पाएगी, भले हम इसको मनाते रहें या चलाते रहें। तो हम ये सब अपील करना चाहेंगे लोगों से
1: जी
0: कि जिसको जो भी चीज़ आप मना रहे हैं उसको एक संरक्षण के रूप में लीजिए,
1: बिल्कुल
0: और
1: बिल्कुल
0: पेड़ पौधों
1: बिल्कुल
0: को अपने आप पुत्र के रूप में उसको पालिए, पोसिए, उसको
1: बिल्कुल
0: बड़ा करिए, जिससे आपको ऑक्सीजन मिले और आप स्वस्थ सुखी इंसान के रूप में पृथ्वी पर विचरण करते रहें।
1: बिल्कुल बिल्कुल। तो कितना अच्छा सुझाव रहा श्री रमेश कुमार यादव जी का। निश्चित रूप से जो अभी हम लोग बातचीत कर रहे थे कि जन्मदिन मनाते हैं या पुण्यतिथि मनाते हैं या फिर जो है कि मैरिज एनिवर्सरी मनाते हैं, तो इसी अवसर पे भी हम लोग वृक्षारोपण कर सकते हैं, पौधरोपण करके, और जो है कि याददाश्त के रूप में कि ये इस जन्मदिन पर जो है कि हम ये पौध लगाए थे, इस एनिवर्सरी पर जो है कि हम ये पौध लगाए थे, ऐसे करके भी जो है कि अच्छा से अच्छा ऐतिहासिक काम कर सकते हैं और पर्यावरण के प्रति हम लोग जागरूकता फैला सकते हैं और एक दूसरे से सुकून की बातें कर सकते हैं। इतनी अच्छी जानकारी दे रहे थे श्री रमेश कुमार यादव जी, आपका इतना अच्छा सुझाव के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
2: आपको पता है, जो सपना कुछ विकसित देशों की बेटियां भी नहीं देख सकती हैं, वो सपना भारत की बेटियां साकार कर रही हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से लेकर के सेना में स्थायी कमीशन तक, ड्रोन से लेकर फाइटर जेट्स उड़ाने तक, भारत की बेटियां नामुमकिन को मुमकिन कर रही हैं।
3: हमारी माँ बहनों का गर्व, उनका योगदान, उनका सामर्थ्य आज देश अनुभव कर रहा है।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
4: पता है, दुनिया के कई विकसित देश ऐसे भी हैं जहां मुफ्त इलाज एक सपना है, और हमारे यहां वो आम नागरिक का अधिकार। आयुष्मान भारत से 60 करोड़ से अधिक लोगों को मिल रहा है 5 लाख तक का मुफ्त इलाज, और 19,000 जन औषधि केंद्रों पर 90% तक सस्ती दवाइयां।
5: किसी एक व्यक्ति की जमीन, घर, गहने या दूसरा कोई सामान बीमारी के खर्च में बिकने से बचा है, गिरवी रखने से बचा है, तो ये आयुष्मान भारत की बहुत बड़ी सफलता है।
4: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
6: गंगा बहन।
7: हाँ भैया।
6: देखा भाई, संदेश सुनत रही जाओ। संदेश से पहले जनबा जानकारी रहल कि जलवायु परिवर्तन प्रकृति के से प्रेरित ये विषय पर रमेश कुमार भैया से अपन भूलभिया के बाद बोलते हैं मन सुनत रही जा।
7: बिल्कुल भैया।
6: और इतना अच्छा जानकारी सुनने के बाद मन फेर तो होबे करी, लेकिन कैसे कराओ थे मन फेर?
7: बिल्कुल भैया, आप देखे अपन राम कृपाल और उनकर संगतिया लोग जुट गए हुन, तो एक पूर्वी सुनल जाये, लेकिन एक पूर्वी सुनल जाए, लेकिन हम तो कहते हैं कि बिना देर के लिए पहले पूर्वी सुन लेवल जाए, उसके बाद आगे का कार्यक्रम। हाँ,

0: गंगा बहन
1: हाँ भैया,
0: देखा इतना अच्छा मनमन सहन सुनन गई, अभी ये देखा हमन राम आशीष यादव भैया उनका संगाती लोन का गावल एगो गवनई के माध्यम से जनबा, पूर्वी के माध्यम से जनबा,
1: हाँ
0: हमन सुनत रह लीजा, मन फिर सुनत रह लीजा।
1: हाँ
0: आज
1: हाँ
0: देखा ढोलक का मधुर थाप और हारमोनियम के मीठ लय से पूरा पंचायती का माहौल देखा एकदम खुशनुमा बन गई बा।
1: बिल्कुल भैया, देखा यही मधुर माहौल के बीच अपन जोन कुछ किसान भैया बहन लोग हवन अपना खेती खलिहान के काम निपटा के पंचायत में जुट गए बाना। तो ज्यादातर किसान लोग के कहना बा कि मृदा स्वास्थ्य सुधार के बिना खेती अधूरी मानल जाला।
0: बिल्कुल सही कहलन। और देखा यही बीच में खेत बचाओ अभियान ये विषय पे जनबा केंद्रीय कृषि मंत्री का एगो संदेश बा
1: हाँ
0: किसानन खातिर खास तौर से बा, तो
1: हाँ हाँ
0: हम तो कहते ना कि पहले यही बीच में उनका संदेश सुन लिया जाए
1: चला।
0: पहले।
2: प्रिय किसान बहनों और भाइयों, ये धरती हमारी माँ है, ये खेत केवल अन्न और फल सब्जी नहीं देते, ये हमें जीवन देते हैं। लेकिन अत्यधिक केमिकल फर्टिलाइजर के और पेस्टिसाइड के असंतुलित उपयोग के कारण ये धरती माता बीमार हो रही, इसकी उर्वरा शक्ति लगातार कम होती जा रही है। और इसलिए हमारे विजनरी और समय के बहुत पहले और बहुत दूर तक की सोचने वाले प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने आह्वान किया है खेत बचाओ। 1 जून से 30 जून तक खेत बचाओ अभियान पूरे देश में चलेगा। इस अभियान के तहत आपके गांव में कृषि वैज्ञानिक, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज के विद्वान, केवीके के लोग, कृषि विज्ञान केंद्रों के केंद्र और राज्य सरकार के अधिकारी, जन प्रतिनिधि, जन नेता और प्रगतिशील किसान गांव गांव जाएंगे और हमारे खेत की आवश्यकता के हिसाब से संतुलित कितना खाद डालना चाहिए इसकी चर्चा करेंगे। नकली पेस्टिसाइड के बारे में बताएंगे, कैसे पहचाने, खाद्य तेल का कम उपयोग करें और अलग अलग योजनाओं के पात्र लाभार्थी भी चिन्हित किए जाएंगे। आप सबसे मेरी अपील है कि इस अभियान में भाग लीजिए और वैज्ञानिक जो कहें उनकी सलाह मानकर खाद का संतुलित उपयोग कीजिए, धीरे धीरे प्राकृतिक खेती की ओर बढ़िए। धरती कहे पुकार के कि अपनी माँ के साथ अन्याय मत करो, हम खेत बचाएं तभी खेती बचेगी और आने वाली पीढ़ियों का भविष्य बचेगा। धन्यवाद।
3: कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।
0: गंगा बहन
1: हाँ भैया,
0: देखा कितना अच्छा संदेश रहल
1: हाँ
0: कि खेत बचाओ और

0: होला कि कैसे अपने माटी में कौन चीज का कमी बा, कौन
1: हाँ
0: चीज का अधिकता बा, वही के हिसाब से अपन जैविक खाद का प्रयोग कर जा
1: बिल
0: सकेला।
1: बिल्कुल बिल्कुल भैया। और अपन किसान भाई लोग कहत बाए कि देखा इ साल जोन हम मौसम का चाल कुछ अलग ही देखे के मिलत बा,
0: बिल्कुल
1: तो
0: बिल्कुल।
1: कभो तेज धूप हो जात बा, तो कभो आंधी तूफान का मौसम बन जात बा, कभो अचानक बरसात हो जात बा, तो इ जोन आसमान मौसम से फसल पशुधन और जोन आम जन जीवन बा भैया बहुते ज्यादा प्रभावित हो रहल बा।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: ऐसे समय में अपन सावधानी बरतल जरूरी बा और सजग भी रहना जरूरी बा।
0: बहुत जरूरी बा। और खास तौर से मौसम विभाग के सूचना के आधार पे जौन बा अपन खेती किसानी पर जरूर ध्यान देवे के चाहिए। हमेशा नियमित तौर पे मौसम विभाग का जौन पूर्वानुमान बा ओके सुने के चाहिए।
1: बिल्कुल
0: और खास तौर से खेती के जौन काम हवे वो बिना मौसम पूर्वानुमान के नहीं हो सकेला।
1: हाँ
0: सतर्कता ही जौन बा नुकसान कम करे का सबसे बढ़िया उपाय बा। किसान भैया लोग भी जन चाहियन कि भैया खेत में पानी ओकर निकासी के समुचित व्यवस्था करें, और अचानक जौन बा बरसात से जौन जल भराव के समस्या होले
1: हाँ हाँ
0: उसे भी जौन बा फसल के भारी नुकसान हो सकेला,
1: बिल्कुल
0: तो उसे
1: भैया
0: भी बचावे के चाहिए।
1: बिल्कुल बिल्कुल। अपन जुगत लगा के काम करे एक बार, साथ साथ देखे मेड़बंदी और नाली जोन बनल है उसे पानी के बहाव नियंत्रित हो जाला,
0: बिल्कुल।
1: और जोन तेज हवा के संभावना जब होला तो कमजोर पेड़ पौधा के सहारा देवे के चाहिए।
0: बिल्कुल।
1: कटाई योग्य जोन फसल हमार खेते में खड़ल बा ओके सही समय पे सुरक्षित जगह पहुंचावल जरूरी बा। जोन भंडारित अनाज बा ओमे नमी से बचावे के जोन व्यवस्था उचित उपाय बा ओके
0: ओके
1: समय
0: करे
1: रहते
0: के
1: कई लेवे
0: चाहिए।
1: के बा।
0: बिल्कुल।
1: पशुशाला के मजबूत बनावे के बा, कहें कि देखें जब आंधी तूफान चलेला ना तो कोई के नहीं देखेला, समेट के ले जाला, तो
0: बिल्कुल
1: ऐसे
0: बिल्कुल।
1: समय ई भी ध्यान देवे बा कि जोन अपन पशुशाला बा ओके मजबूती
0: मजबूत
1: रहे।
0: बनाने के चाहिए।
1: हाँ
0: बिल्कुल सही कहते हैं गंगा बहन। और देखा ऊर्जा और प्राकृतिक संसाधन का बचत सबसे ज्यादा जरूरी बा। नई तकनीक और वैज्ञानिक सलाह के अपना करके
1: हाँ
0: ओके फायदा लिहल जा
1: बिल्कुल
0: सकेला।
1: भैया
0: और देखा कृषि विभाग का सुझाव पर अमल करे के चाहिए हमेशा। हमेशा तरह तरह के जन ज्ञान देलन
1: हाँ
0: ओके हमके समझ करके अपने खेती में अपनावे के चाहिए।
1: बिल्कुल
0: सामूहिक प्रयास से ही देखा मौसम के प्रभाव कम करल जा सकेला। सजग किसान और जागरूक समाज वो हमन के सुरक्षित भविष्य के आधार होला। और देखा गंगा बहन किसान भैया लोग जनबा उपजाऊ मिट्टी खेती का सबसे बड़ा धन होला उनके खाते। तो अगर माटी माई स्वस्थ रही है तो
1: हाँ
0: फसल भी जाहिर सी बात बा बढ़िया
1: बढ़िया
0: होवे
1: हुई
0: करी।
1: बिल्कुल बिल्कुल। और देखे बहर बीच बहुत ज्यादा रासायनिक खाद का उपयोग होता रहा, लेकिन अब अपन किसान भैया लोग बहुत सजग
0: जागरूक
1: हो
0: हो
1: गए
0: चलो।
1: हुआ,
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: जागरूक हो गए हुआ, लगातार जो आकाशवाणी के माध्यम से रेडियो के माध्यम से सूचना देवल जाला तो के सुनन अभी और अपनाव अभी न,
0: बिल्कुल
1: तो जो
0: बिल्कुल।
1: रासायनिक खाद के अधिक उपयोग से देखे माटी का जो गुणवत्ता प्रभावित हो जाला, ये स्थिति में जैविक खाद का जो महत्व बा वो और बढ़ जाला
0: बढ़
1: भैया।
0: जाला। बिल्कुल।
1: और जैविक खाद माटी में जो जरूरी पोषक तत्व बा ओके उपलब्ध करा देवेला, तो ऐसे माटी के जो संरचना बा पूरा वो बहुत मजबूत हो जाला, तो पानी धारण करे के जो क्षमता भी बढ़ जाला, और साथे साथे जो माटी के जीवांश पदार्थ बा ओकर भी मात्रा
0: मात्रा
1: बढ़
0: बढ़
1: जाला।
0: जाला। बिल्कुल सही कहथिन गंगा बहन। और स्वस्थ माटी जोन होला वो बेहतर उत्पादन प्राप्त होला उसे। और किसान भाई लोग के भी जोन बा जैविक खाद अपनावे के चाहिए।
1: हाँ
0: कई लोग अपनावत भी हुए
1: बिल्कुल
0: ज्यादातर लोग। और
1: हाँ
0: गोबर खाद हो चाहे कंपोस्ट खाद या वर्मी कंपोस्ट जैविक खाद के प्रमुख रूप से के प्रयोग करे के चाहिए।
1: हाँ
0: और देखा ई खाद जोन बा प्राकृतिक तरीका से तैयार करल जाला
1: हाँ
0: और एकरे उपयोग से जोन बा माटी के उर्वरता जोन बा धीरे धीरे बढ़ेला। और माटी में लाभकारी सूक्ष्म जीव जन होलन जैसे केचुआ उचुआ होलन
1: हाँ
0: वो
1: हाँ
0: जोन बा सक्रिय हो जाला।
1: बिल्कुल भैया। और फसल साथ ही साथ देखा फसल भी जड़ से मजबूत बने लगेला, आंधी तूफान आई तो भी अपन फसल खड़ा रही। रासायनिक खाद पर जब निर्भरता कम हो जाए तो खेती के लागत में भी कमी आ जाला।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: जैविक खेती से देखें पर्यावरण पर भी सकारात्मक प्रभाव हो जाला, फसल के गुणवत्ता भी बेहतर हो जाला, तो ई टिकाऊ खेती के मजबूत
0: आधार
1: आधार
0: बा।
1: बन
0: बिल्कुल
1: जाला।
0: सही कहते
1: हर
0: हैं
1: किसान भाई अपन खेत में जैविक खाद के उपयोग
0: के
1: बढ़ावे
0: बढ़ावे के
1: चाहत
0: चाहिए।
1: होवन और बढ़ावत भी होवन।
0: बिल्कुल बिल्कुल सही कहते हैं। अब कई लोग देखिए ना कि अंधाधुंध जनवा फसल जैसे कट गई तो जन अवशेष बाके लोग जलावे के चक्कर पड़ जाला, तो
1: बिल्कुल
0: बल्कि ओके जलावे के नहीं
1: हाँ
0: ओके खाद बनावे के चाहिए।
1: हाँ
0: और नाडेप कंपोस्ट या बर्मी कंपोस्ट जनवा इकाई स्थापित करके ओकर प्रयोग करे के चाहिए। और देखा हरी खाद के उपयोग भी जनवा
1: हाँ
0: बहुत ज्यादा लाभदायक होला।
1: लाभकारी बा।
0: और दलहनी फसल हो माटी में जनवा नाइट्रोजन बढ़ावेला उम्र मदद करेला। और देखा फसल चक्र अपनाए के भी जनबा मृदा स्वास्थ्य खातिर जनबा बहुत
1: बहुत
0: जरूरी
1: जरूरी
0: होला
1: बा।
0: ओके
1: हाँ हाँ
0: अपनावल जा सकेला।
1: बिल्कुल
0: और
1: बिल्कुल
0: जैविक उपाय से माटी के जीवन शक्ति बढ़ेला।
1: बिल्कुल भाई।

0: या जोन देखा अपन भविष्य बा हो वो खेती खातिर इतना महत्वपूर्ण बा कि संतुलित पोषण से खेत अधिक उत्पादक बनेला। ऐसे किसान के आमदनी में भी सुधार हो जाला, आपन आर्थिक स्थिति भी बदल जाला।
1: बिल्कुल
0: आज जरूरत बा कि हमनी अपने माटी के स्वास्थ्य के बहुत जरूरी बा कि प्राथमिकता दे, मृदा परीक्षण करा के खेत के जरूरत जोन बा ओके समझे के पड़ी। आवे वाली जोन पीढ़ी बा ओकरे खातिर उपजाऊ भूमि बचावल हम लोगन का जिम्मेदारी बा भैया। तो आज से ही लग जाए के बा मृदा स्वास्थ्य सुधार खातिर जोन जैविक खाद बा ओके अधिक से अधिक अपनावल जाए।
1: बिल्कुल सही बात बताओ गंगा बहन। और देखा गंगा बहन हमारे का बात बत कही तो होत रही, लेकिन आज के पंचायती के विशेष क्रम में गोबर धन के ऑर्गेनिक खाद से धान की सफल नर्सरी ये विषय पर प्रगतिशील किसान हुआ गौरी शंकर कुशवाहा भैया, उनसे अपने भोला भैया का बात बत कही हो रहा बा। तो हम तो कहते कि बिना देर के पहले जानकारी सुनल जाए।
2: किसान भाई बहन इस समय गर्मी के मौसम के जुताई आदमी जोरों पर कर रहा है, कहे से कि छिटफुट बरसात भी हो रहा बा जहाँ तहाँ। ऐसने में चाहे अनाज बोए के बात आवे चाहे तो ये कि अच्छा सा जोन बाकी खेत में जोन भी खरपतवार होए या उनमें अच्छा गर्मी सोखे की क्षमता होए, तो ये सब के ध्यान से गर्मी की जुताई के ज़्यादा कुछ बातचीत कर जाला कि अच्छा उत्पादन की कल्पना तब कर जा सकला जब गर्मी की जुताई के लिए होके। उससे भी आदमी आवला कि जीवांश के मात्रा बढ़ावे, जीवांश के मात्रा बढ़ावे के खातिर जोन गोबर धन है ओकर के तरीके खाद के निर्माण करके जोन बाकी आदमी डाले कि अच्छा से अच्छा उसमें जीवांश की मात्रा बढ़े। एक साथ साथ सबसे महत्वपूर्ण ये समय की जोन बात बा नर्सरी उत्पादन के लिए, नर्सरी के तरीके हम लोग करी कि अच्छा जमाव होके और उनमें उखाड़ते समय भी जोन बाकी टूटे ना भुरभुरा बना रहे जमीन, एकरे खातिर का कुछ हम लोग जुगत अपनाई यह विषय पे जाने खातिर दुद्धी ब्लॉक के घिवही गांव में प्रगतिशील किसान श्री गौरी शंकर कुशवाहा भैया से मुलाकात हो रहा बा। आपके माध्यम से ही जानब कि आखिर हम लोग के विधि से नर्सरी डाली कि अच्छा जमाव भी होए और ओके जब रोपाई करे खातिर खेत से उखाड़ल जाए तो बिना टूटे वो आसानी से उखड़ जाए। तो गौरी शंकर कुशवाहा भैया आपके आकाशवाणी ओबरा कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत बा। और ये आशा के साथ कि किसान भाई लोग जौन इसमें तैयारी कर रहा हवन नर्सरी डाले के धान के, तो उनमें काका जुगत अपनावे कि बहुत अच्छा हम लोग के नर्सरी भी तैयार हो जाए और केहू प्रकार के हमें क्षति ना हो। भैया
3: भैया राम राम। अभी जौन धान के नर्सरी के बात चलत बा ओमे बाब जो देखा भैया सबसे महत्वपूर्ण बात जो कि बीज जौन बा अच्छा हो, उन्नत किस्म के हो, और बीज के साथ साथ जौन बा समय के भी मांग बा जो समय से नर्सरी तैयार और सब करे खातिर जौन बा खेत में खेत के तैयारी वो से भी महत्वपूर्ण बा। अगर खेत जहाँ नर्सरी करे के बा वो खेत के ताकत बहुत ज्यादा चाहिए, ऐसे जो कि भैया पौधा के कम समय में अच्छा से अच्छा तैयार करे के बाद जोन कम समय में अच्छा ग्रोथ करे और स्वस्थ भी रहे, तो एकरे खातिर नर्सरी भी स्वस्थ करे के पड़ी हम लोगों के
2: जी।
3: तो नर्सरी स्वस्थ करे खातिर बा भैया पहले देखें गर्मी की जुताई करें, गर्मी की जुताई कैले से भैया जोन बा ओमे अंडा पीपा लारवा कीड़न के जोन बा रहला जोने के जोतले से गर्मी से सब तप के मर जी हैं, और खर पतवार के भी बीज रहला जौन जो कि वो में पलट देले से गर्मी की जुताई के लिए से वो भी जौन बा कुछ सड़ जी हैं गल जी हैं, और एक साथ साथ वो में जौन बा अगर सौर से ओके अगर टीट कर दिला मैंने शोधित कर दिला भैया सौर से मतलब ये वाहन जो कि अगर जितने दूर में नर्सरी करे के बाद उतने दूर में भैया प्लास्टिक बिछा दें जोतले के बाद
2: जी।
3: और एक बाद जौन बा ओके किनारे किनारे से दबा दें, देखिए भैया एक सप्ताह बाद जौन बा वो में अपने मतलब आज लगे हैं तो कल देखे वो में अपने भाप पानी के वो में इकट्ठा हो जाए अंदर से
2: जी, जी, जी।
3: तो भैया गर्मी पड़ी तो में भाप से पानी इकट्ठा हो उसे कहो भैया जो कि जितना भी खर पतवार के बीज हुए सब उसना के मर जाए खत्म हो जाए अंकुरण होकर मर जाए। पहला तो समस्या होला जो कहीं भी कोई भी काम होला खेती बाड़ी में तो हमें खर पतवार के विशेष जौन बा कुप्रभाव पड़े ले
2: बिल्कुल
3: भैया उसे निजात चाहिए, कहे कि हम अगर खाद डालते हैं कुछ भी तैयार करते हैं तो हमारे निवेश भी हुई और एक बाद जौन बा हमारे पौधा के

0: कौन मिले जाए खरपतवार खा ले तो हमारे दुगना क्षति होला बार बार।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: ऐसने में भैया जोन बा पूर्ण नियोजित ढंग से योजनाबद्ध तरीके से हमन के नर्सरी का काम करे के चाहिए और समय आ चुकल बा
1: जी
0: आगे की खेती आगे आगे पाछे की खेती भागे जोगे। ये कहावत बहुत चरितार्थ बा बहुत पहले से बा। तो ओमे बाजे के भैया देखे 20 मई से धान के नर्सरी के जौन बा शुरुआत हो जाला। ऐसे जे की जौन धान जौने उम्र के बा कुछ धान जौन बा 100 दिन के बा कुछ 125, 150, 160 दिन के भी बा। अब आप समझ लें अगर नर्सरी में 1 महीना के देरी हो गई 20-25 दिन का तो उत्पादकता भी बहुत प्रभावित होला। तो ऐसने में जौन बा समय आ चुकल बा किसान भाई समय से नर्सरी के लिए एकदम तत्काल जौन बा काम होके पूरा करे और नर्सरी भी करे। ऐसने में जौन बहन से देखें सबसे महत्वपूर्ण बा ऑर्गेनिक खाद कार्बनिक पदार्थ। अगर आपके जमीन में कार्बनिक पदार्थ रही तभी जौन बा गोलिया भी काम करला। जैसे डॉक्टर जब कहला जब भैया बुखार आयल बा तो दवाई खाए के बाद तो दवाई खाए के पहले जौन बा आप थोड़ा सा दूध पी ली
1: जी जी शरीर में ताकत रहे कुछ
0: बिल्कुल दूध पी ली है। वही उदाहरण बा जो हमारे खेते में जब नर्सरी जहाँ करे के बाद एक तो खेत का चुनाव हो चाहिए जो कि अच्छा तरीके के भूर भूरी बना ले ओके गर्मी की जुताई कर अब एक बाद ओके ट्रीट भी कर ले फिर ओके जौन बा वो हमें कार्बनिक पदार्थ जौन भी बा बर्मी कंपोस्ट बा नाडेप कंपोस्ट बा सलरी के खाद बा जौन भी बा यानी सीधा गोबर न डाले। गोबर में खर पतवार के बीज होला आप जब गोबर डालिए तो भैया पहले घास जमी
1: जी जी
0: तो ऐसने खातिर सबसे पहले बा जो कि आप बर्मी कंपोस्ट बा नाडेप कंपोस्ट बा सलरी के खाद बा अगर रख ले हुआ या सड़ा के कंपोस्ट रख ले हुआ भैया एकर प्रयोग करें और पहली जोताई के समय ही ओके मिट्टी में मिला के जोत के मिला दें। ऐसे का हो कि भैया कोई भी खाद तुरंत काम नहीं करे ओकरे खातिर कम से कम 15 दिन का समय चाहिए। तो आप जब मिलौले रही हैं तो 1 सप्ताह बाद जब हमें नर्सरी करी है तो जब पौधा 10 दिन का हो खाए लायक तो भैया ओके वो मिले लगी।
1: भैया इस समय देखल जाला कि छनवे छनवा लोग जो है बाकी गोबर खेत में फेंकत बा कुछ लोग जैसे अब जैसे एक करहिया के उदाहरण लेल जाए करहिया हो गई बघाड़ो नगवा जौन बाकी जौन भी उबड़ खाबड़ थोड़ा जमीन बा जहाँ की मतलब सिंचाई के बढ़िया साधन नहीं है वो लोग जौन बाकी ऐसे ही गोबर गोईठा भी वही में डाल देला
0: जी जी
1: तो ये के तो सड़े में बड़ा टाइम लगी भैया।
0: भैया वो सड़े नहीं ओकर अगर सही बात जानल जाए तो हमें ये बात है कि देखें गोबर तब तक सही बा जब तक कुछ जिंदा बा यानी नमी बा और सूख गए तो भैया सूखे मतलब डेथ मर गए बा हमें कुछ बाय नहीं। अब भैया ये बात है कि आरत में लोग डालत हुआ वो अलग बात बा हमें कुछ बचल नहीं बा।
1: ये जोन आप जैविक खाद बनावे के बात कहते हो कि ओके डालें ओके कैसे बनाई
0: भैया देखें संक्षेप में ये बात है कि बर्मी कंपोस्ट जोन बा बर्मी बेड होला ओमे केचुआ डाल दिए हैं और गोबर रख दिए हैं जब कि ताजा गोबर न हो कम से कम ठंडा हो 15 दिन का और ओके रख दिए बोरी से ढक दिए थोड़ा पानी डालत रहे हैं और उसे कहा जो भैया बर्मी जोन बा केचुआ खा के ओके बीट बना दिए छोटे छोटे चाय के पत्ती के तरह वो कहा जो भैया 10 गुना गोबर से ओकर ताकत बढ़ जाए। वैसे ही अगर वो नहीं कर सकता तो भैया नाडेप कंपोस्ट बना दें नाडेप कंपोस्ट में 90 दिन में एकदम बिल्कुल सड़ करके खाद कैसनो चीज पतई खर पतवार कार्बनिक पदार्थ जौन भी बा सब सड़ के एकदम भुरभुरा खाद बन जाए तो आप नाडेप कभी बना के प्रयोग कर सकल। अब कुछ नहीं कहते तो भैया बकरी के बड़ा बना लो उनसे डंडा गाड़ दें बांस के फराठी से टाटी से ओके बना दें वही में गोबर डाल के मिट्टी डाल के पानी डाल के और ढक दें भैया देखा वो 90 दिन में एकदम सड़ के इतना बढ़िया खाद बनी जो कि एकदम वो मैंने दुका कही है और न तो कोनो खर पतवार के बीज रही।
1: ये जो खाद तैयार हो गई भैया ये हम लोग नर्सरी में कैसे प्रयोग करें
0: भैया देखा वही बाजे की एक तो बाजे की खेत के जोताई के तुरंत बाद जोत के ओके मिला के और जोत दें पटा लगा दें और एक बाद बाजे भैया अगर बर्मी कंपोस्ट बा नादेव कंपोस्ट बा तो ओकर आप जैसे चाहे डीएपी के तरह बार बार प्रयोग कर सकल नर्सरी कैल तो नर्सरी जब धान के कैल तो धान के नर्सरी कैले के बाद तुरंत ओके मिट्टी से ना ढक के आप बर्मी कंपोस्ट से ढक दें और खड़ले में भी मुलायम रही ऊपर भी रही खर पतवार भी नहीं जमी और आसानी से ग्रोथ भी करी
1: जी,
0: भी अब बार बार हर 10 दिन में 5 दिन में ओमे जोन बा डीएपी के तरह छीटल करे वो तो एकदम भुरभुरा खाद होला ओमे कोई दिक्कत होए नहीं वो आसानी से छिड़कल भी जा सकला और पौधा के बार बार मिलल भी करी।
1: नर्सरी भी किसान भाई लोग कई तरह से करलन कुछ लोग जोन बाकी पल्लेवा के माध्यम से कुछ लोग जोन बाकी सूखा कौन विधि कुछ ज्यादा समझ में अच्छा
0: भैया देखें हम तो ये कहब जो कि विधि तो 1000 बा, लेकिन वो हमें बाजे।

0: हमें कौन काम के लिए में सुगमता से आसानी से, हम आज नर्सरी करत हैं तो ये तो ध्यान बाज हमारे बीज का जमाव अच्छी से हो
1: जी,
0: लेकिन नर्सरी जब उखाड़े के पड़ी तो भैया आधा टूट जाला।
1: हाँ, हाँ, हाँ, वही वही
0: बात बाजे कि हमें पने मतलब दुर्घटना से देर भली, मैंने हम जो है दुर्घटना से बचने के लिए हमें थोड़ा विलम्ब हो आसानी से करें। हम तो कहम जो भैया जो खरिहान बना भैया किसान जो बा खरिहान में करें, बिना जोते कहीं खरिहान में कहीं भी साफ सुथरा बा वो में आप जौन बा धान के बिया अखुआ के उसके बाद छींट दें और भैया तो सब पुआल से ढक दें।
1: नहीं एक बात समझ में लग आपके कि जो खेत की तैयारी आप करत हो तो मैं अगर जौन बाकी प्लास्टिक बिछा करके ओके कुछ दिन तक वाष्पीकृत करके मैंने ओके जला करके अगर खरपतवार के जो बीज है ओके अगर आप ख़त्म कर दिए हैं तो चूंकि जो आप लोग नर्सरी पलेवा करके करला तो ओकर उद्देश्य ये होला कि हमारे जौन बाकी ओमे घास न जमे, तो घास न जमे एक लिए तो आप बढ़िया जुगत ही बना दलन। दूसरी बात उखाड़े के बात आप कहलन
0: जी,
1: तो उखाड़े के लिए तो हमें लगला कि जौन सूखा वाला में हो तो
0: भैया देखे सूखा में ही नहीं बिना जोतले खेत के साफ कर दें और एकदम बिल्कुल मिट्टी के ऊपरी सतह पर नर्सरी डालें।
1: अच्छा,
0: और एकदम
1: अच्छा,
0: पुआल से ढक दें, खरपतवार से ढक दें और नहीं
1: जी,
0: तो बर्मी कंपोस्ट से ही ढक दें ओके।
1: हाँ, हाँ,
0: आधा
1: हाँ,
0: इंच एक इंची उसके बाद पानी चला दें भैया देखा वो एक नंबर के नर्सरी
1: हो खादे में हो
0: और खादे में हो और ऊपरे उठे तो भैया उखड़ने में कम से कम पैसा लगे और टूटे के तो कोई बात नहीं,
1: सवाल नहीं है
0: जी।
1: अच्छा बिल्कुल हरा भरा रही
0: एकदम एकदम भैया, ये एकदम अनुभव की बात नहीं, एकदम प्रैक्टिकल करके कहते हैं। एक बार ट्रायल के रूप में किसान भाई कर सकल जो कहीं भी साफ सुथरा जमीन बा वही पर बीज के छिड़क के एक बार ढक के एक बार पानी सिंचत रहे थोड़ा थोड़ा, देखें भैया अगले साल आप तो खुद अनुभव बताई जो कि ये अच्छा है या पानी वाली अच्छा है या सूखा खेत में करें। खेत में कैले में भी बहुत प्रॉब्लम आवेले भैया, खरपतवार के बीज खेत में ज्यादा होला लेकिन खरिहान जहाँ साफ सुथरा बा वहाँ भैया खरपतवार के बीज कम बा। ऐसे में हमार सलाह तो बाजे हाई टेक खेती करें, कम से कम मेहनत में ज्यादा से ज्यादा उत्पादन, कम से कम लागत में ज्यादा से ज्यादा उत्पादन मिले।
1: बिल्कुल, तो चलते चलाते किसान भाई लोगों के का कुछ संदेश देवल चाहिए?
0: हम तो कहो भैया सबसे बड़ी बात बाजे कि समय से खेती करें और जेकर समय से पकड़ा गया तो ओकर उत्पादन थोड़ा टेढ़ मेढ़ भी कम बेसी भी रही तो उत्पादकता अच्छी
1: है।
0: बिल्कुल सही, बिल्कुल सही भैया, समय का समय पकड़े सबसे ज्यादा और समय पकड़िए तो भैया सब कुछ काम ठीक से।
1: बिल्कुल, तो ये सोनभद्र जनपद अंतर्गत दुद्धी ब्लॉक के घिवही से गौरी शंकर कुशवाहा भैया रहलन और आप नर्सरी करे के कितना अच्छा जुगत बतौलन, साथ साथ ये के जौन बाकी जौन गोबर धन है ओके के तरीके हम लोग ऑर्गेनिक खाद बना करके और ओके उपयोग करी कि अच्छा से अच्छा अनाज उत्पादन तो हो ही लेकिन नर्सरी के जुगत अपनावे के अच्छा तरीका हो सके, इतना अच्छा जानकारी देवे खातिर गौरी शंकर कुशवाहा भैया के बहुत बहुत धन्यवाद।
2: धन्यवाद भैया गंगा बहन, देखा कितना अच्छा जानकारी हमन के मिलल, लेकिन हम तो देखते थे कि कुछ जानकारी वाला चिट्ठी पाती आपो ले लें।
3: बिल्कुल भैया, देखे मधुपुर से अपन पुनवासी भैया जुटल हुआ बाजार भाव लेके तो बिना देर के लिए बांच दे। आलू जो लाल है वो 1000 रूपया देखे कुंतल पसे कुंतल में है, प्याज जो 1800 रूपया, टमाटर 2200, कोहड़ा 300, लंबा बैगन जो 1800, लौकी 300, भिंडी 1000, कुनरू 2000, हरी मिर्च 3500 और सूरन 4000, पुदीना 3000, लहसुन 8000, खरबूजा जोन हो देखे 1600 और सैकड़ा भाव में देखे फूल गोभी 1500, पत्ता गोभी 2300 और नींबू जोन हो 400।
2: बिल्कुल बिल्कुल, तो इतना अच्छा जानकारी के बाद भाई मन फेर भी हो ले, तो मन फेर जनबा राम कृपाल भैया अपने संगाती लोगों के साथ एगो किसानी गीत से करत हुआ सुना जाए।

0: गंगा बहन
1: हाँ भैया
0: देखा राम कृपाल भी अपने संघाती लोन के माध्यम से एगो किसानी गीत सीजन बा मन फिर करावत हुन
1: हाँ
0: लेकिन देखते कि पंचायती भी समेटे का समय हो गइल बा
1: हाँ
0: लेकिन चलत चलाओ जन बा अपने फसल चक्र के बारे में किसान भैया लोग से का करिए।
1: देखा भैया फसल चक्र अपनावे से जो माटी के उर्वरता बा वो बनल रहेला। एक खेत में अलग अलग फसल लगावे से रोग और कीट के प्रकोप कम हो जाला।
0: कम हो जाला और
1: हाँ।
0: खेती का लागत भी घटेला
1: हाँ।
0: और उत्पादन बढ़े का संभावना बहुत ज्यादा हो जाला।
1: हाँ।
0: और टिकाऊ खेती और बेहतर आमदनी खातिर जन बा किसान भाई फसल चक्र जरूर अपनावे। और देखा थे कि काल जन बा अपने जब खेती अपने पंचायती में जब जुटल जाए
1: हाँ
0: तो ओमेन का जानकारी शामिल बा ओमेन तो नशा से शिक्षा और उन्नति दोनों बाधक ये
1: हाँ
0: विषय पर पे आके संदीप कुमार भैया से अपन भोला भैया का बात बत के या करके सुनल जाए।
1: हाँ
0: तो यही आशा के साथ कि लोग फसल चक्र अपना के अपनी खेती बाड़ी करिए
1: हाँ
0: तो चल जाए।
1: हाँ
0: तो
1: सब
0: सब पंचन
1: पंचन
0: के
1: के राम
0: राम
1: राम।
0: राम।

अभी ग्रामीण भाई सुन रहे थे अपना कार्यक्रम ग्राम जगत 102.7 FM पर। हम आकाशवाणी के ओबरा केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 7 बज रहे हैं। प्रस्तुत है फिल्म संगीत।

0: कनाडा देश तो आप जानते ही होंगे। कनाडा की टोटल पॉपुलेशन जितनी पक्की छत बांधी है हमारे देश ने अपने गरीबों के सिर पर। 12 साल में 4 करोड़ से अधिक पीएम आवासों का निर्माण हुआ, करोड़ों परिवारों का कल्याण।
1: जब एक परिवार को अपना घर मिलता है तो उसका आत्मसम्मान बढ़ जाता है, वो अपना वर्तमान सुधारने के साथ ही बेहतर भविष्य के बारे में सोचने लगता है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
2: आपकी गिनती देश की शान, जनगणना से जन कल्याण।
3: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
4: अभी आप सुन रहे थे जैस्मिन सैंडल्स और सतिंदर सतराज की आवाज में फिल्म धुरंधर 2 के इस गीत को। आकाशवाणी उबला से इस समय आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत।

हीट वेव से सुरक्षा के लिए सूचना सुनिए। हीट वेव यानी लू से बचने के लिए पर्याप्त मात्रा में पानी पिए, ओआरएस घोल पीते रहें, हल्के ढीले और सूती कपड़े पहने, दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक के बीच में घर से बाहर न निकले। प्यास न होने पर भी थोड़ी थोड़ी देर में पानी पीती रहें। नींबू पानी, छाछ, नारियल पानी और मौसमी फलों का रस पिए। हल्का और सुपाच्य भोजन लें। तरबूज, खीरा, ककड़ी और खरबूजे जैसे पानी से भरपूर फल खाएं। दोपहर में खिड़की दरवाजे बंद रखें। रात को घर में हवा आने दें। कूलर या पंखे का प्रयोग करें। बाहर जाते समय आंखों के लिए धूप का चश्मा लगाएं। चिलचिलाती धूप में बाहर जाने से बचें, विशेष रूप से दोपहर 12 बजे से 4 बजे तक के बीच में। शराब, चाय, कॉफी और बहुत अधिक चीनी वाले कोल्ड ड्रिंक से बचें, क्योंकि ये शरीर में पानी की कमी को बढ़ाते हैं। गहरे रंग या भारी और कसे हुए कपड़े न पहने। बच्चों और पालतू जानवरों को कभी भी धूप में खड़ी बंद गाड़ियों में न छोड़ें।

आकाशवाणी उबरा से समय आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत। अब लीजिए सुनिए गुरु रंधावा की आवाज में फिल्म हिंदी मीडियम के इस गीत को।

0: गाइए गुनगुनाइए, कहिए हमसे दिल की बात।
1: आपकी फरमाइश पर हम चलेंगे म्यूजिकल रिदम के साथ।
2: हेलो,
0: फिर क्या, फोन उठाइए, वॉल्यूम बढ़ाइए,
1: जो चाहे वो ट्रैक सुनाइए।
0: डायल करिए 0544529710। मंगलवार और शुक्रवार दिन में 11 बजे से।
1: हेलो फरमाइश, योर म्यूजिक योर स्टाइल,
0: ओनली ऑन AIR ओबरा।
3: अभी आप सुन रहे थे गुरु रंधावा की आवाज में फिल्म हिंदी मीडियम के इस गीत को। इसी के साथ फिल्म संगीत अब समाप्त होता है। 102.7 FM पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी ओबरा का प्रसारण।

102.7 FM पर हम आकाशवाणी के ओबरा केंद्र से बोल रहे हैं। शाम के 7:15 हो रहे हैं और समय है कार्यक्रम विवरण का। उससे पहले खोए हुए व्यक्ति के संबंध में सूचना सुनिए। पुलिस अधीक्षक कार्यालय सोनभद्र से प्राप्त सूचना के अनुसार प्रियंका पुत्री फूलमती निवासी ग्राम टापूखाल थाना जुगैल जनपद सोनभद्र जो दिनांक 5 मार्च 2026 से लापता है। होलिया इस प्रकार है। उम्र 19 वर्ष, लंबाई 5 फीट 1 इंच, गोरा रंग, एक गहरा बदन, सामान्य चेहरा, पहनावा गुलाबी सूट सलवार। इनके बारे में कोई भी सूचना मिलने पर कृपया अपने निकटतम थाने अथवा पुलिस अधीक्षक सोनभद्र को सूचित करें। खोए व्यक्ति के संबंध में एक और सूचना सुनिए। पुलिस अधीक्षक कार्यालय सोनभद्र से प्राप्त सूचना के अनुसार सुनीता पुत्री स्वर्गीय पांचू चेरो निवासी ग्राम टेढ़ा थाना दुधी जनपद सोनभद्र जो दिनांक 24 अक्टूबर 2025 से लापता है। होलिया इस प्रकार है। उम्र 34 वर्ष, लंबाई 5 फीट 5 इंच, सांवला रंग, चौड़ा चेहरा, बाएं पैर के पंजे पर कटे का निशान तथा मानसिक रूप से कमजोर। पहनावा पीले रंग की साड़ी, नीला ब्लाउज, कत्थई पेटीकोट तथा पैर में काले रंग का चप्पल। इनके बारे में कोई भी सूचना मिलने पर कृपया अपने निकटतम थाने अथवा पुलिस अधीक्षक सोनभद्र को सूचित करें। खोए व्यक्ति के संबंध में सूचना समाप्त हुई। आइए अब आपको जानकारी दें हमारे केंद्र से प्रसारित कुछ प्रमुख कार्यक्रमों के बारे में। अब से कुछ ही देर में यानी शाम 7:31 पर आप सुनेंगे हमारे लखनऊ केंद्र से कार्यक्रम कानून की बात। शाम 7:45 पर कार्यक्रम होगा सबरस का और रात्रि 8:00 और 8:30 पर गैर फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुगम संगीत। 8:15 पर आप सुनेंगे फिल्म संगीत। रात्रि 9:15 पर कार्यक्रम होगा यादों के झरोखों से सफर 90 वर्ष का। रात्रि 10:00 कार्यक्रम रसधारा और आज रात्रि 10:25 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम भारत सरकार के 12 वर्ष पूरे होने पर विशेष श्रृंखला कार्यक्रम थीम इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ये थी जानकारी हमारे केंद्र से प्रसारित कुछ प्रमुख कार्यक्रमों के बारे में। इसी के साथ

0: कार्यक्रम विवरण अब समाप्त होता है। 102.7 FM पर हम आकाशवाणी के ओबरा केंद्र से बोल रहे हैं। अब से कुछ देर में यानी शाम 7:20 पर आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार हमारे लखनऊ केंद्र से।
1: इफको नैनो यूरिया प्लस की बात है निराली, गुड़ है इसके दमदार शक्तिशाली, किसानों के जीवन में लाए खुशहाली, हो खेतों में हरियाली ही हरियाली।
2: 20% नाइट्रोजन का असर दमदार इफको नैनो यूरिया प्लस, दे वही दाम में बेहतर पैदावार।
3: इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे नैनो यूरिया प्लस और नैनो डीएपी के निर्माता इफको।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम हेलो किसान, मीडियम वेव के मीटर पर। ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
1: बेटा, मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया। मैं देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी, सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
3: हर घर सूर्य घर।
0: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस उपलब्धि पर पारित किया प्रस्ताव। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री को दी बधाई, कहा देशवासियों के विश्वास, स्नेह और आशीर्वाद की सामूहिक अभिव्यक्ति है ये कीर्तिमान। विकसित भारत जीराम जी योजना के तहत राज्यों के लिए 95,692 करोड़ रुपए के अंतरिम आवंटन की घोषणा। उत्तर प्रदेश को मिले सबसे ज्यादा 9,721 करोड़ 48 लाख रुपए। और यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2025 की 3 दिवसीय लिखित परीक्षा आज शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न। प्रदेश के 1,183 परीक्षा केंद्रों पर किए गए थे सुरक्षा के कड़े इंतजाम। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं शैलेंद्र, और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री बन गए हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए की बैठक आज नई दिल्ली में हुई। बैठक में भाजपा के शीर्ष नेता एनडीए शासित 22 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री और घटक दलों के नेता भी उपस्थित रहे। पेश है एक रिपोर्ट।
4: बैठक में विभिन्न राष्ट्रीय विकास कार्यक्रमों, अवसंरचना कार्यक्रमों और 2047 तक देश को विकसित देश में बदलने के मोदी सरकार के दृष्टिकोण की समीक्षा पर ध्यान केंद्रित किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह उपलब्धि विशेष रूप से उल्लेखनीय है, क्योंकि भारत जैसे 140 करोड़ से अधिक आबादी वाले देश का शासन प्रशासन अत्यंत व्यापक और जटिल है। ऐसे समय में जब अनेक देशों में राजनीतिक अस्थिरता, सरकारों में बार बार परिवर्तन और नीतिगत अनिश्चितता देखने को मिल रही है, भारत में नेतृत्व और शासन में निरंतरता रही है। स्वतंत्र वैश्विक सर्वेक्षणों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगातार विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय लोकतांत्रिक नेताओं में स्थान दिया गया है। समाचार कक्ष से ओम अवस्थी।
0: श्री मोदी ने 26 मई 2014 को प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का रिकॉर्ड तोड़ दिया है, जिन्होंने पहली बार 13 मई 1952 को निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी और 27 मई 1964

0: तक पद पर रहे थे। पंडित नेहरू का निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में कार्यकाल 4398 दिन का था। 26 मई 2014 से आज 10 जून 2026 तक प्रधानमंत्री मोदी का निरंतर कार्यकाल अब 4399 दिन का हो गया है। कई देशों के राष्ट्राध्यक्षों और विश्व के नेताओं ने प्रधानमंत्री को बधाई दी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, गृहमंत्री अमित शाह सहित अन्य केंद्रीय मंत्रियों ने श्री मोदी को बधाई दी है। इसी क्रम में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज एक प्रस्ताव पारित कर प्रधानमंत्री को सबसे लंबे समय तक निर्वाचित रूप से पद पर बने रहने पर बधाई दी है। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि प्रस्ताव में श्री मोदी द्वारा निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में राष्ट्र की निरंतर सेवा की इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर चर्चा की गई।
1: राष्ट्र सेवा के प्रति माननीय प्रधानमंत्री जी के अद्वितीय समर्पण एवं अथक परिश्रम के लिए कृतज्ञता प्रकट करता है। समावेशी विकास, इंक्लूसिव डेवलपमेंट, इंक्लूसिव ग्रोथ एवं सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस की दिशा में किए गए उनके प्रयासों की सराहना करता है। राष्ट्रीय सुरक्षा को सुदृढ़ बनाने एवं भारत के हितों की रक्षा हेतु उनके नेतृत्व की प्रशंसा करता है और विकसित भारत के निर्माण के उनके दूरदर्शी संकल्प और नेतृत्व के प्रति अपना पूर्ण समर्थन व्यक्त करता है।
0: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री को बधाई देते हुए सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि भारतीय लोकतंत्र का ये अभूतपूर्व कीर्तिमान संपूर्ण देशवासियों के विश्वास, स्नेह और आशीर्वाद की सामूहिक अभिव्यक्ति है। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने भी प्रधानमंत्री को शुभकामनाएं दी हैं। इस अवसर पर प्रदेश भर में विविध कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने 403 विधानसभा क्षेत्रों के मंदिरों में विशेष प्रार्थना सभाओं का आयोजन किया। इस क्रम में लखनऊ में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने हनुमान सेतु मंदिर में पूजा अर्चना की। वहीं अयोध्या समेत जौनपुर के श्री गौरी शंकर धाम मंदिर, देवरिया के सोमनाथ मंदिर और राज्य के अन्य मंदिरों में विशेष पूजा पाठ और हवन का आयोजन किया गया। कानपुर देहात में लाभार्थियों को आयुष्मान कार्ड वितरित किए गए। वहीं प्रधानमंत्री मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में भी विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। पेश है एक रिपोर्ट।
2: वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देश के सबसे लंबे समय तक लगातार पद पर रहने वाले प्रधानमंत्री बनने के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी द्वारा आयोजित दीपोत्सव स्वच्छता एवं सेवा कार्यक्रम आज संपन्न हुआ। इस अवसर पर श्री काशी विश्वनाथ धाम में भव्य दीपोत्सव और महाआरती का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ताओं, जनप्रतिनिधियों और श्रद्धालुओं ने सहभागिता की। दिन भर चले कार्यक्रमों के तहत विभिन्न मंदिरों, घाटों और सार्वजनिक स्थलों पर स्वच्छता अभियान तथा पौधारोपण किया गया। वहीं अस्पतालों, वृद्धाश्रमों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों और सेवा संस्थानों में फल, दवा, वस्त्र एवं आवश्यक सामग्री का वितरण भी किया गया। कार्यक्रम के दौरान विभिन्न स्थानों पर प्रसाद वितरण, आतिशबाजी और मिठाई बांटकर लोगों ने अपनी खुशी व्यक्त की। भाजपा नेताओं ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश ने अनेक नई उपलब्धियां हासिल की हैं। मनीष सिंह, आकाशवाणी समाचार, वाराणसी।
0: आकाशवाणी समाचार। सरकार के पिछले 12 वर्षों में विभिन्न प्रमुख क्षेत्रों में किए गए प्रयासों पर एक विशेष श्रृंखला प्रस्तुत कर रहा है। आज हम युवाओं के सशक्तिकरण की दिशा में सरकार के प्रयासों पर चर्चा कर रहे हैं।
3: पिछले 12 वर्षों में सरकार ने देश की युवा शक्ति को सशक्त बनाने पर विशेष ध्यान दिया है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत 12 करोड़ से अधिक नए उद्यमियों को ऋण प्रदान किया गया है, जिससे युवाओं के सपनों को नई उड़ान मिली है। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत 1,60,00,000 से अधिक युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। कुशल युवाओं की बढ़ती संख्या मेक इन इंडिया पहल को नई ऊर्जा दे रही है। रोजगार मेलों के माध्यम से 12,00,000 नियुक्ति पत्र वितरित किए जा चुके हैं, जिससे युवाओं के रोजगार के सपने साकार हो रहे हैं। देश में 2,20,000 से अधिक स्टार्टअप्स ने 23,00,000 से ज्यादा रोजगार के अवसर सृजित किए हैं। अनुपम मिश्र के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल newsonair लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 95,692 करोड़ रुपए के अंतरिम बजट आवंटन का प्रस्ताव रखा है, जिससे मनरेगा से विकसित भारत रोजगार गारंटी और आजीविका मिशन ग्रामीण बीबी जीराम जी में सुचारू रूप से परिवर्तन सुनिश्चित किया जा सके। राज्यों के लिए इंटरिम अवलोकेशन में उत्तर प्रदेश के लिए सर्वाधिक 9,721 करोड़ 48 लाख रुपए धनराशि की व्यवस्था है। यह अधिनियम 1 जुलाई से पूरे देश में लागू हो जाएगा। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल नई दिल्ली में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के ग्रामीण विकास मंत्रियों के साथ वर्चुअल बैठक के बाद इसकी घोषणा की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में आर्थिक अपराध अनुसंधान संगठन ईओडब्ल्यू की कार्यप्रणाली और प्रगति की समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने ईओडब्ल्यू की आर्थिक अपराधों से जुड़े मामलों में त्वरित जांच, प्रभावी कार्रवाई और दोष सिद्धि सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। पेश है एक रिपोर्ट।
4: बैठक में आर्थिक अपराधों से संबंधित लंबित जांच, विवेचनाओं, गिरफ्तारी, अभियोजन, जन जागरूकता गतिविधियों और संगठनात्मक सुधारों की समीक्षा की गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन मामलों में पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध हैं, उनमें अभियोजन और न्यायिक प्रक्रिया को गति दी जाए, प्रत्येक मामले की नियमित मॉनिटरिंग की जाए। बैठक में बताया गया कि जांच, विवेचना और कार्यवाहियों के प्रभावी प्रबंधन के लिए केस मैनेजमेंट सिस्टम विकसित किया गया है। मुख्यमंत्री ने आर्थिक अपराधों के विरुद्ध जागरूकता अभियान चलाने के भी निर्देश दिए। समाचार कक्ष से राघवेंद्र त्रिपाठी।
0: उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षी भर्ती 2025 की 3 दिवसीय लिखित परीक्षा आज शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गई। प्रदेश के सभी 75 जिलों में बनाए गए 1,183 परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी की निगरानी में परीक्षा करवाई गई, जहां सघन जांच के बाद अभ्यर्थियों को प्रवेश दिया गया। इस दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले निर्वाचित प्रधानमंत्री। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस उपलब्धि पर पारित किया प्रस्ताव। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री को दी बधाई, कहा देशवासियों के विश्वास, स्नेह और आशीर्वाद की सामूहिक अभिव्यक्ति है ये कीर्तिमान। विकसित भारत जीराम जी योजना के तहत राज्यों के लिए 95,692 करोड़ रुपए के अंतरिम आवंटन की घोषणा। उत्तर प्रदेश को मिले सबसे ज्यादा 9,721 करोड़ 48 लाख रुपए। और यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2025 की 3 दिवसीय लिखित परीक्षा आज शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न। प्रदेश के 1,183 परीक्षा केंद्रों पर किए गए थे सुरक्षा के कड़े इंतजाम। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर का विचार है, समुद्र को किनारे खड़े रहकर उसे देखते रहने भर से तुम समुद्र के पार नहीं जा सकते।
1: मीडियम वेव 401.61 मीटर यानी 747 किलोहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। स्टूडियो की

0: पॉक्सो एक्ट जो कि 2012 में बनाया गया था, इसमें क्या बदलाव हुए हैं, क्या सुधार हुए हैं, इसी पर बातचीत करने के लिए हमने अपने स्टूडियो में बुला रखा है ऐश्वर्य द्विवेदी को, जो कि एडवोकेट हैं हाई कोर्ट लखनऊ में। ऐश्वर्य, आपका स्वागत है।
1: थैंक यू सो मच।
0: आप हमारे श्रोताओं को बताना चाहेंगी पॉक्सो एक्ट क्या है, किसके लिए है और कैसे हमारी आम जनता को इससे लाभ हो सकता है?
1: जी, आपने बहुत अच्छा सवाल रेस किया है, बहुत अच्छा इशू रेस किया है। पॉक्सो एक्ट का फुल फॉर्म है प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल अब्यूज, जो 2012 में आया था। इसमें आपको अवेयरनेस ये दी गई है कि सबसे ज्यादा तरीके से जो चाइल्ड अब्यूजेस हमारे आसपास हो रहे हैं या हमारे देश में या देश के बाहर जहां भी हो रहे हैं, मैक्सिमम पाए गए थे कि मेल चाइल्ड के साथ ज्यादा हो रहे थे। इसीलिए एक्ट बनाया गया कि इसमें जेंडर न्यूट्रल किया जाए, कि लड़की के साथ ही सिर्फ अब्यूज नहीं होता है, लड़के के साथ भी होता है। और ये जेंडर न्यूट्रल होने की वजह से ये पॉक्सो एक्ट लागू किया गया, जिससे ये फायदा हुआ कि काफी लोग अवेयर हुए और बच्चों के साथ गलत होने से बचा। जैसे बैड टच अगर कोई होते हुए देखता था तो उनको कंप्लेन करने की सुझाव देना, ये सब, तो ये अवेयरनेस फैली है आपके रेडियो के द्वारा। जैसे दूरदर्शन में अवेयरनेस, आपके इस गवर्नमेंट स्कूल्स में भी अवेयरनेस दी जा रही है कि पॉक्सो एक्ट है, क्यों है, बच्चों को गुड टच बैड टच की जानकारी दी जा रही है। इन सब चीजों से एक तरीके से हम लोग जागरूक हो रहे हैं और बच्चों के साथ गलत होने से बचा पा रहे हैं, क्योंकि एक बच्चा हमारे देश का भविष्य होते हैं और बच्चों की अगर हम लोग सुरक्षा नहीं कर सकते तो ये हमारे देश के लिए बहुत नुकसान की चीज है, क्योंकि फ्यूचर ऑफ आर कंट्री शुड बी वेरी मच प्रोटेक्टेड। प्रोटेक्शन के तौर पे अगर देखा जाए तो पॉक्सो एक्ट अगर अवेल की गई है, अगर लोगों की कंप्लेन दर्ज होगी, लोग इस चीज से डरेंगे और बच्चों के साथ नहीं गलत होगा, बच्चे ट्रॉमेटाइज नहीं होंगे और हमारे देश के लिए अग्रसर रहेंगे और अच्छा कर पाएंगे।
0: तो ऐश्वर्य, इसमें आपको क्या लगता है कि जो पॉक्सो एक्ट के मुकदमे हैं उसमें क्या बढ़ोतरी हुई है? तो अगर बढ़ोतरी हुई तो जानकारी लोगों को बढ़ रही है, इसका मतलब?
1: देखिए, जैसे कि हमारा देश अब डिजिटलाइज हो रहा है, चेंज हो रहा है, तो लोग भी अवेयर हो रहे हैं, जैसे रेडियो के द्वारा, टीवी के द्वारा, तो अब लोग अवेयर हो रहे हैं। तो अगर अब ऐसी सिचुएशंस होती हैं तो कई केसेस में हमने देखा कि पहले लोग जो थे बोलने से डरते थे, घर में ही ये चीजें होती थी। जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक केस हमारे पास आया था जिसमें एक घर के दादाजी ही अपने ग्रैंड चाइल्ड के साथ अब्यूज कर रहे थे। ये घर में किसी सर्वेंट ने देखा, उसने ये चीज जो है फैमिली में बताई, फिर ये चीज जो है क्लियर आउट होके आई, फिर इस चीज पे पॉक्सो एक्ट लगाई गई और उनपे उस हिसाब से कार्रवाई की गई। तो ये अवेयरनेस के कारण हुआ कि घर में एक पर्सन है जो आपका हाउस हेल्प है, वो भी इस चीज से अवेयर था, उसने इस चीज के बारे में बताया, क्योंकि वो 8th तक पढ़ा हुआ था और उसने अपने स्कूल में ये चीज सीखी थी, तो वो अवेयर रहा, उसने बताया। पहले के जमाने में लोग ये बात कहने से डरते थे और बच्चों को चुप करा दिया जाता था कि बेटा ये कुछ नहीं है, भूल जाओ। अब वो चीज
0: मतलब
1: हट
0: है
1: चुकी
0: कि
1: है।
0: वो जो बदनामी होगी परिवार की, ये भी रीजन
1: जी
0: रहा
1: जी
0: होगा।
1: जी ये वाला माइंडसेट अब लोगों का थोड़ा चेंज हुआ है अवेयरनेस की वजह से, और ये एक्ट आने की वजह से लोग अब थोड़ा सा हिम्मत बढ़ी है, अब लोग थोड़ा स्टैंड लेने लग गए। पहले लोग इस टॉपिक पे बात भी नहीं करते थे, कई बच्चे ट्रॉमेटाइज रहते थे बचपन में, उनके साथ 10-10, 11-11 साल तक लाइफ में, वो 6 साल की उम्र से लेके 18 साल के हुए जा रहे हैं और उनके साथ गलत ही हो रहा होता था और वो नहीं बोल पाते थे। अब वो चीज में बहुत चेंजेस आए हैं, बहुत बढ़ोतरी हुई है, तो एक तरीके से ये एक अच्छी पहल हुई है हमारे कानून में।
0: समाज के लिए बहुत अच्छी बात
1: हाँ
0: है।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: तो ये घर के अंदर तो जो होता रहा है उसको नहीं बताया जाता था, लेकिन बहुत अच्छी बात है कि अब अवेयरनेस बढ़ रही है, सोशल मीडिया भी इसका बहुत बड़ा सहारा है। तो इसके बाद हम बात करते हैं जो लोग ऑफिस में काम करते हैं या पब्लिक प्लेस में जाते हैं, बच्चे भी उसमें होते हैं, तो उनके प्रति क्या रवैया लोगों का रहता है?
1: जैसे आपने क्वेश्चन रहे, कई फील्ड्स हैं, जैसे रेडियो हो गया या फिल्म इंडस्ट्री हो गई, वहाँ चाइल्ड आर्टिस्ट होते हैं, या कोई म्यूजिक इवेंट होता है वहाँ भी बच्चे गाना गाते हैं, और बच्चे वहाँ जा रहे हैं, वहाँ बड़े लोग भी होते हैं जो मेजर एज के होते हैं, उनके साथ उनका इंटरेक्शन होता है। तो अगर वर्क प्लेस में इस तरीके की अगर कोई आपको ऐसा कोई आपत्तिजनक सिचुएशन दिखती है, तो एक सही सिविलाइज सिटीजन होने के वजह से आपको ये चीज़ जरूर करनी चाहिए कि ये चीज़ की कंप्लेन दर्ज कराएं पुलिस में। पुलिस में चाइल्ड वेलफेयर ऑफिसर्स होते हैं जो इन सब चीज़ों से डील करते हैं, वो आपकी कार्रवाई को आगे बढ़ाएंगे। और अगर आपकी बात, आपको लगता है एविडेंस चाहिए होते हैं, तो वो भी ज़रूरी नहीं, आप कंप्लेन कर सकते हैं, आपको कोई हानि नहीं पहुंचेगी। उस कंप्लेन की इन्वेस्टिगेशन होगी, उसके बाद उस चीज़ को आगे बढ़ाया जाएगा कि ऑफिस बच्चे से फिर बाद में पूछा जाएगा उस हिसाब से चीजें करी जाएंगी। तो वर्क प्लेस में अगर ऐसा हो रहा है, अगर आप टीचर हैं, डॉक्टर हैं, या आप उस मैनेजर हैं उस प्लेस के, और आप इस चीज को होते हुए देख रहे हैं बहुत टाइम से और आपने कंप्लेन नहीं की, तो भी आप पे कार्रवाई हो सकती है कानून में। इसीलिए इस चीज को अवेयर रहें, और अगर ऐसा कुछ हो तो जरूर इत्तला करें टू द पीपल हु आर अपॉइंटेड फॉर दिस जॉब।
0: तो जैसे मान लिया कि हमारा ही ऑफिस है, इसमें कोई बच्चा आता है किसी काम के लिए, किसी नाटक के लिए, किसी रिकॉर्डिंग के लिए, तो उसके साथ अगर कोई थर्ड पर्सन फोर्थ पर्सन देख रहा है कि कुछ अब्यूज हो रहा है या बैड टच हो रहा है, तो वो कहाँ कंप्लेन करे जाके?
1: देखिए अभी इतना डिजिटल वर्ल्ड हो गया कि ऑनलाइन नंबर्स भी आ गए हैं। चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर है 1098, जिसपे आप कॉल करके कंप्लेन कर सकते हैं डायरेक्टली, और अगर आपके आसपास कोई पुलिस थाना है वहां भी ये कंप्लेन दर्ज करा सकते हैं।

0: उसके लिए कई एनजीओज भी हैं जो इस पे काम करते हैं, तो वहां भी अगर आप ऐसा कुछ देखते हैं, आपको संदेह होता है, तो आप वहां भी जाके कंप्लेन कर सकते हैं।
1: अच्छा छोटे, इसी एक बात ये उठती है कि मान लिया एक ऑफिस में कोई देख भी रहा है चाइल्ड के साथ अब्यूज हो रहा है
0: कोई फोटो
1: या
0: खींच
1: गर्ल के साथ हो रहा है, तो वो कंप्लेन भी उसने कोशिश कर दी या किसी ने छिपा लिया, तो उसके साथ क्या कुछ प्रावधान है सजा के? मान लीजिए कोई व्यक्ति होते हुए देख रहा है अपने ऑफिस में, लेकिन ये कि हमारी ऑफिस का नाम खराब होगा या बदनामी होगी तो कहीं नहीं बताता, तो इसके लिए ऑफेंसेस क्या है?
0: जी, आपने अच्छा सवाल उठाया है। ये चीज़ जो है, इस चीज़ को कानून बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करता है। अगर ऐसी कोई सिचुएशन आती है तो कानून जो है सज़ा देगा उस पर्सन को जिसने कंप्लेन नहीं की, जिसके ऑफिस में हो रहा है, वो देख रहे हैं और फिर भी नहीं बोल रहे हैं, इस चीज़ पे भी उनको या कंपनसेशन देना पड़ेगा या उनको सज़ा होगी। तो इस तरीके की चीज़ें अगर आप देखते हैं तो कंप्लेन तुरंत करें, क्योंकि आप अपनी रेपुटेशन की वजह से किसी के साथ अब्यूज होने दे रहे हैं या उसके साथ कुछ इलीगल एक्टिविटी हो रही है, तो ये इलीगल ही माना जाएगा। अगर आपने कोई चीज़ है लॉ ब्रेक किया है, ये लॉ ब्रेकिंग की उसमें ही माना जाएगा कि आपने देखा फिर भी आपने नहीं बोला।
1: अच्छा, इसी पर एक बात ये उठती है कि क्या सभी डिस्ट्रिक्ट हेड ऑफिस में, सभी जिलों में कहें, क्या इस संबंध में कोर्ट्स हैं? चाइल्ड पॉक्सो एक्ट से संबंधित अलग अलग कोर्ट हैं?
0: देखिए, जितने भी डिस्ट्रिक्ट सेशंस कोर्ट्स हैं वहाँ पे पॉक्सो ट्रायल कोर्ट्स बनाए गए हैं और पॉक्सो कोर्ट्स दिए गए हैं, जिसपे चाइल्ड फ्रेंडली माहौल है, बच्चों के लिए इस तरीके का माहौल क्रिएट किया है कि वो प्लेग्राउंड की तरह सजा दिया जाता है, वहाँ खिलौने होते हैं खेलने के लिए होते हैं, और पुलिस ऑफिसर्स को भी सख्त इंस्ट्रक्शंस हैं कि वो कलर ड्रेस में ही उनसे जाएं, पुलिस ड्रेस में ना हो, कि बच्चा ट्रॉमेटाइज किसी भी तरीके से ना हो। इवन वहाँ जो जज साहिबा या जज साहब बैठेंगे वो भी उनसे उतने ही फ्रेंडली तरीके से बातचीत करेंगे कि बच्चा किसी भी तरीके से मेंटली ट्रॉमेटाइज ना हो। आपके लिए काउंसिल भी अवेलेबल रहते हैं जो बच्चों की मेंटल हेल्थ पे चेक रखते हैं, और मेडिकल हेल्थ भी देखी जाती है। तो ये सब चीज़ों की सारी चीज़ें देखी जाती हैं अंडर द एक्ट, कि बच्चा किसी तरीके से मेंटली अफेक्ट ना हो इन चीज़ों से, बिकॉज एक बच्चे की लाइफ में इस पूरे इंसिडेंट्स का काफ़ी अफेक्ट हो जाता है। तो बच्चे काफ़ी तरीके से मेंटली बहुत अपने आप को अकेला महसूस करने लगते हैं। तो इस चीज़ का काफ़ी देखा गया है कि काउंसिल्स इसीलिए प्रोवाइड की जाती है कि बच्चा जो है काउंसिल करा जाए और मेंटली किसी भी तरह हैरेस ना हो इस चीज़ के बारे में सोच सोच के।
1: अच्छा शौर्य जी, मानिए कोई बच्चा ऐसा है जिसके पास न धन है न कोई सपोर्ट है, तो उसको सरकार की तरफ से क्या कुछ मुफ्त जो है कानूनी सहायता मिल सकती है?
0: देखिए, अगर बच्चा अवेयर नहीं है, पर उसके अगर उसके पास वो चीज़ें नहीं हैं और वो अंडर प्रिविलेज्ड हैं या उस तरीके से, मतलब सोसाइटी के बहुत अच्छे पार्ट से नहीं आते और उनके आगे पीछे कोई नहीं है, ऐसी सिचुएशन में एनजीओस काफ़ी अच्छा पार्ट प्ले करते हैं। वो अगर ऐसी कोई सिचुएशन देखते हैं तो सर्वेज होते हैं, उसे पता किया जाता है सर्वे में कि बच्चों के साथ किन किन के साथ ऐसा, और ऐसी सिचुएशन अगर पाई जाती है तो उस पर कार्रवाई करी जाती है। और ये एनजीओज इसका मैटर उठाते हैं या चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर या कैंप्स वैम्प्स लगते हैं, उसमें बच्चे जो हैं उस तरीके से मतलब अवेयर हो जाते हैं और उनकी हेल्प हो सकती है निःशुल्क।
1: हमने सुना कि एनसीपीसीआर, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग बना हुआ है कोई, इसका क्या काम होता है?
0: ये एनसीपीसीआर जो है, इसमें बच्चों की प्रोटेक्शन के लिए कई तरीके की लोग जो हैं अवेल किए गए हैं, जिसमें ऐसे बच्चे जो अंडर प्रिविलेज्ड हैं या कोई बच्चे हैं जिनके आगे पीछे कोई नहीं, ऑर्फन हैं, उनके साथ अगर ऐसी सिचुएशन पाई जाती है तो उन बच्चों को यहाँ पे देख रेख की जाती है और आगे की जो भी इनके लिए बेहतरी के लिए प्रोसीजर होता है वो फॉलो किया जाता है और इन लोग की राइट्स की प्रोटेक्शन की जाती है।
1: तो ऐश्वर्या जी, इसी में बात आती है कि जो 14-15 साल की उम्र होती है उसके बच्चे या बच्चियां हैं, टीनेजर्स जिन्हें कहते हैं,
0: जी,
1: उनके लिए क्या कुछ अलग कानून कहता है हमारा?
0: ने बहुत अच्छा क्वेश्चन उठाया। आजकल का टीनेज जो है, डिजिटल इंडिया वाला टीनेज है। अब जो बच्चे हैं आजकल की, जो 15-16 साल के बच्चे हैं वो 20-22 साल की एज की तरह हो गए हैं, तो अब बच्चे डिजिटल इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हैं कि किसी से बातचीत करने लगते हैं ऑनलाइन, पेरेंट्स को भी नहीं पता होता है क्योंकि बच्चा ऑनलाइन क्या कर रहा है, पेरेंट्स घर में हैं, हर जगह कोई 24/7 विजिलेंट नहीं रह सकता कि अपने बच्चे पे 24 घंटे नज़र रखे। तो बच्चे ऑनलाइन बातें करने लगते हैं सोशल मीडिया के थ्रू,
1: ऑनलाइन
0: किसी
1: फेक
0: फेक
1: आइडेंटिटी से
0: आइडेंटिटी से लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं, बच्चियों से बातें करते हैं। कई हम लोग ने देखा था इन कुछ केसेस में, कुछ गलत तरीके की ह्यूमन ट्रैफिकिंग की ऑर्गेनाइजेशन के लोग थे जो इन्वॉल्व थे और बच्चों को इस तरीके से फंसाते थे कि वो जो कम एज की लड़कियां उनकी बातों में आए, उन्हें बरगलाएं, और उन बच्चों को ये लोग बरगला के अपने साथ ले जाते थे, एंड वो अंडर एज बच्चे होते थे और वो फंस जाते थे और उनके साथ अब्यूज होता था। इस चीज को बचाने के लिए पेरेंट्स हैं, अगर वो

0: सब कुछ फाइंड आउट करते हैं। और लड़की अगर कहती भी है कि मैं कंसेंशुअल इनसे इन्वॉल्व हूँ और इनसे आगे बढ़ के रिलेशन रखना चाहती हूँ, तो पेरेंट्स की बात सुनी जाएगी, उनकी बात को ज़्यादा तवज्जो दिया जाएगा, क्योंकि बच्चा माइनर में आ जाता है। 18 साल से नीचे के बच्चे की जितनी भी कंसेंशुअल होगी उसकी वैल्यू नहीं की जाएगी, वैल्यू होगी पेरेंट्स की अवेयरनेस की और पेरेंट्स के कंसेंट की। उनको लगता है कि उनके बच्चे के साथ गलत हो रहा है तो वो कंप्लेन दर्ज करा सकते हैं, और वो पॉक्सो एक्ट के थ्रू भी जा सकते हैं, अपने बच्चे पे स्टैट्यूटरी रेप चार्जेस भी लगवा सकते हैं कि अगर वो इंसान जिससे वो बच्चा इन्वॉल्व है वो मेजर है या माइनर है, वो उनके साथ कुछ गलत कर रहा है, तो पेरेंट्स जो हैं इस पे एक्शन ले सकते हैं कानून द्वारा।
1: तो ये तो बात हो गई गर्ल्स पे कि आप चार्जेस लगा सकते हैं, तो अगर टीनेज लड़का है तो उसके लिए क्या होगा?
0: टीनेज लड़का अगर ऐसा अंडर एज लड़की के साथ इन्वॉल्व है, तो लड़कों के लिए बाल सुधार गृह बनाए गए हैं, जैसे जुवेनाइल होता है, जुवेनाइल्स के
1: कोर्ट
0: लिए
1: है
0: कोर्ट होती हैं और उनके लिए बाल गृह होते, सुधार गृह, वहाँ इन्हें भेजा जाएगा, जहाँ पे अगर इन्होंने इस तरीके की कोई चीज़ें पाई गई हैं इनके खिलाफ तो उस पर आगे जाके कार्रवाई होगी। बॉयज़ के लिए है, पर फीमेल्स के लिए जो है पेरेंट्स पॉक्सो एक्ट और रेप चार्जेस लगा सकते हैं, इफ अगर वो फाइंड आउट करते हैं कि उनका बच्चा जो है इस तरीके से इन्वॉल्व है अंडर एज होके भी दूसरे पार्टनर के साथ। और आजकल सोशल मीडिया में कई चीज़ें और हैं कि लोग अपनी पिक्चर्स शेयर करते हैं, वो भी एक तरीके से इलीगल है। यू कैन नॉट शेयर योर पिक्चर्स विच इज़ नॉट अप्रोप्रिएट, जो एब्सर्ड हैं और न्यूडिटी को प्रमोट करती, इस तरीके की पिक्चर्स अगर आप शेयर करते हो, कोई सेफ रखता है, उस पर भी सेक्शंस दिए गए हैं पॉक्सो एक्ट में कि उस पर भी कार्रवाई होती है।
1: तो ऐश्वर्या जी, आपने पॉक्सो एक्ट में बदलाव के बारे में इतनी बातें बताई हमें, हमारे श्रोताओं को जरूर इससे जरूर कुछ न कुछ लाभ होगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि यदि हमें आगे भी जरूरत पड़ती है किसी पॉक्सो एक्ट के संबंध में कुछ जानकारी करने की, तो हम ऐश्वर्या द्विवेदी को फिर से अपने स्टूडियो में बुलाएंगे। आपका स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
0: जी बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे लोगों को अवेयर करना और उनको जागरूक करना बहुत, मेरा एक तरीके से प्रोफेशन है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैं हिस्सा बनी यहाँ पे, और मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ आपको।
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम कानून की बात, मीडियम वेव के मीटर पर ये आकाश।
3: एक सौ 2.7 FM पर हम आकाशवाणी के ओबरा केंद्र से बोल रहे हैं। 7:46 हो रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम सबरस।

0: तनिष्क बाख्शी और आसिस कौर की आवाज में अभी आप सुन रहे थे इस गाने को। फिल्म का नाम था तेरी बातों में ऐसा उलझा गया। आकाशवाणी उभरस इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सप्रस।
1: जानते हो बेल्जियम या ग्रीस की कुल आबादी भी इतनी नहीं है जिससे ज्यादा महिलाएं हमारे देश में लखपति दीदी बनी हैं। 3 करोड़ से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बनकर बनी हैं परिवार और देश का आर्थिक आधार।
2: लखपति दीदी बनाने का ये अभियान आने वाली पीढ़ियों को सशक्त करने का एक महाअभियान है।
1: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
3: गाइए, गुनगुनाइए, कहिए हमसे दिल की बात।
4: आपकी फरमाइश पर हम चलेंगे म्यूजिकल रिदम के साथ।
5: हेलो,
3: फिर क्या, फोन उठाइए, वॉल्यूम बढ़ाइए,
4: जो चाहे वो ट्रैक सुनाइए।
3: डायल करिए 0544529710। मंगलवार और शुक्रवार दिन में 11 बजे से।
4: हेलो फरमाइश, योर म्यूजिक, योर स्टाइल,
3: ओनली ऑन AIR ओबरा।
6: आपकी गिनती देश की शान, जनगणना से जन कल्याण।
7: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
0: श्रोताओं, हीट वेव से सुरक्षा के लिए सूचना सुनिए। हीट वेव यानी लू से बचने के लिए पर्याप्त मात्रा में पानी और ORS का घोल पीते रहें। हल्के, ढीले और सूती कपड़े पहने। दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे के बीच घर से न निकलें। धूप में निकलते समय हमेशा सिर को ढककर छाता या सनस्क्रीन का उपयोग करें। हाइड्रेटेड रहें। प्यास न होने पर भी थोड़ी थोड़ी देर में पानी पीते रहें। नींबू पानी, छाछ, नारियल पानी और मौसमी फलों का रस पिएं। हल्का और सुपाच्य भोजन लें। तरबूज, खीरा, ककड़ी और तरबूजे जैसे पानी से भरपूर फल खाएं। दोपहर में खिड़की दरवाजे बंद रखें और रात में ठंडी हवा को घर में आने दें। कूलर या पंखे का उपयोग करें। बाहर जाते समय आंखों के लिए धूप का चश्मा यानी प्रोटेक्शन लगाएं और सिर को ढकने के लिए टोपी या गीले तौलिए का प्रयोग करें। चिलचिलाती धूप में बाहर ना निकलें, विशेष रूप से दोपहर 12 से 4 के बीच। पेय पदार्थ लेते समय ध्यान रखें, शराब, चाय या कॉफी और बहुत अधिक चीनी वाले कोल्ड ड्रिंक्स पीने से बचें, क्योंकि ये शरीर में पानी की कमी को बढ़ाते हैं। गहरे रंग के भारी और कसे हुए कपड़े न पहने। बच्चों और पालतू जानवरों को कभी भी धूप में बंद यानी खड़ी गाड़ी में न छोड़ें। आकाशवाणी उबला से समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सबरस।

शफकत अमंतली की आवाज में अभी आप सुन रहे थे फिल्म रावण के इस गीत को। संगीत विशाल शेखर का था। बॉम्बे जयश्री की आवाज में अब लीजिए सुनिए इस गाने को। फिल्म का नाम है रहना है तेरे दिल में।

समीर के लिखे इस गीत को अभी आप सुन रहे थे बॉम्बे जयश्री की आवाज में। फिल्म का नाम था रहना है तेरे दिल में। इसी के साथ कार्यक्रम सब्र सब समाप्त होता है। 102.7 FM पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी ओबरा का प्रसारण। रात्रि के 8 बज रहे हैं। प्रस्तुत है गैर फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुगम संगीत। कार्यक्रम में सबसे पहले लीजिए सुनिए सोनू निगम की आवाज में इस गाने को।

0: पता है दुनिया के कई विकसित देश ऐसे भी हैं जहां मुफ्त इलाज एक सपना है और हमारे यहां वो आम नागरिक का अधिकार। आयुष्मान भारत से 60 करोड़ से अधिक लोगों को मिल रहा है 5 लाख तक का मुफ्त इलाज और 19,000 जन औषधि केंद्रों पर 90% तक सस्ती दवाइयां।
1: किसी एक व्यक्ति की जमीन, घर, गहने या दूसरा कोई सामान बीमारी के खर्च में बिकने से बचा है, गिरवी रखने से बचा है, तो ये आयुष्मान भारत की बहुत बड़ी सफलता है।
0: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

अभी आप सुन रहे थे आदित्य रिखरे की आवाज में इस गाने को। आकाशवाणी ओबरा से इस समय आप सुन रहे हैं गैर फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुगम संगीत। सुनते रहिए आकाशवाणी ओबरा का प्रसारण।

अभी आप सुन रहे थे डैनी की आवाज में इस गाने को। इसी के साथ गैर फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुगम संगीत अब समाप्त होता है। 102.7 FM पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी ओपरा का प्रसारण।

मोहित चौहान और श्रेया घोषाल की आवाज में अभी आप सुन रहे थे प्रसून जोशी के लिखे इस गीत को फिल्म आरक्षण में। संगीत शंकर एहसान लॉय का था। आकाशवाणी ओबरा से समय आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत।

0: ये कहानी है एक नर्स और उसके अंतर्मन की।
1: आगे सैलरी? नहीं झुमके
2: ना, पहले बचत,
1: पहले झुमके।
2: सुनो, हर महीने थोड़ा बचाओ और थोड़ा निवेश करो, और कुछ इमरजेंसी के लिए भी बचाओ ताकि रहो टेंशन फ्री।
1: लेकिन झुमकों का क्या?
2: जाते हो कि लगाओ इंजेक्शन।
3: आरबीआई कहता है,
4: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।
5: श्रोताओं, हीट वेव से सुरक्षा के लिए सूचना सुनिए। हीट वेव यानी लू से बचने के लिए पर्याप्त मात्रा में पानी पीते रहें या ORS का घोल पीते रहें। हल्के ढीले और सूती कपड़े पहने। दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे के बीच घर से बाहर निकलने से बचें। धूप में निकलते समय हमेशा सिर को ढककर या छाता लगाकर ही घर से निकलें।

फिल्म मौसम में अभी आप सुन रहे थे शाहिद माल्या की आवाज में इरशाद कामिल के लिखे इस गीत को, संगीत प्रीतम का था। आकाशवाणी ओबरा से इस समय आप सुन रहे हैं फिल्म संगीत। अब लीजिए सुनिए शफकत अमानत अली की आवाज में फिल्म तनुवेड्स मनु के इस गीत को।

शफकत अवानतली की आवाज में ये था फिल्म तनु वीट्स मनु का गाना। इसी के साथ फिल्म संगीत अब समाप्त होता है। 102.7 FM पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी ओबरा का प्रसारण। रात्रि के 8:30 हो रहे हैं और अब प्रस्तुत है गैर फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुगम संगीत। कार्यक्रम में सबसे पहले लीजिए सुनिए पपॉन की आवाज में इस गीत को।

0: जन कल्याण
1: जनगणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
2: पता है दुनिया के कई विकसित देश ऐसे भी हैं जहां मुफ्त इलाज एक सपना है और हमारे यहां वो आम नागरिक का अधिकार। आयुष्मान भारत से 60 करोड़ से अधिक लोगों को मिल रहा है 5 लाख तक का मुफ्त इलाज और 19,000 जन औषधि केंद्रों पर 90% तक सस्ती दवाइयां।
3: किसी एक व्यक्ति की जमीन, घर, गहने या दूसरा कोई सामान बीमारी के खर्च में बिकने से बचा है, गिरवी रखने से बचा है, तो ये आयुष्मान भारत की बहुत बड़ी सफलता है।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।

अभी आप सुन रहे थे शमशा कर्णवाल की आवाज में इस गाने को। आकाशवाणी उबरा से इस समय आप सुन रहे हैं गैर फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुगम संगीत। कार्यक्रम में अब लीजिए सुनिए कैलाश खेर की आवाज में इस गाने को।

0: कैलाश खेर के गाए इस गाने के साथ गैर फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुगम संगीत अब समाप्त होता है। 102.7 FM पर हम आकाशवाणी के ओबरा केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 8:45 होने को हैं। अब आप सुनेंगे हिंदी समाचार और रात्रि 9 बजे अंग्रेजी समाचार हमारे दिल्ली केंद्र से।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 140 करोड़ भारतीयों की आकांक्षाएं निश्चित रूप से पूरी होने का आश्वासन दिया। कहा, विकसित भारत सभी देशवासियों का सपना होना चाहिए। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने श्री मोदी को लगातार देश के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री बनने पर बधाई दी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अहमदाबाद मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण को और आंध्र प्रदेश के अमरावती में ढांचागत परियोजनाओं को स्वीकृति दी। सरकार ने वस्त्रों के लिए PLI योजना के तीसरे चरण के अंतर्गत 96 कंपनियों को मंजूरी दी। इन कंपनियों ने लगभग 13,000 करोड़ रुपए के निवेश की प्रतिबद्धता व्यक्त की। रक्षा मंत्रालय संचालन सुरक्षा बढ़ाने के लिए नौसेना के जहाजों के लिए 20 आधुनिक जैमर खरीदेगा। और ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन में PV सिंधु और तन्वी शर्मा सिंगल्स के प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंची। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश के 140 करोड़ नागरिकों की आकांक्षाएं अवश्य पूरी होंगी। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन NDA ने हमेशा देश के भरोसे को मजबूत किया है। नई दिल्ली में NDA की बैठक में उन्होंने कहा कि कांग्रेस के विश्वासघात के बाद देश की जनता ने NDA सरकार पर भरोसा जताया है। उन्होंने कहा कि 2014 में आशा की जो किरण जगी थी वे आज नए आत्मविश्वास की किरण में बदल गई है। उन्होंने कहा कि पहली बार देश की जनता ने देखा है कि जब कोई सरकार सही इरादों से चलाई जाती है तो विकास भी तेजी से होता है।
2: NDA सरकार के इन 12 वर्षों में 25 करोड़ से ज्यादा लोगों का गरीबी से बाहर निकलना, ये दिखाता है कि हमारी नीतियां सही है, हमारी दिशा सही है। ये सफलता आज देश के हर उस व्यक्ति को एक भरोसा देती है कि एक न एक दिन उसका संघर्ष भी खत्म होगा, एक दिन उसके सपने भी पूरे होंगे।
1: श्री मोदी ने कहा कि देश लगातार विकास के नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है।
2: NDA के 12 वर्षों की उपलब्धियों की एक और विशेषता है, हमें ये उपलब्धियां वैश्विक अस्थिरता और अशांति के दौर में हासिल हुई है। दुनिया के बड़े बड़े देशों की अर्थव्यवस्थाएं संघर्ष कर रही है, तब भी 2025-26 में भारत ने 7.7% की ग्रोथ रेट हासिल की है और पिछला क्वार्टर तो जो 31 मार्च को खत्म हुआ उसमें भी भारत की ग्रोथ 7.8% रही है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि देश की जनता ने राष्ट्रीय स्तर पर राजनीतिक स्थिरता के महत्व को समझ लिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत सभी देशवासियों का सपना होना चाहिए।
2: आज देश का हर नागरिक विकसित भारत के सपने से भरा हुआ है। विकसित भारत का सपना अब किसी एक व्यक्ति का नहीं रहा, किसी सरकार का नहीं रहा, किसी दल का नहीं रहा, देश के जन जन का सपना बन चुका है, संकल्प बन चुका है। और इस सपने की पूर्ति के लिए हमें अपना हर पल समर्पित करना है। NDA के 12 वर्षों की एक बड़ी सफलता ये भी है कि देश कांग्रेस के कुचक्र से आजाद हुआ है।
1: श्री मोदी ने कहा कि NDA राष्ट्र की सेवा और विकसित भारत के दृष्टिकोण को साकार करने के लिए नए जोश के साथ मिलकर काम करना जारी रखेगा।
2: महिलाओं को आरक्षण, 3 तलाक के खिलाफ कानून, CAA का कानून, भारतीय न्याय संहिता, सैनिकों को 1 रैंक 1 पेंशन। NDA सरकार राष्ट्रहित में कोई भी काम करने से पीछे नहीं रही और हम सभी को इस बात पर गर्व है।

0: मैं आज देश को फिर आश्वस्त करूंगा, देश हित के बड़े फैसलों का यह सिलसिला और भी तेज होगा।
1: इससे पहले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारत के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री रहने की उपलब्धि पर बधाई देते हुए एक प्रस्ताव पारित किया। प्रस्ताव पेश करते हुए आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। श्री मोदी इस महान राष्ट्र के प्रधानमंत्री के रूप में सेवा करने के लिए सही समय पर सही स्थान पर सही नेता हैं। गठबंधन के सभी घटक दलों के साथ साथ प्रधानमंत्री मोदी सहित भाजपा के शीर्ष नेता और एनडीए शासित सभी 22 राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री भी बैठक में शामिल हुए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन और केंद्रीय मंत्रियों ने इस उपलब्धि पर श्री मोदी को बधाई दी है। प्रधानमंत्री को दुनिया भर से बधाई संदेश आ रहे हैं। एक रिपोर्ट।
2: यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेयन ने कहा है कि श्री मोदी के नेतृत्व में भारत चांद पर पहुंच गया और अब वह आसमान की ऊंचाइयों को छूने का लक्ष्य बना रहा है। इटली की प्रधानमंत्री जियोर्जिया मेलोनी ने दोनों देशों के लोगों के लिए नए अवसर सृजित करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी के साथ काम करने की इच्छा व्यक्त की। साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स ने कहा कि यह उपलब्धि प्रधानमंत्री मोदी की वर्षों की समर्पित सेवा और नेतृत्व को दर्शाती है। डेनमार्क की प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन ने द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने के लिए उनके साथ काम जारी रखने की इच्छा व्यक्त की। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जी म्यूंग ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने वर्षों से आर्थिक और विकासात्मक प्रगति का मार्गदर्शन किया है। श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिसानायका, पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री जेम्स मारापे और त्रिनिदाद तथा टोबैगो की प्रधानमंत्री कमला प्रसाद बिसेसर ने ग्लोबल साउथ के लिए श्री मोदी के प्रयासों की सराहना की। समाचार कक्ष से जया भारती।
1: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज एक प्रस्ताव पारित कर प्रधानमंत्री को बधाई दी। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि यह प्रस्ताव श्री मोदी की राष्ट्र के प्रति निरंतर सेवा में कई प्रतिबद्धताओं और उपलब्धियों को उजागर करता है। उन्होंने कहा कि मंत्रिमंडल ने इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर प्रधानमंत्री को बधाई देने के लिए 7 सूत्रीय प्रस्ताव पारित किया।
3: उनके नेतृत्व में भारत के 25 करोड़ से अधिक गरीबों ने गरीबी को परास्त किया है। राष्ट्र सेवा के प्रति माननीय प्रधानमंत्री जी के अद्वितीय समर्पण एवं अथक परिश्रम के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा को सुदृढ़ बनाने एवं भारत के हितों की रक्षा हेतु और समावेशी विकास एवं सामाजिक न्याय की दिशा में किए गए उनके प्रयासों की सराहना करता है और विकसित भारत के निर्माण के उनके दूरदर्शी संकल्प और नेतृत्व के प्रति अपना पूर्ण समर्थन व्यक्त करता है।
1: इस बीच मंत्रिमंडल ने अहमदाबाद मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण को भी मंजूरी दे दी। इसमें कोटेश्वर रोड से हवाई अड्डे तक का गलियारा शामिल है। आर्थिक मामलों के मंत्रिमंडल समिति ने आंध्र प्रदेश के अमरावती में केंद्र सरकार की 2 प्रमुख ढांचागत परियोजनाओं को भी स्वीकृति दी। इन परियोजनाओं से बड़ी संख्या में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र के साथ देश में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के बारे में एक विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज बात युवाओं के सशक्तिकरण की दिशा में सरकार के प्रयासों की।
4: पिछले 12 वर्षों में सरकार ने देश की युवा शक्ति को सशक्त बनाने पर विशेष ध्यान दिया है। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत 12 करोड़ से अधिक नए उद्यमियों को ऋण प्रदान किया गया है, जिससे युवाओं के सपनों को नई उड़ान मिली है। सरकार युवाओं को रोजगार और आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ाने के लिए सशक्त बना रही है, जिससे वे नौकरी तलाशने वाले नहीं बल्कि रोजगार देने वाले बन रहे हैं। छत्तीसगढ़ के रायपुर की महिला उद्यमी ईशा पटेल ने बताया कि कैसे उन्होंने घर पर खाना बनाने से शुरुआत करने से लेकर एक सफल कैफे व्यवसाय स्थापित करने तक की यात्रा की।
5: मैं ना यूथ को लगता है कि हमारे पास फंडिंग नहीं है, बट वो गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में अवेयर नहीं है, तो मैं अपने साइड से यही उन्हें सजेशन देना चाहूंगी। अब थोड़ा रिसर्च करो, जैसे मुद्रा लोन भी है, वैसे पीएमईजीपी लोन भी है, कई लोन जो आपको विदाउट मॉर्गेज मिल रहे हैं। आपके में पोटेंशियल है तो आप जॉब ड्रॉप करो, क्योंकि स्काई हैज नो लिमिट्स फॉर यू।
4: प्रधानमंत्री कौशल विकास आवास योजना के अंतर्गत 1,60,00,000 से अधिक युवाओं को प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। कुशल युवाओं की बढ़ती संख्या मेक इन इंडिया पहल को नई ऊर्जा दे रही है। रोजगार मेलों के माध्यम से 1,200,000 नियुक्ति पत्र वितरित किए जा चुके हैं, जिससे युवाओं के रोजगार के सपने साकार हो रहे हैं। देश में 2,20,000 से अधिक स्टार्टअप्स ने 23,00,000 से ज्यादा रोजगार के अवसर सृजित किए हैं। वहीं छात्रों द्वारा 16,00,000 नवाचार परियोजनाएं विकसित की गई हैं। प्रधानमंत्री सेतु योजना के तहत 1,000 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों ITI के आधुनिकीकरण के लिए 60,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, जिससे युवाओं को उद्योगों की आवश्यकताओं के अनुरूप कौशल प्रदान किया जा सकेगा। सरकार के सहयोग और देश की युवा शक्ति के प्रयासों से भारत के विकास का एक नया अध्याय लिखा जा रहा है। अनुपम मिश्र के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: दिशा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.co.in पर।
2: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। सरकार ने वस्त्रों के लिए उत्पादन आधारित प्रोत्साहन PLI योजना के तीसरे चरण के अंतर्गत 22 नए आवेदकों को मंजूरी दी है। वस्त्र मंत्रालय ने बताया है कि इनमें कुल 96 कंपनियों का चयन किया गया है। इन कंपनियों ने 12,822 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश करने का आश्वासन दिया है और इसका अनुमानित कारोबार 58,000 करोड़ रुपए से अधिक है। रक्षा मंत्रालय ने आज भारतीय नौसेना के लिए उन्नत क्षमता के 20 वैश्विक दिशा सूचक उपग्रह प्रणाली GNSS जैमर खरीद के लिए 449 करोड़ रुपए के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। इसमें न्यूनतम 75% स्वदेशी सामग्री का प्रावधान शामिल है। ये प्रणाली दुश्मन की उपग्रह आधारित दिशा सूचक प्रणाली को बाधित कर उसकी संचालन क्षमता को कमजोर कर सकती है। सरकार ने सूक्ष्म वित्त संस्थानों के लिए दूसरे चरण की ऋण गारंटी योजना की वैधता को इस वर्ष 31 अगस्त तक या 20,000 करोड़ रुपए की गारंटी जारी होने तक बढ़ाने की मंजूरी दे दी है। अब तक कुल 770 करोड़ रुपए के ऋण स्वीकृत किए जा चुके हैं। योजना का उद्देश्य राष्ट्रीय ऋण गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड के माध्यम से ऋण गारंटी सहायता प्रदान करना है। भारत में वर्ष 2014-15 से 2025-26 के बीच 843 अरब डॉलर का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश हुआ है, जो इस अवधि से पिछले 12 वर्ष की तुलना में 169% अधिक है। उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग के अनुसार वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताओं के बावजूद भारत में 2025-26 में 94 अरब डॉलर से अधिक का ऐतिहासिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश हुआ है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में भारत विश्व की सबसे महत्वपूर्ण सफलताओं में से एक है। नई दिल्ली में श्री जोशी ने कहा कि प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना से लगभग 42 लाख परिवारों को लाभ हुआ है। मौसम विभाग ने कहा है कि पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से उत्तर पश्चिम भारत में 13 जून तक बारिश होने की संभावना है। अगले 5 से 7 दिन के दौरान उत्तर पश्चिम और उत्तर पूर्व भारत में तेज वर्षा का अनुमान है। हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पंजाब, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में ओलावृष्टि के साथ बारिश होने की संभावना है। ऑस्ट्रेलियन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स में पीवी सिंधु और तन्वी शर्मा ने प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। सिंधु ने पेरू की इनेस क्रिस्टिलो को और तन्वी शर्मा ने चीनी ताइपी की चियो पिनचियान को मात दी। उधर कार्डिफ में महिला T20 विश्व कप के वार्म अप मैच में इंग्लैंड ने भारत को 5 रन से हराया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आश्वासन दिया कि 140 करोड़ भारतीयों की आकांक्षाएं निश्चित रूप से पूरी होंगी। कहा, विकसित भारत सभी देशवासियों का सपना होना चाहिए। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने प्रधानमंत्री को लगातार

0: देश के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित प्रधानमंत्री बनने पर बधाई दी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अहमदाबाद मेट्रो रेल परियोजना के दूसरे चरण को और आंध्र प्रदेश के अमरावती में ढांचागत परियोजनाओं को स्वीकृति दी। सरकार ने वस्त्रों के लिए पीएलआई योजना के तीसरे चरण के अंतर्गत 96 कंपनियों को मंजूरी दी। इन कंपनियों ने लगभग 13,000 करोड़ रुपए के निवेश की प्रतिबद्धता व्यक्त की। रक्षा मंत्रालय संचालन सुरक्षा बढ़ाने के लिए नौसेना के जहाजों के लिए 20 आधुनिक जैमर खरीदेगा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: Good evening. This is Akashvani and I am Valsa Williams with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi assures aspirations of 140 crore Indians will definitely be fulfilled. Says Vikasit Bharat must be the dream of every single person. National Democratic Alliance lauds Prime Minister Narendra Modi on becoming India's longest-serving elected Prime Minister. Union Cabinet approves second phase of Ahmedabad Metro Rail Project, also gives nod to infrastructure projects in Amaravati, Andhra Pradesh. Government approves 96 companies under third round of PLI scheme for textiles, nearly 13,000 crore rupees investment committed. Defence Ministry to procure 20 advanced jammers for Navy ships to enhance operational safety. And in badminton, PV Sindhu and Tanvi Sharma advanced to second round of women's singles event at Australian Open. Prime Minister Narendra Modi today assured that the aspirations of 140 crore citizens of the country will definitely be fulfilled and emphasized that the National Democratic Alliance, NDA, has always strengthened the nation's trust. Mr. Modi was addressing the NDA conclave at Bharat Mandapam in New Delhi this evening. He said the people of the country entrusted the NDA government with their trust after the betrayal of the Congress. He said, for the first time, the people of the country have seen that when a government is run with the right intention, development also takes place at a rapid pace. He said the lifting of more than 25 crore people out of poverty during these 12 years of the NDA government reflects that its policies are correct and its direction is right.
2: Bharat ke logon ne pehli baar ye dekha hai, jab sahi niyat se sarkar chalti hai, to tej gati se vikas bhi hota hai. एनडीए सरकार के इन 12 वर्षों में 25 करोड़ से ज्यादा लोगों का गरीबी से बाहर निकलना, ये दिखाता है कि हमारी नीतियां सही है, हमारी दिशा सही है। ये सफलता आज देश के हर उस व्यक्ति को एक भरोसा देती है कि एक न एक दिन उसके सपने भी पूरे होंगे।
1: The Prime Minister added that the people of the country have understood the importance of political stability at the national level. He said it is a testament to the maturity of the people that they have given him the opportunity to serve them for such a long time.
2: 2014 के पहले के कई दशक बहुत अस्थिरता और उथल-पुथल से भरे हुए थे। इसका देश को बहुत नुकसान भी उठाना पड़ा। लेकिन अब देश की जनता एक स्थिर सरकार का काम भी देख रही है। और उसकी निर्णायक क्षमताओं की प्रशंसक भी है। मैं आज देश की महान जनता को भी नमन करता हूं, जनता जनार्दन का आभार व्यक्त करता हूं।
1: Mr. Modi said every citizen of the country is filled with the dream of a Vikasit Bharat, and this dream is no longer limited to any single individual, government or political party. He emphasized that the government's economic and structural reforms are a product of ideological conviction rather than political compulsion.
2: आज देश का हर नागरिक विकसित भारत के सपने से भरा हुआ है। विकसित भारत का सपना अब किसी एक व्यक्ति का नहीं रहा, किसी सरकार का नहीं रहा, किसी दल का नहीं रहा। देश के जन-जन का सपना बन चुका है, संकल्प बन चुका है। और इस सपने की पूर्ति के लिए हमें अपना हर पल समर्पित करना है। एनडीए के 12 वर्षों की एक बड़ी सफलता ये भी है कि देश कांग्रेस के कूट चक्र से आजाद हुआ है।

0: गणना 2027 में मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना 22 मई से 20 जून तक होगी। देश के विकास में सहभागी बने।
1: आपको पता है, जो सपना कुछ विकसित देशों की बेटियां भी नहीं देख सकती हैं, वो सपना भारत की बेटियां साकार कर रही हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से लेकर के सेना में स्थायी कमीशन तक, ड्रोन से लेकर फाइटर जेट्स उड़ाने तक, भारत की बेटियां नामुमकिन को मुमकिन कर रही हैं।
2: हमारी माँ बहनों का गर्व, उनका योगदान, उनका सामर्थ्य आज देश अनुभव कर रहा है।
1: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के।
3: गाइए गुनगुनाइए, कहिए हमसे दिल की बात।
4: आपकी फरमाइश पर हम चलेंगे म्यूजिकल रिदम के साथ।
5: हेलो,
3: फिर क्या, फोन उठाइए, वॉल्यूम बढ़ाइए,
4: जो चाहे वो ट्रैक सुनाइए।
3: डायल करिए 0544529710। मंगलवार और शुक्रवार दिन में 11 बजे से।
4: हेलो फरमाइश, योर म्यूजिक योर स्टाइल,
3: ओनली ऑन AIR ओबरा।
6: आकाशवाणी उबरा से समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों के झरोखों से सफर 90 वर्ष का। अब लीजिए सुनिए हीटवेव से सुरक्षा के लिए सूचना। श्रोताओं, हीटवेव यानी लू से बचने के लिए पर्याप्त मात्रा में पानी और ORS का घोल पिए, हल्के ढीले और सूती कपड़े पहने, दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे के बीच घर से बाहर निकलने से बचें, धूप में निकलते समय हमेशा सिर को ढककर छाता या सनस्क्रीन का उपयोग करें, हाइड्रेटेड रहें, प्यास न होने पर भी थोड़ी देर में पानी पीते रहें, नींबू पानी, छाछ, नारियल पानी और मौसमी फलों का रस पिएं, हल्का और सुपाच्य भोजन लें, तरबूज, खीरा, ककड़ी और खरबूजा जैसे पानी से भरपूर फल खाएं, घर को ठंडा रखें, दोपहर में खिड़की दरवाजे बंद रखें और रात में हवा आने दें, कूलर या पंखे का उपयोग करें। बाहर जाते समय आंखों के लिए धूप का चश्मा और सिर ढकने के लिए टोपी या गीले तौलिए का प्रयोग करें। धूप में न जाएं, चिलचिलाती धूप में बाहर निकलने से बचें, विशेष रूप से दोपहर 12 बजे से 4 बजे के बीच। पेय पदार्थ में शराब, चाय, कॉफी और बहुत अधिक चीनी वाले कोल्ड ड्रिंक्स से बचें, क्योंकि ये शरीर में पानी की कमी को बढ़ाते हैं। गहरे रंग के भारी और कसे हुए कपड़े न पहने। बच्चों और पालतू जानवरों को कभी भी धूप में खड़ी बंद गाड़ियों में न छोड़ें। अगर आपको या आपके आसपास किसी को तेज सिर दर्द, चक्कर या उल्टी या तेज बुखार हो तो ये हीट स्ट्रोक के लक्षण हो सकते हैं। इन्हें तुरंत डॉक्टर की सलाह से दवा दिलाएं। हीट वेव से सुरक्षा पर सूचना समाप्त हुई। कार्यक्रम में आप लीजिए सुनिए अरिजीत सिंह की आवाज में फिल्म केदारनाथ के इस गीत को।

अभी आप सुन रहे थे अरिजीत सिंह की आवाज में फिल्म एमएस धोनी के इस गीत को। इसी के साथ कार्यक्रम यादों के झरोखों से सफर 90 वर्ष का यही समाप्त होता है। 102.7 एफएम पर हम आकाशवाणी के ओबरा केंद्र से बोल रहे हैं। अब से कुछ देर में यानी रात्रि 9:30 पर आप सुनेंगे हमारे दिल्ली केंद्र से कार्यक्रम चर्चा का विषय है।

0: चर्चा का विषय है। ये आकाशवाणी है, चर्चा का विषय है। कार्यक्रम में प्रस्तुत है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ऐतिहासिक कार्यकाल, प्रभावशाली नेतृत्व और परिवर्तनकारी नीतियों से आकार लेते नए भारत पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं राजनीतिक विश्लेषक शेखर अय्यर और के जी सुरेश। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं आनंद श्रीवास्तव।
1: सदियों पुराना इतिहास और उस इतिहास के पन्नों पर करवट लेता एक आधुनिक महाशक्ति का संकल्प। साल 2014 से शुरू हुआ एक ऐसा सफर जिसने देश को सिर्फ नीतियां नहीं दी बल्कि एक नया आत्मविश्वास दिया। आज का भारत थमने वाला भारत नहीं है। गांव से लेकर वैश्विक मंच तक, खेतों से लेकर अंतरिक्ष तक, सीमाओं की सुरक्षा से लेकर नारी सशक्तिकरण तक, भारत ने बदलाव की एक ऐसी कहानी लिखी जिसे दुनिया ने भी गौर से देखा और महसूस किया। आज का भारत केवल दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र नहीं है बल्कि तेजी से उभरती हुई एक वैश्विक शक्ति के रूप में अपनी पहचान बना रहा है। आत्मनिर्भर भारत का संकल्प, G20 की सफल अध्यक्षता, रक्षा उत्पादन में नई उपलब्धियां, ऑपरेशन सिंदूर जैसे निर्णायक कदम, डिजिटल इंडिया की क्रांति, किसानों और गरीबों के जीवन में बदलाव लाने वाली योजनाएं, इन सब ने एक नए भारत की तस्वीर गढ़ी है। ये है बदलता हुआ भारत, ये है निखरता हुआ भारत। साल 2014 से लेकर अब तक विकास के इस महायज्ञ में भारत ने हर क्षेत्र में जो लंबी छलांग लगाई है, आज हम उसका विश्लेषण करेंगे। और इस बेहद महत्वपूर्ण चर्चा में हमारे साथ दो बेहद प्रतिष्ठित और वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं। हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार शेखर अय्यर और देश के जाने माने मीडिया विशेषज्ञ और वरिष्ठ पत्रकार प्रोफेसर केजी सुरेश। आप दोनों का आकाशवाणी के इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है।
2: नमस्कार।
3: नमस्कार।
1: सबसे पहले शेखर जी, आपके साथ शुरुआत करते हैं। अगर चर्चा की शुरुआत हम विदेश नीति से करें, एक ऐसा विषय जहां भारत ने पिछले एक दशक में बहुत प्रगति की है, भारत की विदेश नीति में एक बड़ा पैराडाइम शिफ्ट देखने को मिला है पिछले एक दशकों में। आज का भारत संकट के समय मूक दर्शक नहीं रहता बल्कि यूक्रेन संकट से लेकर पश्चिम एशिया के तनाव तक अपना स्वतंत्र रुख रखता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत की इस स्वतंत्र और मुखर विदेश नीति को कैसे देखते हैं?
3: बिल्कुल आनंद जी, ये पिछले 12 साल में भारत की जो लीडरशिप रही है, नेतृत्व कहा जाए, बड़े बड़े क्राइसिस में भारत की आवाज, भारत की हस्तक्षेप, भारत की कूटनीति, ये बहुत बदलाव आया है। वो रशिया यूक्रेन युद्ध हो या अभी जो चल रही है ईरान के युद्ध हो, जहां भारत की आवाज, भारत की कोशिश किसी तरह विश्व शांति लाने की बड़ी पैगाम लगी, इसीलिए हो रहा है कि आज की जो भारत है, ये भारत जो विश्व भर में एक प्रकार से देखा जाता है कि ये देश जो लोक कल्याण की बात करती है, केवल भारतीय लोगों की कल्याण नहीं है, विश्व कल्याण और विश्व शांति की हमेशा कोशिश रहती है। कई जगह पर हमने देखा है कि भारत की जो विचार, भारत की जो दृष्टिकोण, ये सारे वर्ल्ड के जितने लीडर्स हैं बहुत गंभीरता से सुनते हैं। वो आपके G7 के एक्सटेंडेड समिट हो, G23 की समिट हो, या जहां पे भी भारत यूएन जनरल असेंबली की प्रधानमंत्री की भाषण हो, या कोई बायलेटरल समिट हो जहां दोनों देशों के बीच में नेताओं की परस्पर जो बातचीत हो, हर जगह पर भारत की बात सुनने के लिए वर्ल्ड के जो प्राइम मिनिस्टर्स, प्रेसिडेंट भारत आए, और हमारी प्रधानमंत्री जब भी बाहर जाते हैं, और भारत की जो आर्थिक चेंज जो हो रहा है, एक प्रकार से सबके सामने एक एग्जाम्पल बन गया है। उदाहरण के लिए जिस तरह हमारी डिजिटल मिशन रहा है, डिजिटल पेमेंट की जो बात, ये G23 में सब नेताओं ने इसको एक मॉडल के रूप में देखा कि विश्व भर में कैसे गरीबों के लिए, आत्मनिर्भरता के लिए कैसे हम इसको अपना सकते हैं। इस तरह कई चीजें जो है आप देख रहे हैं कि जहां पे स्ट्रेटेजिक विषय हो, जहां पे आपको लग रहा है कि भारत का भूमिका कि विश्व शांति के लिए, उसके लिए जो भूमिका कर सकते हैं, वो सारे देश भारत की ओर देख रहे हैं। ये नहीं कह रहा हूं कि पहले इस तरह की भारत की भूमिका नहीं रही हो, लेकिन आज जिस गंभीरता से भारत की भूमिका ली जाती है, ये पहले कभी नहीं हुआ। उसका ज्यादा कारण हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी की नेतृत्व।
1: सुरेश जी, एक और क्षेत्र पिछले, अगर हम कहें कि 12 वर्षों में बहुत बदलाव के सफर पर आगे बढ़ा, वो है रक्षा क्षेत्र। रक्षा क्षेत्र में भारत कभी दुनिया के सबसे बड़े हथियार आयातकों में गिना जाता था, लेकिन आज हम डिफेंस कॉरिडोर बना रहे हैं। तेजस, ब्रह्मोस और INS विक्रांत जैसे गौरव हमारे पास हैं और दुनिया के कई देशों में हम निर्यात भी कर रहे हैं। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के सफर को आप कितनी बड़ी रणनीतिक जीत मानते हैं?
2: मैं तो समझता हूं कि अगर इस 12 वर्षों का माननीय प्रधानमंत्री जी का कार्यकाल को देखेंगे तो मैं इसमें दो तीन महत्वपूर्ण आयाम इसमें देखता हूं। जो एक आजादी, एक खुली छूट, या आप इसको कहें कि एक ऑटोनॉमी, स्वायत्तता जो हमारे सेनाओं को दी गई है कि वो विकट परिस्थितियों में उनका हाथ खोल दिए गए हैं, ये चाहे आपने गालवान में देखा हो या पाकिस्तान की तरफ जो सरहदें हैं वहां हमने देखी हो कि हमने हमारे फौजियों के जो हाथ बांधकर हमने उन सरहदों पर खड़ा किया था उनके हाथ खोल दिए हैं, उनको ये अधिकार दिया है कि वो बीफिटिंग मैनर में जो है वो जवाब दे सकते हैं दुश्मन को, उनको कहीं भी हर एक जगह अनुमति लेने के चक्कर में कई दिनों तक आप जो है लोग इंतजार में रहते हैं और तब जाके निर्णय लिया जाता था। आज उनको ये हमारे आत्मरक्षा में कदम उठाने का उनको स्वायत्तता दी गई है, पहली बात। दूसरा, पूरा स्ट्रक्चर को आप देखेंगे तो उसमें सीडीएस जैसे इंस्टीट्यूशन, वो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का इंस्टीट्यूशन बना दिया गया है ताकि एक बेहतर समन्वय तीनों सेनाओं में, थल सेना, वायु सेना, नौसेना, इन सब में जो है एक कोऑर्डिनेशन बेहतर हो, इसके लिए जो है इंटीग्रेटेड जो कमांड की पूरी एक व्यवस्था की गई है, ये मैं समझता हूं कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं समझता हूं कि आज जिस तरीके से बहुत सारे हमने, यहां आपने भी उसका जिक्र किया कि विदेशों में आज कई देश, मैं भी अभी एक हाल ही में एक विदेशी मुल्क का देख रहा था कि वो किस तरीके से उनके परेड में आकाश के मिसाइल्स चल रहे हैं, पृथ्वी चल रहा है, पिनाका चल रहा है। जो पहले हम देखते थे कि हम जो बेचते थे वो सिर्फ एम्यूनिशन, गोलियां बेचते थे, और उसके जगह आज हम अपने एयरक्राफ्ट बेच रहे हैं। खासकर ऑपरेशन सिंदूर के बाद हमारे हथियारों की डिमांड पूरे विश्व में बढ़ गई है, और यही नहीं, हमने महिलाओं को जो महत्व दिया है उनके भागीदारी, बराबर भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए, हमने देखा ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दोनों अफसर जो वायुसेना और थल सेना के जो प्रतिनिधित्व कर रहे थे पूरे विश्व के सामने, भारत का प्रवक्ता बनकर खड़े हुए थे, वो हमारे महिला सेना के अधिकारी थे। तो महिलाओं को जो महत्व दिया गया है 26 जनवरी में, तो हमने सिर्फ महिलाओं को ही जो है सारा कमांड का नेतृत्व प्रदान करते हुए देखा, ये बहुत जरूरी था। तो मैं समझता हूं कि आमूलचूल परिवर्तन। आप अंत में ये भी मैं जरूर कहना चाहूंगा कि बहुत डिफेंस के महत्वपूर्ण विषयों को पर्यावरण के नाम पर रोक दिया गया था सरहदों में, खासकर जो उत्तर पूर्व में चीन के साथ जो सरहद है, इन सब इलाकों में जो बहुत ही दूर दराज के क्षेत्र थे वहां हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर को हमने काफी कम कर दिया था कि पर्यावरण के दृष्टि से, पर्यावरण को बचाते हुए भी हम इंफ्रास्ट्रक्चर को सरहद तक अपने सप्लाई लाइंस खुली रहे। अभी परसों ही हमने देखा कि जो जिला का जो आखिरी पॉइंट था उसको भी खोल दिया है, अब वो विश्व का सबसे बड़ा टनल होगा और निश्चित ही वो ऑल वेदर टनल होगा, चाहे कितनी भी सर्दी हो, बर्फबारी हो, आप देखेंगे कि उस टनल से हमारी फौज की सप्लाई बॉर्डर लाइन तक जाएगी। तो किसी भी तरीके से फौज के साथ, हमारे सेना के साथ, उनके जो हथियार है उसके साथ कहीं कोई समझौता नहीं किया गया है। बहुत जगह बहुत सारा अनुसंधान हो रहा है, शोध हो रहा है, नए नए हथियार डेवलप किए जा रहे हैं, मेक इन इंडिया पर बहुत जोर दिया गया है, निजी क्षेत्र को बहुत आगे बढ़ावा दिया गया है। तो मैं एक पूरे दृष्टिकोण में एक परिवर्तन पिछले 12 साल में मैं देखता हूं।
1: शिखर जी, अगर हम बात भारत के बदलाव की करें और बात हम नए भारत की करें, तो इसमें सबसे अहम कड़ियों में से एक है अन्नदाता किसान। कृषि क्षेत्र में पारंपरिक तौर तरीकों को बदलकर, चाहे सॉइल हेल्थ कार्ड की बात करें, फसल बीमा योजना की बात करें, पीएम

0: बाद किस तरह किसान को हाथ पकड़ के उनके पैर में खड़े होने के लिए जो कोशिश सरकार की तरफ से जो हेल्प, आपने किसान सम्मान निधि की बात की, किसान क्रेडिट कार्ड है, फिर दूसरी बात फर्टिलाइजर की जो आवश्यकता, और उसके साथ साथ नेचुरल फार्मिंग की भी बात हो रही है, और सबसे बड़ी बात है मार्केट एक्सेस, यानी नेट के जरिए मार्केट एक्सेस करना। अब जो शुरू अभी जो आत्मनिर्भर भारत के जो बड़े कार्यक्रम में आप देख रहे हैं कि कोल्ड स्टोरेज के एक नेटवर्क बन रही है, उसके साथ साथ आपकी ग्रीन ट्रेन बनी है, यानी उनकी पैदावार को सीधा मार्केट पहुंचाने के लिए, वो कर्नाटक से दिल्ली हो या नासिक से कर्नाटक हो या उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत तक या पूर्व भारत से या पूर्व उत्तर पूर्व भारत से मुंबई तक, इस तरह की जो नेटवर्क बनी है केवल फार्मर की जो पैदावार को ले जाने की। और सबसे बड़ी बात जो इस बार प्रधानमंत्री बहुत जोर दे रहे हैं कि हाई वैल्यू क्रॉप, यानी जिसका मूल्य मार्केट में ज्यादा है, उसमें कई कई नए नए चीजों की बात हो रही है, साथ में दाल वगैरह का यानी पल्सेस का प्रोडक्शन किस तरह बढ़ाया जाए उसकी भी बड़ी कोशिश हो रही है, और MSP यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस, सरकार की हमेशा यही रहे कि जो कॉस्ट है उसे 150% ज्यादा उसको मिनिमम सपोर्ट देने की, यानी किसान को मार्केट दर मिल जाए तो बहुत बढ़िया, अगर ना मिले उनके लिए एक सेफ्टी मैकेनिज्म MSP रही है। हर हम देख रहे हैं कि हर साल जैसे इनपुट की कॉस्ट बढ़ती जाती है, सरकार ने MSP को हमेशा रिवाइज करके बदला है। इस तरह की आप देखेंगे कि सॉइल कार्ड जिसकी बात आपने की, उसके साथ साथ जो नई टेक्निक है, जैसे आपने ड्रोन की बात की, ये जो सरकार का एक कार्यक्रम रहा है महिलाओं की सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को ड्रोन ऑपरेट करने की जो ट्रेनिंग देकर, ड्रोन दीदी जिस तरह की लाखों संख्या में आज ड्रोन दीदियां गांव में कृषि क्षेत्र में काम कर रहे, उसमें पेस्टिसाइड की स्प्रे करना हो या जितनी फसल हुई है उसकी एस्टिमेट करना हो, ये सारे में साइंस साथ में लेकर चल रहा है, उसमें अप टू डेट वेदर इंफॉर्मेशन भी दिया जा रहा है, यानी जो सूचना जो किसान को मिलनी चाहिए कि बारिश की अवस्था क्या है, बारिश होगी कि नहीं होगी, सही समय पर पानी सिंचाई कैसे मिलेगी, मतलब ऐसा कोई एरिया नहीं है जहां प्रधानमंत्री के डायरेक्शन के अनुसार सरकार पॉलिसी ऐसी ट्यून की गई है कि किसान की कहीं भी जो चुनौती आती है वो नेचुरल हो या मार्केट कारण हो उसको सुलझाने में सरकार लगी रही है। और आज हम देख सकते हैं कितने स्कीम्स जो आए हैं, जितने स्कीम्स है वो सारे स्कीम्स में यही कोशिश है कि जो हमारे किसान भाई जो पहले से अभी उनकी जो तकलीफ है एक एक करके दूर करने के लिए बहुत कोशिश की गई है।
1: सुरेश जी, पिछले 12 वर्षों में एक और फॉर्मूला काफी जोर पकड़ता नजर आया, रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म का मंत्र। प्रधानमंत्री अक्सर मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस की बात करते हैं। डिजिटल इंडिया से लेकर बुनियादी ढांचे के विकास तक इस नीति ने देश के आम नागरिकों के जीवन और ईज ऑफ लिविंग को जिस तरीके से प्रभावित किया है, आपको लगता है वो एक नए भारत की नई कहानी की तरह है?
2: बिल्कुल, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं थी। ये विदेश से एक राष्ट्राध्यक्ष आए थे और वो साधारण जो बाजार जिसको कहते हैं वहां उतरकर मुंबई में उन्होंने तस्वीरें खींची और उन्होंने दिखाया कि किस तरीके से कि कम आय वाले लोगों में भी, छोटे से दुकान में भी, यानी कि रेड़ी पटरी जो लगी हुई थी उसमें भी UPI पेमेंट हो रहा है। आज देश के गांव-गांव तक UPI पेमेंट पहुंच चुका है और आप देखेंगे कि आज विदेश में कई मुल्क आज इसमें इस विषय में रुचि ले रहे हैं कि वे अपने देश में इस तरीके से कैसे कर सकते हैं। अन्य मुल्कों में पेमेंट ट्रांसफर का बहुत ज्यादा पैसा खर्चा होता है और भारत में UPI और भीम ऐप वगैरह की अपेक्षा से आज अगर देखेंगे तो जीवन कितना सरल हो गया है। खुले पैसे के लिए, पेमेंट के लिए किसी को कहीं कोई दिक्कत नहीं होती है। स्टार्टअप्स को इतना महत्व दिया गया है जो आप सोच नहीं सकते, कल्पना नहीं कर सकते। जीवन इतना आसान, हम कभी हमारे यहाँ से भारतीय मूल के लोग विदेशों में जाके बसते थे तो एक कारण बताते थे कि भाई ईज ऑफ लिविंग है यहाँ। भारत में आज गांव-गांव में वही स्थिति है। सब कुछ जो है ई गवर्नेंस को इतना प्रमोट किया गया है, हर राज्य में आज हर तरह के स्टार्टअप्स घर तक आज खाना से लेकर क्या नहीं पहुंचता है, आज DBT के माध्यम से, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से सीधे एक एक व्यक्ति के और शायद विश्व का सबसे बड़ा 80 करोड़ के करीब लोगों को जो है आज हम सब्सिडाइज्ड रेशन दे रहे हैं। आज जो है सोशल सिक्योरिटी नाम का चीज इस देश में कभी नहीं हुआ करती थी। आम व्यक्ति अगर बीमार पड़ गया तो वो सिर्फ सरकारी अस्पतालों के पर टोटली निर्भर होता था, न जहां उसे सहूलियत मिलती थी कुछ नहीं। आज आयुष्मान भारत जैसे योजनाएं पूरे देश में

0: लगभग लागू हो गई है। बंगाल में कई वर्षों से नहीं था, अभी बंगाल में सत्ता परिवर्तन के बाद वहां भी लागू हो गई है, जिसके चलते हर व्यक्ति जो है आयुष्मान कार्ड जिसके भी पास है वो किसी भी निजी अस्पताल में जाके अपने कठिन से कठिन समस्याओं का निदान पा सकता है और सीधे सरकार जो है उन अस्पतालों को जो है उसको पेमेंट करते हैं। इससे जीवन में कितना बड़ा परिवर्तन आया है। और सबसे बड़ी बात, जो सड़कों का जाल इंफ्रास्ट्रक्चर जो फैलाया गया उसके चलते आज दूर दराज के क्षेत्रों में कभी सोच नहीं सकते थे, मैं अभी होके आया हूं, मैं देहरादून कभी 5-6 घंटे लगते थे और आज के तारीख में मैं मात्र 2.5 घंटे में देहरादून और 1.5 घंटे में हरिद्वार होके आया हूं। आप जरा सोचिए कि ये क्या कभी संभव माना जा सकता था कि आज, लेकिन इतना बड़ा जाल गांव गांव में जो है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना इंफ्रास्ट्रक्चर हाईवे एक्सप्रेस वे कि आज पूरा देश और इसका लाभ किसको मिल रहा है, आज निवेश जो है गांव गांव तक पहुंच रहा है, उद्योगपति जो है आज दूर दराज के क्षेत्रों में भी अपने उद्योग लगा रहे हैं, किसान अपना जो सामग्री है उसको शहरों तक वो जल्दी से जल्दी पहुंचा सकता है, यातायात की सुविधाएं इतनी बेहतर हो गई है। आप देखेंगे कि रेलवे हो, वंदे भारत जैसे कई नए ट्रेन शुरू हुए हैं जिसके चलते बहुत सारे यातायात की सुविधाएं, प्रधानमंत्री ने हवाई चप्पल से हवाई जहाज तक का जो योजना बनाई उड़ान स्कीम, छोटे छोटे शहरों को आज जोड़ दिया गया हवाई नेटवर्क के माध्यम से। तो मैं समझता हूं कि जीवन काफी सरल हो गया है 12 साल में।
1: जी, कुछ और विषय शेखर जी हैं जिस पर हम चर्चा आपसे करना चाहेंगे और एक विषय जो है वैश्विक व्यापार और आर्थिक कूटनीति का है। भारत ने हाल के वर्षों में यूएई, ऑस्ट्रेलिया, मॉरिशस, यूनाइटेड किंगडम और यूरोपीय यूनियन के साथ जो है वो फ्री ट्रेड अग्रीमेंट किया है। पहले भारत को वैश्विक व्यापार समझौतों में थोड़ा झिझकने वाला देश माना जाता था। आर्थिक कूटनीति में आए इस आक्रामक और रणनीतिक बदलाव को आप नए भारत के नजरिए से कितना अहम मानते हैं?
2: प्रधानमंत्री जब उन्होंने एक आह्वान दिया कि वोकल फॉर ग्लोबल और पहले लोकल फॉर वोकल, यानी पहले लोकल जो हमारी जो एंटरप्रेन्योर्स की जो कोशिश है उसको पहले देश भर के जो मार्केट में पहुंचाना, उसके बाद विश्व भर जो मार्केट है उस पर पहुंचाना है। आपने फ्री ट्रेड अग्रीमेंट की बात की, अब हर कंट्री के साथ जिस तरह बातचीत हुई, लंबी बातचीत हुई है, यूरोपियन यूनियन हो, यूके हो, इन सब से बात करके कि परस्पर कैसे, देखिए कोई भी ट्रेड अग्रीमेंट की जिक्र होती है तब आपकी ताकत पर होती है, आपके पास क्या है जो विश्व को दे सकते, जिस देश यहाँ सामान बेचना चाहता है उनमें ऐसी क्या टेक्नोलॉजी है, ऐसी क्या चीज है जो हमारे लिए जरूरत है जो यहाँ पर ना हो। तो ये इस हिसाब से आप देखेंगे जितनी ट्रेड अग्रीमेंट, कम से कम 20 से ज्यादा कंट्री से हमारी अग्रीमेंट हुई है और लगातार हमारी बातचीत जारी है अमेरिका के साथ भी। आपने देखा पिछले एक साल से जिस तरह भारत और अमेरिका बीच में जो बातचीत रही है, पर पहले टैरिफ को लेकर जो एक समस्या खड़ी हुई, उसके बाद लगातार बातचीत, और दूसरी बात ऊर्जा को लेकर भी, देखिए ऊर्जा भी बड़ी चीज है, आज भारत ऊर्जा जितनी इंपोर्ट भी करती है उतनी स्पेशलाइज प्रोडक्ट बाहर बेचती भी है, मतलब यानी कच्चा तेल भारत आता है और स्पेशलाइज प्रोडक्ट्स पेट्रोलियम के बनकर बाहर जा रहा है, क्योंकि हमारी जो रिफाइनिंग कैपेसिटी है ये कैपेसिटी आज के तारीख में अमेरिका से भी ज्यादा है, इसलिए अब भारतीय कंपनी जाके अमेरिका में रिफाइनिंग कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं। ये सारे चीजों देखने से जो ट्रेड की आपने बात किया, ये ट्रेड भारत की जो अंतर शक्ति जो है जिसको कहते हैं इनरेंट स्ट्रेंथ, हमारी टेक्नोलॉजी, हमारी बिजनेस की जो कैपेसिटी, ये सारे सबके लिए एक प्रकार से मौका आ रहा है और इस मौके को आगे बढ़ाने के सरकार की जो कूटनीति रही है उसकी डिप्लोमेसी में आप देखेंगे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जा रहा है कि किस तरह इकोनॉमिक कैसी हमारी बेनिफिट हो, देश को मिले और हमारे जो जितने इंडस्ट्रीज है वो आपको कॉटेज इंडस्ट्री से लेकर हैंडलूम तक, टेक्सटाइल से लेकर आपके इलेक्ट्रॉनिक्स तक, उसको कैसे आगे मार्केट पहुंचाने की काम सरकार लगातार करी आ रही है, उनके लिए कभी भी सरकार की तरफ से जो सुविधाएं दे सकते में उसमें कोई सीमा ही नहीं है, आपको बैंक लोन हो, बैंक गारंटी हो, ये सारे चीजें देकर आज देखे यूनिकॉर्न की बात हो रही है, बड़े बड़े कंपनी स्टार्टअप बन रहे, ये सारे स्टार्टअप की तो मार्केट तो विश्व मार्केट है। तो इस तरह आप देखेंगे पिछले 12 साल में जो एक कॉन्फिडेंस आई है हमारे इंडस्ट्री में, हमारे बिजनेस कम्युनिटी में कि हम कर सकते हैं, ये कर सकते हैं और करेंगे भी, ये दोनों मंत्र को लेकर जो आगे चल रहे हमारी इंडस्ट्री, उसका कारण यही है कि आज की जो सरकार, जो प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में सरकार, वो बिल्कुल वो जो नारा है मोदी है तो मुल्किम है, ये वाकई आप देखेंगे ये प्रैक्टिकल हो गया है, ये केवल एक स्लोगन नहीं है, ये कोई पॉलिटिकल स्लोगन नहीं है, ये वाकई ये सरकार किस तरह कदम लेकर किस तरह प्रोग्राम चला के हर भारतीय को एक स्कोप दे रही है, एक अपॉर्चुनिटी दे रही है कि जिसमें आपको लगता है कि आपको आगे बढ़ो, सरकार आपके साथ है। मैं मानता हूं ये 12 साल का उपलब्धि वही है, भारत की इंडस्ट्री पीछे नहीं है, हमारी कैपेसिटी बिल्डिंग चलती रही है। इसलिए तो बार बार प्रधानमंत्री कहते हैं सशक्तिकरण एम्पावरमेंट की जब बात करते हैं, केवल गरीब या मध्यम वर्ग या इनकी बात नहीं है या किसान की बात नहीं है, हर वर्ग की बात है, हर हर शिक्षण की बात है, हर भारतीय नागरिक की बात है एक तरफ। दूसरी तरफ राष्ट्र निर्माण, यानी जिस तरह इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रही है, इसको देखकर तो बाकी देश भी देख रहे हैं। आज की तारीख में आप देखिए, कई बार बाहर होके आइए, आप यूरोप चले जाइए, अमेरिका चले जाइए, जब वापस आते हैं आपको लग रहा है, जैसे दिल्ली पहुंचेंगे एयरपोर्ट से बाहर निकलेंगे तभी आपको लगता है कि जो पहले एक प्रकार से एक इंप्रेशन था भाई बड़े बड़े देश है, इतने डेवलप्ड है, भारत को कब कब वहां पहुंचेंगे, ये वाले चीजें दूर होती जा रही है। आनंद जी, जब भी आप लगता है कि भाई हम कहीं पीछे नहीं है, अब आगे बढ़ रहे हैं। आज के तारीख में 20 से ज्यादा शहरों में हमारी मेट्रो ट्रेन चल रही है, उसकी टेक्नोलॉजी आप देख लीजिए, ये टेक्नोलॉजी जॉइंटली डेवलप्ड हुआ है और ये लेटेस्ट भी है। आज दिल्ली में अगर मेट्रो नेटवर्क इतना बड़ा है, जो मेट्रो डिब्बे जो चल रहे हैं उसमें अंदर लेटेस्ट टेक्नोलॉजी चल रहा है, ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आज लंदन में अवेलेबल नहीं है, पेरिस में नहीं है, न्यूयॉर्क में नहीं है, हमारी यहाँ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी चलती है। और लगातार जो कोशिश है कि भाई हम जब राष्ट्र निर्माण की बात करेंगे, राष्ट्र स्वाभिमान की बात करेंगे, हम पूरे के पूरे कोशिश, पूरे के पूरे ताकत लगा के एकजुट होके सरकार और नागरिक और देश प्रथम ये मन में रख के काम करने की जो एक माहौल बनी है, उसका कारण है ये 12 साल की प्रधानमंत्री की नेतृत्व।
1: सुरेश जी, एक मीडिया और सांस्कृतिक विश्लेषक के तौर पर आपने देखा होगा कि पिछले दशक में भारत ने अपनी सॉफ्ट पावर का भरपूर इस्तेमाल किया है, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हो, वैश्विक मंचों पर आयुर्वेद को बढ़ावा देना हो या फिर ग्लोबल साउथ की आवाज बनना हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विकास भी और विरासत भी, इस नैरेटिव ने वैश्विक पटल पर भारतीयों की सांस्कृतिक पहचान को किस तरह पुनर्भाषित किया है?
0: देखिए, सबसे पहले तो आपको याद होगा कि प्रधानमंत्री जी ने जब अपना कार्यकाल शुरू हुआ, ज्यादातर देशों में जब वो जाते थे तो वो भगवद्गीता की कॉपी देते थे, कुछ भारतीय एक पहचान, भारतीय अस्मिता, भारत की छवि, ये आज इतना भारत सर्वप्रथम हो गया है, भारतीय सर्वप्रथम हो गए हैं। प्रधानमंत्री जिस भी देश में जाते हैं, जो भारतीय मूल के जो लोग हैं, प्रवासी भारतीय हैं, उनसे वो मिलते हैं, उनके उस देश में जो भूमिका है उसके बारे में बात करते हैं। आप देखेंगे कि पूरे विश्व भर में भारतीयों को भी संगठित करके भारत के लिए वे क्या कर सकते हैं, इस दिशा में प्रयास किया है। भारत के संस्कृति को, भारत के संगीत को, भारत के सभ्यता को वैश्विक पटल पर किस तरीके से लाया जाए, आपने जिक्र किया। अभी अगले हफ्ते ही, जल्दी ही हमारे बीच में जून 21 आ रहा है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, और शायद ही विश्व में ऐसा कोई प्रस्ताव है जो सबसे ज्यादा राष्ट्र के लोगों ने एक साथ समर्थन किया और उसको जो है स्वीकार किया। आज पूरे विश्व में जो है योग दिवस मनाया जाता है। भारत जो है अपने पर्यटन के क्षेत्र में, अभी आप देखिए कि चीता जैसे जानवर जो दुर्लभ क्या हमारे देश से बिल्कुल गायब हो गए थे, जिनकी समाप्ति हो गई थी, उनको दोबारा कूनो मध्य प्रदेश में इसको हमने रीइंट्रोड्यूस किया। हमने देश के उस विरासत को, देश के ऐसे कई ग्रंथ, कई मूर्तियां जो पूरे विश्व के म्यूजियम्स में पड़े हुए थे, उनको वापिस ससम्मान, चाहे वो भगवान बुद्ध से संबंधित हो, चाहे देवी देवताओं से संबंधित हो, मंदिरों के, वो उन सब को लेकर आए। और क्या इससे बेहतर काम हो सकता है कि एक बहुत एक एक विषय जिसको लेकर पूरे समाज में एक तरह से एक कटुता थी, उस विषय को का एक समाधान कोर्ट के जरिए निकालकर उसका शीघ्रातिशीघ्र, जो राम मंदिर का अयोध्या में जो निर्माण हुआ वो इसी कार्यकाल में हुआ, जिससे एक बहुत बड़ा लंबित मामला जो समाज और राष्ट्र को और वैश्विक स्तर पर हमारा जो है एक विषय बन चुका था, उसका समाधान, स्थायी समाधान हमने देखा। तो ये मैं समझता हूं कि जिससे भारत की विरासत आज पूरे विश्व में जो है इसको मनाया जा रहा है। पूरे भारत का जो है, हम लोग आज भारतीयता पर जो गर्व करते हैं,

0: आज डीकोलोनाइजेशन, औपनिवेशिकतावाद से हटकर आज हम देख रहे हैं कि किस तरीके से जो कॉलोनियल, जो हमारे यहाँ, आप चाहे वो एक वॉर मेमोरियल क्यों ना हो, इंडिया गेट, हम सब उसको बहुत प्रेम करते हैं, लेकिन उसमें विश्व युद्ध के सेनानियों का नाम लगे हुए थे। लेकिन भारत के वो सेनानी जिन्होंने 1947 से लेकर और सब युद्धों में जिन्होंने अपना बलिदान, सर्वोच्च बलिदान दिया, उनके लिए एक राष्ट्रीय युद्ध स्मारक वो हमने बनाया। इसी प्रकार हमने जो पुराने कॉलोनियल, इस शहर को जो कि भी पहचान थी, वो ज्यादातर आक्रांताओं द्वारा जो दी गई, जो भवन थे या बिल्डिंग थे, उन्हीं पर हम लोग जो है, हमारे दिल्ली में हमारी अपनी विरासत क्या थी। तो इसलिए सेंट्रल विस्टा जैसे, जहां नया संसद भवन बना, जहां नया सेवा तीर्थ प्रधानमंत्री का ये बना, और कितने सड़कों का जो हमारे गुलामी के प्रतीक थे उनका नाम बदलकर जो है, हमको जो है, हमने देखा कि राजपथ को जो है, हमने उसको, चाहे वो प्रधानमंत्री का लोक कल्याण मार्ग हो या हमने जो है सेवा तीर्थ की स्थापना किया हो, हम देख रहे हैं कि किस तरीके से भारत के अपने पहचान, अपना जो विरासत है,
1: जी
0: उसको जो है पुनः स्थापित करने का एक प्रयास किया गया। तो मैं समझता हूं कि आज राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भी, क्योंकि मैं एक शिक्षाविद भी हूं और शिक्षा से जुड़ा रहा हूं, तो मैं ये कह सकता हूं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो लागू हुई है, उसके तहत भारतीय ज्ञान परंपरा के माध्यम से हम सबको अवगत कराने का प्रयास किया जा रहा है कि हमारे आने वाली पीढ़ियों को गर्व रहे कि हर विषय को लेकर उसमें भारत का क्या योगदान रहा, जिसको भूला जा चुका था, जिसको ये बताया जा रहा था
1: जी
0: कि
1: सर,
0: सारा ज्ञान पश्चिम से आया है। तो मैं समझता हूं कि ये बहुत महत्वपूर्ण है।
1: आखिर में एक बहुत छोटा सवाल शेखर जी आपसे समझना चाहेंगे। जब भी हम स्वर्णिम अतीत की बात करते हैं तो वो मजबूत वर्तमान की तरफ आगे बढ़ता है। जब वर्तमान मजबूत होता है तो हम एक सुनहरे भविष्य की परिकल्पना करते हैं, और यहां परिकल्पना 2047 के विकसित भारत की है। इस नए भारत की मजबूत नींव पर, विकसित भारत की बुलंद इमारत को आप किस तरह देखते हैं? कार्यक्रम में समय कम है, बहुत संक्षेप में।
2: बिल्कुल विकसित भाव, आपने सही कहा कि जो भी फैसले आज लिए जा रहे हैं, जो भी कार्यक्रम आज लागू किया जा रहा है, जो भी नए इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं, वो केवल यही दृष्टि से कि आज की कदम कल की जो दिशा है, जहां मंजिल है वहां पहुंचने की बात है। और सारी चीजें जो बड़ी बात है आनंद जी, मैं मानता हूं प्रधानमंत्री की कोशिश हर पहलू पे एक ईमानदारी से जुड़ा हुआ है, एक सिंसियर एफर्ट है कि भारत कैसे आगे बढ़े, भारतीयों की जीवन कैसे और सरल हो जाए, और भारत के भविष्य, हर नागरिक का भविष्य कैसे उज्जवल हो, इसकी कोशिश पर सरकार लगा हुआ है बिना एक दिन छुट्टी के।
1: जी, हर युग की अपनी एक पहचान होती है। कुछ युग परिवर्तन के साक्षी बनते हैं और कुछ परिवर्तन के निर्माता। पिछले एक दशक में भारत ने अनेक क्षेत्रों में नई उपलब्धियों के आयाम स्थापित किए हैं। वैश्विक कूटनीति से लेकर राष्ट्रीय सुरक्षा तक, डिजिटल क्रांति से लेकर बुनियादी ढांचे के विस्तार तक, आत्मनिर्भरता से लेकर विकसित भारत के संकल्प तक, देश ने एक नई ऊर्जा और एक नए आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने का प्रयास किया है। इस चर्चा में शामिल होने के लिए केजी सुरेश जी आपका और शेखर अय्यर आपका बहुत बहुत आभार।
0: धन्यवाद
2: धन्यवाद।
3: अभी आप सुन रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ऐतिहासिक कार्यकाल। प्रभावशाली नेतृत्व और परिवर्तनकारी नीतियों से आकार लेते नए भारत पर परिचर्चा। इसमें भाग ले रहे थे राजनीतिक विश्लेषक शेखर अय्यर और केजी सुरेश। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे आनंद श्रीवास्तव। यह कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।
4: चर्चा का विषय है

102.7 FM पर हम आकाशवाणी के ओबरा केंद्र से बोल रहे हैं। रात्रि के 10 बज रहे हैं। प्रस्तुत है फिल्मी गीतों का कार्यक्रम रसधारा।

किशोर कुमार की आवाज़ में ये था फिल्म पतिता का गाना। आकाशवाणी उबरा से समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रसधारा। अब लीजिए सुनिए किशोर कुमार की आवाज़ में कार्यक्रम का अगला गाना। फिल्म का नाम है लहू के दो रंग।

0: गाइए गुनगुनाइए, कहिए हमसे दिल की बात।
1: आपकी फरमाइश पर हम चलेंगे म्यूजिकल रिदम के साथ।
2: हेलो,
0: फिर क्या, फोन उठाइए, वॉल्यूम बढ़ाइए,
1: जो चाहे वो ट्रैक सुनाइए।
0: डायल करिए 0544529710। मंगलवार और शुक्रवार दिन में 11 बजे से।
1: हेलो फरमाइश, योर म्यूजिक योर स्टाइल,
0: ओनली ऑन AIR ओबरा।
3: आकाशवाणी ओबरा से समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रसधारा। श्रोताओं, हीट वेव से सुरक्षा के लिए सूचना सुनिए। भीषण गर्मी और हीट वेव यानी लू से बचने के लिए खुद को हाइड्रेटेड रखें, हल्के और ढीले सूती कपड़े पहनें और दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक घर से बाहर निकलने से बचें। अपनी सुरक्षा के लिए हमेशा सिर ढक कर रखें, छाता का इस्तेमाल करें और पर्याप्त पानी पीते रहें। चाहे आपको प्यास न लगी हो, फिर भी हर थोड़ी देर में थोड़ा थोड़ा पानी पीते रहें। घर से निकलते समय हमेशा पानी की बोतल साथ रखें। ORS, नींबू पानी, लस्सी, छाछ और नारियल पानी का अधिक सेवन करें। तरबूज, खीरा और खरबूजे जैसे पानी से भरपूर फल खाएं। हल्के रंग के

कपड़े और ढीले ढाले और पूरी तरह से शरीर को ढकने वाले सूती कपड़े पहने। बाहर जाते समय आंखों पर धूप का चश्मा, सिर पे टोपी या गमछा और पैरों में जूते चप्पल जरूर पहने। घर को ठंडा रखें। दिन के समय खिड़की और दरवाजों पर पर्दे लगा कर रखें। रात में खिड़कियां खोलें ताकि ताजी हवा आ सके। हीट वेव से सुरक्षा पे सूचना समाप्त हुई।

आकाशवाणी उपरा से समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम रसधारा। अब लीजिए सुनिए किशोर कुमार और अनुराधा पौडवाल की आवाज में फिल्म कलाकार के इस गीत को।